फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया है कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाघी ने कहा है कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वो दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के मत समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यात्रा का लक्ष्य रसद, खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने कहा है कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र अमरीकी नौसेना की नाकाबंदी वाली सीमा से शुरू होकर फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक फैलेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने कल चीन के खिलाड़ियों को हराया। ये इस प्रतियोगिता में भारत का पहला तथा इस जोड़ी का इस सत्र का दूसरा खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज का चिंतन विश्व को महान बनाने का एकमात्र मार्ग है अपने चरित्र को महान बनाना। स्वामी विवेकानंद। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

0: इसी देशगान के साथ कार्यक्रम वंदन वार अब यहीं संपन्न होता है।
1: यह है विविध भारती।

लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर श्री रामचरितमानस गान का प्रसारण किया जाएगा। आज आप सुनेंगे भाग 304। सुबह 6:45 पर और पुनः शाम 6:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना का भाग 7 प्रसारित किया जाएगा। कलाकार गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम है राही प्यार के। सुनिएगा समाचार प्रभात 8:15 पर और पुनः दिन में 2 त्रिवेणी का प्रसारण किया जाएगा। आलेख एवं स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा निर्देशक पीएल संतोषी पर। आलेख एवं स्वर जी श्याम का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर और पुनः रात को 9:30 पर। सुबह 10 सुनिएगा पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों की, नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत का भाग 4 आज प्रसारित होगा। संपादन सहयोग योगिता जाधव का, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। दिन में 12 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उससे पहले 11 रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल और 1 सुरीला सफर। सदा बहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुनते हैं दिन में 2:30 पर। 3 सखी सहेली, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 4 सुनिएगा पिटारा के अंतर्गत सेहत नामा, पोषण इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत का भाग 1 आज प्रसारित होगा। तकनीकी सहयोग मंगेश सांगले का, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। शाम 5 सुनिएगा छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने, 6 हिंदी में समाचार और 6:05 पर पुनः आप सुनेंगे कार्यक्रम तराने नए पुराने। पर संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना का भाग 7 आज प्रसारित होगा। कलाकार गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणी। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला शाम 7:00। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा एक ही फिल्म से, आज आप सुनेंगे फिल्म ताजमहल के गीत। रात्रि 8 हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा झलकी सेल्फी, लेखन एवं निर्देशन HS व्यास का। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:15 पर। 8:45 पर समाचार संध्या और 9 कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 10 सुनिएगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर सलमा सैयद का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। 10:30 पर ढलती जाए रात। और रात्रि 11 से आप सुनेंगे रंग तरंग का पुनः प्रसारण।
तो श्रोताओं, ये थी आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप सुन रहे थे झरोखा। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान, लंका कांड, आज भाग 304।

मंदोदरी के लाख समझाने पर भी रावण को सद्बुद्धि नहीं आती। श्री राम की शरण में न जाकर वो अपनी प्रभुता और पराक्रम का गान करने लगता है। मंदोदरी को अपना सुहाग अचल रखने की चिंता है।

फिर समझाने का प्रयास करता है। कहता है, एक ही वानर आकर सोने की लंका जला गया। हे प्रभु, इन मंत्रियों की सम्मति सुनने में तो बहुत प्रिय लग रही है, किंतु इनकी बात मानकर चलने में आगे दुख उठाना पड़ेगा। जगत में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जो सुहाने वाली बातें कहते हैं, सत्य और प्रिय कहने वालों की संख्या कम होती है। मुझे कायर और भीरु न समझ, मैं जो कहता हूँ उस पर ध्यान दीजिए और नीति के अनुसार दूत भेजकर श्री राम से सद्भाव स्थापित कर लीजिए।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। आइए अब सुनते हैं इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: नमस्कार। संगीत सरिता के सभी संगीत प्रेमी सुनने वालों का स्वागत है। श्रृंखला जारी है स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। किराना घराने की गायकी के बारे में बताने के लिए, इसकी विशेषताओं पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित है जाने मानी शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला जी। शकुंतला जी, किराना घराने की कौन सी वो बात है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे?
2: हमारा जो सूक्ष्म स्वर लगाव होता है
1: जी,
2: उसके बारे में हम आज थोड़ा विस्तृत स्वरूप से जानकारी ले लेंगे। सूक्ष्म यानी एकदम बारीक, बीच बीच में जो हम स्वर लगाते हैं, स्वर लगाव, ये भी किराना घराने की एक महत्वपूर्ण विशेषता है
1: जी।
2: इस घराने में प्रत्येक स्वर को अत्यंत सावधानी, शुद्धता और संवेदनशीलता के साथ लगाया जाता है, जिससे राग का वास्तविक स्वरूप उभर कर सामने आता है
1: जी।
2: वो उस पर ही राग का स्वरूप होता है ज्यादा, यानी उस राग का जो स्वभाव है, भाव है। श्रुतियों का अत्यंत सूक्ष्म प्रयोग किराना घराने की गायकी में स्वरों के बीच स्थित सूक्ष्म श्रुतियों का सुंदर प्रयोग किया जाता है
1: जी, जी।
2: इससे गायन में कोमलता, गहराई और मधुरता आती है। प्रत्येक स्वर को पूरा महत्व दिया जाता है
1: जी।
2: यहाँ पे किसी भी स्वर को जल्दबाजी में नहीं गाया जाता है, बल्कि उसे पर्याप्त समय देकर उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति की जाती है
1: जी।
2: यही कारण है कि राना घराने को स्वर प्रधान घराना कहा जाता है। मिंड और स्वर लगाव का जो सुंदर समन्वय इसमें है, मिंड के माध्यम से एक स्वर से दूसरे स्वर तक अत्यंत सहज और अखंड रूप से पहुंचा जाता है
1: जी।
2: इससे स्वरों का प्रवाह स्वाभाविक और अत्यंत मधुर प्रतीत होता है। राग का भाव अधिक प्रभावी बनता है। सूक्ष्म स्वर लगाव के कारण राग का रस, भाव और सौंदर्य श्रोताओं तक अधिक प्रभावशाली ढंग से पहुंचता है
1: जी।
2: और राग की पहचान एकदम स्पष्ट हो जाती है। जयन जी, गहन रियाज की जो आवश्यकता है,
1: हाँ जी,
2: ऐसा सूक्ष्म स्वर लगाव प्राप्त करने के लिए वर्षों की नियमित स्वर साधना, श्रुति की समझ और स्वर पर पूर्ण नियंत्रण आवश्यक होता है। इसका अनुभव दिखाने के लिए
1: जी, जी,
2: मैं बहुत ही एक वजनदार,
1: वही आपसे जानना चाह रहा था कि ये जो सूक्ष्म लगाव आप कह रही हैं,
2: हाँ,
1: तो उसका अनुभव हमें किस राग के माध्यम से मिलने वाला
2: है? कौन सा राग हो सकता है वजनदार राग?
1: आप राग दरबारी की बात करना चाह रहे हैं? वाह वाह।
2: ऐसा कहते हैं कि ये राग सिर्फ गले में बिठाने के लिए एक तप लगता है,
1: 12 साल लग जाते हैं इसे सिद्ध करने में।
2: हाँ।
1: वाह वाह।
2: इसीलिए बड़े बड़े कलाकार जो है वही वो राग चुनते हैं।
1: इतना आसान नहीं।
2: उसका जो डेप्थ है, उसका जो स्वर पर जो रहने का जो तरीका है
1: जी,
2: वो
1: जी।
2: बहुत ही गहरा है। प्रयास करेंगे, मैं थोड़ा गा के सुनाती हूँ।
1: स्वागत है।

0: आगे जाने से पहले एक थोड़ा द्रुत बंदिश दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा बोलती हूँ, क्योंकि उस्ताद आमिर खान ने ये सुंदर बंदिश बनाई, और ये जो मैं द्रुत बंदिश गाने वाली हूँ, ये बंदिश का महत्व क्या है? अनोखा लाडला रेमा खेलन को मांगे चांद।
1: अच्छा,
0: राम मांग रहा है खेलने के लिए चांद, लेकिन ये लिखने वाला जो है वो खान साहब है।
1: ओ हो, क्या बात।
0: हमारे भारत में जो सर्वधर्म समभाव का जो भाव है, वो भी हमारे शास्त्रीय संगीत में इतना प्रस्तापित हुआ है, और हम एक दूसरे को कलाकार के नाते देखते हैं।
1: जी।

0: वाह वाह वाह वा। अति सुंदर शकुंतला जी। हाँ। राग दरबारी की इस बंदिश को सुनकर के जो फिल्मी गाना गूंज रहा है मन में वो बैजू बावरा फिल्म का गीत है।
1: वाह वाह क्या बात है।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सैर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तथा जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति और नई ऊर्जा के साथ कर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषाम, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
0: दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा

0: जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई होगी। इस बीच कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। यह इमारत पेइंग गेस्ट आवास के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कल दोपहर करीब 1:30 बजे इमारत ढहने के समय उसके बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल दुबई पहुंचे। वे संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। वे दुबई में आयोजित एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश को निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा। भारत ने एएफसी अंडर-20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। एएफसी अंडर-20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 7 years, the relationship between India and France has reached new heights. He said together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of the Swami Narayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said from technology, AI and defense to space and climate action, both nations are moving forward together with new momentum and renewed energy. He said both sides also celebrating this year as the India-France Year of Innovation.
2: BOPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहां भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
1: Delhi Chief Minister Rekha Gupta has ordered a ministerial inquiry into the building collapse incident in Satyaniketan area of New Delhi and directed registration of an FIR against the building owner. The Chief Minister's office said the decision was taken following an on-site review and a preliminary assessment of the incident. The CMO said those found responsible for the grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. Death toll in the incident has risen to 6 following the recovery of one more body late last night. Search and rescue operations continued at the site as teams worked to clear the debris.

0: मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत फ्रांस संबंध नई ऊंचाइयों पर, पेरिस का स्वामीनारायण मंदिर दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्तों को देगा नई मजबूती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दुबई में AIIM कांग्रेस में होंगे शामिल, प्रदेश की निवेश संभावनाओं को वैश्विक निवेशकों के सामने रखेंगे। सागर में नकली शराब से 10 मौतों के बाद सख्त कार्रवाई, आबकारी और पुलिस विभाग के 5 अधिकारी निलंबित। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी, 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ दोनों देश मजबूत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं। पेरिस में स्वामीनारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि तकनीकी, AI, रक्षा, अंतरिक्ष और जलवायु जैसे क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं।
1: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, AI और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस संबंधों की नींव लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक और राजनीतिक रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि पेरिस का स्वामीनारायण मंदिर दोनों देशों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्तों को और मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने 4 दिवसीय दुबई दौरे के दूसरे दिन यानी आज AIIM कांग्रेस 2026 में शामिल होंगे। वे मध्य प्रदेश पवेलियन का उद्घाटन कर प्रदेश की औद्योगिक ताकत और निवेश के अवसरों को वैश्विक निवेशकों के सामने रखेंगे। मुख्यमंत्री UAE और रूस के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर निवेश और आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश सत्र में वे निवेशकों को प्रदेश की औद्योगिक सुविधाओं और प्रमुख सेक्टरों की जानकारी देंगे। इसके अलावा UAE के मंत्रियों और लुलू ग्रुप के प्रमुख यूसुफ अली के साथ भी उनकी बैठक होगी। दिन के अंत में मुख्यमंत्री दुबई के महावाणिज्य दूत के रात्रि भोज में शामिल होंगे। इससे पहले कल बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हम कई क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, AI, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर शामिल हैं।
2: जब निवेशकों के साथ संवाद कर रहे हैं तो हम दो तरफा बात कर रहे हैं। राज्य के अंदर भी हमारे यहाँ पर्याप्त सब प्रकार के निवेश की गुंजाइश है, चाहे माइनिंग का सेक्टर हो, हमारी सेवा के क्षेत्र हो या इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री भी तीनों प्रकार की है, तीनों प्रकार की इंडस्ट्रियों में हम हेवी इंडस्ट्री, MSME या अलग उद्योग में भी देखते हैं। फूड सेक्टर है, टेक्सटाइल है, AI है, डेटा सेंटर है, सेमीकंडक्टर है, इस सभी सेक्टर में हम समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं।
0: सागर जिले के बंडा क्षेत्र के 3 गांवों में नकली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई की है। आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है, जबकि 1 अधिकारी को ग्वालियर मुख्यालय अटैच किया गया है। पुलिस ने भी बंडा थाना प्रभारी सतीश कुशवाहा और गोगरा चौकी प्रभारी SI पूरन लाल खड़िया को निलंबित कर दिया है। ये घटना गोगरा खुर्द, नौरोज और पाटन गांव में हुई, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस ने जांच तेज कर दी है। सागर कलेक्टर के मुताबिक जहरीली नकली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हुई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर घटने के बाद जनजीवन सामान्य करने के लिए प्रशासन का राहत और सफाई अभियान लगातार जारी है। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार S और SP हंसराज सिंह ने भरतघाट, राघवप्रयाग घाट और न्यागांव का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नगर निगम की 2 टीमों में 50-50 सफाईकर्मी लगाकर घाटों की सफाई कराने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ प्रभावितों के लिए दीनदयाल रसोई से 24 घंटे भोजन के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं सतना जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 3,074 परिवारों को 1,58,64,000 रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार से मुलाकात कर सांवेर क्षेत्र में रेलवे सुविधाएं बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने संघर्ष 2028 को देखते हुए स्टेशनों के उन्नयन, नए प्लेटफार्म और अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन और इंदौर उज्जैन तथा इंदौर रतलाम रूट पर मेमू और डेमू ट्रेनों का संचालन बढ़ाने तथा कई एक्सप्रेस ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की मांग रखी। अब रुख करते हैं एक अच्छी खबर का। विदिशा जिले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पियों के जीवन में नई उम्मीद और स्वावलंबन लेकर आई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे विदिशा संवाददाता वेद प्रकाश शर्मा।
4: विदिशा के शासकीय आईटीआई कॉलेज में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर मंडी बामोरा के ग्राम बिटोला की श्रीमती दुर्गाबाई ने डलिया निर्माण का कार्य प्रारंभ कर आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिखी है।
5: इस विश्वकर्मा योजना में बहुत फायदा है हमारे लिए।

0: करने की सोच रहे हैं और जो बंशकार का काम करते हैं दलिया वाला, और इसी के लिए बना बना कर बेचते हैं। बच्चे हैं हमारे, उनके लिए फायदा है, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं।
1: विदिशा के शासकीय आईटीआई की प्राचार्य कविता रघुवंशी बताती हैं कि
2: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक कुशल कारीगरों के लिए एवं शिल्पकारों के लिए एक वरदान साबित हुई है। शासकीय आईटीआई विदिशा में कुल 18 जॉब रोल के अंतर्गत प्रशिक्षण विश्वकर्मा योजना में दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मैशन, मूर्तिकार, कॉबलर, दर्जी जैसे पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया जाता है। विदिशा आईटीआई से कुल 2500 लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त है और इन 2500 कारीगरों में कुल 700 महिलाएं भी रही हैं, और महिलाओं के द्वारा प्रशिक्षण में आगे आकर एक नए कीर्तिमान की रचना की जा रही है।
1: आकाशवाणी के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा।
3: उज्जैन में आज निकलने वाली भगवान महाकाल की अंतिम राजसी सवारी का आकाशवाणी पर 8 घंटे लगातार सजीव प्रसारण होगा। दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक होने वाला यह प्रसारण प्रदेश के सभी आकाशवाणी केंद्रों से एक साथ सुना जा सकेगा। इस विशेष प्रसारण को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने के लिए नामांकित किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रायसेन के मंडीदीप में शिक्षक और प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और भविष्य का निर्माण करते हैं। उन्होंने शिक्षा में बेहतर योगदान देने वाले शिक्षकों और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर बधाई दी। बालाघाट के बिरसा विकासखंड के बीमारी प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार सर्वे और उपचार में जुटी हैं। एक महीने में अस्पताल में भर्ती 448 मरीजों में से 406 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं कुड्डेकसा में 127 बैगा परिवारों को मच्छरदानी, पौष्टिक खाद्य सामग्री और कपड़े और मच्छर भगाने वाली अगरबत्तियां वितरित की गई हैं। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून गतिविधियां अभी जारी हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज कई हिस्सों में बारिश और गरज चमक की संभावना है। विभाग ने गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा और सुसनेर न्यायालय परिसर में 12 सितंबर को होने वाली लोक अदालत में बिजली चोरी के लंबित प्रकरणों पर 20% और प्री लिटिगेशन प्रकरणों पर 30% की छूट दी जाएगी। डिंडोरी होमगार्ड कार्यालय में आयोजित युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण के चौथे दिन आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। सतना जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 3074 प्रभावित परिवारों को 1,58,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। राजगढ़ कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने अधिकारियों को स्वामित्व योजना और सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों को 100 दिन से कम के समय में निपटाने के निर्देश दिए हैं। और शहडोल खाद्य विभाग की टीम ने बुढ़ार, धनपुरी, जैतपुर, ब्योहारी और शहडोल क्षेत्र में 25 से अधिक डेयरी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर जांच के लिए सैंपलों को प्रयोगशाला भेजा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
1: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अब आपको सुनवा रहे हैं हम पंछी एक डाल की फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों में। पीएल संतोषी का लिखा गीत है, संगीतकार है एन दत्ता।

शिन शिना की बुबला बू। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में। पीएल संतोषी का ही लिखा गीत है, सी रामचंद्र का संगीत, और ये है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

शिनशिना की बुबलाबू इस फिल्म का गीत आप लता मंगेशकर के स्वर में सुन रहे थे। आज फिल्म निर्देशक पीएल संतोषी की पुण्यतिथि पर हमने उन्हीं के लिखे गीत आपको सुनवाए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। और अब कार्यक्रम का वक्त हो गया है, दीजिए आज्ञा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

लीजिए श्रोताओं, हम हाजिर हैं कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की लेकर। आप सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूं मैं पूजा नारायणिया। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं बरसात की रात फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में। साहिल लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत।

हमें राही प्यार की कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और अगला गीत अब आपको सुनवाते हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में दिल ही तो है। इस फिल्म का साहिल लुधियानवी ने ही इस गीत को लिखा है और संगीतबद्ध किया है रोशन ने।

0: चित्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
4: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
3: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
4: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
5: सखी सहेली।
6: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के, हॉलीडे इन बॉम्बे। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में। अनवर फर्रुखाबादी का लिखा गीत है एंड दत्ता का संगीत।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
3: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
4: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
2: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
5: मेरा साया साथ होगा।
6: श्रोताओं, कार्यक्रम हम है राही प्यार के में अब वक्त है एक अंतराल का।

कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से, और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वरों में। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है, बासु मनोहारी का संगीत है, फिल्म का नाम है सबसे बड़ा रुपया।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, इसे संगीतबद्ध किया है चित्रगुप्त ने, लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। फिल्म का नाम ओपेरा हाउस।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला ओ गडले
2: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
2: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
2: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं ये वादा रहा फिल्म का गीत। किशोर कुमार और आशा भोसले ने इसे गाया है। गुलशन बावरा के बोल, धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

0: सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, इसे निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ओपेक प्लस समूह ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 30-3 से हराकर 20 वर्ष बाद AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
2: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, AI और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास फ्रांस में भारतीय सैनिकों के बलिदानों का गवाह है। श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम

0: माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस संभावना को भी एक नया आयाम दिया है।
1: भारत फ्रांस ज्वाइंट वेंचर्स की संभावनाओं पर बातें होती है, स्वामीनारायण मंदिर ने इस संभावना में भी एक नया आयाम जोड़ा है। ये मंदिर मेड इन इंडिया है और बिल्ट इन फ्रांस है। इसके काफी पत्थरों को भारत में तराशा गया है। भारत की प्राचीन प्रतिभा यहाँ फ्रांस में आधुनिक इंजीनियरिंग से आकर जुड़ चुकी है। पेरिस में इस भव्य मंदिर ने आकार लिया है, इसलिए मैं आशा करता हूँ ये मंदिर सदियों तक भारत और फ्रांस के बीच सहयोग और संभावनाओं का भी प्रतीक बनकर उभरेगा।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए।
2: जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार है, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
0: मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मृतकों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। NDRF, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और NDRF के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध इमारतें तत्काल सील की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश कॉलेज आज इस हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। वहीं आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि ना तो उसका निजीकरण और ना ही उसका महत्व कम किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। इसरो ने कहा कि परिपक्व और विस्तार योग्य तकनीकी क्षमताओं को भारतीय उद्योग द्वारा तेजी से विकसित किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यवसायीकरण, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव होगी, जबकि इसरो के वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को उन्नत अनुसंधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th.

0: September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है।
2: इस बैठक में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेंगे। परिषद का यह मंच आपसी सहयोग को बढ़ाने और साझा हितों से मामलों पर मिलकर आगे बढ़ने का अवसर देता है। बैठक में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वे दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर कई देशों ने अपना व्यापार बढ़ाया है।
3: प्रदेश से जुड़ करके कई सारे देशों ने भी अब अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाया है और यही कारण है कि पिछले साल ही हमारा 76,000 करोड़ का निर्यात मध्यप्रदेश से हुआ। ऐसे में हम अपने इस व्यापार व्यवसाय के साथ राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, सभी के लिए समृद्धि और परस्पर द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे के आधार पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हम दोनों कटिबद्ध है।
1: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और 1 सोने का सिक्का जब्त किया है। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के अंतर्गत सिक्कों को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जाँच जारी है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
4: इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। इसके साथ ही वर्ष 2023 में की गई प्रतिदिन करीब 16,50,000 बैरल की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास जारी व्यवधानों सहित तेल निर्यात में रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
1: भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। एएफसी अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन के भव्य लोक महोत्सव का समापन कल शाम रामबन जिले में हुआ। महोत्सव में पहाड़ी समुदाय की समृद्ध लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और जातीय पहचान का प्रदर्शन किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 011-23-31-04-8-1, 011-23-71-7117 और 011-23-31-4444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: धन्यवाद सरफिरोजी। आज प्रकाशित अखबारों ने

0: मुतलक खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को दिया है नक्सलवाद खत्म किया, देश को अब ड्रग्स मुक्त बनाएंगे। ड्रग्स मुक्त युवाओं से 2047 में विकसित भारत का नेतृत्व करने का आह्वान। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के इस कथन को सुर्खी बनाया है, पूरा जम्मू कश्मीर हमारा, नक्शे में यही दिखे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत की अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। हिंदुस्तान के अनुसार भारत ने बाल विवाह और जबरन विवाह रोकने के लिए 27 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। दैनिक भास्कर ने अपने आर्थिक पन्ने पर लिखा है, महिलाओं के काम पर जाने से घरों में बराबरी बढ़ी। एक शोध के अनुसार महिलाओं के नौकरी करने का असर सिर्फ परिवार की आय पर नहीं पड़ता, घर में उनकी स्थिति भी बदलती है। 2025 की एक श्रम सेवा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 में से 39 महिलाएं काम कर रही हैं। दिल्ली में 10,000 स्टार्टअप से 4 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार, पंजाब केसरी की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति की घोषणा की। दैनिक भास्कर लिखता है, नए विचारों और उद्यमशीलता को गति देने के लिए सरकार की बड़ी पहल, स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 400 करोड़ का बजट। कई अखबारों ने अपने खेल पृष्ठ पर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पहली चाइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताबी जीत को सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए, इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India-France strategic partnership is special because it rests upon strong foundation of long-standing cultural and political connections. Delhi Chief Minister Rekha Gupta orders magisterial inquiry into Satya Niketan building collapse incident. FIR lodged against building owner. ISRO says space sector reforms are aimed at creating larger, stronger and globally competitive Indian space ecosystem, and it should be seen as ecosystem expansion and capability multiplication rather than privatization. Union Home Minister Amit Shah to chair 20th meeting of the Western Zonal Council at Panaji in Goa today. OPEC plus countries decide to keep oil production target for October unchanged. And in football, India qualify for AFC Under 20 Asian Cup after 20 years following 3-0 victory over Bangladesh in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. He said together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of the Swami Narayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said from technology, AI and defense to space and climate action, both nations are moving forward together with new momentum and renewed energy. He said both sides are also celebrating this year as the India-France Year of Innovation. The Prime Minister said the India-France strategic partnership is special because it rests upon the strong foundation of the long-standing cultural and political connections.
3: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
2: He said history bears witness to the sacrifices of the Indian soldiers in France.

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम हाजिर हो गए हैं। एक बेहद खूबसूरत सुबह का स्वागत हो ऐसी फिजा के साथ, जहां हवा में ताजगी हो, मन में सुकून हो और हर एक एहसास में एक साफ सुथरी सकारात्मकता घुली हो। यही खूबसूरत फिजा और यही शुद्ध हवा यूं ही बनी रहे, क्योंकि ऐसी ही सुबहें दिन को एक अच्छी शुरुआत देती हैं। तो आइए इस खूबसूरत एहसास को सुरों के साथ और भी खास बनाते हैं। नई धुनें, नए अंदाज और नए संगीत की नई रंगत से सजा ये चित्रलोक कार्यक्रम से। और आज के सफर की शुरुआत होगी एक ऐसे देशभक्ति गीत से जिसमें जोश भी है, जुनून भी है और देश के नाम एक बेहद सकारात्मक ऊर्जा भी। ऐसा गीत जो सुनते ही दिल में अपने देश के लिए गर्व और उमंग की भावना जगा दी। तो चलिए सुनते हैं इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस गीत को, आज का पहला खूबसूरत सा गीत देश के नाम। मैं हूं आपके साथ पूजा नारानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग।

0: गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आपको बता दें कि आज है 7 सितंबर और आज है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, यानी स्वच्छ वायु और नीले आकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यह दिन हमें याद दिलाता है कि साफ हवा सिर्फ नीले आसमान की खूबसूरती नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की सबसे जरूरी जरूरतों में से एक है। वायु प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण और जलवायु को भी प्रभावित करता है। ऐसे में छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके हम भी इस दिशा में अपना योगदान दे सकते हैं। मसलन, अगर कहीं अकेले ही जाना हो तो हर बार अपनी कार निकालने की बजाय क्यों ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए। इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या और प्रदूषण दोनों को कम करने में मदद मिलती है। और अगर दूरी कम हो तो साइकिल भी एक बेहतरीन विकल्प है। न ईंधन का खर्च, न हवा में प्रदूषण और साथ में शरीर के लिए अच्छी कसरत भी। तो आइए अपनी सुविधा के साथ साथ अपनी हवा, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। मिलकर ऐसी हवा के लिए प्रयास करें जिसमें हर सांस सेहत और सुकून लेकर आए। और साथ ही सुनिए ये गीत मिशन कश्मीर फिल्म से उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों के स्वरों।

0: का सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रलोक में वक्त है एक अंतराल का।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। किस्मत कनेक्शन फिल्म का ये गीत सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में, शब्बीर अहमद के बोल प्रीतम का संगीत।

हर साल 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉपरेशन। अब सवाल ये है श्रोताओं कि आखिर इसको मनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल आज अपराध सिर्फ किसी एक शहर या देश तक सीमित नहीं रह गए हैं, अब अपराध की सीमाएं देश की सीमाओं से आगे बढ़ती ही जा रही हैं। तो उनसे निपटने के लिए अलग अलग देशों की पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का मिलकर काम करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। यही इस दिवस का मूल संदेश है, सुरक्षा के लिए सहयोग, अपराध के खिलाफ साझा प्रयास और एक दूसरे के साथ जानकारी व अनुभव साझा करना। इस दिन पुलिस के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, उनकी भूमिका और जनता की सुरक्षा के लिए किए जा रहे सामूहिक प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है। यानी बात सिर्फ पुलिस के बीच सहयोग की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने की है जहां मिलजुल कर अपराध पर रोक लगाई जा सके और समाज में सुरक्षा और विश्वास का माहौल मजबूत बन सके।

दबंग थ्री का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। शबाब सबरी का गाया गीत है, दिव्य कुमार ने साथ दिया है, साजिद वाजिद का संगीत।

दबंग थ्री फिल्म का गीत अभी आपने सुना, शबाब सबरी और दिव्य कुमार की आवाजों में, जालिश शेरवानी और दानिश सबरी का लिखा ये गीत था।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं जरा सोचिए, सेहत की नींव आखिर कहाँ से शुरू होती है? किसी महंगी दवा से नहीं, बल्कि हमारी थाली से, है ना? हर साल 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह और आज है उसका आखिरी दिन 7 सितंबर, जिसका मकसद है लोगों को संतुलित आहार, पौष्टिक भोजन और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना, क्योंकि सही पोषण सिर्फ शरीर को ताकत नहीं देता बल्कि बच्चों के विकास, अच्छी प्रतिरोधक क्षमता और बेहतर स्वास्थ्य की बुनियाद भी तैयार करता है। घर की रसोई से लेकर स्कूल, आंगनवाड़ी और समुदाय तक संतुलित थाली, स्थानीय और पौष्टिक खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियों और सही खान पान की आदतों की बात पहुंचाने का ये दिन है। और क्योंकि स्वस्थ जीवन की शुरुआत किसी बड़े बदलाव से नहीं, हर दिन की थाली में किए गए एक छोटे से सही चुनाव से होती है। तो श्रोताओं, आज हमारा कार्यक्रम पिटारा सेहतनामा ये इसी पर केंद्रित है, पोषण विषय पर। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत का भाग एक आज प्रसारित होगा, तो आप इसे सुनना ना भूलिएगा। तकनीकी सहयोग मंगेश सांगले का है और प्रस्तुति तेजश्री कामले की। और इसी के साथ आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत कलयुग फिल्म का। अलीशा चिनॉय की आवाज में सईद कादरी का लिखा गीत, अनु मलिक का संगीत।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: कुछ दिल ने कहा,
3: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
4: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
3: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
4: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
3: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
4: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रुकना ही नहीं आता है।
3: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
4: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
3: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
3: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
3: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज है विश्व ड्यूशेन जागरूकता दिवस। जी हाँ, यानी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के प्रति जागरूकता बढ़ाने का दिन। आसान भाषा में समझें तो यह एक आनुवंशिक बीमारी है जो एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद DMD जीन में बदलाव के कारण होती है। इसमें शरीर में डिस्ट्रॉफिन नाम का एक जरूरी प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से समय के साथ मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। बचपन में चलने फिरने में देरी, बार बार गिरना या सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी जैसे संकेत दिखाई दे सकते हैं। यानी आज का दिन यही संदेश देता है, सही जानकारी सही समय पर पहचान ली जाए और संवेदनशील सहयोग ड्यूशेन से प्रभावित परिवारों के लिए और बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है। और जागरूकता का सबसे खूबसूरत तरीका यही है कि समाज मिलकर ड्यूशेन से जूझ रहे हर बच्चे और उसके परिवार के साथ सहयोग और संवेदना की एक मजबूत कड़ी बने, क्योंकि कभी कभी साथ का एक छोटा सा कदम भी किसी के सफर को थोड़ा आसान बना सकता है।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे सितारे जमीन पर, इस फिल्म से सिद्धार्थ महादेवन, शंकर महादेवन और दिव्य कुमार की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, शंकर एहसान लॉय का संगीत। और इसी के साथ अभी वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक अंतराल का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। और आपको बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम निर्देशक पी एल संतोषी पर केंद्रित रहेगा, जो कि आप सुन सकते हैं 9:30 पर सुबह और पुनः रात 9:30 पर। आलेख एवं स्वर जी श्याम का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। कृष फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं कुणाल गांजावाला की आवाज में। विजय अकेले का लिखा गीत और राजेश रोशन का संगीत।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अदनान सामी का गाया ये गीत फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव से। समीर का लिखा गीत है, अदनान सामी का कंपोज किया।

अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम चुचुलोक का आखिरी गीत, बैड बॉय। इस फिल्म से हिमेश रेशमिया, अदिति सिंह शर्मा और असिस कौर की आवाजों में विनित सिंह ने साथ दिया है। कुमार के बोल और संगीत है हिमेश रेशमिया का।

हिमेश रेशमिया, अदिति सिंह शर्मा और आसिस कौर, साथ ही विनीत सिंह की आवाजों में बैड बॉय फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। कंपोज किया था हिमेश रेशमिया ने और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न हो रहा है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई, डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया। कहने लगे, बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्यारे लाल संतोषी की, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में 7 अगस्त 1916 को हुआ। एक निर्देशक के रूप में आपने 21 फिल्में निर्देशित की, कई गीत लिखे, स्क्रीन प्ले

आइडिया, संवाद, अतिरिक्त संवाद जैसे रचनात्मक कार्यों के साथ आपने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। निर्देशित फिल्मों में 1963 की फिल्म दिल ही तो है के इस गीत के साथ आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

हम एक हैं, ये वही फिल्म है जिसके माध्यम से पीएल संतोषी ने पहले पहल अपने निर्देशकीय गुण का परिचय फिल्म इंडस्ट्री को दिया, दर्शकों को दिया। इस फिल्म में दुर्गा खोटे, कमला कोटनिस, रहमान और देवानंद ने अभिनय किया था। गुरुदत्त ने इस फिल्म में पीएल संतोषी को असिस्ट किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा तो नहीं कर पाई थी, लेकिन पीएल संतोषी के निर्देशन में 1947 में बनी उन्हीं की लिखी रेहाना, इंदुमती, नासिर खान, दुलारी और मुमताज अली अभिनीत शहनाई ने उस वर्ष बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी।

0: love you.
1: Happy hospital.
0: The bed is big on the London Gumamu. ब्रांडी पिलाऊं विस्की पिलाऊं और खिलाऊं खिलाऊं मुर्गी के अंडे अंडे खाना मेरे जान संडे के संडे।
2: प्यारे लाल श्रीवास्तव, यही पीएल संतोषी का पूरा नाम था। जबलपुर से मुंबई कह सकते हैं एक संयोग की वजह से पहुंचे थे आप। हुआ यूं कि इनके गृह नगर में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और फिल्म यूनिट को संवाद असिस्टेंट की जरूरत थी और प्यारे लाल जी चूंकि एक बेहतरीन लेखक थे वो फिल्म यूनिट से जुड़ गए, शूट से जुड़ गए। बात आई और यूं ही नहीं गई। मेट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इनकी अपनी लेखनी पर विश्वास और लोगों के प्रोत्साहन की वजह से सन 1930 के दशक के मध्य में आप एक लेखक और गीतकार बनने की प्रबल इच्छा के साथ बॉम्बे शिफ्ट हो गए। आइए राज कपूर अभिनीत पीएल संतोषी निर्देशित 1950 की सरगम के इस गीत को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।
3: वो हमसे

जी हाँ, हम बात कर रहे थे सन 1930 के मध्य में बॉम्बे पहुंचे पीएल संतोषी की, जिन्हें फिल्मी दुनिया ने एक निर्माता, निर्देशक, गीतकार और लेखक के रूप में इनकी कला को सराहा और इन्हें प्यार से अपनाया भी। 1937 में इन्हें जद्दनबाई की फिल्म मोती का हार के लिए कुछ एक गाने लिखने का अवसर प्राप्त हुआ था। यही इनकी फिल्मों में एक पहली पहल सफल एंट्री थी। इसी फिल्म में इन्होंने एक छोटी सी भूमिका भी अदा की थी। चर्चा जारी है, आइए सुनते हैं फिल्म नादान का ये गाना।

जद्दन भाई के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे हैं पीएल संतोषी। इसी साल यानी 1937 में जीवन यापन में भी चार गाने आपने लिखे। यही वो समय था जब पीएल संतोषी एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो की छलांग लगाते रहे, रंजीत स्टूडियो से बॉम्बे स्टूडियो और फिर प्रभात फिल्म्स। जब वो प्रभात फिल्म्स में थे तब 1946 में हम एक हैं फिल्म के निर्देशक का सौभाग्य इन्हें मिला। इनके द्वारा निर्देशित ये इनकी डेब्यू फिल्म थी। ये गीत है इसी फिल्म का, आवाज अमीर बाई कर्नाटकी की है, संगीत हुसन लाल भगत राम का है।

1950 की ही अपनी छाया, 1952 की शिनशिना की बुबलाबू, 1952 की छमछमा छम, शिनशिना की बुबलाबू संतोषी प्रोडक्शंस के बैनर तली बनी फिल्म थी। लता मंगेशकर के स्वर में आइए सुनते हैं सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में पीएल संतोषी का लिखा हुआ ये गीत।

एल संतोषी द्वारा निर्देशित अन्य फिल्मों में हैं 1953 की 40 बाबा एक चोर, 1955 की सबसे बड़ा रुपया और हम पंछी एक डाल के सन 1957 की फिल्म।

57 की ही फिल्म गर्मा गर्म और सन 1959 की फिल्म पहली रात पीएल संतोषी की करियर की फिल्में थीं जिनकी बदौलत आपने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक विशेष पहचान बनाई थी। ये गाना है फिल्म दिल्ली जंक्शन का, स्वर लता मंगेशकर का है।

अब जिक्र है भारत भूषण और मधुबाला अभिनीत 1960 की फिल्म बरसात की रात का। ये फिल्म एक रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन पीएल संतोषी ने किया और इस फिल्म का निर्माण किया था आर चंद्रा ने। रोमांटिक संगीतमय फिल्म के रूप में ये एक बेमिसाल फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।

बरसात की रात एक बेहद सफल फिल्म थी। इस फिल्म की सफलता फिर पीएल संतोषी अपने आगे आने वाले वर्षों में दोहरा नहीं पाए। प्यार की दास्तान, सबसे बड़ा रुपया, हॉलीडे इन बॉम्बे और फिर नूतन राज कपूर अभिनीत फिल्म दिल ही तो है, इनकी असफलता पर मरहम नहीं लगा पाई। सन 1968 में जगदीप और जयमाला काले को लेकर पीएल संतोषी की आखिरी निर्देशित फिल्म आई थी रूप रुपया। ये गीत है फिल्म तीन बत्ती चार रास्ता का, आइए सुनते हैं।

0: जाना।
1: पीएल संतोषी ने कई फिल्मों को संगीतमय बनाया। सन 1937 से कई फिल्मों में इनके गीत जगह पाते रहे। तूफानी रोटी, बाजीगर, बन के चिड़िया, रिक्शा वाला, आपकी मर्जी, पति पत्नी, ठोकर, अछूत, परदेसी जैसी फिल्मों में इनके गीत थे। ज्ञानदत्त और खेमचंद प्रकाश ने इनके गीतों को मौसिकी प्रदान की।

बॉम्बे टॉकीज में जब पीएल संतोषी थे तब इन्होंने अनजान और बसंत में गीतकार के रूप में गीत लिखे, जिनका संगीत निर्देशन पन्नालाल घोष ने किया था। यह है फिल्म बसंत का गाना पारुल घोष की आवाज में।

संतोषी और सी रामचंद्र के मिलाप से फिल्मों को ऐसे गाने मिले जो कर्णप्रिय तो थे ही, अपने समय से आगे के भी साबित हुए, जिनके साथ चल के कई गीतकारों संगीतकारों ने उस मार्ग को अपनाया और सफलताएं पाई। संतोषी के गानों में सिर्फ शब्द की जादूगरी ही नहीं थी, बल्कि मनोरंजन का पुट भी था जो गीत को रोचक बनाता था। जैसे सरगम के गीत इसका सीधा सरल उदाहरण है।

सन 1941 की अकेला, 1942 की स्टेशन मास्टर, 1951 की सौदागर, 1951 की ही घायल, 52 की अनहोनी, 1958 की दुल्हन और 1966 की अगलमन जैसी फिल्मों में आपने कई गीत लिखे। पीएल संतोषी ने लगभग 350 गीत 100 फिल्मों के लिए लिखे। एक निर्देशक और गीतकार के अलावा आप स्क्रीन प्ले राइटर और संवाद लेखक के रूप में भी जाने पहचाने जाते हैं। 1941 की झूला, स्टेशन मास्टर और निराला, 1950 की, 1958 की पोस्ट बॉक्स नंबर 999 और 1970 की मन की आंखें जैसी फिल्मों में रचनात्मक योगदान आपका रहा है। तमिल फिल्मों और तेलुगु फिल्मों के लिए भी आपका फिल्मी योगदान रहा है। सन 1950 और 1960 के दशक में पीएल संतोषी ने फिल्म को सजाया, संवारा और मनमोहक बनाया। पीएल संतोषी के बेटे प्रसिद्ध फिल्मकार राजकुमार संतोषी ने इस बात को माना था कि अपने आखिरी दिनों में इनके पिता पीएल संतोषी ने तेलुगु डब फिल्मों के लिए घोस्ट राइटिंग भी की थी। 7 सितंबर 1978 को बॉम्बे में आपका देहावसान हुआ। शहनाई, बरसात की रात, दिल ही तो है जैसी फिल्मों को बनाने वाले और कई गीतों की रचना करने वाले पीएल संतोषी की बातें, गीतों और फिल्मों की यादों के साथ आज के फनकार का ये संगीतमय सफर हमने तय किया।

0: आलेख और स्वर जी शाम का, प्रस्तुत करता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।
2: भोपाल केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है मंदसौर जिले की चिट्ठी। आलेख दीपक शर्मा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। अगस्त का महीना मंदसौर जिले के लिए विकास, जनसंवाद, जनकल्याण और सामाजिक समरसता का महीना रहा। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने गांवों तक पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और विकास कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर दिव्यांग सिंह ने शिवना नदी, रामघाट बैराज, अटल सागर बांध, फिल्टर प्लांट और तेलिया तालाब समेत कई विकास कार्यों का निरीक्षण किया। विकास के साथ प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में सीधे लोगों तक पहुंचने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, कलेक्टर, एसपी और जिला स्तर के अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे। चौपाल और शिविरों में लोगों की समस्याएं सुनी गयी और कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। लसुड़िया कदमाला में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत ऑयल मिल की शुरुआत कर रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की पहल भी की गई। वहीं मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के तहत मंदसौर जिले के दो प्रकरणों में 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। कलेक्टर दिव्यांग सिंह ने कृषि कार्य के दौरान हुई मौत के मामलों में वैध वारिसों को यह राशि मंजूर की। जिला शिक्षा अधिकारी पंकज जाट ने बीते दिनों मंदसौर के कई सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण कर पढ़ाई और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने लापरवाही और मिली कमियों पर संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। मंदसौर शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में डिप्लोमा इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष और लेटरल एंट्री में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 14 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। कॉलेज में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सीटें उपलब्ध हैं। पात्र विद्यार्थियों को शासन के नियमों के अनुसार फीस में छूट और छात्रवृत्ति का लाभ भी मिलेगा। वहीं जिले में राष्ट्रभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों ने भी बीते दिनों लोगों में उत्साह का संचार किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 9 से 17 अगस्त तक जिले में तिरंगा यात्राएं, रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। 13 अगस्त को मंदसौर शहर में 100 फीट लंबे तिरंगे के साथ विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। वहीं देशभक्ति के इसी माहौल के बीच जिले में स्वतंत्रता दिवस भी पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। पुलिस, होमगार्ड और अन्य दलों ने मार्च पास्ट किया जबकि विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान भी किया गया। राष्ट्रभक्ति के साथ अगस्त माह में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों की भी खास मौजूदगी रही। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में 2 दिवसीय श्रावण महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें डमरू वादन, कथक और महादेव लीला नाट्य जैसी प्रस्तुतियां हुई। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को मंदसौर में भगवान श्री पशुपतिनाथ की राजसी सवारी भी निकाली गई। भगवान की रजत प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया और मंदिर से निकलने से पहले पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद भगवान पशुपतिनाथ रथ में सवार होकर शहर के प्रमुख मार्गों से निकले जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसके अलावा जिले के मल्हारगढ़ में जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण पर्व का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नृत्य नाटिका और भक्ति गायन के जरिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन और लीलाओं को प्रस्तुत किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार ने लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेने और कर्म करते रहने का संदेश दिया। वहीं इस माह के अंत में संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर समरसता संकल्प अभियान और कलश वंदन यात्रा शुरू की गई। इन कार्यक्रमों में धार्मिक आस्था के साथ भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मंदसौर से अयोध्या और काशी वाराणसी की तीर्थयात्रा की तारीख में बदलाव किया गया है। अब ये यात्रा 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होगी जबकि वरिष्ठ नागरिकों से आवेदन लेने की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर रखी गई है। जिले के इच्छुक तीर्थयात्री तय तारीख तक अपना आवेदन जमा कर यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की। मंदसौर जिले की करीब 260,000 से अधिक महिलाओं के खातों में 45 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा की राशि पहुंचाई गई। महिलाओं के साथ-साथ अगस्त में युवाओं, खेल और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर भी ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जिले में खेलो इंडिया संवाद समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। युवाओं को खेल, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के साथ खेल प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर बात करें तो कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र तक पहुंचाने और उनका उपचार कराने पर जोर दिया गया। छात्रावासों में विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण भी कराया गया। वहीं दूसरी तरफ मंदसौर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार, तस्करी, चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान जारी रखा है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में मादक पदार्थों की बरामदगी के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मंदसौर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी मंदसौर जिले की चिट्ठी। आलेख दीपक शर्मा का था, वाचन था अभिषेक कटियार का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
4: तब तो ये जैसे ही पहुंचते थे तो दूसरे दिन सुबह फोन आता था कि कल के एपिसोड में प्रॉब्लम हो गया, आप तुरंत निकल आइए
5: लीजिए।
4: तो एक या दो दिन से ज्यादा हम रह नहीं पाते थे, तो फिर उन्होंने दोनों ने भी यह तय किया वो सीरियल कंप्लीट करने के बाद कि अब हम ज्यादा समय सीरियल में नहीं देंगे, फिल्म और नाटक यही। और उनका सबसे अच्छा मुझे लगा कि पैरेलल जो उन्होंने करियर किया वो चिल्ड्रन थिएटर में।
5: जी, बहुत बड़ा योगदान।
4: लीडिंग थिएटर चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट इन महाराष्ट्र, की बहुत सारे बच्चों को उन्होंने करियर तक पहुंचाने का काम किया है और अपने किस्म का वो नाटक करती है बच्चों के साथ। उनको एक अपना नैक है, उनकी अपनी एक मेथोडोलॉजी बनी है कि 10 दिन में वो बच्चों को पूरा आर पार बदल देती हैं और नाटक भी करवाती हैं अंत में, और जो नाटक बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल भी होते हैं, ह्यूमरस भी होते हैं और कुछ मैसेज लेके भी वो नाटक करती हैं। तो इसीलिए अपने आप में वो अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है। वो एक्ट्रेस भी है, थिएटर की भी है, सिनेमा की भी है, सीरियल की भी है, ये तीनों मीडिया में वो कंफर्टेबल है। और चौथा है वो चिल्ड्रन थिएटर की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटर है। मुझे लगता है कि सुधा कर्मरकर और दो तीन सुलभा देशपांडे और इनके बाद बहुत ज्यादा कंचन सोनटक्के जी के बाद मराठी थिएटर में बहुत ज्यादा उन्होंने चिल्ड्रन थिएटर में काम किया है।
5: जी, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
4: क्या बात है।

0: जब आपके शुरुआती दो तीन नाटक बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए और ये लगा कि ये अलग ताप के नाटक हैं, इनके तेवर बहुत अलग हैं, और आपने उसमें अपना बहुत कुछ झोंक दिया था और ये उम्मीद की जा रही थी कि इस डायरेक्टर के तत्व जल्दी चुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो क्या चीज थी जो लगातार आपको आगे प्रेरित करती रही? और दूसरा, दलित थिएटर मूवमेंट को आप लगातार जिंदा रखे रहे?
1: दलित थिएटर मूवमेंट की बात तो थी, जैसे मैंने कहा कि दो नाटक में तो मैं उसका हीरो था
0: जी,
1: नायक की भूमिका में था। उसके बाद दिल्ली जाने के बाद एक्चुअल उस मूवमेंट से मेरा संबंध थोड़ा सा विरल हो गया, कम हो गया, लेकिन मैं जो नाटक करता रहा
0: यस,
1: उसमें वो तत्व जो है, मतलब मैंने जिस काम के लिए मैं नाटक में आया था, मैं आज तक उसको भूला नहीं हूं। मैं नाटक में क्यों हूं ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। मुझे कौन सा नाटक करना है ये भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। मुझे कौन सा नाटक नहीं करना है, कितना भी पैसा दे दो, वो भी मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। तो इसलिए मेरे नाटकों के जो विषय है, चाहे वो जुलवा है या जाने मन है, मुझे लगता है जिन लोगों की अभिव्यक्ति को, जिन लोगों की जिंदगी को, जिन लोगों के दबेपन को आवाज नहीं मिली है, मुझे लगता है उनको मैं अपने नाटक का विषय बनाता हूं।
0: हमेशा हाशिए पर जो लोग हैं,
1: हाँ, हाशिए पे जो लोग हैं, जो गांव के बाहर है, गांव के अंदर के भी नाटक किए मैंने, पर जो ज्यादातर जो विषय चुने मैंने वो गांव के बाहर है, उनको गांव में एंट्री नहीं है। अब देखिए, झुलवा जोकते जोकतीनी पर है, एक झुंझ वार्याशी एब्सोल्युटली डायरेक्ट ये मेन स्ट्रीम कंटेंट था कि किस तरीके का भ्रष्टाचार पूरे सत्ता कारण में हो रहा है और उसमें इनोसेंट टैलेंट का बलि कैसे चढ़ाया जाता है, और वो भी जो जर्नलिस्ट है। उसके बाद मैंने नाटक किया दूसरा सामना, जो सतीश आलेकर जी ने लिखा, जो हमारी ये शुगर सहकार मूवमेंट है उसके अंदर किस तरीके से फिर वही दलित का बलि कैसे चढ़ाया जाता है। पहला सामना तो जो था वो फिल्म थी, उसका सिक्वेल था जो लिखा गया कि जो दलित का बेटा है जो आईएएस है और आज वो अपर कास्ट का है क्योंकि उसको अडॉप्ट किया गया और उसको मालूम नहीं, और एक दिन अचानक उसको मालूम हो जाता है कि वो जिस जाति से और जिस संस्कार को बिलोंग करता है उसका है ही नहीं, जो भी आईएएस होने के बावजूद भी वो तो है दलित। उसके बाद जो टूटना है उसका, वो टूटना विक्रम गोखले वो रोल करते थे और दूसरा विनय आप्टे करते थे और तीसरा इला भाटे का पहला नाटक था
0: जी।
1: तो ये उस नाटक में भी वही बात अलग किस्म से थी, नाती गोती था, एक मिडिल क्लास फैमिली में एक एबनॉर्मल बच्चा पैदा होने के बाद उस फैमिली की वाताहत कैसे होती है, उस फैमिली की जिसको हम मराठी में वाट कैसे लग जाती हैं और उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है, इस तरीके का विषय था
0: जी।
1: जाने मन का बिल्कुल किन्नरों के जीवन पे विषय था उसका, लड़ी नजरिया पे डेमोक्रेसी की कैसी हम लोगों ने 12 बजा दिए हैं उस कॉन्सेप्ट के, और हम अपने तरीके की डेमोक्रेसी कैसे लाद रहे हैं, ये विषय था। तो जितने भी विषय हैं, टी फुलराणी तक, रणांगण एक ऐसा विषय था कि ये भारतीय आदमी जीतता क्यों नहीं है, क्या ऐसे उसमें खून में, संस्कार में, उसके जीवन में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा वो विष घोला है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कोऑपरेट ही नहीं करता, ये बेदिली है, ये धोखा देना है, ये भारतीय स्वभाव में कैसे, और उसके बाद ज्यादा तो मराठी में कैसे हैं, पानीपत का थर्ड वॉर हम हारे क्या जीते, इसको लेकर वो सारा का सारा असेसमेंट था भारतीय मन का, भारतीय स्वभाव का, बिल्कुल बहुत तटस्थता से किया हुआ और जो नाटक बहुत अंतर्मुख करता था
0: जी,
1: और जिसके 700-750 शो, मतलब दैट वाज सपोज टू बी फर्स्ट 70 mm प्ले ऑन मराठी स्टेज,
0: बिल्कुल,
1: जिसमें भानु अथैया गांधी फिल्म के लिए जिनको ऑस्कर मिला था, उन्होंने जीवन में पहली बार नाटक के लिए कॉस्ट्यूम किए,
0: वाह,
1: मंगेश पाड़गांवकर जी ने गाने लिखे,
0: क्या बात है,
1: ये ऐसे ऐसे दिग्गज, पहले कुसुमाग्रज गाने लिखने वाले थे पर उनकी तबीयत ठीक नहीं रही, फिर उसके बाद फिर हमने मंगेश पाड़गांवकर जी से गाने लिखवाए, अनंत अम्मेम्बल ने उसमें म्यूजिक किया, ये सारा का सारा मुझे लगता है कि वो भी एक अलग किस्म का विषय था। तो लेट्स पीढ़ी दर पीढ़ी हम ये कह रहे कि हमारे पास जीतने का जज्बा क्यों नहीं है, जीतने के बाद भी हमारे आसपास क्या है कि दिल्ली मराठों ने जीतने के बाद भी उस समय मराठों को दिल्ली के गद्दे पे नहीं बिठाया, हमारे नेता ने क्या थी उसके पीछे की सोच, क्योंकि उससे पहले ही हमारे कारोबारियों ने दिल्ली पंजाब के राज्यों को भेज दी थी
0: जी।
1: तो ये जो है एक दूसरे के ऊपर कुरघोड़ी करने का स्वभाव है, एक तरीके से धोखा देने का स्वभाव है, कभी भी कोई भी आदमी एक दूसरे से बेदिली करने का स्वभाव जो है, इसको उस नाटक में क्या कहते हसीये पे रखा था। और वो एक नाटक लोगों को लगा था पानीपत थर्ड यू आर जैसे हार गए वैसे ये नाटक भी बहुत जोर से गिरेगा, उसकी आवाज सुनने के लिए सारे कान बेताब थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस नाटक ने जो खौफ है मराठी मानस में, कुछ भी हुआ तो पानीपत हुआ बोलते हम उसका, डिजास्टरस एक्सपीरियंस इज पानीपत, तो उस पानीपत शब्द से हमने उस नाटक ने लोगों को बाहर निकालने का काम किया। पानीपत वॉज नॉट डिजास्टर बट इट वॉज द बिगेस्ट वॉरफेयर प्लेड बाय मराठास हेल्प ऑफ अदर पीपल इन इंडिया, और जिसमें मुसलमान भी थे
0: जी।
1: तो ये भूमि पे प्यार करने वाले लोगों का जो एक गठ्ठा था वो मरते दम तक एक दूसरे के लिए लड़ते रहे मरते रहे, उसकी कहानी थी ये रणांगण।
0: क्या बात है। और फिर ती फुलरानी आया,
1: उसके बाद ती फुलरानी आया, उसके बाद ये मध्यम व्यय आयोग किया, जब एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स का पहला प्रोडक्शन कौन सा किया जाए तो हमने कहा चलो परंपरा से शुरू किया जाए। कालिदास भास ये पहला नाटककार माना जाता है तो हमने उनके मध्यम व्यय आयोग से शुरू किया। उसमें भी मुझे हिडम्बा है वो मुझे दिखाई दी, मैं क्योंकि केरल में रहा था, द्रविड़ में मात्र सत्ता कुटुंब पद्धति है और आर्य में पितृसत्ताक है, तो उनकी जो प्रेम की कहानी है भीम की और हिडम्बा की और उनका बेटा जो घटोत्कच है, मुझे लगा कि जो औरत हमारे स्वार्थ से परे हैं, स्वार्थ के अड़े आती हैं, जो भी है, हम किसी को डेरोगेटिव टर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको हम हिडम्बा बोल देते हैं। अरे यार उसके हिडम्बा के क्या चक्कर में आता है, मतलब देखने में वो खूबसूरत भी हो तो जो हमारे स्वार्थ के अड़े आता है उसका कैरेक्टर असैसिनेट करने का हमारा पुराना स्वभाव है
0: जी जी जी।
1: उस स्वभाव को पकड़कर वो नाटक बनाया हुआ है। और फिर आर्य और अनार्य के बीच की जो राजनीति है वो जेंडर बेस्ड भी है, वो क्लास बेस्ड भी है, वो हर तरीके की राजनीति है। और वो जब सवाल पूछती है भीम को और बेटा सवाल पूछता है कि आप कहाँ गए थे, बच्चा पैदा होने से लेकर बच्चा बड़ा होने तक वॉरियर होने तक वो वापस आके देखा नहीं उन्होंने, उसके बारे में जो सवाल पूछती है बोलती है कि अगर होती मैं आर्य स्त्री तो क्या होता आपका यही उत्तर।
0: वाह,
1: तब तो राजदरबार बैठते, तब तो तहकीकात होती, चर्चाएं होती, न्याय मंडली बैठती, न्याय होता। चूंकि मैं आर्य नहीं हूं इसलिए आपको लगा कि यू कैन इग्नोर मी।
0: ओहो,
1: तो इस तरीके के मुझे लगता है बहुत बुनियादी जो सवाल है हमारे ही समाज के विसंगति के, वो कहीं ना कहीं मेरे नाटक उठाते हैं। और वो केवल कोई सेंसेशन क्रिएट करने के लिए नहीं उठाते हैं, मुझे लगता है वो अंतर्मुख करने के लिए उठाते हैं। क्योंकि नाटक का मूल जो स्वभाव है वो किसके लिए नाटक करना है
0: जी,
1: नाटक केवल लोगों को हा हा हु हु करके जाओ घर में,
0: केवल मनोरंजन,
1: केवल मनोरंजन के लिए नाटक नहीं, मनोरंजन तो रुलाना भी है। नौ रसों में से कोई ना कोई एक रस ऑडियंस के मन में पैदा करना नाटक का मूल रस है, मूल स्वभाव है, मूल चिंतन है, मूल भाव है। हम ये कहते हैं कि नाटक इसीलिए करते हैं ताकि हम समाज को उसका आईना दिखाए,
0: बिल्कुल,
1: उसमें विसंगतियां क्या है, संगतियां क्या है, अच्छा क्या है, अच्छा क्या नहीं है, वो आईना दिखा के हम समाज में एक अच्छा समाज कैसे हो, कल्याणकारी समाज कैसे हो, ये करने के लिए एक आशावादी दृष्टि

0: दृष्टिकोण देने के लिए नाटक होता है, वो हमेशा ऐसा नहीं है कि व्यवस्था के खिलाफ कोई विद्रोह बार बार दिखाने के लिए नहीं है
1: जी,
0: पर वो विसंगतियां हैं, जो विरोधाभास है, वो सारा तो दिखाना नाटक का काम है ना। सिनेमा नहीं करेगा, नाटक नहीं करेगा, साहित्य नहीं करेगा, पेंटिंग नहीं करेगी तो कौन करेगा।
1: बिल्कुल, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है,
2: मेहनत

0: समाज को समृद्ध भी करना है, संवेदनशील भी करना है और आगे अच्छा समाज बनाने के लिए सोच के लेवल पर अग्रेसर भी बनाना है, इसके लिए ये मुझे लगता है कला दालन है।
1: बिल्कुल,
0: ये संस्कृति का दालन यही है कि वो आपको एनरिच करता है
1: जी,
0: एक आपके दायरे का विस्तार करता है, सोच का विस्तार करता है, आपकी दिमाग में जो दीवारें आपने बनाई है उसको ढाने का काम करता है, क्योंकि आखिरी इंसान और आप दोनों एक ही है, क्योंकि आप एक भूमि के हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप एक हैं क्योंकि नैसर्गिक अधिकार आपको दोनों को एक ही दिया है और जिसका नाम है शांति से जीना। मुझे लगता है वो नाटक का मूल पर्पज है। अब वो पर्पज हम किस एंगल से दिखाए वो आपका तरीका है। अगर हम बीरबल की एंगल से दिखाए तो बीरबल वही करता था जो अकबर को विसंगतियों का, विरोधाभास का वो आईना ही तो दिखाता था। वो भी नाटक ना करे तो कौन करेगा, वो भी सिनेमा ना करेगा तो कौन करेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि कोई भी व्यवस्था में नाटक का रोल यही होता है, व्यवस्था को अपना मन खुला होकर। इसीलिए एक कहावत है ना कि एक ऐसा कहते हैं कि अगर किसी भी समाज को आपको समझना है, मान लीजिए आप यूरोप गए या किसी भी समाज में कोई भी देश में चले गए, आपको उस समाज को फास्ट समझना है तो आप जाके उसके 5-6 नाटक देख लीजिए।
1: क्या बात है,
0: उस समाज का आकलन उस 5-6-7-8 नाटकों में से जो आपको जितने जल्दी मिलेगा उतना एक साल भर रहने से नहीं मिलेगा। क्योंकि वो आईना दिखाता है। अगर ये सच्चाई है तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये निराशावाद है, ये तुलनात्मक फैसिलिटी का कम आंकना है एक दूसरे को, ये जो दीवारें खड़ी करना है इंसान इंसान में, वो चाहे धर्म की है, जाति की है, परंपरा की है, वर्ग

0: की है, वर्ग की है, कुल की है, परिवार की है, इससे क्या बनने वाला है?
1: जी
0: इससे कुछ नहीं बनने वाला। अगर हमें एक स्ट्रेंथफुल देश बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो हमें सारे समाज की सारी क्षमताओं को साथ लेकर इस देश का जब विकास करेंगे तो हमें किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप हमें विश्व गुरु बनाइए।
1: जी एनसीपीए में एक रिकॉर्ड आपने कायम किया था, एक ही दिन में 3 अलग अलग भाषाओं के नाटक
0: जी
1: हुए।
0: ये मध्यम व्यायोग नाटक जो था, इसको मैंने हमारे एकेडमी के विद्यार्थियों के लिए एज अ डेमो ऑफ क्लासिकल इंडियन थिएटर किया था। उसके बाद एक 10-12 शो के बाद वो खत्म हो गया और मैं भूल गया उस नाटक को। ये 2004 में किया था, 5 साल में वो बैच निकल गई, उसके बाद भूल गए। कुछ सालों बाद जैसे मैंने कहा कि भास ने जो लिखे हुए नाटक में जो अधूरे छोड़े हुए थ्रेड्स है उसका कहीं ना कहीं मुझे हंट आउट करने लगे। बेटा भी पूछ रहा है और माता भी पूछ रही हिडम्बा भीम जी को, वो सारे सवाल बाद में दिखाई देने लगे और मैंने कहा कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग नाटक हो सकता है, इसका नया संस्करण तैयार करना पड़ेगा। ये रंगावृति नहीं तैयार करनी पड़ेगी, जहां भास रुके हैं उसके आगे भी तो हम नाटक को ले जा सकते हैं। इसको लेके हमने वो नाटक करने की बात सोची, पहले मराठी में करते हैं, फिर करते करते पता चला कि हम हिंदी में क्यों ना करें इसको।
1: क्या बात है।
0: तो हमने हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके उसकी शुरुआत की। फिर ऐसा लगा कि यार ये हिंदी मराठी तो ठीक है, लेकिन जो कुछ मराठी या हिंदी भाषी लोग हैं, जिसको जब तक आप अंग्रेजी में कुछ नहीं करते तब तक वो आपको समझना नहीं चाहते, अपनी संस्कृति को समझना नहीं चाहते, उनके लिए हम अंग्रेजी क्यों ना करें। अब तीन भाषाएं हो गई, तो तीन भाषाओं में हमको लगा कि एक ही टीम के साथ करें, नहीं तो बड़ी सर्कस हो जाती। तो इसीलिए सारे मराठी स्पीकिंग एक्टर्स है मूलतः, उसी को हिंदी भी सिखाई, उसमें से बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी आती थी, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आती थी, तो वो अंग्रेजी भी हमारी इंडियन इंग्लिश है। तो ये सारे तीनों भाषाओं में 3 जुलाई 2011 को एनसीपीए के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में इस नाटक को लेके हमने सोचा कि इसका शुभारंभ करेंगे
1: जी।
0: और तीनों नाटक एक ही दिन में ओपन करेंगे, एक ही टीम, एक ही डेट, एक ही थिएटर।
1: वाह।
0: तो हमने दोपहर 2 बजे मराठी में नाटक ओपन किया, वही नाटक प्रिया बावरी, उसके 3 अलग अलग नाम जानबूझ के रखे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता कि मराठी कौन सा है, हिंदी कौन सा है। दोपहर 4:30 बजे हमने वही से नाटक किया मोहे पिया हिंदी में, और शाम को 7 बजे वही नाटक किया हमने ओ माय लव इस नाम से, वही नाटक तीनों भाषाओं में, सेम फॉर्म, सेम कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग इज सेम, भाषा अलग है, गाने अलग है, सब अलग है।
1: गजब।
0: और ये विश्व रिकॉर्ड बन गया और आज तक वो विश्व रिकॉर्ड ऐसे ही है, अभी तक किसी ने तोड़ने की कोशिश नहीं की उसको, तो हम ही शायद तोड़ने की कोशिश करेंगे कि इसको और एक भाषा में, गुजराती में करके 4 भाषाओं में एक ही दिन में कर लेंगे। तो इसको लेकर ऐसा काम हो गया और वो नाटक ने पूरे देश में गजब ढा दिया
1: जी।
0: मराठी में हमने 150-200 शो किए, हिंदी में अभी भी वो चल रहा है मोहे पिया, अभी 300 शो होने को आए हैं अलग से हिंदी में
1: जी,
0: वो कभी हम सेलिब्रेट करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। अंग्रेजी के भी हमने 70-75 शो किए, तो हम ये 15 दिन के नोटिस पे हम किसी भी भाषा में ये नाटक कर सकते हैं।
1: क्या कमाल है।
0: हाँ, तो अभी बहुत सारे भारत भवन में भी, दिल्ली में भी संगीत नाटक अकादमी है या और कोई है, वो चाह रहे कि ये इस तरीके का एक प्रयोग हम दिल्ली में भी करें या और शहरों में भी करें, इस तरीके के आमंत्रण न्योते आ रहे हैं, अब हम उसके ऊपर भी सोच रहे हैं।
1: एक और कमाल है आपका, एनएसडी के दोनों अवार्ड आपको मिले।
0: जैसे एक संगीत, क्योंकि हमारे देश में एक ही अवार्ड था जो संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिलने के बाद एक आपका रुतबा माना जाता था कि आपके योगदान को माना जाता था। मैं ये अनुपम खेर जी चेयरमैन थे, तब उन्होंने मुझे सोसाइटी का मेंबर बनाया। उसी समय हमने ये कहा कि भाई पूरे देश को, संगीत नाटक अकादमी तो पूरे देश को लेकर काम करती है, अब उसमें ज्यादातर अलग अलग भाषाओं में एनएसडी के लोगों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत है, पर अवार्ड देते समय ये तो ध्यान में रखा जाएगा कि भाई हर साल एनएसडी एल्यूमिनाई को तो वहां अवार्ड नहीं दिया जाएगा ना। जी, दूसरे जी। भी भाषाओं के लोग हैं और भी लोग हैं जिन्होंने भारतीय थिएटर को जिंदा रखा है और उनका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही स्वाभिमान पूर्वक है। तो हमें ये काम करना चाहिए, हमें दो अवार्ड स्टार्ट करने चाहिए, नहीं तो बूढ़ा होने तक जब तक उसको दो आदमी उठा के पकड़ के ले जाते तब उसके बाद अवार्ड दे के उसका इंस्पिरेशन क्या है।
1: जी,
0: तो हमने एक सुझाव दिया था कि भाई ऐसे दो अवार्ड, एक 50 साल के ऊपर जो रंगकर्मी ने आउटस्टैंडिंग काम किया है एनएसडी के एल्युमिनाई ने उसको एक अवार्ड दिया जाए, और 50 के नीचे जो भी नया हो 20-25 साल से लेके उस रेंज में एक अवार्ड दिया जाए, ताकि एनएसडी जब एल्युमिनाई को अवार्ड देगी तो वो भी राष्ट्रीय पुरस्कार है
1: जी।
0: तो हम एनएसडी के एल्युमिनाई को ही इंस्पायर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर करते रहे, काम करते रहे। तो फिर वो सोसाइटी ने मंजूर कर लिया और एक युवा जो आवास पुरस्कार था उसको मनोहर सिंह स्मृति पुरस्कार के हैसियत से उसका नाम दिया, और जो दूसरा था जो सीनियर को मिल रहा है वो बीवी कारण स्मृति पुरस्कार
1: जी।
0: और हम भूल गए वो सोसाइटी में, फिर उन्होंने कोई कमेटी वगैरह बिठा दी और पहला ही जो पुरस्कार डिक्लेयर किया कि जो सीनियर कैटेगरी में पुरस्कार जो दिया गया बीवी कारण पुरस्कार वो रतन थियाम जी को दिया गया,
1: आपके और गुरु,
0: हाँ हमारे गुरु मतलब
1: जी।
0: और दूसरा जो पुरस्कार युवा रंगकर्मी का पुरस्कार तो वो अमन केंद्रे को दिया गया,
1: क्या बात है,
0: तब तक के लिए योगदान के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहा, और जब मैं एनएसडी छोड़ने के बाद मतलब मेरा टर्म खत्म होने के बाद 2-3 साल वो अवार्ड दे नहीं पाए थे कई कारणों की वजह से, उसके बाद 2-4 साल नहीं दे पाए थे, तो फिर हमारे बाद के डायरेक्टर ने वो सारे पुरस्कार की घोषणाएं की समिति गठित करके, तो उसमें से जो दूसरा पुरस्कार जो मिलता है
1: सीनियर वाला
0: वो मैं पहला एल्युमिनाई हूं कि दोनों भी पुरस्कार, पहला तो स्मृति मिला ही था मनोहर सिंह स्मृति पुरस्कार, और ये बीवी कारण स्मृति पुरस्कार भी मुझे दिया गया, एंड ये भी एक रिकॉर्ड हो गया कि भाई ये दोनों पुरस्कार पाने वाला पहला एल्युमिनाई ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वामन केंद्र है।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: लेकिन एक रिकॉर्ड और भी तो है कि वहीं पढ़ के वहीं के डायरेक्टर भी बने
1: जी,
0: और एक तूफानी कार्यकाल आपने किया जिसमें बहुत वाइब्रेंट काम वहां।
1: यस, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पहले भी कई सारे, मतलब जब बी वी कारंद भी वहीं पढ़े थे वो डायरेक्टर हुए थे, ही वाज फर्स्ट एग्जांपल
0: जी।
1: उसके बाद बी एम शाह तो एनएसडी में नहीं पढ़े थे, लेकिन रतन थियाम हो गए, पर उन्होंने अपना डायरेक्टर का कार्यकाल पूरा नहीं किया, पर हुए वो भी। मोहन महर्षि हुए, पर उनके कार्यकाल छोटे छोटे रहे, मोहन महर्षि 2 साल के लिए रहे। उसके बाद कीर्ति जैन रही, उसके बाद अंकुर जी रहे
0: जी।
1: तो ये सारे जो थे वो वही पढ़े और वही डायरेक्टर हो गए। पर महाराष्ट्र का ये पहला रंगकर्मी था जिसको सम्मान पूर्वक वहां पर विद्यार्थी के हैसियत से नहीं, पर बाहर के कंट्रीब्यूशन के हैसियत से आमंत्रित किया गया एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो वहां पढ़ा था और उसके बाद डायरेक्टर बना, कि महाराष्ट्र के इतिहास में ये तो दर्ज हो ही जाएगा। पर वहां के इतिहास में भी जो बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया उसमें से थोड़ा बहुत नाम तो ले ही लेंगे लोग, ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए भी वो कार्यकाल वाइब्रेंट रहा, ऐसा लोग अब कह रहे हैं। तब तो क्या होता है कि कोई भी कार्यकाल का महत्व योगदान रजिस्टर होने के लिए बीच में काल जाना चाहिए होता है, थोड़ा समय देना पड़ता है। तो अब लोग कह रहे हैं कि दैट वाज वन ऑफ द गोल्डन पीरियड ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। वो इतना ही था कि मैं बहुत ईमानदारी से काम करने गया था, जितना संभव है 24 घंटे से 36 घंटा कैसे हो सकता है ये कोशिश करके। मुझे लगता है कि वहां की खूबसूरती, मतलब कैंपस की खूबसूरती, कैंपस का आर्टिस्टिक होना, एकेडमिक जो हमारी गतिविधियां हैं उसको पुख्ता करना, जितनी विद्यार्थियों की समस्याएं हैं उसको पहले सुनना, क्योंकि अल्टीमेटली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बाकी चीजों के लिए नहीं, पहले विद्यार्थियों के लिए बनी हुई है
0: जी,
1: वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें क्या क्या, मैं था तब उस जमाने में कौन सा माहौल था, फिर क्या खामियां थी, क्योंकि मैं यहाँ मुंबई विश्वविद्यालय में 10 साल अकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स खड़ा कर चुका था, तो यहाँ क्या प्लस पॉइंट्स है, वो सारे उसमें ढालते एक बहुत स्ट्रॉन्ग एकेडमिक स्ट्रेंथ वाले विद्यार्थी पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को एक्टिंग में काम मिले, जो एक्टर्स है डायरेक्शन में, डायरेक्टर को स्पेशलाइजेशन 3 कर दिए, 2 ही थे, एक एक्टिंग था और डिजाइन एंड स्टेज टेक्निक्स था, तो इसमें से डायरेक्शन हटाता था वो डिजाइनर को ही डायरेक्ट करने के लिए बोल देते थे। तो मैंने कहा ये उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है ना, डायरेक्टर एक सेपरेट टेम्परामेंट है, वो अलग स्वभाव है, डिजाइनर एक अलग स्वभाव है, एक्टर एक अलग स्वभाव है। तो सिलेक्शन से ही फिर हमने वो सारा माहौल बदलने की कोशिश की और तीनों स्पेशलाइजेशन वापस शुरुआत करके, तो एक ही साथ एक बैच के साथ दो दो नाटक करने से एक्टर को काम मिलना शुरू हो गया, और जो एक्टर भी और डायरेक्टर भी, तो दोनों को भी ये कॉन्फिडेंस मिलना, और डिजाइनर कॉमन होते थे, उनको तो दो दो प्रोडक्शन में काम करने का मौका मिलता था, फिर उनको अपना डिप्लोमा प्रोडक्शन तो करना ही करना है। तो इस तरीके से मुझे लगा कि एकेडमिक माहौल बहुत स्ट्रांग बन गया, फैकल्टी जितनी संभवतः देश की और दुनिया की लाने की कोशिश की गई, तो ये सारा है। उसके साथ साथ उसका विस्तार किया, जो लोग कहते थे कि वो नेशनल नहीं बचा है, उसका थोड़ा सा स्वभाव दिल्ली के आसपास का बना है, तो हमने कहा ऐसा नहीं है, हम उसको डिसेंट्रलाइज कर लेते हैं, मतलब एकेडमिक एक्टिविटी तो रहेगी लेकिन उसका विस्तार हो। मतलब मेरे दिमाग में यह था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा केवल एल्यूमिनाई को यह ना लगे कि यह हमारी संस्था है, पर जो भी थिएटर कर रहा है, वो चाहे एमेटर थिएटर कर रहा है, चाहे प्रोफेशनल कर रहा है, चाहे पैरेलल कर रहा है, चाहे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चाहे मूवमेंट की हैसियत से थिएटर कर रहा है, चाहे चिल्ड्रन थिएटर कर रहा है, कोई भी किस्म का थिएटर कर रहा है, फार्मर का कर रहा है, कामगारों का कर रहा है, वो हर किसी को कोने में खड़े हुए किसी खेत में थिएटर करने वाले आदमी को ये लगना चाहिए कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मेरी है,
0: वाह,
1: और मैं वहां जा सकता हूं, या वो मुझ तक पहुंच सकती है और मुझे लाभ दिला सकती है, वो ट्रेनिंग के लेवल पर हो, फेस्टिवल के लेवल पर हो। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी इन सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शंस इन फेस्टिवल्स यहां से हो, क्वालिटी इज द ओनली क्राइटेरिया।
0: यस,
1: मैं हमेशा ये कहता था, भारत रंग महोत्सव हो या कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे जश्ने बचपन हो, बाल संग हो, कोई भी हो, या हमारे आदि क्या कहते हैं ये क्लासिकल थिएटर का फेस्टिवल हमने शुरू किया, नॉर्थ ईस्ट में अलग फेस्टिवल शुरू किए, इस सब में एक ही था क्वालिटी इज इन सेंटर.

0: बंगलोर में हमारा एक सेंटर था पर वो रिसोर्स सेंटर बन के रह गया, तो हमने कहा ये तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो उसको कन्वर्ट किया एक साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम में और वहां बच्चों को स्कॉलरशिप दे के अब वहां 20 बच्चे हर साल पढ़ते हैं। जो एक सेंटर नया क्लासिकल थिएटर में जो हमारी धारणा थी कि एक संस्कृत शैली का थिएटर जो करना चाहता है सीखना चाहता है कहीं और से थिएटर सीख के आया और उसको स्पेशलाइजेशन करना है उसके लिए मौका ढूंढना चाहिए रखना चाहिए, इसलिए वाराणसी में एक साल का कोर्स शुरू किया सेंटर शुरू किया और वो क्लासिकल इंडियन ड्रामा सीखने के लिए।
1: जी
0: जो सिक्किम का सेंटर था वो एक साल का था, हमने कहा इसको दो साल करिए, फिर उसको दो साल करने का सारा जो कुछ था उसको करने की कोशिश की। एक त्रिपुरा में था वो केवल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए था, तो हमने कहा नहीं है वो केवल टीचर्स ट्रेनिंग जो थिएटर एजुकेशन में निर्माण करना इतना ही उसका काम नहीं है, आर्टिस्ट निर्माण करना भी उसका काम होना चाहिए, थिएटर प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, प्रैक्टिशनर भी निर्माण करे और हम टीचर भी निर्माण करे, इसी के लिए वो सेंटर और दोनों सेंटर नॉर्थ ईस्ट कन्फाइंड हो कि वहां के लोगों के लिए बनाए तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उस 7 और 8 स्टेट को होना चाहिए। तो इस तरीके से मुंबई सेंटर का जो लेआउट था वो पूरा सैंक्शन करके रखा था, जम्मू कश्मीर में भी अभी अभी सेंटर खुल गया मेरे आने के बाद, तो ये सारी बहुत अच्छी चीजें वहां करने का मौका मिला। फिर थिएटर ओलंपिक्स एक सबसे बड़ी जो मतलब भारत रंग महोत्सव का तो हमने ये तो किया ही किया, पर एक दिन मुझे अचानक पता चला कि थिएटर ओलंपिक्स नाम की कोई एक चीज होती है, तो जब मैंने उसका इतिहास ढूंढने की कोशिश की तो जो पहले ओलंपिक होता था जो स्पोर्ट्स का है उसमें स्पोर्ट्स भी होता था, उसमें थिएटर भी होता था, म्यूजिक भी होता था, डांस भी होता था, विजुअल आर्ट्स भी होती थी, ये सब मिलके ओलंपिक होता था।
1: ओके
0: पर आगे चलकर स्पोर्ट्स वाले ने उस प्लेटफॉर्म को हाईजैक किया और ये सब पीछे छूट गए। फिर थिएटर के कुछ लोग इकट्ठा आ गए और उन्होंने कहा कि यार हम इसका हिस्सा थे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे हाथ से गया, तो कुछ विद्वानों ने थिएटर के रंगकर्मियों ने यह तय किया कि हम अपना थिएटर ओलंपिक्स क्यों ना शुरू करें, और फिर वो शुरू किया। पहला वो ग्रीस में हुआ और ये मुझे पता चला फिर बाद में तुर्की में हो गया, फिर कहीं जापान में हो गया, चाइना में हो गया, कनाडा में, यहां वहां हो गया और 8वां होना है ये मुझे पता चला। तो मैंने अपने सोसाइटी से कहा कि भाई ये ओलंपिक अगर हमें मिलता है तो हमको लेना चाहिए, फिर हमारी मिनिस्ट्री है जो केंद्र सरकार की उनको कहा तो उनकी परमिशन ले ली और 8वां थिएटर ओलंपिक्स भारत में हो इसके लिए हमने कमिटी से रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने कहा हमें आके आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, तो हमने बुलाया उनको, आइए, न्योता दिया, वो आए, सब देख लिया, दिल्ली देखा, मुंबई देखा, ये 2-4 जगह देखा और उन्होंने कहा नहीं है ओलंपिक होने लायक तो यहाँ है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और NSD कैन हैंडल इट क्योंकि इंटरनेशनल फेस्टिवल तो हैंडल करती ही है। तो फिर उन्होंने वो हमको मौका दिया और सौभाग्य की बात है कि 51 दिन का तो 8वां थिएटर ओलंपिक्स हो गया जो 17 राज्यों में हुआ, जम्मू कश्मीर से लेके त्रिवेंद्रम तक और इधर मणिपुर और गुवाहाटी से लेके आसाम से लेके इधर अहमदाबाद तक, मुंबई, बंगलोर, चेन्नई, भोपाल, जयपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर, ये सारे उसके सेंटर थे। 17 सेंटर में 51 दिन में हमने 450 नाटक, 32 देशों का पार्टिसिपेशन, ये मेजर नाटक जो मेन थिएटर में किए उसी को यूथ से जोड़ने के लिए हमने 300 कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के 300 नाटक सेलेक्ट करके, मतलब उसमें भी 1100 नाटक आए थे, एक कमेटी ने 300 नाटक सेलेक्ट किए, वो 300 शो और फोक, ट्राइबल और स्ट्रीट प्लेयर्स जो है हमारे संस्कृति के आधार स्तंभ, वो कव्वाली से लेके सारा कुछ, तो उनके 600-650 शो,
1: तो ये तो कितने,
0: ये लगभग 1500 शो, 1500 शो हमने उसमें 51 दिन में किए और जिसमें 25,000-26,000 आर्टिस्ट इन्वॉल्व हो गए देश के और दुनिया के।
1: ये तो बहुत भव्य,
0: बहुत हो गया, ये ऐसा माना गया कि ये भारत के इतिहास का नहीं, रंग जगत के इतिहास का नहीं, नाटक जगत के इतिहास का नहीं है, दुनिया के इतिहास का, नाटक जगत के इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट किसी ने किया हो तो भारत देश ने किया और वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने किया।
1: वाह वाह,
0: ये

0: में मुझे लगता है उसका इंपैक्ट हुआ। और एक बहुत अच्छी बात है, जितने नाटक वाले थे हमने 125 डायरेक्टर को इनवाइट किया जिन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया जिस किसी भी भाषा में, उनको हमने हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक इनवाइट किया कि भाई आप अपना बेस्ट प्रोडक्शन लेके इसमें शामिल हो जाइए। अब 125 तो नहीं हो पाए लेकिन 105 इनवाइटेड डायरेक्टर ने उसमें नाटक किए।
1: वाह,
0: कॉम्पिटेटिव फेस्टिवल में हमने कहा था कि उसमें 1200 नाटक आ गए, उसमें से 250 नाटक चुन लिए गए और विदेशी नाटक 32 देशों के नाटक आ गए। तो ऐसा मिलाकर ये दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा इवेंट हो चुका है और इतना बड़ा क्वालिटेटिव थिएटर फेस्टिवल मुझे लगता है कि दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ। उसके बाद तो एक्टिविटी चलती रहती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए और सौभाग्य से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए, और उसका मैं डायरेक्टर था, ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: क्या बात है।
2: कोई

0: सिनेमा के आकर्षण से आप कैसे बचे रहे अपने पूरे जीवन काल में?
1: नहीं, मुझे मालूम था कि मुझे पहले अपनी स्पेस नाटक में पैदा करना जरूरी है, क्योंकि मेरी जगह है। मैं कहीं भी जाऊं, भूला भटका हो जाऊं, पर गिरने के बाद मुझे अपनी एक जगह चाहिए, वो पुख्ता जगह तैयार होना जरूरी था। पर वो क्या हो गया कि मैं एकेडमिक से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाया पहले से ही।
0: जी जी,
1: एनएसडी हो गया, रिसर्च हो गया, आके एनसीपीएम में 10 साल, फिर वही एसोसिएट हो गया, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी में 10 साल हो गया। जब भी मैंने थिएटर से फिल्म की तरफ जाने की कोशिश की, रंग देवता ने किसी न किसी बहाने मुझे वापस खींच लिया।
0: वहां नहीं जाना है,
1: वहां जाने नहीं दिया। मतलब ऐसी कोई परेशानियां या उस तरीके की अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी की कि आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं और ज्यादा कंट्रीब्यूट करो। मतलब मैं जाने मन नाटक किया और रणांगण किया, दो बहुत मेजर प्लेस थे मेरे हिसाब से, एक ही साल के आसपास किए मैंने। और ये तय किया था कि आप 5 साल में नाटक नहीं करूंगा तब भी ये नाटक चलते रहेंगे और नाम गूंजता रहेगा, तो अब मैं फिल्म करूंगा। तो कोई एक प्रोड्यूसर उस समय मुझसे बहुत बड़ा मेगा इवेंट करना चाह रहे थे फिल्म में, और मेगा कंटेंट पे वो बजट लेके बैठे हुए थे। तो उसी दरमियान डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर, जो वाइस चांसलर थे मुंबई विश्वविद्यालय के, बाद में प्लानिंग कमीशन के मेंबर हो गए, फिर राज्यसभा के मेंबर हो गए, तो उन्होंने एक कमेटी स्थापन की। उस कमेटी में मुझे भी लिया गया और बोले कि 35 साल से मैंने देखा हिस्ट्री मुंबई विश्वविद्यालय में, नाटक का विभाग हो इसके लिए इतनी कमेटियाँ हो गई, इतना हो गया, पर आज तक वो हो नहीं पाया। उसमें जब्बार पटेल थे, रामू केंकरे थे, मैं था, उसके बाद रघुवीर तड़ाशीलकर थे, जयंत पवार, ऐसे 7-8 लोग थे। उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई

0: कमेटी बिमिटी आपकी कमेटी है, अंतिम है, अब आपको चार महीने के अंदर मुझे ये विभाग शुरू करना।
1: अरे गजब,
0: आप जो जो चाहिए बताइए मुझे क्या चाहिए। तो पहले उन्होंने कहा एक सिलेबस दे दो, तो हमने कहीं यहाँ वहां से कटिंग पेस्टिंग करके एक सिलेबस दे दिया उनको, जो उन्होंने एकेडमी काउंसिल में पारित कर लिया, मैनेजमेंट काउंसिल में पारित कर लिया कि हमको ये डिपार्टमेंट खोलना है। चौथे महीने में उन्होंने डिपार्टमेंट खोल दिया।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: वो चार महीना मेरे पीछे पड़े रहे कि तुमको इसका हेड होना है, तो मैंने मना कि मुझे तो जाना है, मैं तो सिनेमा करने वाला हूँ।
1: कोई मेगा प्रोजेक्ट है?
0: हाँ मेगा प्रोजेक्ट है। और फिर उन्होंने जब्बार पटेल जी को, दामू केंकरे जी को, ये सारे हमारे दोस्तों को बोला कि नहीं इसको राजी करो। तो फिर वो होते होते फिर सुशील कुमार शिंदे जी तक बात पहुंच गई। और एक दिन उनका भी फोन आ गया कि वैसे भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर अच्छा नहीं है मुंबई में, तो इसीलिए अगर वो सही आदमी के हाथ में नहीं जाएगा तो फिर ये आप लोग रोते रहोगे। तो वो जो कह रहे हैं मुनगेकर उसकी बात मानो, और मैं आपको महाराष्ट्र की जनता की ओर से बोल रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि एक दो तीन साल दे दो, दो दिन तीन तीन घंटा चार घंटा दे दो, बाकी अपना काम करते रहो। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता है सर, एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करना है तो आप, मैं आपको बता देता हूँ 10 साल रात दिन काम करेंगे तभी खड़ा होगा। बोले जो भी है कर लो और इसको फाउंडेशन करके फिर बाद में छोड़ के जाओ। तो अब इतने सारे रंगकर्मी भी हैं, राजनेता भी हैं और मित्र भी हैं, ये सारे मेरे नाटक देखने वाले भी थे, तो सभी की ओर से चारों ओर से वो लगा कि आपको करना चाहिए। फिर हमने कहा कि चलो यार इसको 2 साल के बाद प्रोजेक्ट को करते हैं, वह 3 साल के बाद फिल्म को, तो वो स्वीकारना पड़ा। और एक बार वो स्वीकारने के बाद 2003 में मैंने उसको स्वीकारा, 13 कब आया मुझे समझ में नहीं आया।
1: जो दो तीन साल
0: सोचा था। और रात दिन मैं सुबह 7:45 बजे पहुंचता था, रात को 12 बजे घर पहुंचता था।
1: अरे बाप रे।
0: पर चूंकि वो उतनी इन्वॉल्वमेंट से किया, इसलिए एक नेशनल लेवल का 10 साल में एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया, और जहां पर लोग पढ़ने के लिए ज्यादा पसंद करते थे बजाय के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाए, तो जो सारा का सारा फ्लो था वो वहां से मुंबई की तरफ मुड़ गया, क्योंकि अल्टीमेटली मुंबई में जाना है सबको, मतलब ज्यादातर लोगों को, अपवाद तो बहुत है। तो फिर 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी मिल रही है।
1: जी जी।
0: तो ये भी जिसको एकेडमिक्स में जाना है उसके लिए ये भी और एक शॉर्टकट हो गया। और वो सारे लोगों को हम बुलाते थे जो बाहर जाके जिनके साथ इनको काम करना है, चाहे वो फिरोज अब्बास खान है, चाहे दिनेश ठाकुर है, चाहे रमेश तलवार है, एमएस सत्यू साहब है, जब्बार पटेल है, डॉक्टर लागू है, नीलू फुले जी है, विजया मेहता जी है, जितने भी मराठी हिंदी अंग्रेजी और परेश रावल जी है, नसीरुद्दीन शाह है, मैं ऐसा कोई छोड़ा ही नहीं हमने जिनको बुलाया नहीं। तो एक तरीके का वो अड्डा बनते बनते वो एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया, वो भी एक अपने आप में एक यूनिक, यूनिवर्सिटी के पूरे प्रेशर में, सेटअप में वो खड़ा करना भी अपने आप में एक चैलेंज था, बट आई एंजॉयड दैट आल्सो। और एक बहुत अच्छे, एक से एक बेहतर प्रोडक्शन भी हो गए। ये मध्यम व्यायोग तो उसी के लिए किया था। फिर ईडीपस किया, 2 मंजिला सेट लगा के। मेरे बाद और भी डायरेक्टर्स ने भी काम किया, विजय केंकरे ने किया, चंद्रकांत कुलकर्णी ने आके काम किया, पुरुषोत्तम बेर्डे ने किया, रंजीत कपूर ने आके काम किया, अंकुर जी ने आके काम किया, इतने सारे। और ये पहला विभाग है पूरे देश में यूनिवर्सिटी के मर्यादा में कि पहले साल हमने अपना नेशनल फेस्टिवल शुरू किया।
1: वाह वाह वाह।
0: राष्ट्रीय वसंत नाट्य महोत्सव।
1: जी।
0: इसमें ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं है कि जिसको हमने इनवाइट नहीं किया, पूरे हर एक, रतन थियाम मणिपुर से 2 बार आ गए, बंसी कौल आ गए, उसके बाद रैना साहब आ गए, उसके बाद रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता आ गए, मतलब कोई भी, साउथ का बी जयश्री आ गई, अहमदाबाद से फलाना आ गया, सौम्या जोशी आ गए, इतने सारे पुराने भी डायरेक्टर्स और नए भी डायरेक्टर्स, सबको वहां लाया। ऐसे प्रोडक्शन हम चुन चुन के लाते थे कि जो अदरवाइज मुंबई में देखने सुनने को मिलेंगे नहीं, तो वो लंबी लाइन में खड़े होके लोग अंदर जाते थे और वो माहौल भी देखा हमने। और सारा का सारा विद्यार्थी ऑर्गेनाइज करते थे, हम सिर्फ उसके पीछे खड़े रहते थे।
1: वाह वाह।
0: कि अंत में अगले जनरेशन के रिस्पॉन्सिबल लोग बनाने का काम वो यज्ञ जैसा हो रहा था, तो वो भी एक अपने आप में मुझे लगता है कि मिसाल है, जो माहौल दिल्ली में मैं ले गया वो यहीं बनाया हुआ था
1: जी।
0: कि क्या करने से बच्चे के जीवन में परिवर्तन होता है, वो सारा का सारा वहां तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें एड ऑन क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कम पड़ा था क्या ज्यादा था। तो मुझे लगता है कि वो सारा जो एकेडमिक्स है उससे मेरी कहीं दोस्ती नहीं टूटी, जो प्रैक्टिसेस है उसमें मेरी कोई दोस्ती नहीं टूटी, तीसरा है मेरा रिसर्च का स्वभाव अभी तक वैसा ही है, चौथा है दुनिया भर का जो हो रहा है उसका कॉग्निजेंस रखना कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी एक अपने आप में दिलचस्प बातें थी। मुंबई में जो जो भी आता था, जो किसी भी देश से आए, वो एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स में आए बिना जा नहीं सकता था
1: जी, जी।
0: ऐसा कुछ हमने, चाहे ब्रिटिश काउंसिल हो, चाहे अमेरिकन सेंटर हो, चाहे जर्मन सेंटर हो, रशियन सेंटर हो, छोटे से छोटे देश का कोई भी रंगकर्मी आता था वो मुझे पता चलता था, क्योंकि वो नेटवर्क था, दोस्ती थी इन लोगों से, जो दिल्ली में भी बहुत काम आया मुझे बाद में आगे चल के। तो इसकी वजह से ये भी खड़ा हो गया, और अभी तक मैं जब तक था मुझे लगता है 8 बार राष्ट्रीय वसंत नाट्य महोत्सव हुआ, 8 या 9 बार
1: जी।
0: तो उसमें भी हमारे बच्चों को दुनिया भर का बेहतर नाटक देखने को मिलता था। कोई नॉर्वे से आ रहा है, कोई आदिवासी ग्रुप थिएटर लेके, उसका परफॉर्मेंस हम वहां करते थे।
1: बाबा
0: मतलब ऐसा नहीं है, कहीं से भी कोई भी आए और हमको पता चले कि हम उसको हाथ जोड़ के पकड़ के लाते थे, और जितना भी संभव है हमारी अपनी इसमें सुविधा देना उतना करते थे, क्योंकि एक क्लोज थिएटर कुसुमाग्रज जो भाषा सभागृह है वो हमारे हाथ में था, और एक ओपन एयर थिएटर हमने हमारे लिए हमारे इंजीनियर से कंस्ट्रक्ट करवा लिया था, उससे बेहतर थिएटर तो आज इस देश में कहीं नहीं है। ओपन एयर थिएटर में जाइए, माहौल है कि यहाँ बैठे बैठे आप करियों का आस्वाद ले सकते हो।
1: सही है, सही है। तो सिनेमा के जो आपके सपने या आपकी धारा को,
0: तो इसीलिए सिनेमा, मतलब अभी भी ऐसा नहीं कि मैं सिनेमा नहीं करूंगा, मुझे लगा था कि यहाँ पर एक स्पेस बननी चाहिए, आपकी जगह बननी चाहिए, और ये मेरा स्वभाव नहीं कि इसको छोड़ के उसको पकड़ो और उसको पकड़ के उसको ताड़ो। मुझे लगा कि ये जहां काम करना है, जहां आनंद आ रहा है, और हर बार आप अपनी डिस्कवरी कुछ कर रहे हो, मतलब अभी तक मैं कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं किया कि मैं अपने आप को रिपीट कर पाऊं, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे अभी कुछ नया नाटक करना चाहिए
1: जी। जी
0: सिनेमा का भी सपने आते हैं कि मैं, मुझे ऐसा सिनेमा करना है कि जैसे पहले नाटक ने देश को हिला दिया, वैसे मैं कम से कम पहले फिल्म में दुनिया को हिला दूं। ऐसा कोई कंटेंट मैं ढूंढ रहा हूं, ऐसा कोई कहने का तरीका ढूंढ रहा हूं, ताकि वो माध्यम में जाने के बाद लोगों को ये ना बुलाए मेरा कुछ देखो
1: जी, जी जी
0: वो अपने आप इतना बोलना चाहिए कि यार आई शुड गो एंड सी दैट फिल्म।
1: तब तक इस धारा को ऋत्विक आगे बढ़ा रहे हैं।
0: ऋत्विक के 2 या 3 सिनेमा आ गए हैं, और तीसरा ही पिछले हफ्ते में उसके सिनेमा का फिल्म फेस्टिवल में एक स्क्रीनिंग हुआ है
1: जी, जी।
0: उसके पहले उसका ड्राई डे एक सिनेमा रिलीज हो गया है। अभी रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेमा है जो उतना अंडरलाइन होना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया, पर आगे चलकर होगा, सरगम नाम का सिनेमा है, और बहुत यूनिक स्टोरी पे बनाया है, और उसका खासियत यह है कि गिरीश कारनाड जी का आखिरी सिनेमा है जिसमें गिरीश कारनाड जी ने स्वतः काम किया है
1: जी,
0: और वो मराठी सिनेमा है, और वो बहुत अच्छा रोल किया है गिरीश कारनाड जी ने, और ऋत्विक और गिरीश कारनाड जी आमने सामने हैं।
1: वाह वाह वाह।
0: ऋत्विक प्रमुख भूमिका में, नायक की भूमिका में है, और वो ऐसा लगता है खलनायक है लेकिन वो है नहीं
1: जी।
0: तो ये सारा जो मुझे लग रहा है कि ये जो धरोहर है या ये जो थ्रेड्स है या जर्नी है वो तो आगे चलती रहेगी। ऋत्विक अपने तरीके से वो थिएटर भी कर रहा है और सिनेमा में भी काम कर रहा है, और भी कुछ वो करना चाह रहा है जो कभी बोलता है कभी नहीं बोलता है।
1: अच्छा क्या बात है।
0: ये तो चलते रहेगा सिलसिला, पर सिनेमा भी करूंगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आई हैव रेजिस्टेंस अबाउट सिनेमा, आई एम वेरी हैप्पी विथ सम एक्सप्रेशंस। सिनेमा में भी लोग बहुत यूनिक काम कर रहे हैं, और भारतीय सिनेमा भी कर रहे हैं
1: जी,
0: पर वो मेन स्ट्रीम में नहीं है
1: जी।
0: मेन स्ट्रीम जो हमारा व्यावसायिक सिनेमा है उसमें बहुत रेयरली आपको लगता है कि यार ये ठीक है
1: जी।
0: इसलिए मैं सेंसर बोर्ड का बोर्ड मेंबर भी हूँ, तो वो इसीलिए हूँ कि मैं सिनेमा देखते रहता हूँ
1: हर तरह के सिनेमा पर नजर।
0: सिनेमा देखते
1: जी वामन केंद्रे जी, आपकी तमाम अगली अभिव्यक्तियों का हमें इंतजार रहेगा और इस लंबी बातचीत में बहुत आनंद आया। सबसे अच्छी बातचीत वो होती है जिनमें अगली बार की बातचीत की गुंजाइश बनी रहे।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे लगता है इस बातचीत को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूनुस जी और विविध भारती का मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इतना सारा गपशप करवाने के लिए।
1: बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू, धन्यवाद।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का चौथा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
3: उजाले उनकी याद।

बरसात की रात फिल्म की ये कवाली आपने सुनी मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, बातिश और सुधा मल्होत्रा के साथ साथियों की आवाज़ थी। साहिर लुधियानवी का लिखा ये नगमा था, श्रोता रोशन की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं रंग तरंग।

बेगम अख्तर की आवाज में सुदर्शन फाकर की लिखी ये ठुमरी आप सुन रहे थे, और इसके पहले श्रोताओं हमने आपको सुनवाया था उमराव जान फिल्म का नगमा। आशा भोसले की आवाज थी, शहरयार के बोल खयाम की तर्ज थी।

0: सदियां इस एल्बम में आप सुन रहे थे ऋचा शर्मा और साबरी ब्रदर्स की आवाजें, समीर के बोल थे, अदनान सामी की तर्ज थी।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
4: मैं निकला
3: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
4: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
5: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
3: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
6: चिट्ठी न कोई संदेह।
3: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: तर्जर आवाज अदनान सामी की थी, समीर का लिखा ये गीत आपने सुना तेरा चेहरा एल्बम से।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में बाल कवि बैरागी की रचना आपने सुनी। जयदेव का संगीत था, फिल्म थी रेशमा और शीरा।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार कर रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवियर बेटल की आज नई दिल्ली में मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बेटल की ये यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री मंजिंद्र सिंह सिरसा के साथ आज सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुरानी बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
1: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
1: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: इस बीच घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि ये मामला सांप्रदायिक सद्भाव को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण होगा और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन देशों ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 443 अंक गिरकर 76,000 पर और निफ्टी 138 अंक गिरकर 23,759 पर कारोबार कर रहा था। दिग्गज सिनेमाटोग्राफर टीएन कृष्णन कुट्टी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मलयालम सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। श्री कृष्णन कुट्टी ने 1960 में अपने करियर की शुरुआत उम्मा फिल्म में कैमरा ऑपरेटर के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में सिनेमाटोग्राफर के रूप में काम किया। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। इस महोत्सव को स्थानीय फिल्मकारों और रचनात्मक पेशेवरों को व्यापक फिल्म उद्योग से परिचित कराने और क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करने के एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। 4 दिवसीय इस महोत्सव में 40 देशों की 135 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है।

0: दिल ही तो है इस फिल्म की कव्वाली। आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों की आवाजों में, साहिल ध्यानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

बीएल संतोषी की रचना आपने सुनी, हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी पोस्ट बॉक्स नंबर 999। और इसके पहले जो गीत आपने सुना, आशा भोसले, मुबारक बेगम और साथियों की आवाजें थी। फिल्म थी कब हुई गवनवा हमार। मोनिंद्र शुक्ला के बोल थे, इकबाल कुरैशी की तर्ज थी।

0: अपरा हाउस फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज आपने सुनी, नगमा निगार मजरू सुल्तानपुरी, मौसिकार चित्रगुप्त।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में पीएल संतोषी का लिखा यह गीत आपने सुना। सी रामचंद्र की तर्ज थी, फिल्म थी शिनचिना की बुबला बो। और इस गीत के पहले श्रोताओ, हमने आपको सुनवाया था जो गीत हम पंछी एक डाल के इस फिल्म से आशा भोसले और साथियों की आवाजें थी, पीएल संतोषी की रचना थी, एन दत्ता का संगीत था।
1: आज मौसम सलोना सलोना रे, आज मौसम

पखवाले जगमग जगमग हो गया मेरे मन का कोना सोना रे मन का कोना।

कवि प्रदीप की रचना थी सरस्वती देवी की तर्ज थी। अशोक कुमार, रहमत बानो और अरुण कुमार की आवाजों में आपने सुना फिल्म झूला का गीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज में पीएल संतोषी की रचना आप सुन रहे थे। शिवराम कृष्णा का संगीत था इस गीत में। तीन बत्ती चार रास्ता इस फिल्म का गीत था।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंज

0: संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब उसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: यही तो है। इस फिल्म में आपने सुना मन्नदी की आवाज, साहिल ध्यानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: निमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में इसे गाया आशा भोसले ने। मजरू सुल्तानपुरी की रचना आप सुन रहे थे मेरे सनम फिल्म से, और अब आपको सुनवाते हैं जहरीला इंसान फिल्म का गीत। किशोर कुमार की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम संपन्न होता है। श्रोताओं,
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती, आप सुनेंगे थोड़ी देर में कार्यक्रम सुरीला सफर।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, सूरज ढलने के बाद एक शमा हमें अंधेरों से उजालों की तरफ ले जाती है। जब अंधेरी रातों में जी घबराता है, शमा अंधेरों को चीरती रोशन होती है और अंधेरों से लड़ना सिखाती है हमें। कहीं इश्क मोहब्बत, कहीं इंसानी इल्म और समझ का रास्ता दिखाती है न सिर्फ शमा, बल्कि वो तमाम चीजें, वो तमाम लोग जो हमारी जिंदगी में रोशनी बनकर आते हैं, शायद शमा की ही तरह हैं, बेशक शमा की तरह हैं। और जिंदगी में अगर परवाने की बात की जाए तो परवाने की तरह हमारे लक्ष्य सधे होने चाहिए, चाहे रास्तों में कितनी भी अड़चने आए। और इसको ही लेकर एक इबारत हमने आज www.facebook.com/vbsmumbai के इस पते पर पोस्ट की है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उसे पढ़ा भी है और हमारे नए श्रोताओं के लिए या जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ये इबारत हम पढ़ देते हैं एक बार। शाम ढलते ही दरों दीवार पर शमा रोशन कर दी जाती है। अंधेरी रात के साए जब घरों और महफिलों में शमा रोशन होती है, चेहरे पर चांदी सी बिखर कर पास बिठाती है और कहती है, मेरे महबूब, दो हंसों के जोड़े की तरह हम शमा परवानी इल्म की रोशनी, सच्चे प्रेम और समर्पण की दास्तान है। देखो ये रात ढलती जाए है लेकिन वो चुप रहे, प्यार की आबरू कुछ जफाओं कुछ वफाओं की खातिर। परवाने ने कहा, प्यार तो दीवाना होता है, तू शमा मोहब्बत की रोशनी के लिए जली, एक लक्ष्य एक जुनून की मिसाल बनी। आज की रात जो बसर हो गई, तेरी आगोश में जलने को फिर आऊंगा, सदियों पुरानी ये मिसाल फिर दोहराऊंगा। शमा तड़प कर बोली, मिटने की तकदीर तो दोनों की है, मेरे महबूब आज की रात तो न जा। तो एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

हरिपाल और गीतांजलि पर फिल्माया गया पारसमणि फिल्म का ये गीत आपने सुना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। इंदिवर के बोल थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आमतौर पर शम्मा परवानी की दास्तान को आत्मघाती आकर्षण का रूपक माना जाता है, लेकिन आज की इबारत में शम्मा को इल्म की रोशनी और एक लक्ष्य का प्रतीक बनाकर प्रेम को उच्चतर अर्थ दिया गया है। परवाने का शमा की ओर खिंचाव महज अंधा मोह नहीं बल्कि ज्ञान और सत्य के प्रति एक सजग जुनून है। एक और श्रोता ने लिखा है, इस इबारत में प्रेम की गहराई विरह इंतजार जफा वफा और शमा परवाने के प्रतीकात्मक रिश्ते को बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इल्म की रोशनी लक्ष्य के प्रति जुनून और समर्पण का संदेश भी इसमें छुपा हुआ है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत खूबसूरत है इस बेहतरीन लिखावट में छुपे शब्दों के आधार पर। आज सुरीला सफर में ये सदाबहार पुराने नगमे हो सकते हैं, शमा परवाने की बात है और कुछ गीत भी इन्होंने बहुत सारे गीत सुझाए भी हैं और भी हमारे श्रोता हैं जिन्होंने शमा परवाने के बारे में लिखा है। वैसे आपको बताएं श्रोताओं कि शमा शब्द पर जाने कितनी ही कविताएं लिखी गईं, जाने कितने ही शेर, जाने कितने ही अल्फाज और उद्गार बताए गए। दुनिया बदली, दौर बदले, लेकिन शमा उसी शान शौकत से आज भी जलती है। आपको कलाकार और फिल्म बताने हैं।

क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो शमा की तरह रोशनी बनकर आया, तो आप जरूर लिख सकते हैं। फिल्म अलबेला का ये गीत आपने सुना और हमने आपसे पूछा था कि कलाकार कौन से हैं, तो आपको ये बताना है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, दिया ही बहुत रोशनी के लिए। दिया सिर्फ रोशनी नहीं करता बल्कि चारों ओर के अंधकार को दूर कर देता है। इसी प्रकार इल्म या ज्ञान का दिया इंसान की अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है, उसके विचारों को नई दिशा देता है जिससे वो अपना और समाज का विकास कर पाता है। ज्ञान का दीपक अनश्वर होता है, खूब तेज इल्म जिसे कोई चोर भी ना ले सके। कोई अगर आपने अपने लिखे हुए शेर शमा पर लिखे हैं तो आप हमें ज़रूर भेज सकते हैं, और कोई गीत अगर शमा पर लिखा है तो वो भी आप भेज सकते हैं। वैसे लाइट्स तो सभी को अच्छी लगती है, और ख़ासकर तब जब अंधेरों में जलती है। लैंप, झूमर, लालटेन, दिए, मोमबत्ती, यानी तमाम जो शामें होती हैं वो इससे जगमगाती हैं। ऐसे बहुत सारे गीत भी हैं श्रोताओं जो इसी तरह के सिचुएशन

होता हमारे लिखते हैं कि शाम ढलते ही घरों की दीवारों पर रोशनी के लिए लालटेन या चिमनी जलाकर उजियारा किया जाता रहा। ये दौर तो नहीं देखा, पर जब इन्वर्टर नहीं आया था तब बरसात के मौसम में आंधी तूफान से बिजली की आपूर्ति बंद होने पर 2-3 दिन तक चिमनी की रोशनी में ही रहे। श्रोताओ, ऐसा तो होता है और फिल्मों में बहुत सारी जगहें ऐसी भी दिखाई गई हैं जब बैलगाड़ी जाती है और उस पर लालटेन की रोशनी होती है। ऐसा भी कोई गीत, कोई सीन आपको याद आ रहा हो तो आप ज़रूर बता सकते हैं।

इससे पहले जो अलबेला का गीत, फिल्म अलबेला का गीत हमने आपको सुनाया, भगवान दादा और गीता बाली पर फिल्माया गया, यह हमारे एक श्रोता ने लिखा है और ये गीत था पुनर्मिलन फिल्म से अमिता और जगदीप पर फिल्माया गया। इंदिवर की रचना थी, सी अर्जुन की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे मामू की बारात बैलगाड़ी में गई थी तो बहुत मजा आया था जब मैं छोटी थी। यानी कि बैलगाड़ी में अगर कोई रास्ता ऐसा होता है श्रोताओं, तो उसमें जरूर रोशन होती है शमा, किसी लालटेन के तौर पर या चिमनी के तौर पर। एक और श्रोता ने लिखा है कि शमा परवाना, दीपक पतंगा और ढलती हुई रात, इनका रिश्ता बिना शर्त मोहब्बत, त्याग, समर्पण और बलिदान का प्रतीक है। इस गहरे और रूहानी रिश्ते ने सभी को आकर्षित किया है। ये कोई साधारण जलना नहीं है, ये तो आत्मा का परमात्मा में विलीन होना है। और इन्होंने आगे ये लिखा है कि

दीपक की जलती है राह दिखाने के लिए परवाना मचल जाता है खुद को मिटाने के लिए। जी हाँ, रिश्तों में भी ठीक ऐसा ही होता है कि रिश्तों में आजकल समर्पण कम देखने को आता है। तो इस बारे में भी अगर आपको कुछ लिखना है तो आप जरूर लिख सकते हैं। और हमने आपसे पूछा था कि जो पढ़ाई जब हम कभी करते थे तो शमा की रोशनी में अक्सर पढ़ाई की जाती थी, ऐसा कुछ अगर आपको याद है तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि शमा जलती रही अपनी रोशनी में, परवाना मिटता रहा उसकी चाहत में। इश्क भी कितना अजीब है, जिसे पाना मुमकिन नहीं, उसी पर दिल सबसे ज़्यादा आता है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की जो इबारत है, शमा केवल रोशनी का प्रतीक नहीं बल्कि त्याग, प्रेम, समर्पण और उम्मीद की मिसाल है। शमा की लौ छोटी होती है लेकिन उसका उजाला बड़ा होता है, दूर तक प्रकाश फैलता है। इंसान कभी अगर अपने भीतर की अच्छाई, प्रेम और संवेदना की लौ जलाए रखे तो किसी के जीवन का अंधेरा कम कर सकता है। शायद इसीलिए शमा हमेशा से उम्मीद, प्रेम और त्याग का खूबसूरत प्रतीक रही है। जी हाँ, ये बहुत ही सटीक बात है श्रोताओं, कि हृदय में हमेशा दिल में एक शमा जलती रहनी चाहिए। ये दो अभिनेत्री कौन हैं और ये किन के बारे में बात कर रही हैं?

साधना और अमिता पर फिल्माया गया ये गीत था मेरे महबूब फिल्म का शकील बदायूं ने कर लिखा। एक श्रोता ने लिखा है बैलगाड़ी जाती हुई और लालटेन जलती हुई देखी गई, याद कीजिए फिल्म तीसरी कसम हीरामन हीराबाई को लेकर फरबेजगंज के मेले बैलगाड़ी से जा रहा है। राज कपूर और वैजयंतीमाला कलाकार थे। जी हाँ, आपने देखी होगी शायद ये फिल्म और बड़ा ही खूबसूरत इसका पिक्चराइजेशन भी है। एक और हमारे श्रोता लिखती है कि बिजली और आधुनिक स्ट्रीट लाइट के आविष्कार से पहले सड़कों शहरों में कोयला गैस से जलने वाले लैंप पोस्ट का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता था। शाम को इन दीपों या लैंपों को जलाने और बुझाने के लिए विशेष कर्मचारियों या चौकीदारों को रखा जाता था। कई जगह नागरिकों के लिए ये नियम था कि वे अपने घरों की खिड़कियों के पास रोशनी का प्रबंध कर दें। बचपन में हमने भी देखा है शाम होते ही केरोसिन के लालटेन को गोईठा यानी उपले के राख से साफ करके फिर उसे मुलायम कपड़े से पोंछकर लालटेन जलाकर घर के दरवाजे दलान में रख दिया जाता था, जिससे सड़क गलियां जो है सभी तरफ का भाग जो है वो रोशन रहे। कलाकार आपको बताने हैं।

आया सावन झूम के इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। धर्मेंद्र पर फिल्माया गया और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह होती है तो रोती है शमा महफिल की, रात भर जिसने उजाला किया उसे ही बुझना पड़ा। एक और श्रोता लिखते हैं कि छायावाद की मेरी आदरणीय महादेवी वर्मा जी की कविता से कुछ पंक्तियों को साझा कर रहा हूँ। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। एक और श्रोता ने लिखा है, रोशन तुम्ही से दुनिया रौनक तुम्ही जहाँ की, इस गीत को इन्होंने बताया है। और वैसे तो अगर देखा जाए तो प्यार की जो शमा होती है वो दिल में हमेशा जलनी चाहिए। आज के जीवन में ये बात कितनी प्रासंगिक है ये आप हमें बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है कि परवाने को शमा पर जलकर कुछ तो मिलता होगा, यूं ही मरने के लिए कोई मोहब्बत नहीं करता। शमा परवाना प्रेम के प्रतीक स्वरूप है जिनसे प्रेम की पराकाष्ठा और समर्पण का पता चलता है। सच्चा प्रेम किसी भी परिणाम से डरकर पीछे नहीं हटता। और फिर आगे इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। आपको ये फिल्म और कलाकार पहचानने हैं?

की रोशनी से जगमगाता ये गीत था जो रोशन था बेहद खूबसूरत अभिनेत्री वैजयंती माला पर और गंगा जमुना फिल्म का ये गीत था। इस गीत की डिटेल अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कि किसका लिखा हुआ ये गीत था। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि फिल्म दोस्ती में एक दोस्त रोड पर लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ाई करते हैं। जी हाँ ये तो है। एक और श्रोता लिखते हैं कि देवदास फिल्म के आखिरी दृश्य में दिलीप कुमार जी बैलगाड़ी में बेसुध पड़े हैं और लालटेन की रोशनी में गाड़ी चली जा रही है। एक और इन्होंने ही बल्कि लिखा है कि बचपन में गांव में हमारी भी बैलगाड़ी थी, बारिश में ऊपर टप्पर लगाकर शहर खरीदारी के लिए जाया करते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि 20 साल बाद फिल्म में भी शमा लालटेन के रूप में दिखाई गई है। जी हाँ बिल्कुल। और गीत को भी इन्होंने याद किया है कि फिल्म में ये गीत था। आप ये नगमा सुने श्रोताओं और बताएं कि ये किसके ऊपर फिल्माया गया है, मतलब किन अभिनेता और अभिनेत्री पर।

आशिक फिल्म के इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखी है, राज कपूर और पद्मिनी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो है शम्मा परवानी की बात है, ढलती रात सदियों से मोहब्बत, समर्पण और वक्त के गुजरने के फलसफे को बयां करता आ रहा है। शम्मा का वजूद एक खामोश तड़प है, परवाना एक समर्पित दीवाना आशिक जो मरने की हद तक, इन्होंने अपनी बातें लिखी है बहुत लंबी चौड़ी। एक और श्रोता ने लिखा है कि लिखते हैं कि ढलती जाए रात, इस गीत को इन्होंने लिखा है। जी हाँ, बहुत सारे गीत थे आज जो हमने इसमें सोचा था कि आपको सुनवाएंगे, देखते हैं कौन कौन से गीत हो सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि शमा और परवानी के बीच प्यार का रिश्ता अटूट निस्वार्थ और आत्मघाती प्रेम कहलाता है। शमा जलती रहती है और परवाना ये जानते हुए भी कि वो जल जाएगा, फिर भी उसके प्यार में उसी तरफ खींचा चला जाता है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि शाम ढले खिड़की तले और मेरे महबूब न जा, ये तमाम गीत इन्होंने सुझाए हैं और पसंद किए हैं। एक और सवाल आपसे कि जो हमने किया था कि जीवन में वो कौन है जो शमा की तरह आपके लिए रोशनी बनकर आया, आप चाहें तो बता सकते हैं श्रोताओं।

रजिया सुल्ताना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आपको बताना है श्रोताओं कि इस गीत में कलाकार कौन थे। वैसे हमारे कुछ श्रोताओं ने बताया भी है, तो हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। एक हमारी और श्रोता लिखती हैं कि अंधेरी रात में शमा की रोशनी जगमगा उठी, चांदनी की तरह बिखरती उस रोशनी में प्यार, वफा और समर्पण की एक अनोखी दास्तान छिपी थी। शमा और परवानी का रिश्ता सच्चे प्रेम, जुनून और तड़प की मिसाल है। कभी जफाओं की कसक, कभी वफाओं की आबरू, कभी महबूब की आगोश में बीतती रात, तो इन सभी एहसासों में प्यार अपनी पूरी शिद्दत से दिखाई देता है। शमा की तरह अपने लक्ष्य के लिए जलना और परवाने की तरह है। इसके आगे भी इन्होंने अपनी बहुत सारी बातें लिखी हैं श्रोताओं। तो आपसे हमने पूछा था कि जीवन में आपके वो कौन है जो एक क्षमा यानी रोशनी की तरह आया, तो आप इस बारे में लिख सकते हैं। और जलती हुई क्षमा एक हमने पूछी थी कि जो फिल्म गंगा यमुना का गीत हमने आपको सुनवाया था उसमें दीपक की रोशनी है, दीपक की रोशनी और क्षमा की रोशनी, और अगर हम झूमर की बात करें तो उसकी रोशनी, ये सभी रोशनियों में आपको सबसे अच्छी किसकी लगती है और किस रोशनी के नीचे आपने कभी कोई शाम बिताई हो तो आप उस बारे में बता सकते हैं। यानी झूमर या कैंडल यानी मोमबत्ती या फिर दिए की रोशनी के तले कोई ऐसी सुंदर शाम बिताई हो जो आपके जहन में यादगार पल बन गई हो, तो आप ऐसी बातें हमें बता सकते हैं।

जहां आरा फिल्म का ये गीत आपने सुना मीना मुमताज पर फिल्माया गया, और इसके पहले हमने आपको सुनवाया था रजिया सुल्ताना फिल्म का गीत जयराज और निरूपा रॉय पर फिल्माया गया। ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है और बिल्कुल ठीक है। तो हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि जब मैं छोटी थी तो लैंप में पढ़ती थी, बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था। हम 5 भाई बहन एक साथ बैठकर शरारतें भी बहुत किया करते थे। वो समय दो हंसों का जोड़ा ये फिल्म थी, गंगा जमुना दिलीप कुमार वैजयंतीमाला। इस गाने में नायिका के अपने अकेलेपन के दर्द को नायिका बताती हैं, ऐसा इन्होंने इस गीत के बारे में भी लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि शम्मा परवाना और ढलती रात तीनों मिलकर मोहब्बत की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां इश्क सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि खामोशी से मिटते जाने का हुनर है। परवाना एक पल में जलकर अपनी कहानी कह देता है, मगर शम्मा पूरी रात पिघलकर भी रोशनी बांटती रहती है। शायद सच्ची मोहब्बत भी ऐसी ही होती है, एक जलता है, दूसरा पिघलता है और रात चुपचाप बीत जाती है, पीछे रह जाती है बस थोड़ी सी रोशनी और बहुत सारी यादें।

ये कलाकार आपको बताने हैं श्रोताओं और फिल्म बतानी है। एक हमारी श्रोता लिखती है कि लाइट चली जाती थी तब लालटेन से पढ़ाई की है। एक और श्रोता ने लिखा है कि धूल का फूल फिल्म में राजन कुमार लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि 60 के दशक में बैलगाड़ी से कई शादियों में हमने शिरकत की है, वो भी कई किलोमीटर।

राजेश खन्ना पर फिल्माया गया कटी पतंग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिए की रोशनी में मेरी इनकी शादी के बाद इन्होंने लिखी है, तब बिजली नहीं थी, लालटेन दरवाजे पर जला करती थी, बाकी घर में दिए जलते थे जो मिट्टी के तेल से जलते थे। बाकी जो है एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि कटी पतंग फिल्म का ये गीत राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया गया और इस गीत की डिटेल लिखी है इन्होंने। अब आपको ये बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है, किस पर फिल्माया गया।

मुगले आजम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। खूबसूरत बेहतरीन अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया। श्रोताओं, हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि ये चिराग अंजुमन तो है बस एक शब के मेहमा, तू जला वो शम्मा ए दिल जो बुझे कभी न जल के।

अभिनेत्री चित्रा पर फिल्माया गया नूर महल फिल्म का ये गीत था सुमन कल्याणपुर की आवाज में। श्रोताओं, आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम सुरीला सफर आज बस यहीं तक। आज का ये सफर आपने तय किया संगीता श्रीवास्तव के साथ।

0: पांच मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी की उज्जैन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रसारण के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रस्तुत है उज्जैन में आयोजित भगवान श्री महाकालेश्वर की राजसी सवारी का आंखों देखा हाल। आ रही है पाल की, बाबा महाकाल की।

0: संपर्क संचार नालय भोपाल।
1: विकास की मजबूत नींव सड़कों पर टिकी होती है, क्योंकि बेहतर संपर्क ही आर्थिक प्रगति और जन सुविधाओं का आधार बनता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत में आधुनिक और विश्व स्तरीय सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से सड़क अधोसंरचना में अभूतपूर्व विकास हुआ है।
2: 12 साल में मोदी जी के शासन काल में पानी, बिजली, सड़क अब आधुनिक समय के हिसाब से पूरे देश में मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में से एक बना है।
1: वर्ष 2025-26 में 4,078 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण करने के साथ 48,178 करोड़ रुपए की 73 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन है। इसी तरह 6-लेन मार्ग और उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे प्रदेश की विकास रफ्तार को नई दिशा दे रहा है, जबकि मजरा टोला सड़क योजना के अंतर्गत 30,900 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति दी गयी है।
3: नदियाँ केवल जल की धाराएं नहीं होती, वे सभ्यता, समृद्धि और भविष्य की वाहक होती हैं। देश में जल सुरक्षा, नदी जोड़ों, परियोजनाओं और सिंचाई के विस्तार के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाकर विकसित भारत के निर्माण का दृढ़ संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। आज मध्य प्रदेश बहती धाराओं को विकास की नई दिशा देकर आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा का मजबूत आधार तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में अंतर्राज्यीय नदी जोड़ों परियोजनाओं से खेतों, गांवों और शहरों तक पर्याप्त सिंचाई और पीने का पानी पहुंचाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।
4: पार्वती, काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के लिए और राजस्थान के लिए दोनों के लिए वरदान साबित होगी।
3: महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के पूरा होने पर प्रदेश में सिंचाई का दायरा वर्ष 2028-29 तक लगभग 55 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
5: नदी जोड़ो अभियान से किसान को सिंचाई का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी से किसान की तरक्की होगा।
3: नदियों को जोड़कर समृद्धि की नई धारा बहा रहा है मध्य प्रदेश।
1: ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलवाकर जमीन विवादों पर विराम लगा रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश में सुशासन स्थापित करती स्वामित्व योजना को प्रभावी गति दे रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव।
6: जिसका मकान गांव में बना है उसको भी स्वामित्व का वही अधिकार है जो नगर वाले को है। ये बराबरी का अधिकार अगर मिला है तो माननीय मोदी जी के माध्यम से मिला।
1: प्रदेश में 68.11 लाख अधिकार अभिलेख तैयार हो चुके हैं, जिनमें 48.32 लाख निजी स्वत्व अभिलेख शामिल हैं। इन संपत्तियों का लगभग 3800 करोड़ रुपए का पंजीयन शुल्क भी राज्य सरकार वहन करेगी। निशुल्क पंजीयन की अभिनव पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। ई संपदा पोर्टल से प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी। अब ग्रामीणों की संपत्ति कानूनी पहचान के साथ बैंक ऋण, स्वरोजगार और आर्थिक समृद्धि का मजबूत आधार बनेगी। स्वामित्व से समृद्धि, अधिकार से आत्मनिर्भरता।

मैं उज्जैनी हूँ, अनादि नगरी उज्जैनी, अनादि सिद्ध उज्जैनी। मैं अनादि काल से देवी देवताओं के पदांकों के पावन स्पर्श गौरवान्वित रही हूँ। मैं ऋषियों मुनियों की, योगियों तपस्वियों की तपोभूमि भी रही और सिद्ध स्थली

मैं हर कल्प में विद्यमान रही, इसलिए प्रतिकल्पा हूँ। मैं रक्षा करने में सक्षम और समर्थ हूँ, इसलिए अवंतिका हूँ। मैं कनक वर्ण के शिखरों वाली होने से कनक श्रृंगा भी हूँ। जब शिव ने महापाशु वध से त्रिपुरासुर का वध किया और पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा शिव की जय जयकार से, तब मैं बनी उज्जैनी। उत्कर्ष के साथ जय प्राप्त करने वाली नगरी उज्जैनी, पूरे मृत्यु लोक में पूजित और 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रधान महाकालेश्वर की नगरी हूँ मैं। मेरा गौरव, मेरी गरिमा बाबा

0: काल है। मैं उज्जैनी हूँ, मेरा अतीत मेरा गौरव है, मेरा वर्तमान मेरा वैभव है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे गौरव प्राप्त है मंगल ग्रह की जन्मभूमि होने का, शक्तिपीठ की अधिष्ठात्री माँ हर सिद्धि के सान्निध्य का, महर्षि सांदीपनि के चरण वंदन का, योगेश्वर श्री कृष्ण के विद्या स्थली का और शिव प्रिया शिप्रा के आंचल का। मेरी धरोहर मेरा गर्व है, मेरी विरासत मेरा दर्प है, राजा योगी भयत्री हरि की तपोभूमि भी मैं हूँ, सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी भी, न्याय और शौर्य के पर्याय सम्राट विक्रमादित्य जी, मैं कवि कुल गुरु कालिदास की कर्म भूमि भी रही, मैं उज्जैनी हूँ।
1: राजाधिराज श्री महाकाल की नगरी उज्जैनी से आप सभी श्रद्धालुओं का, सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: जय श्री महाकाल।
1: हम बता दें श्रोताओं कि हमारे साथी अनामिका चक्रवर्ती, उदित तिवारी, सुधा शर्मा, विद्याधर मुले और हमारे जो फील्ड में साथी हैं अखिलेश बाथम, मुकाम सिंह चौहान, मयंक शुक्ला, शैलेंद्र पाराशर, पांखुड़ी वक्त, द्वारकाधीश चौधरी, विवेक चौरसिया, सुदर्शन अयाचित, विजया जैन, आयुषी मिश्रा और गौतम मालवीय के साथ आप सभी को आज के इस महाउत्सव के पल पल की जानकारी देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप आज घर बैठे ही 8 घंटे लगातार इस समय से लेकर रात के 10 बजे तक बाबा महाकाल राजाधिराज के सवारी मार्ग के पल पल की गतिविधियों के उत्साह की जानकारी आप पा सकेंगे। हम आपको बता दें कि ये जानकारी आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ प्रसारित हो रही है, उसमें विविध भारती के तीनों केंद्र, विविध भारती इंदौर, विविध भारती भोपाल और विविध भारती जबलपुर भी शामिल हैं। तो आप बाबा की इस उद्भव बाबा के इस अद्भुत उत्सव का आनंद उठाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और इस पूरी सवारी की शुरुआत बाबा महाकाल के मंदिर से होती है और वो क्या गतिविधियां होती हैं, किस तरह से षोडशोपचार उनकी शुरुआत होती है, वो धार्मिक अनुष्ठान कौन कौन से होते हैं, आइए हम जानते हैं हमारे साथी उदित तिवारी से।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। आकाशवाणी उज्जैन की ये आज एक सुखद बेला है कि हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश के माध्यम से 19 केंद्रों से एक साथ महाकाल की राजसी सवारी का आंखों देखा हाल सुनवाने जा रहे हैं। सभी श्रोताओं का अभिनंदन, स्वागत। महाकाल की राजसी सवारी यात्रा का वृत्तांत, जैसा कि आपने कहा, हमारे प्रतिनिधि पूरे उज्जैनी में फैले हुए हैं और सवारी मार्ग पर हैं। इस सवारी में शामिल होकर आप भी पुण्य लाभ अर्जित कीजिए। सर्वे वै रुद्रस्तमै रुद्राय नमो अस्तु। पुरुषौ वै रुद्रः सन्महो नमो नमः। विश्वभूतं भुवन चित्रं बहुधात जातं जायमानं च यत् सर्वो रोष रुद्रस्तस्मै नमः। ओम रुद्राय नमो अस्तु। कल्याण और सुख के मूल स्रोत भगवान महाकाल शिव को हम सबका नमस्कार। हम सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सारे विश्व का कल्याण हो और घर परिवार समाज देश में समृद्धि और शांति का संचार हो।
1: उदित जी, बाबा महाकाल की पालकी जहाँ से शुरू होती है उसकी शुरुआत कैसे होती है, कौन कौन से अनुष्ठान वहाँ अभी तैयारियाँ की जा रही होंगी करने के लिए जो 4 बजे से शुरुआत होगी?
2: आपने जैसा कि कहा है, इसी भाव के साथ हम आपको बता दें कि महाकाल जी को गर्भगृह से विनम्र अनुरोधन के साथ एक अनुरोध किया जाता है, निवेदन किया जाता है कि हे राजा अधिराज अवंती का अनाज, आप हमारी चांदी की पालकी में सवार होकर जनता जनार्दन को दर्शन दें। और वो जो सवारी है वो चांदी की रजत सवारी है और इसमें अनुरोध इसलिए किया जाता है ताकि महाकाल जो शिव हैं वो राजा धीराज के रूप में लाओ लश्कर के साथ उनको राजा की एक वेशभूषा पहनाई जाती है और सवारी में सवार किया जाता है, आवाहन किया जाता है। एक बात और है कि चांदी की पालकी में विराजित होकर जनता जनार्दन को दर्शन देने के लिए जब तैयार होते हैं महाकाल, तो उस पालकी को आकर्षक पुष्पों के साथ और आधुनिकता के साथ सजाया जाता है। एक बात बहुत गहरी है कि उसे निहार कर वैसे तो भाव विहोर हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति ने मनोहारी स्वरूप से पालकी को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है और अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर सिद्ध कर दिया।
1: उदित जी, ये जो उत्सव होता है ये लोकोत्सव का रूप इसने ले लिया है और अब ना केवल ये स्थानीय स्तर पर बल्कि ये जो सवारी निकल रही है राजसी सवारी ये विश्व प्रसिद्ध हो गई है। हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि बाबा जब राजा के रूप में निकलते हैं, इनके दो रूप हैं, हम उन्हें देवता उन्हें भगवान तो मानते ही हैं, लेकिन जब वो अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए उज्जैन नगर के भ्रमण पर निकलते हैं तो उन्हें राजा माना जाता है। और देखिए कितनी एक संयोग है ये कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं तो बाबा की ये सवारी कहीं ना कहीं हमें लोकतंत्र से भी जोड़ती है। जिस तरह से सरकारें, जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्री जन कल्याण की भावना से लोगों का हालचाल जानने के लिए अपने क्षेत्र में जानते हैं और उसी प्रकार बाबा महाकाल राजा के रूप में अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए पूरे नगर भ्रमण पर निकलते हैं और उज्जैन नगर की जनता, अब केवल जनता इसमें शामिल नहीं है, इसमें देश विदेश से आए हुए तमाम श्रद्धालु शामिल हैं जो बाबा महाकाल की एक झलक को देखना चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं और बाबा राजा के रूप में उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए उन्हें दर्शन देते हैं और लोग उनसे आशीर्वाद मांगते हैं।
2: अब जनता जनार्दन का जो भगवान महाकाल के प्रति स्मरण है वो इस तरह का है कि कालात पराय कालाय स्वेच्छया पुरुषाय च गुणत्रय स्वस्वरूपाय नमः प्रकृति रूपणे। यानी हम कहते हैं ना कि भगवान शिव जो है प्रकृति शोभित शिव के माथ, माने प्रकृति के साथ रहते हैं। आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अखेद सुवेद बतावे और अलख अगोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि ध्यान न पावे। अगम निगम पुराण सबे इतिहास सदा जिनके गुण गावे। अब देखिए पालकी में जो जनता जनार्दन दर्शन करेगी लेकिन शिव का स्वरूप उनके मस्तिष्क में है और वो इस तरह से निवेदन करते हैं, बड़ भागी नर नारी जो सब साम सदा शिव को नित ध्यावे। तो अभी राजसी सवारी में लोग उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं।
1: जी बहुत अच्छा वर्णन तिवारी जी आप कर रहे हैं। इस पालकी की शुरुआत, इस सवारी की शुरुआत बहुत छोटे रूप में वर्षों पहले हुई थी। ऐसा माना जाता है कि सिंधिया राजघराने के द्वारा इस सवारी की शुरुआत की गई थी। क्या हम उन्हें, अपने श्रद्धालुओं को, हमारे सुनने वालों को हम इसके इतिहास के बारे में बता सकते हैं क्या?
2: अब देखिए हमारे विशेषज्ञों ने इस बारे में बहुत सारा विवरण दिया है, उनको सुने

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूरंट कप 2026 की विजेता ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर सहित कई क्षेत्रों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में 2026 डूरंट कप की विजेता टीम ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया।

0: इस अवसर पर प्रमुख रक्षाध्यक्ष जनरल एन एस राजा सुब्रमणि, डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी के अध्यक्ष, थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, सोसाइटी के उपाध्यक्ष, अधिकारी और ईस्ट बंगाल क्लब के खिलाड़ी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वडोदरा में प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 326 किलोमीटर लंबे पश्चिमी समर्पित माल गलियारे WDFC के 3 महत्वपूर्ण खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई के न्यू सानंद उत्तर, न्यू मकरपुरा, न्यू बरगांव और न्यू JNPT से मालगाड़ियों की सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री वडोदरा और टांडा रोड के बीच एक नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पणजी में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस परिषद में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ साथ दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
1: बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसमें ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करने की जरूरत है। बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार।
0: टेनिस में मौजूदा चैंपियन आर्याना सबालेंका और कार्लोस अल्कराज यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गए हैं। महिला एकल के राउंड ऑफ 16 में कल आर्थर एश स्टेडियम में बेलारूस की शीर्ष वरीयता प्राप्त आर्याना सबालेंका ने अमरीकी खिलाड़ी टेलर टाउनसेंड को 6-4, 6-3 से हराया। एक अन्य मुकाबले में स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने दूसरे मैच में अमरीकी खिलाड़ी टॉमी पॉल को 6-4, 6-3, 6-4 से हराया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है कि स्वच्छ वायु पर्यावरणीय विलासिता नहीं बल्कि मूलभूत आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण किसी राजनीतिक, राज्य, शहर या वार्ड की सीमा को नहीं पहचानता। वाहनों, उद्योगों तथा निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए सभी हितधारकों के समन्वित प्रयास जरूरी है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत वायु गुणवत्ता सुधार के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों, शहरों और वार्डों को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए गए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के इंदौर को द्वितीय पुरस्कार मिला है जबकि लखनऊ पहले स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भादों के दूसरे सोमवार पर भगवान महाकाल की राजसी सवारी निकाली जा रही है। सवारी का आकाशवाणी भोपाल द्वारा दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक लगातार सजीव प्रसारण किया जा रहा है। सवारी में बाबा महाकाल 6 स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देंगे। आकाशवाणी भोपाल के सजीव प्रसारण में श्रद्धालु सवारी के पूरे मार्ग और धार्मिक अनुष्ठानों का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज और बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बाबा महाकाल की राजसी सवारी के इस आंखों देखे हाल में। जैसा कि इन समाचारों के पहले हम जान रहे थे कि किस तरह से बाबा महाकाल की राजसी सवारी की शुरुआत हुई, इसका इतिहास क्या है और किस तरह से एक स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ ये उत्सव अब विश्व स्तरीय बन चुका है, तो इस इतिहास को हम जानने की कोशिश करते हैं उदित तिवारी जी से कि कैसे इस सवारी की शुरुआत हुई और किस तरह से इसका रूप भव्यता लेते गया और अब ये एक विश्व स्तरीय आयोजन बन गया है।
1: जय श्री महाकाल। सबसे पहले महाकाल का स्मरण करते हैं, फिर उस समय की प्राचीन समय में ले जाएंगे आपको जब किस तरह से महाकाल की पालकी निकलती थी। कालात पराय कालाय स्वेच्छया पुरुषाय चो,

0: गुणत्रय स्व स्वरूपाय नमः प्रकृति रूपणे, यानी जब हम कहते हैं कि प्रकृति शोभित शिव के बाथ, तो हम ये जरूर समझें कि शिव के जो कान हैं वो दिशाएं हैं, शिव का जो मस्तक है वो आकाश है, और शिव भव भवांतर है, हर जगह उपस्थित हैं, कण कण में हैं, और इसके अलावा उनके मन से चंद्र और नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई है। वे विद्वान हैं, इस समय भी विद्यमान हैं। हमें सिर्फ अपने पवित्र मन से उनके दर्शनों की अभिलाषा के लिए निवेदन ही करना है। हम कहते हैं कि प्राचीन समय में जब महाकाल की पालकी निकलती थी तो एक साधारण पालकी में 10-15 लोग हुआ करते थे, और उसमें महाकाल को बिठाकर एक मुखौटा था। उस समय ये सारे नाम और भेद नहीं थे कि ये पालकी में बैठे हुए चंद्रमौलेश्वर हैं, ये गज पर सवार मनमहेश हैं, ये हमारे अगले वाले रथ में ऐसे महादेव हैं, तो ये 10 आदमी ले जाके करते थे, और इसी तरह से पूजन वगैरह सब वही होता था जो आज भी होता है। लेकिन आज के समय में जो परिवर्तन हुआ है, एक तो आधुनिकता का जामा पहन लिया है पूरी सवारी ने, एक तो आधुनिकता और डिजिटल हो गया है, और दूसरा महाकाल की राजसी सवारी के उत्सव में इस वर्ष अभी सिंहस्थ का वैभव भी दिखाई देगा।
1: हम बता दें कि हमारे साथी अखिलेश बाथम इस समय बाबा महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडपम क्षेत्र में है, जहां पर बाबा की पालकी का पूजन अर्चन होता है, और किस तरह से षोडशोपचार और उनकी पूजा की जा रही है। अखिलेश जी बताइए वहाँ पर कैसा माहौल है।
2: जय श्री महाकाल सभी श्रोताओं को, और जैसा कि आपने बताया कि सभा मंडपम में हूँ, तो यहाँ पर अभी पालकी की तैयारियां चल रही हैं, और यहाँ पर सभा मंडपम के दूसरा बीच एक कोठार बना हुआ है, और कोठार में जो प्रतीकात्मक रूप से विग्रह रखे हुए हैं उनको बाहर समाज की दीदी एक एक करके उनके सहित स्थान पर लेते जा रहे हैं। जैसे कि चंद्र मौलेश्वर है जो की पालकी में रहेंगे, मन महेश हाथी पर रहेंगे, तो उनके विग्रह को यहाँ से निकाल कर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से उनका पूजन हुआ अंदर यहाँ से लेके जाएंगे। उसके बाद जहाँ पालकी पर रथ पर बैलगाड़ी पर विग्रहों को स्थापित किया जाएगा वहाँ पर उनका पूजन अर्चन होगा। और मैं आपको बता दूँ की लेकिन यहाँ पर इस समय सभा मंडपम का जो माहौल है वो कुछ इस तरह है कि जब हम लोगों ने यहाँ पर 12 बजे प्रवेश किया था तो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर इकट्ठे थे, धीरे धीरे उसको खाली कराया गया, उसके बाद यहाँ पर सफाई की गई और कई बार यहाँ पर जल के द्वारा छिड़काव किया गया, साफ सफाई की गई। जैसा की कोई राजा आता है तो राजा के आने से पहले उस समूचे स्थान को स्वच्छ बनाया जाता है, सुगंधित रसायन छिड़काव किया जाता है, और ये तो बाबा महाकाल जी राजा जी राजाज हैं, राजाओं के राजा हैं, तो इनके आने की तैयारियां यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर जो सभा मंडपम जैसा कि नाम है, उस पूरे मंडपम को बहुत ही खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। जैसे कि मंडपम में शादी का माहौल होता है तो उस तरह से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूलों और विभिन्न रंगों के जो पुष्प है उससे एक मंडप को सजाया गया है। मंडपम के बीचों बीच में वहाँ पर फर्श बिछाया गया, और फर्श पर सोहित कपड़ा जो की एक बड़ी चादर है उसको बिछाई गई है, और उसके आस पास पूरी तरह से बैरिकेडिंग की हुई है। यह सभा मंडपम में सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी और जो कुछ मीडिया पर की कर्मचारी है सिर्फ वही पर है, और यहाँ पर राजा अधिराज महाकाल जी को लाने की अभी फिलहाल तैयारियां चल रही हैं, और जैसे ही यहाँ पर उनका आगमन होगा उसके बाद जो विधि विधान से पूजन होगा, पूजन करने के बाद यहाँ से पालकी धीरे धीरे सवारी मार्ग तरफ बढ़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर माहौल है उनके स्वागत करने की, उनकी तैयारी करने की, और उस दिशा में यहाँ सभी लोग जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन सभी को जो कार्य सौंपे गए हैं वो कार्य अपने अपने कर रहे हैं।
1: अखिलेश, अभी जो पूजा होने वाली है उसमें कौन कौन मुख्य अतिथि होंगे जो इस पूजा में शामिल होंगे?
2: देखिए अभी इस स्पष्ट रूप से हमारे पास नहीं आया है, जैसे ही आएगा हम उसको अपडेट करेंगे, पर यहाँ पर अभी पूरी तरह से जो माहौल है वो पूरा सुरक्षा के घेरे में सभी को ले लिया गया है, तैयारी पूरी तरह चल रही है। जैसे कुछ अपडेट आता है उसमें हम आपको अपडेट करेंगे।
1: क्या आपकी इस बारे में अभी कोई बात हुई है कि जो मुख्य पुजारी है वो कौन से रहे?

0: रखेंगे और उनकी पूजा का क्या तौर तरीका रहेगा?
1: अभी हम आपको तुरंत बाद हम आपको अपडेट देंगे, क्योंकि अभी जो भी सज्जनकार व्यक्ति हैं वो अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन तैयारियां पूरी तरह चल रही हैं। जिसके पहले हम लोग पालकी देखने के लिए गए थे, पालकी जहाँ पर रखी हुई है उस पालकी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से सजाया गया है, उससे जो फूल लगे हैं मन को मोह लेते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए जब पालकी लोगों के बीच में जाए तो बाबा महाकाल जी का स्वरूप तो लोगों को आकर्षित तो करेगा ही, साथ ही में जो प्रकृति की कुछ चुनिंदा चीजें जो उस पर लगाई हुई है, कहते हैं कि बाबा महाकाल प्रकृति प्रेमी है, उनका पूरा परिवार प्रकृति की आगोश में रहता है, और ये उस चीज को दर्शाता है। पालकी का जो भव्य रूप बनाया गया है वो देखने को ही बनता है। तो जैसे ही कुछ नए अपडेट करते हैं हम आपको आगे साझा करें।
0: जी अखिलेश जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर जुड़ेंगे और आगे की क्या प्रक्रिया होने वाली है, बाहर का कैसा वातावरण है, इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। जय महाकाल। तो श्रोताओं, अभी शुरुआत हो रही है, पालकी को सजाया जा रहा है सभा मंडपम में, और उसके बाद जब पूरी तैयारी हो जाएगी तो मुख्य पुजारी जो महाकाल मंदिर के हैं वो उनकी पूजा अर्चन करेंगे, मुखौटे को वहाँ रखेंगे और जो छोटे से उपचार होता है उसके तौर तरीकों को अपना कर पालकी फिर आगे की ओर बढ़ेगी। और ये परंपरा सालों साल निभाती जाई जा रही है और उसी क्रम को आज भी हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और अब हमारे साथी
2: द्वारकाधीश चौधरी जी हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो,
0: लगता है उनसे हमारा संपर्क अभी नहीं हो पाया है। दर्शन दीजो, हमारा संपर्क जैसे ही द्वारकाधीश जैसे होगा और जिस स्थान पर वो होंगे हम आपको फिर उनके पास तक ले चलेंगे। तो उदय जी, हम सवारी के इतिहास की बात कर रहे थे अभी।
2: हाँ।
0: और इस सवारी के इतिहास को काफी वक्त हो गया है और इसमें कई परिवर्तन आए हैं समय के साथ साथ।
2: एक तो सबसे पहली बात ये है कि जैसे आज जो विद्युत सज्जा होती है उसके पहले कंडीले जलाते थे और चार आदमी उन कंडीलों को ले जाके हल्का सा उजाला करते हुए और रामघाट की ओर जाते थे शिप्रा में, और 10-15-20 आदमी होते थे। हालांकि पुलिस वाले उस समय भी, सरकारी जो टीम थी वो उसके साथ चलती थी, पर धीरे धीरे धीरे धीरे समय के बाद उसमें इतना परिवर्तन हुआ कि आज हम महाकाल की सवारी के उत्सव में सिंहस्थ का वैभव देखने वाले हैं।
0: उदित जी, हम देख पा रहे हैं कि अभी जो सवारी मार्ग है उसमें जो भजन मंडलियां हैं वो 70 के आसपास है उनकी संख्या, ऐसा हमें पता चला है, और इनमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा है। महिलाओं का एक ड्रेस कोड बना हुआ है, हम ये देख पा रहे हैं, जैसे लाल रंग में एक पूरा का पूरा बड़ा समूह आगे चल रहा है करतब दिखाते हुए। तो ये वर्णन हम और आगे जारी रखेंगे। हमारे साथी द्वारकाधीश चौधरी हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो अभी किस स्थान पर हैं और वहाँ किस तरह का श्रद्धा वातावरण बना हुआ है। द्वारकाधीश जी बताइए।

0: जय श्री महाकाल द्वारकाधीश जी।
1: भोलेनाथ तुम उमा महेश्वर।
0: आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है?
2: बिल्कुल दे रही
0: है। जी बताइए।
2: हम भी बाबा मदद की पालकी के और उसकी व्यवस्था के लिए प्रशासन नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने सारी कर रखी है। हम छोड़ देखे फिर हम घाट पर बता दे बड़ी व्यवस्था होती है यहाँ पालकी की पूजा की जाएगी। अमृत भाई जल्द अमृत पूजा की जाएगी।
0: श्रोताओं हम बता दें कि हम द्वारकाधीश चौधरी को ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। जैसे ही हम उनसे जुड़ेंगे फिर आपको उनके स्थान से जहां पर वो हैं रामघाट से फिर हम आपको जानकारी देंगे। अभी हम देख पा रहे हैं कि जो भजन मंडलियां हैं वो बाबा महाकाल की जो पालकी है उसके काफी पहले आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि 70 मंडलियां हैं तो इनको चलने के लिए, इन्हें करतब दिखाने के लिए काफी जगह की आवश्यकता है। और ये जो पालकी है, पालकी से मुझे लगता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे तक इन भजन मंडलियों को प्रशासन और जो पुलिस की व्यवस्था है वो लगातार आगे बढ़ा रही है। और क्योंकि इनका जो समारोह है वो बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ता है, ये करतब दिखाते हुए, भजन गाते हुए, कुछ विशेष तौर तरीके अपनाते हुए, झांझ मजीरे बजाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पालकी जब उठेगी उसके काफी पहले इनको आगे बढ़ाना होता है। और हम बता दें कि सभा मंडपम के पास से हमारे साथी मयंक शुक्ला हमसे जुड़ रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वहाँ कैसा वातावरण है। जय महाकाल।
3: जैसा कि हमारे साथी कमेंटेटर्स बता रहे हैं लगातार कि महाकालेश्वर भगवान की राजसी सवारी पूरे वैभव के साथ अब चलने के लिए तैयार है। और इसमें हम महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडपम में है जहाँ तैयारियां अब पूर्ण होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। जब मुखारविंद आएंगे सभा मंडप में लाए जाएंगे, कई सारे गणमान्य अतिथियों का भी आगमन शुरू हो गया है। अभी अभी जैसा कि हमने देखा कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब का भी मंदिर में आगमन हुआ है। संभवतः वो भी सभा मंडप में पूजन अर्चन यहाँ पर अटेंड करेंगे। हमारे साथ कई प्रशासनिक अधिकारी हम देख पा रहे हैं। श्रोताओं को बता दें जो आज अपने बाबा की सेवा करने के लिए तत्पर है, अपने महाकाल राजा की सेवा और उनकी सवारी की जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद रहे उसके लिए पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर जुटे हुए हैं। और इस समय हमारे साथ श्री एस एन सोनी डेप्यूटी कलेक्टर और उप प्रशासन महाकाल के मंदिर भी मौजूद है। जानते हैं कि व्यवस्थाएं अच्छी बात राजकीय सवारी से महाकाल के मंदिर कमेटी और प्रशासन द्वारा की गई है और कई गणमान्य अतिथियों का आगमन यहाँ पर अपेक्षित है।
0: सर स्वागत है आपका। सोनी जी बहुत बहुत स्वागत है। हमें बताएं कि आज की किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं आज की सवारी में?
4: यहाँ पर सभा मंडप की जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, सभा मंडप से ही बाबा महाकाल का पूजन अपडेट उपरांत पालकी यहीं से रवाना होगी। पालकी का जो मार्ग रहेगा वो लगभग 7 किलोमीटर लंबा रहेगा और पालकी में विभिन्न प्रकार की हाथियाँ, 70 भजन मंडलियाँ, हाथी पर हमारे मुखारविंद हैं, ये सभी बृहद स्वरूप में बाबा महाकाल की पालकी साथ में रहेंगे। आज बाबा महाकाल की राजकीय सवारी है और राजकीय सवारी के पूजन के लिए हमारे मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न गणमान्य मंत्रीगण यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। अभी माननीय करण सिंह वर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, प्रहलाद पटेल माननीय अभी उपस्थित होने वाले हैं, इसके साथ ही माननीय दिलीप अहिरवार जी यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं, माननीय प्रभारी मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। इन सभी के सानिध्य में बाबा महाकाल का पूजन अपडेट उपरांत लगभग 4 बजे बाबा महाकाल की साई सवारी यहाँ से रवाना होगी और इसके नगर भ्रमण के उपरांत वापस आने का समय लगभग 9:30 बजे के मध्य रहेगा। इस बाबा महाकाल की सवारी में लगभग 1000 से अधिक संख्या में पुलिस बल तैनात है। इसके अलावा हमारे कोर सिक्योरिटी गार्ड हमारे तैनात हैं, साथ ही मंदिर समिति के अधिकारी कर्मचारी हमारे यहाँ पर तैनात हैं और रास्ते में लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन अवशेष पूजन के लिए उपस्थित रहेंगे। निश्चित तौर पर बाबा महाकाल की राष्ट्रीय सवारी पूरे भव्य रूप में नगर में निकलेगी और सभी दर्शनार्थियों को इसके दर्शन का लाभ मिले। बाबा की कृपा उन पर हमारी अपेक्षा है। जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल।
3: महेश्वर मंदिर की ये राजसी सवारी।
0: मयंक जी, अगर आप हमें लगता है अब हमारा उनसे बात नहीं हो पा रही है, तो मयंक जी हमें बता रहे थे कि कई विशिष्ट अतिथि अभी पूजा अर्चना के समय वहां उपस्थित हैं महाकाल मंदिर में, और ये बड़ा ही गर्व का विषय है कि मुख्य न्यायाधीश गवई साहब भी इस श्रद्धा भक्ति के साक्षी बन रहे हैं।
5: पूर्व मुख्य न्यायाधीश
0: जी। और अब हमारी साथी पांखुड़ी वक्त हमसे जुड़ रही है गोपाल मंदिर से। आइए हम उनसे जानते हैं कि वहां किस तरह की तैयारियां चल रही हैं बाबा के स्वागत की। पंकुड़ी जी बताइए।
6: जय महाकाल।
0: जय महाकाल।
6: अभी भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है और जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से खड़ा है और छोटे छोटे बच्चे जो मौलवी के होते हैं ना 10-12 साल के, वो महाकाल बाबा की छोटी छोटी सवारियाँ निकाल रहे हैं और लोग उनको देखकर भी बहुत अभिभूत हो रहे हैं और उनका भी वैसा ही स्वागत।

0: हैं जैसे बाबा का करते हैं, उनको आशीर्वाद स्वरूप कुछ दे भी रहे हैं और वो बच्चे बड़े शौक से नगाड़े बजाते हुए कुछ ड्रम जैसा हाथ में ले लिया जिसको बजा पाए आसानी से लेके खड़े गए। और धीरे धीरे भीड़ क्योंकि शुरू हो गई है बैरिकेड के आजीपास होगी काफी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है।
1: पांकुड़ी जी, जब हरि और हर का मिलन होता है तो एक विशिष्ट अतिथि वहां आते हैं और पूजा होती है, तो क्या इसके बारे में भी आपको कोई जानकारी है, वहां किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं?
0: जी, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आने की संभावना बताई जा रही है और यहाँ हरि और हर का मिलन होने वाला है। विष्णु जी के मंदिर को बहुत सुंदर से सजाया गया है फूलों से और प्रशासन भी उसको लेकर, पुलिस भी उसको लेकर मुस्तैदी से खड़ी है और लोगों में बहुत उत्साह है क्योंकि सिंधिया राजघराने के अंदर रहा है ये स्टेट, तो लोगों को ये कि हमारे राजा यहाँ आने वाले हैं और हमारे जो परम पिता परमेश्वर है बाबा महाकाल यहाँ आएंगे, उनका सबका मिलन हो, हम कैसे उनका पलक पावड़े दिखाए, इससे लोग भी जुड़ रहे हैं।
2: अच्छा पांखुड़ी जी, जैसे जब महाकाल की सवारी आज की जैसे राजसी सवारी गोपाल मंदिर के सामने पहुंचेगी, उसके पहले जो छत्री चौक का एक अर्ध परिक्रमा वाला हिस्सा है वहां पर कहते हैं कि वर्ण विशेष, वर्ग विभिन्न संप्रदाय, विशेषकर मुस्लिम संप्रदाय के लोग बहुत सारे स्वागत द्वार बनाते हैं, अभिनंदन करते हैं, वो परंपरा को आप कैसे बताएंगे?
0: यहाँ पर अभी जब मैं आ रही थी रास्ते पर तो बहुत सारा पैदल जोन कर देते हैं, गाड़ियाँ नहीं आ पाती है, तो जब पैदल चलते हैं तो हम बहुत सारे नज़ारे देखते हुए आते हैं। एक यहाँ मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति की दुकान है और उसने अपनी दुकान के बाहर पूरा पंच सजा रखा है और वो बाबा के स्वागत के लिए यहाँ खड़ा है। फिर मैंने रोक कर पूछा कि भैया ये आखिरी सवारी है, इसलिए ऐसा है क्या? बोले नहीं, हम हर सवारी पर इस तरीके से मंच से यहाँ रुकते हैं बाबा और हम उनका दर्शन करते हैं, हम भी अपनी तरफ से जो भी चढ़ा सकते वो कर सकते हैं।
1: पांकुड़ी जी, आप
0: एकता की मिसाल यहाँ हर साल देखने को मिलती है।
1: जी पांकुड़ी जी, आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे साथी मयंक जी अब हमसे जुड़ रहे हैं सभा मंडपम से और उनसे जानते हैं कि वहां पर अभी पूजा अर्चना की तैयारियां क्या पूरी हो गई हैं और क्या अब तैयारी शुरू हो गई है, जो रस्सा जो उनके चारों तरफ लगाया जाता है, जो एक सुरक्षा घेरा बनाया जाता है, वहां की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? मयंक जी,
3: को बताना चाहते हैं कि सभा मंडप में तैयारियां अब अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रही है और जैसा कि पहले भी हमने श्रोताओं को बताया कि प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के आला अधिकारी अपने बाबा की अगुवाई करने के लिए आए, जो मुस्तैदी के साथ सेवा भाव के साथ लगे हुए हैं। और इसी के साथ हमारे साथ गगन बादल जी है, महाकाल थाना प्रभारी। आइए उनसे जानते हैं कि पुलिस विभाग की व्यवस्थाएं किस प्रकार से, क्या संरचनाएं हैं, किस प्रकार से पुलिसिंग और प्रबंधन किया गया है। गगन बादल जी, आकाशवाणी के श्रोताओं को बताएं कि पुलिस विभाग आज किन व्यवस्थाओं के साथ और किन व्यूहरचनाओं के साथ कार्य करना है, करने वाला है राजस्थान की सवारी में।
4: जी जय श्री महाकाल, मैं निरीक्षक गगन बादल, थाना प्रभारी महाकाल, आप सभी को राज सवारी की शुभकामनाएं भी सूचित करता हूँ। इसके साथ ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है राजसी सवारी, राजसी दरबार से बाबा महाकाल जो है नगर भ्रमण पे निकलते हैं और इसके अंदर लाखों की तादाद के अंदर दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं और इन्हीं दर्शनार्थियों की व्यवस्था करना, राजसी घाटवाट की व्यवस्था करना, इसमें पुलिस जो है सेवा की भावना से जुटी रहती है और पुलिस जब तक लगी रहती है जब तक अंतिम दर्शनार्थी अपने घर पे सुकुशल नहीं पहुंचाता, सभी शांति और सुरक्षा के साथ में सवारी निकले, इसी के आश्वस्त करते हुए पुलिस उज्जैन और न केवल पुलिस उज्जैन, पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस, बाहर के भी अधिकारी लगे हुए हैं, सभी सेवा में जुटे हुए हैं। जय श्री महाकाल।
1: जय श्री महाकाल।
3: हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से इस सजीव प्रसारण को, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से सेल्फ डिसिप्लिन में रहे, अनुशासन का भी पालन करें क्योंकि कई सारे लाखों श्रद्धालु बाहर से आए हैं, तो स्थानीय लोग जो आकाशवाणी के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रसारण को सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
4: जी संदेश यही है कि सभी जो है नियमों का पालन करें, जो लगे हुए निर्देशों का पालन करें, महिलाएं बच्चे बुजुर्ग
3: रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे श्रोताओं अभी अभी आपने सुना गगन बादल, थाना प्रभारी, महाकाल मंदिर को, इस समय हम आपको बता दें

0: श्रद्धालु यहां पर नजर आ रहे हैं, सभी की आंखों में एक प्रतीक्षा नजर आ रही है कि कब बाबा कोठार से बाहर आएंगे, कब उन मुखारविंदों के दर्शन हम कर पाएंगे और कब अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर पाएंगे। क्योंकि यकीन मानिए, उज्जैन के जो स्थानीय लोग हैं और स्थानीय लोगों के अलावा जो प्रदेश के अलग अलग स्थानों से, यहाँ तक कि अखिल भारत से जो श्रद्धालु उज्जैन आते हैं, उनके मन में ये आकांक्षा होती है कि वे महाकाल बाबा की इस राजकीय सवारी का दर्शन करें, जिसका सजीव प्रसारण हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। आप सुदर्शन अयाची जी के मुखारविंद से अब सुनिए आगे का आंखों देखा हाल।
1: सुदर्शन जी बहुत बहुत स्वागत है, जय श्री महाकाल।
2: मेरे सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री महाकाल। आज बाबा महाकाल की राजकीय सवारी जो कि अपने पूरे राजकीय वैभव के साथ निकलने जा रही है, मैं सुदर्शन अयाची आपको आकाशवाणी के माध्यम से, आज हमारे बीच उपस्थित है राजस्व मंत्री, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हमारे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मेरे साथ हैं राजस्व मंत्री श्री करण सिंह जी वर्मा जी, और मैं पूछना चाहूंगा कि आपको कैसा लग रहा है आज महाकाल की सवारी में उपस्थित होकर के।
3: बहुत आनंद आ रहा है, सवारी में बहुत आनंद आ रहा है। देवों को देव महादेव दर्शन करने बता रहे हैं, तो कैबिनेट में सभी मंत्री करीब करीब आए, आज मैं भी आया हूँ उनके दर्शन करने। क्योंकि सारे संसार में उसे सीखने को मिलता है, सारे संसार को ऊपर बिठाते हैं उसे हम नीचे बैठते हैं, सबको लड्डू खिलाते हैं वो बिल पत्ते ग्रहण करते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और साथ में हैं नगर के प्रथम नागरिक महापौर श्री मुकेश कटवाल जी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बाबा महाकाल की जो सवारी है, जो राष्ट्रीय सवारी है, वो नए मार्ग से होके निकलने वाली है, तो आपने जो पूरा नया मार्ग बाबा के लिए सजाया है, उसके पीछे जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा रही है और 2028 सीएस का जो इतना सुंदर स्वरूप बनाया है, आदरणीय मुकेश कटवाल जी बताना चाहेंगे।
4: आज बाबा महाकालेश्वर की राष्ट्रीय सवारी निकलने जा रही है और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने सड़कों का चौड़ीकरण का जो काम प्रारंभ किया था, आज नए स्वरूप में हमारे बाबा की जब सवारी निकलेगी तो सती गेट का नया स्वरूप होगा, हमारे कंठाल मार्ग का नया स्वरूप होगा। चौड़ीकरण के साथ साथ हमने उस मार्ग को सुंदर और आकर्षक बनाने का पूरा प्रयास किया है। हमने पूरे शहर में पूजा लाइट लगाई है, सती गेट को विशेष रूप से सजाया गया है। जब हमारे जब श्रद्धालु उज्जैन जब आएंगे और बाबा का जब दर्शन करेंगे तो उनको एक अनुभूति अलग प्रकार की होगी, जो उसका आनंद सारे श्रद्धालु लेंगे।
0: तो आपने अभी अभी सुना उज्जैन के माननीय महापौर श्री मुकेश कटवाल जी को, और श्रोताओं बता दें कि अब सवारी की तैयारियां जोरों शोरों पर दिखाई दे रही है। सभा मंडप से हम आपकी प्रसारण पहुंचा रहे हैं, जहां पर सभी को अब इंतजार है अपने बाबा के दर्शन का। बहुत शीघ्र ही कोठार से जब चंद्रमौलेश्वर के स्वरूप में बाबा का मुखारविंद बाहर लाया जाएगा, शोभोपचार पूजन होगा, तत्पश्चात ठीक 4 बजे रजत पालकी में सवार होकर बाबा अपने राजकीय घाट बाट के साथ प्रजा के बीच पहुंचेंगे।
1: मयंक जी महाकाल, मयंक जी, ये जो लोकोत्सव है इसमें विशिष्ट अतिथि अपने पूजन अर्चन के लिए हमेशा से आते रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे थे, तो क्या और भी गणमान्य नागरिक और विशिष्ट अतिथियों के आने को आपको कोई सूचना है?
0: जी, जैसी जानकारी अभी प्राप्त हो रही है उस अनुसार संभवतः मध्य प्रदेश शासन के कुल 6 या 7 कैबिनेट मंत्रियों के पहुंचने का यहां पर अंदाजा जताया जा रहा है। इससे पहले हमसे अभी आधे घंटे पहले की अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी भी मंदिर पहुंची थी और उन्होंने नंदी हाउस से महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए और उसके बाद वो अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई है। इस समय संभवतः हम मान के चल रहे हैं कि और भी कैबिनेट मंत्री सभा मंडप में पहुंचेंगे और पूजन अर्चन के बाद बाबा की राजसी खटवाट के साथ सवारी सभा मंडप से प्रजा के हालचाल जानने के लिए रवाना होगी।
1: जय श्री महाकाल।

0: बता दें कि जो हमारे उज्जैन के श्रद्धालु हैं, उज्जैन के नागरिक हैं या जो बाहर से आए हुए श्रद्धालु हैं, आज की राजसी सवारी का जो मार्ग होगा उसका क्रम हम आपको बताना चाहते हैं कि महाकाल मंदिर से प्रारंभ होकर महाकाल रोड, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी सवारी। वहां पर बाबा महाकाल की सवारी का पूजन होगा। उसके उपरांत रामानुज कोट, मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, खाती समाज मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहे से होती हुई सवारी मिर्जा नईम बेग, तेलीवाड़ा चौराहा, कंठाल, सती गेट, सराफा, छत्री चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार, गुदरी चौराहा होते हुए पुनः श्री महाकालेश्वर मंदिर में इसका आगमन होगा। और उदित जी, आपके पास इस पूरे घटनाक्रम के जो शुरुआती पूजा पाठ होती है, जो इसका आध्यात्मिक महत्व है, वो और किस तरह की आप जानकारी हमारे श्रद्धालुओं को, श्रोताओं को देना चाहेंगे?
1: श्री महाकालेश्वर भगवान की पूजा अर्चना का विधान उज्जैन में बिल्कुल पूरे संसार से अलग है। एक तो यहाँ की जो भस्म आरती है वो विश्व विश्रित है। दूसरा, हमारे जो त्रिकाल पूजा का एक सिस्टम है, एक महाकाल की आरती का सुबह, दोपहर, भोग आरती, शयन आरती और सांध्य आरती, ये सब आरतियों को मिलाकर एक ही बात होती है जो हमारे आचार्य और पंडित कहते हैं कि कालात पराय कालाय स्वेच्छाय पुरुषाय चो गुणत्रय स्वरूपाय नमः प्रकृति रूपणे आदि अनंत अनंत अखंड अभेद अखेद सुवेद बतावें। ये जो प्रार्थना की जाती है हर आरती में, लगभग इसका जो भावार्थ है वो यही है कि अलख अगोचर रूप महेश को जोग जति मुनि ध्यान न पावे। वो साधना करते हैं, उपासना करते हैं और कहते हैं कि हम में इतनी शक्ति कहाँ है हे महादेव। अगम निगम पुराण सबे इतिहास सदा जिनके गुण गावे, बड़भागी नरनार जो सांब सदा शिव को नित ध्यावे। तो हम भी आरती और पूजन अर्चन की जो परंपरा है उसको निभाते हुए, हमारे जो दर्शक हैं बहुत दूर दूर से दर्शक आते हैं, ना कि हमारे मध्य प्रदेश के बल्कि देश और विदेश के भी दर्शनार्थी यहाँ महाकाल की राजसी सवारी को देखने आते, दर्शन करने आते और भस्म आरती को भी देखने के लिए आते हैं।
0: देखिए, जो सवारी मार्ग है उस पर जो भजन मंडलियाँ हैं, जो कर्तव्य दिखाने वाले लोग हैं, स्काउट गाइड के लोग हैं और जो दूसरे श्रद्धालु हैं, जो बैंड हैं, वो लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पालकी की शुरुआत जरूर उठने की 4 बजे होगी सभा मंडपम से, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग झांकियां सवारी मार्ग पर आगे बढ़ती चली जा रही हैं। किन्हीं ने फूलों से सजाया है, कोई झांझ मजीरा बजा रहे हैं, कोई डमरू बजा रहे हैं, महिलाओं के कई समूह अलग अलग पोशाकों में लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सब बाबा की भक्ति में रमे हुए हैं, धुनी दी जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है, प्रसाद बांटा जा रहा है और इतना ही नहीं, बैरिकेड्स जो दोनों तरफ लगे हुए हैं बाबा की सवारी मार्ग के, उसके दोनों तरफ लोगों की ध्यान रखते हुए कि पानी की कोई कमी तो नहीं है, तो पानी पिलाने वाले हैं, प्रसाद खिलाने वाले हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं लोगों ने स्वतः स्फूर्त उज्जैन के नगर वासियों ने बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं और मेहमानों के लिए की हैं। अभी हम देख पा रहे हैं कि डमरू का एक दल लगातार एक जैसे सुर ताल में बजाता हुआ, झूमता हुआ, आनंदित होता हुआ लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। और अभी अभी हम देख पा रहे हैं कि लाल साड़ी में एक बहुत बड़ा महिला शक्ति का एक समूह आगे बढ़ता जा रहा है। वो पारंपरिक नृत्य कर रही हैं, भजन गा रही हैं और अनुशासित तरीके से वो अपने मार्ग पर अग्रसर हैं, जो कि लगभग 7 किलोमीटर लंबा मार्ग है। इस पर बाबा की जो पालकी है वो सबसे अंत में रहती है और इसके आगे जो भजन मंडलियां हैं, जो मुखौटे हैं, जो कर्तव्य दिखाने वाले समूह हैं, कड़ाबीन के धमाका करने वाला जो समूह है, क्योंकि इस पूरे आयोजन में राज्य सरकार की सहभागिता होती है और चूंकि राजाधिराज राजा हैं, राजा की तरह बाहर निकल रहे हैं प्रजा को मिलने के लिए, हालचाल जानने के लिए, तो जैसे एक सेना नायक का, एक सेनापति का, एक राजा का आगमन होता है, शहर में भ्रमण होता है, वो उस तरह की सारी तैयारियां हम यहां देख रहे हैं और ये चलायमान समारोह आगे बढ़ता जा रहा है। और हमसे जुड़ रहे हैं सुदर्शन जी। सुदर्शन जी, जय श्री महाकाल बताइए।
1: उनका जो संपर्क है वो हमसे अभी फिलहाल टूटा है, लेकिन

0: निकट भविष्य में तो वो हमारे साथ होंगे।
1: जी,
0: आज की इस महाकाल की राजसी सवारी में कुछ और आकर्षण जोड़कर देख रहे हैं हम। एक तो जो दक्षिण परंपरा का दक्षिण भारतीय कैलाश बैंड है वो भी सजकर तैयार है सड़क पर, और विभिन्न झांकियों के साथ पारंपरिक अखाड़ों के दल तो शामिल हैं ही। तीन अवसर शहनाई द्वार, छिपरा तट और गोपाल मंदिर में ड्रोन से पुष्प वर्षा का आनंद भी लिया जाएगा। हमारी जनता उसका भी इंतजार कर रही है। और सुदर्शन आयाचित फिर हमें संपर्क कर रहे हैं। जय श्री महाकाल।
2: जय श्री महाकाल।
0: सुदर्शन आयाचित जी, आप जो सुदर्शन दृश्य देख रहे हैं उसके बारे में कुछ बताएं।
2: बाबा महाकाल के आंगन में मैं खड़ा हुआ हूँ, सभा मंडप में, और जहाँ पर हलचल हो रही है कुछ क्षणों में सभी मुखौटों को बाहर ला करके उनका पूजा अर्चन किया जाएगा, 1600% पूजन किया जाएगा। मेरे साथ में है हमारे महाकाल मंदिर के सहायक प्रशासक श्री जुनवाल जी। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि मंदिर ने पूरी राजसी सवारी के लिए जो उसका जो वैभव होता है, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, उसको काफी दिनों से लगे हुए हैं, तो अगली आवाज होगी आदरणीय श्री मूलचंद जुनवाल जी। जय श्री महाकाल। सभी श्रोताओं को राजसी सवारी में बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। अब महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा, जैसे कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल मंदिर को बिल्कुल पुष्प से पूरी तरह सजाया गया, दुल्हन की तरह सजाया गया, पूरी अच्छी व्यवस्था की गई है महाकालेश्वर मंदिर द्वारा। आज सवारी में 70 भजन मंडियां शामिल हो गई और 8 बैंड शामिल हो गए, और भगवान की विभिन्न तरह की पालकियां होगी जिसमें वह राजा धीराज के दर्शन आप कर सकते हैं।
0: जुनवाल जी, बहुत सारे जो आपने बताए हैं कि हमारे अपील के भी कुछ नारे हैं जो हम जनता को सवारी निकलते समय कहते हैं, उनकी अपील आपकी क्या रहेगी, ऐसा बताएं उनके लिए, जनता के लिए।
2: मैं दर्शनार्थ के समीकरण पूरी करना चाहूंगा कि बिल्कुल पालकी से दूर रहे, पालकी पर के ऊपर किसी प्रकार की चीज न फेंके ताकि किसी आदमी को नुकसान ना, और दर्शन मार्ग पे चले, दर्शन के विपरीत मार्ग पे न चले ताकि किसी प्रकार की।
0: जय श्री महाकाल। जुनवाल जी,
3: जय श्री महाकाल।
2: जय श्री महाकाल।
3: जय श्री महाकाल। तो लगातार सवारी मार्ग पर श्रद्धालु आगे बढ़ते हुए, उनके हाथों में अलग अलग तरह के झंडे हैं, वो धार्मिक झंडे भी हैं, हमें राष्ट्रीय झंडा भी नजर आ रहा है, और अभी हम देख पा रहे हैं कि नीले रंग से ओतप्रोत बाबा शिव के रूप में एक महिला आगे आगे जा रही हैं, और उसी रंग में उनके पीछे नृत्य करती हुई दूसरी महिलाओं का एक समूह लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है।
0: ये शिव की प्रतिकृति है जो आप सड़क पर सवारी के पहले देख रहे हैं
3: जी। और देखिए, महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर इस पूरे राजसी सवारी में हिस्सा लिया है, वो किसी से कम नहीं है, उनका उत्साह किसी से कम नहीं है, उनकी उमंग, उनका रोमांच किसी से कम नहीं है। वो बता रही है कि इस तरह के धार्मिक आयोजन केवल पुरुष प्रधान नहीं है, उनमें महिलाओं का जो समावेश है, महिलाओं की सहभागिता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, उन्होंने शिव का रूप भी धारण किया है, उन्होंने उमा का रूप भी धारण किया है, गौरी का रूप धारण किया है, और राष्ट्र की चेतना को जगाने के लिए राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में भी वो अपनी सहभागिता को आगे बढ़ाना चाहती हैं।
0: और देखिए, हम आपको बताएं कि जो आपने कहा ना कि नारी का भी प्रतिनिधित्व है, तो वैसे भी शिव अर्ध नारी स्वरूप में होते हैं, एक शिव और शक्ति के रूप में होते हैं, लेकिन खास बात यह है कि भगवान शिव के पास सबसे अधिक बड़े विभाग हैं। कैसे? हर देवता के पास एक एक विभाग है, लेकिन शिव के पास तीन है, शक्ति, भक्ति और मुक्ति। शक्ति, भक्ति और मुक्ति, तीन बहुत बड़े विभाग हैं। तो शिव नारी के रूप में भी है, पुरुष के रूप में है, और उन्होंने पुरुष का रूप तो स्वयं साकार रूप में धारण किया हुआ है उनकी अपनी इच्छा से, लेकिन वो सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में, हर जीव प्राणी मनुष्य में कण के रूप में विद्यमान है। उन्हीं का जो प्रभुत्व है वो सारे ब्रह्मांड में है, और उनकी जो विश्व प्रपंच जो चल रहा है उसी में शिव व्याप्त है
3: जी। उदित जी, हम बता दें हमारे श्रोताओं को, हमारे श्रद्धालुओं को, कि ये जो राजसी सवारी है इसमें आने वाले सिंहस्थ 2028 की झांकियों के बारे में एक छवि प्रस्तुत की गई है कि किस तरह के आयोजन किए जाएंगे, किस तरह से उज्जैन विकास प्राधिकरण अपनी तैयारी कर रहा है, किस तरह से उज्जैन नगर निगम अपनी तैयारी कर रहा है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव की जो मंशा है, वो चाहते हैं कि आने वाला सिंहस्थ भव्य हो, सुविधाजनक हो, जनकल्याणकारी हो, और प्रदेश के अर्थ

0: तंत्र को आर्थिकी को बढ़ाने वाला हो, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन होगा तो निश्चित तौर पर उससे कई हजार करोड़ की जो आर्थिकी है मध्य प्रदेश की, उसको मदद मिलेगी, लोगों को सुविधाएं होंगी। देखिए, रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जा रहा है, उज्जैन नगर को सजाया जा रहा है, कई फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो योजना है, जो उनकी कल्पनाएं हैं, उसके अनुसार साफ सफाई की जा रही है, नदियों को साफ किया जा रहा है, नए तालाब विकसित किए जा रहे हैं और निर्माण कार्यों को अत्यंत तेज गति से दिन रात कार्य करके संपन्न किया जा रहा है। ये डॉक्टर मोहन यादव की परिकल्पना, उनकी योजना, उनकी सोच का परिलक्षण है।
1: और डॉक्टर मोहन यादव जो कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी ये परिकल्पना थी कि आने वाला जो सिंहस्थ 2028 का है, उसके लिए हम एक नया सड़क मार्ग बनाएं। तो उज्जैन में सबसे खास बात यह है, अब की बार जो राजसी सवारी भ्रमण के लिए निकल रही है भगवान महाकाल की, वो उन नए संवरे हुए मार्गों से निकलेगी, इसीलिए उसका दायरा 7 किलोमीटर हो गया है। और वो सड़कें क्या पूरा उज्जैन ही दुल्हन की तरह सजाया गया है।
0: देखिए, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस नगर के प्रतिनिधि हैं, तो निश्चित तौर पर बाबा महाकाल से जुड़े हुए जितने स्थान हैं, जितने मंदिर हैं, चाहे वो 84 महादेव हो, सांदीपनी आश्रम हो, मंगलनाथ हो और दूसरे जो स्थान है, क्योंकि ये तो धर्म की नगरी है, यहाँ मंदिर विद्यमान है, यहाँ आध्यात्म विद्यमान है, यहाँ सोच विद्यमान है, यहाँ शक्ति विद्यमान है, यहाँ पे हरसिद्धि मंदिर है, गढ़कालिका है, कालिदास की नगरी है, महाराजा विक्रमादित्य का ये नगर है, तो यहाँ इतने सारे स्थान हैं जहाँ का विकास किया जाना बहुत जरूरी है। तो बहुतेरा विकास हो गया है, लेकिन आगे जो उसमें शेष है, उसमें जो परिकल्पनाएं हैं डॉक्टर मोहन यादव की, उनको पूरा किया जा रहा है।
1: अच्छा अच्छा, तो अब हमारे जो टेलीफोन लाइन पर हैं एक श्रोता, उनसे हम बाद में बात करेंगे, पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं जनसंपर्क संचालनालय भोपाल के सौजन्य से।
3: विकास की मजबूत नींव सड़कों पर टिकी होती है, क्योंकि बेहतर संपर्क ही आर्थिक प्रगति और जन सुविधाओं का आधार बनता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत में आधुनिक और विश्व स्तरीय सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से सड़क अधोसंरचना में अभूतपूर्व विकास हुआ है।
4: 12 साल में मोदी जी के शासन काल में पानी, बिजली, सड़क अब आधुनिक समय के हिसाब से पूरे देश में मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में से एक बना है।
3: वर्ष 2025-26 में 4,078 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण करने के साथ 48,178 करोड़ रुपए की 73 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन है। इसी तरह 6-लेन मार्ग और उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे प्रदेश की विकास रफ्तार को नई दिशा दे रहा है, जबकि मजरा टोला सड़क योजना के अंतर्गत 30,900 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति दी गई है।
5: नदियाँ केवल जल की धाराएं नहीं होती, वे सभ्यता, समृद्धि और भविष्य की वाहक होती हैं। देश में जल सुरक्षा, नदी जोड़ों, परियोजनाओं और सिंचाई के विस्तार के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाकर विकसित भारत के निर्माण का दृढ़ संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। आज मध्य प्रदेश बहती धाराओं को विकास की नई दिशा देकर आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा का मजबूत आधार तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में अंतर्राज्यीय नदी जोड़ों परियोजनाओं से खेतों, गांवों और शहरों तक पर्याप्त सिंचाई और पीने का पानी पहुंचाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।
6: पार्वती, काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के लिए और राजस्थान के लिए दोनों के लिए वरदान साबित होगी।
5: महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के पूरा होने पर प्रदेश में सिंचाई का दायरा वर्ष 2028-29 तक लगभग 55 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
7: नदी जोड़ो अभियान से किसान को सिंचाई का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी से किसान की तरक्की होगा।
5: नदियों को जोड़कर समृद्धि की नई धारा बहा रहा है मध्य प्रदेश।
3: ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलवाकर जमीन विवादों पर विराम लगा रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश में सुशासन स्थापित करती स्वामित्व योजना को प्रभावी गति दे रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव।
4: जिसका मकान गांव में बना है उसको भी स्वामित्व का वही अधिकार है जो नगर वाले को है। ये बराबरी का अधिकार अगर मिला है तो माननीय मोदी जी के माध्यम से मिला।
3: प्रदेश में 68.11 लाख अधिकार अभिलेख तैयार हो चुके हैं, जिनमें 48.32 लाख निजी स्वत्व अभिलेख शामिल हैं। इन संपत्तियों का लगभग 3800 करोड़ रुपए का पंजीयन शुल्क भी राज्य सरकार वहन करेगी। निःशुल्क पंजीयन की अभिनव पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। ई संपदा पोर्टल से प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी। अब ग्रामीणों की संपत्ति कानूनी

0: जान के साथ बैंक ऋण, स्वरोजगार और आर्थिक समृद्धि का मजबूत आधार बनेगी। स्वामित्व से समृद्धि, अधिकार से आत्मनिर्भरता।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं विद्याधर मुले मेरे साथी उद्घोषक मुकाम सिंह चौहान के साथ इस राजसी सवारी के प्रसारण में आप सभी लोगों के साथ अब जुड़ गया हूं। आप सभी का पुनः अभिनंदन, नमस्कार। और हम लगातार 10 बजे तक आपको इस अद्भुत सवारी का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। और हमारे साथ 10 हमारे एक कर्मठ व्यक्ति वहां पर मौजूद है जो आपको पल पल की खबर सुनाएंगे। और उसमें अब हम सीधे जुड़ रहे हैं अखिलेश बाथम जी से। नमस्कार अखिलेश जी।
2: जी नमस्कार विद्याधर मुले जी।
1: जी अखिलेश जी, बताएं आप कहां पर हैं और क्या देख पा रहे हैं?
2: हम लोग अभी पालकी द्वार के बाहर खड़े हुए हैं और यहां पर पालकी के स्वागत की तैयारियां चल रही है। और हमारे साथ मैडम पुष्पा प्रजापति जी है
1: जी,
2: वो आपको आगे की जानकारी देंगे।
3: जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
3: मैं सीएसपी दीवाजीगंज पुष्पा प्रजापति बात कर रही हूँ। जैसे कि आज अंतिम सवारी भादो मास की राजसी सवारी शाही सवारी का संचालन आज हो रहा है। इस राजसी सवारी में पुलिस प्रशासन ने कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव के साथ में सभी लोग अपनी ड्यूटी पर अड़े हुए हैं। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं कि रक्षा पार्टी यहाँ पर खड़ी हुई है जो बाबा की पालकी को अपने साथ में पूरे रूट पर भ्रमण करवाने के लिए और जनता को श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन करवाने के लिए पुलिस अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ सेवा भाव से आज अपना सेवा दे रही है।
1: जी
3: धन्यवाद।
1: जी मैडम, चूंकि आप इस पूरी व्यवस्था से जुड़ी हुई है और जनता से आप कुछ अपेक्षा करती होंगी, आज पूरा उज्जैन बल्कि सकल विश्व हमें सुन रहा है ऐप के माध्यम से, लेकिन जो उज्जैन की जनता उस यात्रा मार्ग पर आ रही है उनसे आपकी प्रशासन की क्या अपेक्षाएं हैं ताकि ये सब सुरुचिपूर्ण तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से हो सके?
3: प्रत्येक श्रद्धालु को दर्शन कराना हमारा सुलभ दर्शन करवाना हमारा परम कर्तव्य है। हमारी उनसे यही अपील है कि पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और जहां निर्धारित स्थान है वहां निर्धारित स्थान पर खड़े होकर बाबा की सवारी के पालकी के दर्शन लाभ लें। और जो विभिन्न भजन मंडली बैंड यहां पर आए हैं उनका भी आनंद लें।
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जी जी धन्यवाद।
4: चूंकि लगातार हमारे विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं और खासकर सुरक्षा व्यवस्था की अभी जो चर्चा हुई, जैसा कि डीएसपी मैडम ने बताया कि किस प्रकार से पुलिस और प्रशासन लगातार मुस्तैद है और अखिलेश जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आगे का विवरण बताइए कि और क्या हो रहा है वहां पर?
2: अभी हम लोग जो धीरे धीरे पालकी द्वार के बाहर चले आए हैं कि वहां पर पूजन का है, लेकिन हमने देखा कि यदि हम अपने सुनने वालों को पालकी के बाहर द्वार के बाहर निकल कर देखें कि वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, तो देखिए अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे तैयारियां भी जोर पकड़ रही हैं। अभी मैं देख रहा हूँ
4: बिल्कुल लगातार श्रद्धालुओं का प्रवेश मंदिर में निरंतर हो रहा है होगा, और चूंकि आपने बताया कि लगातार श्रद्धालु वहां बढ़ रहे हैं और पालकी के पूजन का जो क्रम है कुछ ही क्षणों में आरंभ होने वाला है, तो विद्याधर जी जिस प्रकार से पालकी के पूजन के दौरान जहां एक विशेषज्ञ के तौर पर जाने का पूरा प्रशासन तो उपस्थित रहता ही है
1: जी,
4: उसके साथ में आम श्रद्धालु चूंकि इस वक्त उन्हें बाहर ही रहना होता है, मंदिर में प्रवेश के लिए चिन्हित लोगों को ही वहां रहना होता है
1: जी,
4: और कुछ क्षण में यानी 3:30 बजे से जब पालकी का पूजन शुरू होगा, षोडशोपचार होगा भगवान महाकालेश्वर की पालकी का
1: जी,
4: और उसके बाद जब जैसे ही पालकी बाहर निकलेगी तो जो लाखों श्रद्धालु जो सवारी मार्ग में इस वक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी प्रतीक्षा का जिस प्रकार से अंत होगा वो दृश्य आप और हम समझ सकते हैं।
1: देखिए आपने षोडशोपचार का उल्लेख किया
4: जी,
1: दरअसल 16 प्रकार का की पूजा का विधान होता है
4: जी, जी।
1: और चूंकि इससे पहले कि हमारे अगले प्रतिनिधि जुड़ जाएं, मेरे पास इतना वक्त है कि मैं आपको बता सकूं कि वो 16 सेवाएं क्या होती है
4: जी
1: षोडशोपचार में। पहला तो आह्वान होता है, ईश्वर का आह्वान किया जाता है कि वो पधारें और पूजा स्थान पर विराजित हुए, उसके बाद उन्हें आसन अर्पित किया जाता है। देन पाद्य, तदुपरांत पाद यानी पांव धुलाने की क्रिया होती है, अर्घ दिया जाता है, हाथ धुलवाने के लिए सम्मान स्वरूप उनका सिंचन किया जाता है, आचमन मुख शुद्धि के लिए आचमन है, छठवें स्थान पर स्नान की क्रिया होती है, भगवान को जल दूध दही घी शहद और मिश्री से बने पंचामृत से स्नान कराया जाता है, उन्हें वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, यज्ञोपवीत अर्पित किया जाता है, गंध चंदन मस्तक पर अष्ट गंध से उनका पूजन किया जाता है, पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबुल आरती और 16वें नंबर पर परिक्रमा और पुष्पांजलि की विधि होती है। इस तरह 16 उपचार से यह पूजा संपन्न होती है।
4: बिल्कुल, राजाधिराज भगवान श्री महाकालेश्वर जब प्रजा को दर्शन देने के लिए स्वयं नगर भ्रमण पर निकलने वाले हैं तो निश्चय तौर पर इस तरह से पूजन जो है 16 प्रकार से, जैसा कि आपने बताया 16 प्रकार से भगवान श्री महाकालेश्वर का पूजन होगा, और फिर चांदी की जो पालकी है, सुसज्जित पालकी है, पूरी तरह से पुष्पों से सज्जित है, और वो पालकी जब कहार उठाकर बाहर आएंगे तो वहां का दृश्य भी अद्भुत होगा। और जैसा कि हम स्टूडियो के माध्यम से कल्पना कर रहे हैं, लेकिन वहां जो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी कल्पनाओं का अंत तो तभी होगा ना जब बाबा अपनी पालकी के साथ उनके बीच आएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और चूंकि जो लोग हमसे इस प्रसारण में अभी जुड़े हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि जो सवारी का पारंपरिक मार्ग होता है उसका शुभारंभ महाकालेश्वर मंदिर से मुख्य द्वार से सवारी बाहर निकलती है, और ये जो फूलों की वर्षा और कई बार वर्षा जल भी होता है जो उनका सिंचन करता है, है ना, और उसके बाद मध्य प्रदेश सशस्त्र पुलिस बल द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, और उसके बाद मंदिर से निकलकर गुदरी चौराहा बख्शी बाजार कहारवाड़ी रामानुज कोटे होते जो पालकी होती है शिप्रा तट पर पहुंचती है रामघाट पर, और वहां शिप्रा जल से उनका अभिषेक किया जाता है, और फिर सवारी कार्तिक चौक ढाबा रोड दानी गेट गोपाल मंदिर पहुंचती है जहां पर हरिहर मिलन का बड़ा ही अद्भुत रूप होता है। गोपाल मंदिर विष्णु गोपाल विष्णु के अवतार हैं और शिव और विष्णु का मिलन हरिहर मिलन के तौर पर जाना जाता है। वहां पर जैसा हमसे पहले जो विशेषज्ञ थे वो बता रहे थे कि सिंधिया परिवार वहां पर मौजूद होता है,
4: जी हाँ,
1: उनके परिवार का एक सदस्य एक प्रतिनिधि वहां अगवानी करता है, और उसके बाद उस पूजा के बाद वो पालकी पटनी बाजार से होते हुए पुनः महाकाल मंदिर पहुंच जाती है, और ये पूरा परिक्रमा मार्ग दोनों तरफ श्रद्धालुओं से भरा होता है, जयकारों से भरा होता है, आनंद विभोर लोगों से भरा होता है।
4: बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे जो सुन रहे हैं अभी अभी जिन्होंने हमारा रेडियो सेट खोला है उनको बता दें कि आप सुन रहे हैं भगवान श्री महाकालेश्वर की राजसी सवारी का सजीव प्रसारण, और अब मयंक शुक्ला जी जुड़ चुके हैं और वो हमें आगे का विवरण देंगे कि इस वक्त किस तरह से पूजन की तैयारी चल रही है।
1: जय महाकाल मयंक जी।
5: जय श्री महाकाल। हमारे श्रोताओं को हम बता दें
1: जी,
5: इस समय मैं महाकाल मंदिर के ठीक सामने शिखर के ठीक सामने जहाँ से पालकी अपने नियत मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए पहुँचने की वही खड़ा हूँ, और यहाँ जैसा कि हम देख पा रहे हैं सशस्त्र पुलिस बल की जो परेड की टुकड़ी होती है वो भी सज चुकी है। श्रोताओं को यहाँ बता दें कि आज की परेड की कमांडर गायत्री वर्मा जी हो जो परेड को लीड करेंगी, और उनसे हम जानना भी चाहेंगे क्योंकि जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन या विशेष रूप से ये सशस्त्र पुलिस बल की टुकड़ी एक अलग ही भाव होता है अपने बाबा के प्रति, अपने राजा को राजा की सेवा के प्रति। मध्य प्रदेश नगर सेवक दल की जो टुकड़ी है, आइए जानते हैं गायत्री वर्मा जी से कि गायत्री जी आज आप लीड करेंगी इस परेड को, तो क्या मन में भाव है क्योंकि एक तो पुलिस अधिकारी होने के नाते बाबा की परेड की अगुवाई करने का मौका मिलता है, तो कैसा लगता है?
6: बाबा जी की परेड की अगुवाई करने का जो मौका है वो नहीं मिलता, सौभाग्य की बात है, और ये जो गीत करते हैं परेड, ये हमारे होमगार्ड विभाग के जवान हैं, सभी सभी के पास राइफल होती है, सशस्त्र बल पूरा रिटर्न आते हैं उस समय तक की सलामी जो है तीन सलामियां जो लगती हैं, जैसे ही महाकाल बाबा जी अपने गेट से स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा, यहाँ पर पहली सलामी, दूसरी सलामी रामघाट पर लगती है पूजन के बाद, और तीसरी सलामी जब उनकी पूरी यात्रा परिपूर्ण हो जाती है।

0: सब उनकी यात्रा पूर्ण करा करके उनको सलामी दे करके फिर उन्हें मंदिर के अंदर भेजा जाता है। तो बहुत ही भक्तिमय माहौल और बहुत ही अच्छा हम लोगों के लिए एक अवसर है। बागाल बाबा जी को प्रणाम करते हैं। जय श्री
1: माता। मयंक जी, मयंक जी गायत्री जी से हम बात कर सकते हैं? आप बात करा देंगी?
2: जी गायत्री जी लाइन पर है सर, बात करें।
1: जी गायत्री जी नमस्कार।
0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार। आपने इस तरह की बहुत सारी परेड में भाग लिया होगा अपने पूरे करियर में, और लेकिन वो परेड और इस समय ये आज की परेड के बीच आप क्या अंतर पाती हैं?
0: सर बिल्कुल अंतर है। वो सर एक प्रशासनिक लेवल की परेड होती है, और सर महाकाल बाबा जी जो एक राजा भी राज है उनके लिए जो परेड है ये सर थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
1: जी जी, व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए ये कैसा अनुभव है?
0: बहुत अच्छा अनुभव है सर। ये जो मौका हमको मिला है ये हर किसी को नहीं मिलता है। कहा जाएगा कि मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ, मेरे साथ ये 24 जवान लगे हैं ये भी सभी सौभाग्यशाली।
1: जी जी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।
0: थैंक यू।
1: जी मयंक, आगे का विवरण बताइए।
2: जी, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि ये पुलिस बल तो तैयार है ही गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए। वही बाबा की अगुवाई के लिए जो भू अलंकरण सजाया जाता है, जो सुंदर रंगोली सजाई जाती है, जिस रंगोली को सजाने वाले जो मुख्य है, ये कुंज बिहारी पंड्या जी हमारे साथ है, सजीव जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। कुंज बिहारी पंड्या जी, इतने वर्ष हो गए आप बाबा की अगुवाई के लिए ये सुंदर भू अलंकरण करते हैं, सुंदर रंगोली सजाते हैं, और वो भी इतने कम समय में, कैसा अनुभव होता है?
3: इनका महाकाल का आशीर्वाद है। आज महाकाल बाबा की सवारी में, राजा की सवारी में 1,00,000 रंगोली बिखेर हुआ,
2: बड़ी बात है। और श्रोताओं हम आपको बता दें कि सुंदर सुंदर रंग इस समय बिखेरे जा रहे हैं सड़कों पर। कुंज बिहारी पंड्या जी एक स्थान से दूसरे स्थान दौड़ लगाते हैं, और एकदम फ्री हैंड डिजाइन जो धरती पर, सड़क पर, जिस मार्ग से सवारी गुजरने वाली है उस मार्ग पर सजाई जाती है। कुछ क्षण में बड़ी सुंदर सी रंगोली यहाँ पर सजती हुई नजर आ रही है। एक तरफ अश्वारोही दल खड़ा है, अश्वारोही दल भी अपने बाबा की अगुवाई करेगा, और बाबा पूरे ठाट बाज के साथ आज अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए निकलने वाले हैं। जी
1: बिल्कुल, पंड्या जी से हमारी बात करवाइए।
2: जी पंड्या जी लाइन पर हैं, आप बात करें।
1: जी पंड्या जी, जय महाकाल।
3: जय महाकाल।
1: और जिस प्रकार से आपने जो रंगोली सजाई हुई है और उसकी जो सज्जित व्यवस्था आपने संभाली है, तो कितने वर्षों से आप ये कार्य कर रहे हैं?
3: 20 वर्ष हो गए महाकाल के महाराज की सवारी में सेवा देते।
1: जी।
3: और ये भगवान की पाल के जहाँ जहाँ जिस जिस नगर क्षेत्र से निकलती है भगवान के आगे में बनाते मंदिर की ओर जाता हूँ।
1: बिल्कुल। और किन किन रंगों का इस्तेमाल करते हैं?
3: मैं सर सारे रंगों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कम से कम 20 कलर सर, 20 तरह के कलर है।
1: कुंज बिहारी जी, प्रत्येक जो आर्टिस्ट होता है, कलाकार चाहता है कि उसकी जो रचना हो वो अक्षुण्ण रहे, वो अस्थाई रहे, लेकिन आपकी जो रचना होती है वो चीके भी पैदल उस पे से गुजर जाने से खत्म हो जाती है। आपको कैसा लगता है ये जो आप रंगोली बना रहे हैं, आपको मालूम है कि श्रद्धालु के आने से थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, क्या मनोभाव होते हैं आपके?
3: श्रद्धालु बाहर के श्रद्धालु आकर इसको अपने शीश पर लगाते हैं, उन्हें महाकाल का प्रसाद लगता है।
1: जी
3: श्रद्धालुओं को समझ नहीं रहती, वो उस पे निकल कर जाते हैं।
1: जी जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुंज बिहारी जी, धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: जी मयंक जी, आगे आप हमसे जुड़े रहिएगा, अभी जो है हम दूसरे प्रतिनिधि से जोड़ने का प्रयास करेंगे। जय महाकाल।
4: जय महाकाल। और अब हमसे जुड़ रहे हैं
1: कलेक्टर साहब, जुड़ रहे हैं उज्जैन के, और वो हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई है।
5: जुड़ रहे हैं उज्जैन के कलेक्टर सिंह साहब, हम इनसे जानते हैं कि आज की राजसी सवारी के लिए किस किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं।
6: जय श्री महाकाल, सभी लोगों को नमस्कार। जैसा आपको मालूम है सोमवार को राजसी सवारी निकलनी है, और बाबा महाकाल की सवारी पूरे शहर में भ्रमण पर निकलेगी। और जैसा आपको मालूम है जो मार्ग रहता है राजसी सवारी का, वो अन्य सवारियों से थोड़ा वृहद रहता है, और उस दिन बाबा शहर के अन्य मार्गों में भी भ्रमण को निकलते हैं। और कुल मिला के जो परंपरागत मार्ग है उससे टंकी चौराहे से आगे बढ़ के तेलीवाड़ा, उसके बाद कंठाल, कंठाल से सती गेट, गोपाल मंदिर, और उसके बाद महाकाल।

0: चौराहा होते हुए मंदिर में सवारी जो है एंट्री होती है सवारी की और बाबा महाकाल की सवारी इस प्रकार से संपन्न होती है। अभी तक जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा रहा है वो पिछले कई वर्षों के आंकड़ों के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है और अभी ही 1 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु जो है पूरे सावन के महीने में बाबा महाकाल के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं और इस बार रासी सवारी में हमारा अनुमान ये है कि पुराने सारे रिकॉर्ड जो हैं वो ब्रेक होने वाले हैं और सबसे अधिक संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन को प्राप्त करेंगे। तो जो विशेष जो हमारी तैयारियां हैं उसके संबंध में जरूर आपको बताना चाहूँगा मैं। अभी विगत जो सवारियाँ निकली हैं हर सवारी में एक अलग थीम रही है। जैसे पिछली जो सवारी थी उसमें जो थीम थी वो वैदिक बटुक थे, इसके पहले पर्यावरण के संरक्षण पे थीम पे था, इसके पहले जो है जो हमारे जनजातीय कलाकार थे उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी, उसी प्रकार से इस सवारी में जो सिंहस्थ की हमारी तैयारी है, सिंहस्थ महाकुंभ 2028 में होना है उसके संबंध में उज्जैन किस प्रकार से तैयार हो रहा है वो हम इसमें दिखाना चाहेंगे और अलग अलग राज्यों से जो है इसमें कलाकार आएंगे वो भी अपनी सहभागिता करेंगे और एक 84 महादेव का जो एक मार्ग है जो मंदिर है उनके बारे में भी हमारी जो झांकी रहेगी इस बार रहेगी। तो पूरे धूमधाम से बाबा महाकाल की रासी सवारी शहर में उस दिन निकलेगी। मैं सभी श्रद्धालुओं से अपील करना चाहूँगा कि आप जो भी हमारे द्वारा व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं उसका पालन करें, सभी को बाबा महाकाल के दर्शन होंगे और खासकर विशेष रूप से जो है जो मार्ग बनाया गया है जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो व्यवस्था बनाई गई है सभी लोग उसका पालन करें जिससे कि सभी को सरलता से सुगम दर्शन प्राप्त हो सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी लगातार निर्देश प्राप्त होते हैं कि बाबा महाकाल की सवारी में सभी व्यवस्थाएं जो हैं चाक चौबंद रहें और श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर व्यवस्था दी जा सके क्योंकि ना सिर्फ उज्जैन शहर के बल्कि प्रदेश के और देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं और वो यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। हम सभी को उसके लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए और हम जो भी योगदान इसमें कर पाए हमें करना चाहिए। जय श्री महाकाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।
2: जय श्री महाकाल। और कलेक्टर साहब ने जैसा कि बताया किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई और संक्षिप्त में हमारे सुनने वालों को बता दें कि इस बार श्रावण और भादो मास को मिलाकर 6 सवारियां निकल रही है जिनमें श्रावण की 4 सवारियां हैं उसका हम संक्षिप्त में बता दें। 3 अगस्त को निकली थी ये और द्वितीय सवारी 10 अगस्त को, तीसरी सवारी 17 अगस्त को निकली थी, चौथी 24 अगस्त को और पांचवी 31 अगस्त को निकली और आज निकल ही रही है।
3: इस यात्रा में विजया जैन बिल्कुल तैयार हैं वर्णन करने के लिए। विजया जी नमस्कार।
4: नमस्कार। जय श्री महाकाल।
3: जय श्री महाकाल। विजय जी थोड़ा जोर से बोलिएगा क्योंकि आप जिस स्थान पर हैं मैं समझ पा रहा हूँ कि वहाँ पर श्रद्धालुओं का शोर बहुत होने वाला है।
4: जी जी बिल्कुल। जय श्री महाकाल।
3: जय श्री महाकाल। बताइए क्या आपकी आंखों से अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं उस स्थान को?
4: मैं इस बड़ी संख्या में भीड़ मुझे नजर आ रही है और देश भर के श्रद्धालु चाहे वो राजस्थान से हो, गुजरात से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, देश भर के श्रद्धालु मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं और बहुत ही रंग बिरंगी पोशाकों में श्रद्धालु ने अपने हाथों में भगवान महाकाल की कुछ कुछ श्रद्धालुओं ने तकियां भी दे रखी है। इसमें देश महाकाल और आ रही है पार्वती, जय हो बाबा महाकाल की, ऐसे नारों से ये पूरा पूरी गली और पूरा ये क्षेत्र गुंजायमान हो रहा है। आज बाबा महाकाल राजाओं के राजा महाधिराजा अपनी राजसी सवारी के साथ इस शहर का भ्रमण करने के लिए निकले हैं और हमारे श्रद्धालुओं के लिए ये एक ऐसा आयोजन है जिसमें वो किसी बिना निमंत्रण के आते हैं और देश भर के श्रद्धालु अपने महाकाल का दर्शन करने के लिए, अपने राजा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पधारते हैं और उनका मानना है कि अगर उन्होंने इस जीवन में प्रभु महाकाल के दर्शन किए हैं तो निश्चित रूप से उनका जीवन धन्य हो चुका है। और इस वक्त मेरे सामने बहुत सारी पालकियाँ गुजर चुकी है जिसमें विभिन्न मंडलों की पालकियाँ हैं, सजी धजी वेशभूषा में हमारे जो मंडल के जो यहाँ पर श्रद्धालु काम कर रहे हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से झांझ मजीरे और ढोलक के साथ उन्हें गा रहे हैं। कहीं कहीं कुछ कुछ मंडलियों में राधा कृष्ण की भक्ति और शिव के भजन भी गाए जा रहे हैं और पूरा उज्जैन आरती का भक्तिमय हो चुका है और हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है महाकाल का कि कब महाकाल उन्हें दर्शन देने आए और वो अपने जीवन को धन्य करते हुए जीवन में आगे बढ़े। मैं आपको बताना चाहूंगी कि विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी की बालिकाएं बहुत ही सुंदर वेशभूषा में सज धज कर तैयार है और अपने कर्तव्य दिखाती हुई वो बिल्कुल आगे बढ़ती जा रही है। कम से कम 15 से 20 मंडलियां इस वक्त हमारे बीच में से गुजर चुकी है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए और सादे गणवेश में महिला कांस्टेबल महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी तैयार है। और मैं आपको बता दूं कि अभी अभी भगवान इंद्र भी बिल्कुल बाबा महाकाल पर अपनी बारिश की वर्षा करने के लिए उनका अभिषेक करने के लिए तैयार है। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी इस वक्त हो चुकी है और कुल मिलाकर लोग बहुत ही उत्साह में उमंग में और पूरी श्रद्धा आस्था और समर्पण के साथ तैयार है। और बहुत सारे घरों में मैंने देखा है यहाँ पर रास्ते में जितने भी श्रद्धालु हैं उन्होंने अपने घरों में बहुत सारे फूल इकट्ठे किए हुए हैं और जैसे जैसे जो पालकियां गुजर रही हैं जैसे जैसे जो भक्त मंडल गुजर रहे हैं इधर नाचते हुए पूरे जोश में गाते हुए शिव भजन की महिमा करते हुए शिव के भगवान शिव के चरणों में राजाधिराजा महाकाल के चरणों में अपनी मनी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो फूलों से उनकी बरसात हो रही है और ऐसा लग रहा है कि ये पूरी जमीन फूलों से सज चुकी है। पूरा माहौल भक्तिमय है और हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है प्रभु महाकाल के दर्शन का और ये भक्तिमय माहौल मुझे लगता है कि बहुत देर तक चलने वाला है। हिंदू सेना भक्त मंडल का पालकी मुझे अभी यहाँ पर हिंदू सेना भक्त मंडल की दल मुझे यहाँ पर नजर आ रही है
5: जी।
4: जो ढोल नगाड़ों के साथ बिल्कुल भगवान की भक्ति करते हुए नजर आ रहे हैं और वेशभूषा का धारण किए हुए उनकी पूरी भजन मंडली नाच करते हुए दल के बाबा के पगड़ी पहने हुए सारे पुरुष नजर आ रहे हैं और सारी है सारी महिलाएं एक जैसा वेशभूषा और एक जैसा गंभीर धारण हुए अत्यंत मनोवाणी को पेश कर रहे हैं
5: जी। विजय जी आपकी आवाज के ऊपर अब वो जो बैंड की आवाज चलती जा रही है तो हम आपसे थोड़ी देर बाद पुनः संपर्क करेंगे। इस समय गौतम मालवीय जी हमसे जुड़ने के लिए तैयार हैं, हम गौतम जी से जुड़ते हैं। नमस्कार गौतम जी। जय श्री महाकाल। इस समय आप कहाँ पर हैं गौतम जी?
6: सारे श्रोता जानते हैं कि बंबई वालों की जो धर्मशाला है ये नदी के तट पर स्थित है और इस वक्त में इसी इमली घाट
5: गौतम जी क्षमा कीजिएगा, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा जोर से बोलें क्योंकि जो पृष्ठभूमि में जो आवाजें हैं वो आपकी आवाजों पर आ रही है।
6: देखिए बंबई वालों की जो धर्मशाला है मैं शिप्रा के तट पर खड़ा हुआ हूँ
5: जी।
6: बड़ा ही अद्भुत नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है, मतलब जिस तरह भी देखी जा रही है उस तरफ के भजन सैलाब भी नजर आ रहा है
5: जी।
6: सैलाब क्यों ना हो क्योंकि बाबा महाकाल की जो राजकीय सवारी है वो इस वक्त से निकल रही है और हर व्यक्ति उसकी इंतजार में मतलब पौड़े बिछाकर यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी झांकियां यहाँ से निकल रही है विश्व हिंदू परिषद के लोग यहाँ से निकले हैं, उनके द्वारा अखाड़ा भी निकाला गया है, कई तरह से चीजें चल रहे हैं, बाबा की सेवा में कई तरह के भक्त हैं जो अलग अलग सेवा भी यहाँ पर देखते हैं और बड़ा ही अद्भुत नजारा है। पूरे परिवार सहित मतलब यहाँ पर प्रशासन की इतनी तरह से व्यवस्थाएं बनी हुई है, उन सारी व्यवस्थाओं में पूरा सहयोग भी यहाँ की जनता कर रही है और जिस तरह से पूरे परिवार भी यहाँ पर बैठा हुआ मुझे दिख रहा है, पिता अपने बच्चे को कंधे पर बैठा कर घुमा रहा है और राजकीय सवारी का इंतजार सभी लोग मिलकर यहाँ पर कर रहे हैं। बाबा महाकाल इस वक्त नगर भ्रमण पर निकले हुए हैं तो हर कोई उनका इंतजार कर रहा है।
5: बिल्कुल गौतम,
6: क्षेत्र में जहाँ पर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ इसकी सफाई व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही सुथरा और काफी व्यवस्थित कार्य प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर किया गया है और बाबा महाकाल की सवारी का इंतजार हर कोई, मैं देख रहा हूँ की बैरिकेड काफी बड़े बड़े यहाँ पर लगे हुए हैं लेकिन इसके बावजूद सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। बच्चे को पिताजी अपने कंधे पर बैठा कर भी दिखाने के लिए तैयार है, माताएं मैं देख रहा हूँ क्योंकि पूरे बच्चों को भी अपने साथ से लेकर आई हुई है और वो भी पूरा आनंद ले रहे हैं।

0: बिल्कुल गौतम जी, बहुत ही आनंद के क्षण है और आपने कहा कि क्षिप्रा तट पर आप खड़े हुए हैं और वहां पर एसडीआरएफ का दल भी तैनात रहता है और जो रामघाट में प्रवेश के लिए जो आम लोगों के लिए जो प्रवेश व्यवस्था की गई है उसके बारे में बता सकते हैं क्या?
1: बिल्कुल, प्रवेश की तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि प्रवेश की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन ने सब कुछ थोड़ी सी बच्चे को बता रखी है, लेकिन फिर भी काफी सारी यहाँ पर श्रद्धालु जो है, दर्शनार्थी जो है, वो बाहर की ओर से ही देख रहे हैं, अंदर तो कोई ऐसा विशेष इंतजाम उनके द्वारा इस रामघाट पर नहीं दिखाई देता है।
0: बिल्कुल गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे बने रहिएगा। लेकिन अभी जो है विवेक चौरसिया जी जुड़ रहे हैं और हम जानते हैं अब वो कहां पर हैं और क्या विवरण देना चाहते हैं।
2: नमस्कार विवेक जी।
3: नमस्कार, जय महाकाल।
2: जय महाकाल, बताएं आपकी आंखों से हम सब कुछ जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने 10 प्रतिनिधियों से थोड़ी अपनी ईर्ष्या का इजहार कर लेता हूँ कि आप जो देख पा रहे हैं हम स्टूडियो से वो आनंद नहीं उठा पा रहे, लेकिन उस आनंद का अंश आपकी वाणी से हम तक पहुंच जाए और हमारे श्रोताओं तक पहुंचे तो बहुत उत्तम होगा। बताएं,
3: मैं अभी महाकाल मंदिर से करीब आधा किलोमीटर आगे सवारी मार्ग पर गुजरी चौराहे पर हूं
2: जी,
3: और अभी 3:30 बज रहे हैं, लगभग 4 बजे भगवान महाकाल की पालकी मंदिर से उठेगी। तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर हजारों की तादाद में भक्त इसी चौराहे पर, पूरे सवारी मार्ग का अभी मैं दौरा करके आया हूँ और वहाँ पर दोपहर 12 बजे से लोगों की भीड़ उमड़ी हुई
2: जी।
3: ये समझिए कि लाखों की तादाद में लोग सवारी मार्ग के दोनों ओर खड़े हैं और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी हजारों की तादाद में लोग, और अभी भजन मंडलियां निकल रही है और चारों तरफ जयकारे गूंज रहे हैं। और मजा ये है
2: जी,
3: जो भगवान शिव, भगवान महाकाल समरसता के देवता हैं।
2: बिल्कुल,
3: उज्जैन भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली है, भगवान राम से भी इसका संबंध है, किंवदंती है कि भगवान राम भी उज्जैन आए थे। तो इस पूरी सवारी में भगवान शिव के, भगवान महाकाल के भजन तो गूंज ही रहे हैं, भगवान कृष्ण और भगवान राम की स्तुतियां भी उतने ही उत्साह से, उल्लास से गूंज रही है।
2: जी जी, चौरसिया जी मैं जानना चाहूंगा क्योंकि जब भी कभी ऐसी सवारी निकलती है तो जिनका मकान या जिनकी दुकान उस मार्ग पे होती है वो तो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, उनके होटले और अटारियां भरी होती है। इस समय पर क्या लोग अपने अपने स्थानों पर जम गए हैं कि जैसे ही बाबा महाकाल की पालकी वहां से गुजरे और हमें दर्शन हो जाएं?
3: अब आप ये मानिए कि ये पीक टाइम आ चुका है
2: जी,
3: अब सवारी का जो एक दौर है वो लगभग समाप्ति की ओर है
2: जी,
3: और अब वो पालकी का समय है पहली बात।
2: हाँ।
3: दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो भी इस रास्ते पर, क्योंकि सवारी 12 बजे से ही एक तरह से निकलना शुरू हो जाता है, उसका जो भजन मंडलियों का उल्लास शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर तो सुबह 10 बजे से लोग सज्जों पर, बालकनी में, गैलरियों में, होटलों पर टिके हुए।
2: हाँ।
3: और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जिन लोगों के होटले हैं वो लोग भी, जो मालिक है वो बड़ी धन्यता अनुभव करते हैं कि उनके यहाँ पर बैठकर अनजाने मेहमान, अनजाने श्रद्धालु उनके होटलों पर बैठे हैं और उनको वो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि उनके होटलों से वो दर्शन करें।
2: वाह, अच्छा, आमतौर पर जी जी आप कहें
3: जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जगह जगह सवारी मार्ग पर निःशुल्क प्रसादी वितरण, जैसे अभी यहाँ फलाहारी खिचड़ी बांटी जा रही है।
2: मैं जो प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा था आप वही कह रहे हैं जी, बताएं
3: जी जी जी। तो यहाँ फलाहारी खिचड़ी बांटी जा रही है, मुझे लगता है कि 6 क्विंटल के करीब खिचड़ी ये लोग बांट चुकेंगे रात तक। अभी तक करीब मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया कि 5-7 क्विंटल हम बांट चुके हैं
2: जी।
3: सारे लोगों को रोक रोक कर बड़े विनम्रता से, बड़े आग्रह पूर्वक वो लोग दे रहे हैं और लोग बड़ी श्रद्धा से उसको ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ में एक पूनम वर्मा जी है जो दिल्ली से आई है, यूपी की रहने वाली है। मैं आपको, उनका सौभाग्य है कि वो आज पहली बार इस सवारी का दर्शन कर रही
2: जी,
3: तो मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ।
2: अवश्य। पूनम जी, पूनम जी नमस्कार जी। पूनम जी, पूनम जी जोर से बोलिएगा, पूनम जी जोर से बोलिएगा। जी जी इस समय सवारी मार्ग पर जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत सारा जन सैलाब उमड़ा हुआ है और वो जो शोर है निश्चित ही ऐसा है जो आह्लादित तो करता ही है लेकिन आपकी आवाज को भी थोड़ा अवरोधित करेगा, तो हम चाहेंगे हम सारे प्रतिनिधियों से कि वो थोड़ा सा अपनी पिच को ऊपर ही रखें ताकि प्रसारण में उनकी आवाज बहुत अच्छे से जाए। जी पूनम जी कहिए।
4: हम भी हमें पहली बार आए हैं और हाँ। दिल्ली से आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है
2: जी,
4: यहाँ बहुत भीड़ और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें जाकर मिली है माँ काल की और माँ काल को दर्शन करने को मिल रहे हैं।
0: जी पूनम जी आपने महाकाल जी के बारे में बहुत कुछ सुना था होगा और बहुत सालों से आपके मन में इच्छा थी कि आप यहाँ महाकाल आए।
5: हेलो
0: जी।
5: हेलो
0: जी। जी विवेक जी।
5: जी सर जी
0: हम पूनम जी से कुछ जानना चाह रहे थे लेकिन शायद
5: वो डिस्कनेक्ट हो रहा है उनको थोड़ा, ये जो यंत्र मैंने लगा रखा है कानों पर इसकी वजह से उनको थोड़ी असुविधा।
2: जी जी जी पर ये बहुत ही हर्ष का विषय होता है कि हमारे धार्मिक स्थल हमें एक रूप करते हैं, दूर दूर से लोग एकत्र होते हैं। इस समय ईशा फाउंडेशन के जो एक बहुत खूबसूरत भजन दल है वो भी यहाँ पर आज अपनी कला का प्रदर्शन करेगा और दिल्ली से भी लोग आए हैं, सुदूर दक्षिण से भी आते हैं, नियमित तौर पर कोलकाता से भी लोग आते हैं और जगन्नाथ जी की भूमि से भी महाकाल का आशीर्वाद लेने लोग आते हैं और आप उन सब से प्रयत्न करें कि यथासंभव आप हमारी बातचीत उनसे करा सके और उनके जरिए सकल विश्व तक उनकी बात जाएगी।
0: बिल्कुल विवेक जी आपके आसपास में बहुत सारे सेवा दल हैं और पेयजल की व्यवस्था को लेकर वो सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं सुव्यवस्थित ढंग से, जैसा कि आपने कहा कि खिचड़ी बांट रहे हैं और साथ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सेवा दल के जो साथी हैं वो लगातार पेयजल की व्यवस्था कर रहे होंगे और आपने कहा कि ओटले पर जो लोग जमे हुए हैं तो कितने बजे से वो लोग वहां पर हैं और जो खासकर जो लाठियों का करतब दिखाने वाले लोग होते हैं क्या वो भी इस वक्त गुदरे चौराहे के आसपास दिखाई दे रहे हैं?
5: नहीं वो मैं उससे थोड़ा सा दूर बैरिकेड के कारण उनको नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन अभी यहाँ पर पालकी के आने की कवायद के बीच में एक स्पैच बन गया है और जो भजन मंडलियां और कर्तव्य दल को आगे की ओर रवाना किया जा चुका है।
2: जी जी
5: लेकिन जो आपने प्रश्न किया था कि यहाँ होटलों पर लोग कब से बैठे हुए हैं तो इस क्षेत्र में तो सुबह 10 बजे से ही लोग बैठे हुए हैं। सुबह 10 बजे उनके हाथ में पानी की बोतलें हैं, जो बाहरी यात्री आए हैं यदि उनके पास छोटे बच्चे हैं तो वो उनसे संबंधित जितनी आवश्यक सामग्री है दूध की बोतल पानी की बोतल दवाइयाँ वो सब लेकर आए हुए हैं।
0: बिल्कुल विवेक जी जय महाकाल।
6: श्रोताओं अब पुजारी श्री आशीष गुरु हमारे साथ हैं जो कि सभा मंडप में हैं और प्रभु का षोडशोपचार पूजन अर्चन हो रहा है। बाबा महाकाल की पालकी राजपथ पर चलने को तैयार है। बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर श्रद्धालुओं को भक्तों को दर्शन देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
7: जय महाकाल। महाकालम महाकायो महाकालम जगतपते महाकालम महायोगिन महाकालम नमोस्ते। बाबा महाकाल का दरबार, बाबा महाकाल के सभा मंडप के अंदर बाबा महाकाल के चंद्रमौलेश्वर की पूजा जो चल रही है, भगवान महाकाल के दरबार के अंदर पूजन के अंदर भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर का ध्यान किया जा रहा है। इस ध्यान के अंदर भगवान महाकाल से प्रार्थना की जा रही है। जिस प्रकार से अनादिकाल की परंपरा रही है जब बाबा महाकाल नगर भ्रमण के लिए जाते थे तो ऐसा कहा जाता था कि भगवान इन चंद्रमौलेश्वर बाणलिंग के अंदर विराजमान हो गए और वो नगर भ्रमण के लिए जा रहे हैं। उसी प्रकार प्राण अपान की क्रिया चल रही है, भगवान के यहाँ राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया जा रहा है। भगवान महाकाल के दरबार के अंदर बाबा महाकाल की पूजन अर्चन चल रही है। तो सवारी सभा मंडप के अंदर भगवान का राष्ट्र कल्याण का संकल्प लिया गया है। भगवान महाकाल को फूल बिल पत्र माला चलाई गई है।
8: चंद्रमौली सर की पूजन के पश्चात बाबा महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकल जाएंगे। अभी नगर भ्रमण की पूजन चल रही है, इस पूजन के अंदर भगवान को दूध के अंदर संतामृत अभिषेक के पश्चात भगवान की यहाँ पूजन की जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि अब भगवान महाकाल जनता के दरबार के अंदर जनता से मिलने के लिए निकले हैं। इसी क्रम के अंदर महाकाल मंदिर की जो परंपरागत जो व्यवस्था है, चंद्रमौलेश्वर की जो व्यवस्था है, मन महेश उमा महेश तांडव स्वरूप के अंदर नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। तो चारों तरफ जय महाकाल का उद्घोष है। महाकालम महाकायो महाकालम जगत प्रवेश, जो जगत का अधिष्ठाता देवता है, जो नाभि चक्र पे विराजमान है, जो मणिपुर चक्र पे विराजमान है, ऐसे महाकाल को हम बारम्बार प्रणाम करते हो रहे। महाकाल की पूजन के पश्चात सभा मंडप से सभा मंडप तार पे ये सभा यहाँ पर अनादिकाल के अंदर सभी देवी देवताओं की सभाएं हुआ करती थी। महाकाल उसी सभा मंडप से बाबा महाकाल नगर भ्रमण के लिए प्रवेश के लिए जा रहे हैं। ऐसा अद्वितीय आनंद, ऐसा दृश्य काल में कुछ ही श्रावण के महीने में हमें देखने को मिलता है कि बाबा पूरे राजदीय साठ बाट के साथ में राजा स्वरूप में जिस प्रकार से देव सोनी की अरस के दिन भगवान विष्णु पाताल में चले जाते हैं और महाकाल को संपूर्ण पृथ्वी का बाहर दे जाते हैं, तो ये राजा रूप में हो जाते हैं। तो राजा रूप में होने के कारण पगड़ी धारण करते हैं, पगड़ी धारण करके जनता का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं। जो भक्त बाबा महाकाल के दरबार में नहीं आ सकते हैं, उन्हें स्वयं भगवान महाकाल दर्शन देते हैं। जो सोलह सोमवार करते हैं वो मंदिर नहीं आ सकते हैं, तो बाबा के दर्शन के लिए अपना व्रत उपवास तोड़ते हैं। माँ शिप्रा जो इस समय संपूर्ण अपने वैभव पर रहती है, क्योंकि बरसात का महीना रहता है, पानी के चारों वो बाबा महाकाल के चरणों के अंदर अपना प्रणाम देती है। बाबा महाकाल शिप्रा नदी किनारे जाकर पूजन की जाती है। उसके पश्चात भगवान के परम इष्ट परम मित्र, जो कहा गया है कि भगवान के परम मित्र विष्णु और विष्णु के परम मित्र भगवान शिव है, दोनों का मिलन गोपाल मंदिर पर होता है। शिव और हरि और हर का मिलन होता है। तो पुनः बाबा महाकाल अवंतिका नगरी से होते हुए बाबा महाकाल सभा मंडप में आते हैं। यह दृश्य, यह अद्वितीय आनंद देवताओं को भी देखना दुर्लभ होता है, इसलिए बाबा के दरबार के अंदर सभा मंडप में महापूजा की जाती है। वेदोक्त शास्त्रोक्त मंत्र चलते हैं। पहला मंत्र भगवान शिव का चलता है, ओम नमः सम भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः मृत्युंजय महाकालोत्राय माम करुणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितो कर्म वंदने आकाशे तारकालिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रय नमोस्तुते। इन मंत्रों के साथ भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। भगवान शिव को अक्षत और बिलपत्र अर्पण किया जाता है। इसी प्रकार धूप दीप नैवेद्य लगाया जाता है, आरती की जाती है, क्षमा याचना की जाती है। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्याकरणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। इस तरह भगवान की प्रार्थना की जाती है और मंत्रोच्चारण के साथ वेदोक्त शास्त्रोक्त मंत्रोच्चारण के साथ में हम इस पूजा के बादों का जो वैभव जो आनंद है वो और बढ़ जाता है। भगवान महाकाल का जो वैभव होता है वो प्राप्त होते हैं और फिर बाबा महाकाल निकल पड़ते हैं नगर भ्रमण की तरफ। जय महाकाल।
6: जय श्री महाकाल।
2: जय श्री महाकाल। धर्म आस्था उल्लास और आनंद का आज यहाँ पर सागर उमड़ा हुआ है। बाबा महाकाल की राजसी सवारी का वर्णन आकाशवाणी के माध्यम से हम ऐप के जरिए पूरा विश्व सुन रहा है। और अब हम सुनेंगे हमारे प्रतिनिधि शैलेंद्र पाराशर की बात, वो हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नमस्कार शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी हमसे जुड़ रहे हैं, नमस्कार। शैलेंद्र जी आप ऑन एयर हैं, लगता है कुछ व्यवधान है।
0: बिल्कुल, जैसा कि अभी महाकाल मंदिर से हमारे जो विशेषज्ञ के तौर पर जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से वहां का पूजन प्रक्रम चल रहा है लगातार, और कुछ क्षणों में पूजन के बाद में धीरे धीरे पालकी जब आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी तो उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और उसकी तैयारियों के लिए जो पुलिस की टुकड़ी, जैसा कि हमने बात

0: को हमने रिकॉर्ड किया था वो हमसे वो बात हम आप तक पहुंचाते हैं श्रोताओं।
1: जय श्री महाकाल, मैं डॉक्टर आरती तिवारी उज्जैन से निवेदन कर रहा हूँ। भगवान श्री महाकालेश्वर की नगरी में रहते हैं। शिव पुराण में द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया गया है और इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भगवान श्री महाकालेश्वर के ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। भगवान श्री महाकाल का जो ज्योतिर्लिंग है वह चंद्रू है। अनादिकाल से महाकाल मंदिर भगवान में भगवान शिव की महाकाल के रूप में आराधना हो रही है और यह मंदिर महाकाल वन में स्थित है। उज्जैनी के महाराज के रूप में भगवान महाकाल की पूजा की जाती है, इसे लिए कहा जाता है उज्जैनी महाकाल की नगरी। इस नगरी की सांस्कृतिक परंपरा और उत्सवों के आयोजन की उल्लासपूर्ण परंपरा अवर्णनीय है। कहा जाता है कि इस नगरी में सप्ताह के 7 दिनों में 8 दिन उत्सव मनाए जाते हैं। भगवान महाकाल अवंतिकाधीश है, अतः जो भी त्योहार हमारे होते हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, विजयादशमी हो, जो भी त्योहार होते हैं, सबसे पहले भगवान महाकाल के मंदिर में मनाए जाते हैं। उसके बाद फिर नगर के लोगों को उन त्योहारों को मनाने की अनुमति होती है। इस तरह की परंपरा यहाँ बहुत प्राचीन काल से विकसित है। महाकाल अपनी प्रजाजनों का हाल जानने के लिए सवारी के रूप में नगर भ्रमण करते हैं और ये नगर भ्रमण की जो परंपरा है ये बहुत समय से चली जा रही है। कब से प्रारंभ हुआ यह कहना कठिन है, लेकिन ज्ञात तथ्यों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि मराठा शासन काल में भी महाकाल की सवारियां निकलती रही हैं। मराठा सरकार द्वारा धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में महाराष्ट्र परंपरा का अनुकरण किया जाता था और महाराष्ट्रीय परंपरा में श्रावण मास का प्रारंभ शुक्ल पक्ष से होता था, अतः श्रावण और भाद्रपद के 6 सोमवारों में श्रावण मास की सवारियां निकलती है। मराठा काल में जो सवारी निकलती थी उसमें उज्जैन के सतसुबा के अलावा ग्वालियर राज्य के भी प्रमुख पदाधिकारी सम्मिलित हुआ करते थे। उसमें शासकीय बैंड होता था, फिर ग्वालियर राज्य के सैनिकों की टुकड़ी होती थी और पुलिस कर्मियों का एक दल शासकीय पारंपरिक वेशभूषा में चलता रहता था और अगले क्रम में अखाड़े और भजन मंडलियां भी इसमें सम्मिलित होती थी। शहनाई, नगाड़े और अश्वारोही दल भी इसमें शामिल हुआ करते थे। पंडित पुरोहित भारतीय वेशभूषा में मंत्रोच्चार करते हुए चलते थे और जहाँ से भगवान महाकाल की सवारी निकलती थी उन रास्तों को मशकों से पानी से सिंचित किया जाता था, अर्थात पवित्र किया जाता था उन मार्गों को। और जुलूस के पीछे सुसज्जित काष्ठ पालकी पर भगवान श्री महाकालेश्वर की भव्य रजत प्रतिभा सवार होकर निकाली जाती थी। महाकाल मंदिर से प्रारंभ होकर यह जो सवारी का जुलूस है यह पुण्य सलिला क्षिप्रा के तट पर स्थित राम घाट में पहुंचता था, जहां माँ क्षिप्रा की आरती पूजा और सैनिक विश्रामोपरांत नवाई नगर की भ्रमण करती हुई पान गरीबा गुदरी चौबी संबा कोट मोहल्ला होती हुई महाकाल मंदिर वापस सवारी आती थी। और यह परंपरा बहुत दिनों से इसी तरह चली आ रही है और अब इसका स्वरूप और दिनों दिन भव्य होता जा रहा है। श्रावण मास की सवारी का यह क्रम वर्षानुवर्ष चलता है, जिसमें उज्जैन और समीप क्षेत्रों के बहुत श्रद्धालु सम्मिलित होते रहे हैं और अब स्थिति यह है कि न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि संपूर्ण देश से आने वाले श्रद्धालु इस महोत्सव में सम्मिलित होते हैं और भगवान महाकाल की आराधना करते हैं। यह सवारी का उत्सव लोकोत्सव के रूप में परिणत हो गया है। अगले चल समारोह बहुत आकर्षक होता गया है और 5 स्वरूपों में 5 मुखौटे सवारी में सम्मिलित होते हैं और ये सवारियां हैं श्रावण और भाद्रपद के सोमवार के दिन निकाली जाती हैं और सब सवारी निकालने के पूर्व सभा मंडप में भगवान महाकाल का पूजन अर्चन होता है। उसके पश्चात पूरे लाल अक्षर के साथ भगवान महाकाल की सवारी निकाली जाती है और जो अंतिम सवारी होती है जिसे हमारे दर्शक अब देख रहे हैं या अभी स्थित होने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, यह सवारी थोड़ा ज्यादा मार्ग तय करती है, माने जो बाकी सवारियां होती हैं उनसे थोड़ा ज्यादा मार्ग तय करती है। ये ढावा रोड, तेलीवाड़ा चौराहा, कंठाल, सराफा, छत्री चौक, गोपाल मंदिर से होकर ये पूरे आवर्धित मार्ग से भव्य चल समारोह के रूप में ये सवारी निकलती है। इसमें बाजार को आकर्षक रूप से सुसज्जित कर दिया, व्यापारी लोग, नगरवासी लोग अपने स्वामी महाकाल महाराजा से उत्कट परीक्षा करते हुए आरती और दृष्टि कर आनंदित होते हैं। जय श्री महाकाल, आ रही है पालकी, जय श्री महाकाल की और ओम नमः शिवाय के नारे तमाम गूंजते रहते हैं और पूरा नगर भगवान शिव की भक्ति में शिवमय हो जाता है। महाकाल मंदिर में त्रिकाल पूजा होती है और जैसा सर्व ज्ञात है यहाँ केवल द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकाल का ज्योतिर्लिंग ही ऐसा है जहाँ भस्मारती की परंपरा है। भस्मारती प्रातः काल मंगला आरती के रूप में होती है जिसमें भस्म से अभिषेक किया जाता है और उसे सामान्य रूप से सामान्य भाषा में भस्मारती कहते हैं। जो शाही सवारी है ये शाही सवारी में भगवान महाकाल के पंचानन स्वरूप के दर्शन होते हैं। 5 मुखौटों में सजी हुई

0: भगवान महाकाल की जो प्रतिमूर्तियां प्रस्तुतियां हैं उनका पूजन उपरांत भ्रमण होता है और इस भ्रमण में सभी लोग कुछ सृष्टि करके भगवान महाकाल के दर्शन की प्रतीक्षा करते हुए अपने घरों के समय पंक्तिबद्ध खड़े हो जाते हैं। प्रशासन द्वारा बहुत व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती है, पूरे मार्ग पर बैरिकेड्स किए जाते हैं और पहले से ही व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जाता है कि जर्जर भवन कोई हो उन्हें उस मार्ग से हटा दिया जाता है और किसी तरह की कोई दुर्घटना न हो इस बात का पूरा ध्यान प्रशासन द्वारा रखा जाता है। भगवान महाकाल की यह सवारी जो शाही सवारी के नाम से जानी जाती है ये विशाल और भव्य रूप में आकर्षक सवारी निकलती है जिसे देखने के लिए सब लोग वर्ष भर प्रतीक्षा करते रहते हैं और लालायित होते रहते हैं। जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि भगवान महाकाल मंदिर परिसर में महाकाल लोक का निर्माण हो गया है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया गया था और उसके पश्चात प्रतिदिन यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और श्रावण मास भगवान शिव को बहुत प्रिय मास माना जाता है जिसमें होने वाली जो सवारियां जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र होती हैं उन सबके दर्शन के लिए श्रद्धालु पंक्तिबद्ध होके लाखों लाखों की संख्या में सड़क के किनारे खड़े रहते हैं, राम घाट में बैठे रहते हैं और भगवान महाकाल के दर्शन करके कृतकृत्य होते। इस सवारी में माननीय मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रीगण, नगर के महापौर और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी सम्मिलित होते हैं तथा जो क्षिप्रा के तट पर भगवान महाकाल की जब सवारी पहुँचती है तो क्षिप्रा जो से अभिषेक का जो कार्य होता है, अभिषेक और पूजन का कार्य होता है उसे देखने के लिए राम घाट पर तमाम लाखों लोग दृष्टि लगाए हुए अनवरत भगवान महाकाल की ओर दृष्टि रखते हुए और बहुत प्रसन्नता के पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहते हैं और ऐसे लोकोत्सव को देखकर सबका मन हर्ष से प्रफुल्लित हो जाता है और वो अगले वर्ष पुनः सवारियों की और शाही सवारी की प्रतीक्षा करते हुए और भगवान शिव का ध्यान करते हुए भगवान शिव के पूजन दर्शन में संलग्न रहते हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हम जगत के अधिराज भगवान महाकाल की नगरी में निवास करते हैं और हमें उनकी आराधना का अवसर प्राप्त होता है, उनके दर्शन का लाभ प्राप्त होता है और हम उनके दर्शन से अद्भुत होकर कृतकृत होते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री
1: महाकाल, जय श्री महाकाल। श्रोताओं, आकाशवाणी के माध्यम से बाबा महाकाल की राजसी सवारी का आंखों देखा हाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 बजे से ये प्रसारण आरंभ हुआ है और रात्रि 10 बजे तक हम बाबा महाकाल की सवारी और उसका पूरा वर्णन आप तक पहुंचाएंगे और ये वर्णन पहुंचाने के लिए हमारे 10 प्रतिनिधि यात्रा मार्ग पर अलग अलग स्थानों पर मौजूद हैं और अखिलेश बाथम अब हमसे जुड़ने वाले हैं जो उस स्थान पर है जहां मंदिर से निकलने के लिए बाबा महाकाल की सवारी जब पहुंचेगी तो सबसे पहले उसी स्थान पर हमारे प्रतिनिधि होंगे। हम अखिलेश बाथम जी से जुड़ रहे हैं। नमस्कार अखिलेश जी।
2: जय श्री महाकाल। अभी कुछ ही पलों में संकेत ऐसे मिले हैं कि पालकी द्वार से महाकाल की पालकी निकलने वाली है। देखिए, आप आवाज सुन रहे हो, कड़ा दिन के धमाके शुरू हो चुके हैं
1: जी।
2: और कुछ भी पल पहले प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से निकलने शुरू हो गए हैं और उसके पहले मैं बता दूं कि अभी तो तैयारियां जो होती है अंतिम दौर पर पहुंच चुकी है। हो सकता है कुछ ही छोड़ा हमें पालकी है वो पालकी द्वार से बाहर निकले। यहाँ पर जो रस्ता पार्टी उसको संकेत मिल चुके हैं, उन्होंने संकेत जैसे ही मिले उन्होंने रस्ते को अपनी कमर पे उठा लिया सारे लोगों ने और तैयारियां इनकी पूरी है। और इसके पहले मैं बताऊं कि थोड़ी देर पहले मैंने देखा यहाँ पर कि रस्ता पार्टी ने एक मॉक ड्रिल तैयारी भी की थी वो जहाज से और सीढ़ियों तक वहाँ से वापस फिर मंदिर की तक आ गए हैं। ऐसा मैं हमें आपको बताना चाहूँगा कि जो श्रद्धालु जो दर्शनार्थी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं उनके साथ साथ मेरी भी आंखें उसी पालकी द्वार पर टिकी हुई हैं। हम भी ये इंतजार कर रहे हैं कि कब राजा अधिराज वहाँ से निकले और हम उनको नजर से दर्शन करें और उनकी नजर भी हम पर पड़े। तो ये बहुत ही समय जो है ना बहुत नजदीक आ चुका है। हो सकता है कि कुछ क्षणों की देरी से ऐसे ही लेकिन पालकी द्वार से पालकी निकलने ही वाली है और उनके स्वागत के लिए मैं देख रहा हूँ हमारे जो साक्षी गोपाल मंदिर से पीछे अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत थोड़ी सी लगभग 100 मीटर पर पुलिस बैंड है, उसके पीछे महाकाल बैंड है। दोनों ने आज बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां वहाँ पर दी थी और अब जहाँ रस्ता पार्टी खत्म होती है उसके पहले सुरक्षा कर्मियों ने एक दीवार बना रखी हुई है ताकि जो पालकी निकले धीरे धीरे पालकी वहाँ से आगे बढ़ती चली जाए क्योंकि जो

0: बाल की निकलती है तो बहुत ही उसकी तीव्रता बहुत होती है, स्विच होती है।
1: अखिलेश जी, आपके आपके इस वक्तित्व में रस्ता पार्टी शब्द का जिक्र बहुत आया है, तो हम जो श्रोता इस शब्द से परिचित न हो उनके बारे में उनके लिए बता दें कि ये रस्ता पार्टी क्या वो एक मोटा रस्ता है जो पालकी और आम जन के बीच में एक अवरोध होता है ताकि बाबा की पालकी सुव्यवस्थित तरीके से जाए, और जिसे जैसे सशस्त्र पुलिस के हट्टे कट्टे जो सैनिक होते हैं वो उसे थामे होते हैं, क्या मैं सही हूँ?
0: जी बिल्कुल आपने सही कहा, ये रस्ता पार्टी जो होती है वो डीप आकार में होती है और ये एक रस्ता पार्टी जो होती है उसके अंदर में महाकाल जी की पार्टी चल रही होती है और उसके आगे एक और रस्ता पार्टी होती है जो प्रशासनिक अधिकारी चल रहे होते हैं। दूसरा ये है कि उसके जो सबसे पीछे जो रस्ता पार्टी चल रही होती है जिसको उसकी रस्ता आखिरी जो छोर होता है वहाँ लगभग 6-6.5 फीट के हमारे जवान जो है जो आपने जैसा कि बोला कि मजबूत छत पार्टी के होते हैं और देखा जाए तो सारा दारो मदार उनके ऊपर टिका हुआ होता है। अगर दूर से देखें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके ऊपर बाबा महाकाल की ऐसी कृपा होती है क्योंकि जिस समय रस्ता पार्टी आगे बढ़ रही होती है उस रस्ता का इतना वेग होता है कि अगर हम सामान्य दिनों में उस रस्ते को अगर हम अपने शरीर पर लेकर चले तो शायद गंभीर परिणाम भी हो सकते, लेकिन यहाँ आशीर्वाद होता है महाकाल जी का और यहाँ पर किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये रस्ता घेरा होता है ताकि सुरक्षा घेरे में कोई अन्य लोग ना प्रवेश कर सके, तो उसके लिए इस तरह की व्यवस्थाएं की जाती है ताकि जो पालकी है वो व्यवधान रूप से धीरे धीरे आगे व्यवस्थित रूप से बढ़ सके और लोगों को दर्शन सुलभ तरीके से मिल सके।
1: जी अखिलेश, प्रशासन ने कुछ जी अखिलेश एक संक्षिप्त प्रश्न संक्षिप्त उत्तर चाहेंगे कि क्या ड्रोन के जरिए भी वहाँ पर निगरानी हो रही है?
0: बिल्कुल, मैं बात करूं अगर कि मैं पालकी द्वार की तरफ अगर मैंने पेश कर ली तो मैं सामने देख रहा हूं कि हमारे राइट साइड में ऊपर डोम बने हुए हैं और डोम में जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हुए वहां से भी इस बात का निगरानी की जा रही है, कैमरे भी लगे हुए हैं, ड्रोन भी उड़ाया जा रहा है, तो सुरक्षा के जितने चाक चौबंद प्रबंध किए जा सकते हैं वो सभी यहाँ पर है। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा
1: जी,
0: एक दो मिनट और लेना चाहूंगा कि हम बात करें सुरक्षा की तो यहाँ पर सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ महाकाल जी करते हैं। यहाँ जो आम जनता उसका एक गजब का अनुशासन को मिलता है, मुझे लगता नहीं है कि किसी को बताने की जरूरत यहाँ पर रहती है कि आप यहाँ पर खड़े रहिए ऐसे चलिए, स्वतः बोलो सभी लोग अनुशासन में चलते हैं। जी
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, आप बने रहिएगा, हम आपसे तो पुनः जुड़ेंगे।
2: बिल्कुल, और अब हमारे अगले प्रतिनिधि के तौर पर शैलेंद्र पाराशर साहब जुड़ चुके हैं। पाराशर जी स्वागत है आपका।
3: जय महाकाल। आकाशवाणी द्वारा भगवान महाकाल की राष्ट्रीय सवारी का
2: जी पाराशर जी निवेदन है कि आप थोड़ा सा अपने स्वर को और ऊंचा कीजिए।
3: आकाश तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्यु लोके महाकालम त्रैलिंगम नमस्कृते। काल गणना का केंद्र और भारत के इतिहास में उज्जैनी और उज्जैनी के महाकाल का प्रताप कालचक्र प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। विश्व भर का केंद्र उज्जैनी है, ऐसी उज्जैनी नगरी से भाद्रपक्ष की यह रात्रि सवारी का आप सब आकाशवाणी से प्रसारण विश्व भर में सुन रहे हैं। यह श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्रवण पाठ है क्योंकि अक्षर स्वयं पर ब्रह्म होता है और आपको देखा हाल के इस आकाशवाणी केंद्र का यह उपक्रम नहीं उपक्रम आप सब लोगों को वाणी के माध्यम से तो साकार दृश्यों को दिखा रहा है। तो माता मंदिर से समाधि निकलकर रामघाट, रामघाट से गोपाल मंदिर हरिहर का मिलन करती हूँ।
1: नमस्कार, मयंक शुक्ला हमसे जुड़ चुके हैं। मयंक जी नमस्कार, जय महाकाल।
4: नमस्कार, जय श्री महाकाल। श्रोताओं को हम बता रहे हैं कि इस समय मैं मौजूद हूँ महाकाल मंदिर के बिल्कुल सामने और ये कड़ावीन का शोर बता रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल मयंक, आपके
4: नमः शिवाय का स्वर लहरियां यहाँ गुंजायमान हो रही है। श्रोताओं से अनुरोध है आनंद लें इन स्वर लहरियों का।
1: बिल्कुल बिल्कुल मयंक, कैसा दृश्य है अभी वहां का?

0: सुन पा रहे हैं, लेकिन हम ये सुन पा रहे हैं कि वहाँ पीछे बैंड लगातार चल रहा है, और जैसे मैंने ब्रास बैंड की बात की थी, वो पौरुषी आवाज पूरे उज्जैन में गूंज रही है, और ये एक तरह से संकेत है कि बाबा महाकाल की पालकी जल्दी ही बाहर आने वाली है और उसके बाद वो नगर भ्रमण के लिए तैयार है।
1: बिल्कुल विद्याधर जी, पालकी द्वार तक भगवान महाकालेश्वर का जो चंद्र मौलेश्वर रूप में पालकी जो है वो धीरे धीरे धीरे पालकी द्वार तक पहुंच रही है, ऐसा हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। अभी मयंक ने ही बताया, और उन्होंने कहा है कि लोगों में जो खासकर श्रद्धालुओं में अपार श्रद्धा और उत्साह का वातावरण निर्मित हो चुका है एक झलक पाने के लिए। पालकी द्वार पर असंख्य श्रद्धालु उपस्थित हैं, और हमारे प्रतिनिधि अखिलेश और बाथम जुड़ चुके हैं।
0: अखिलेश बाथम जी हमसे जुड़ चुके हैं, जो महाकाल मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े हैं और पालकी का सजीव वर्णन करने के लिए बिल्कुल प्रस्तुत है। अखिलेश जी नमस्कार।
2: नमस्कार। लाखों जो श्रद्धालुओं की जो इच्छा रहती है कि दर्शन करने की पालकी कब पालकी द्वार से बाहर आएगी, तो मैं बता दूं कि वो समय पूरा लगभग हो चुका है। अब वो पालकी का द्वार खुल चुका है के निकलने से पहले शिप के जो गढ़ होते हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं, और मैं देख रहा हूँ कि मेरी आंखों ठीक सामने छत्र जो पुष्प से जड़ा हुआ है बहुत ही मनोहर दृश्य है, और उसके साथ में यहाँ पर जो भक्तगण चल रहे हैं वो झूमने लगे हैं। माहौल में जिस माहौल का सभी लोग इंतजार कर रहे थे वो आखिरकार पल आ गया है। अब धीरे धीरे प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो लोग पालकी के साथ में चल रहे हैं उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से पालकी द्वार से मुझे पालकी नजर आ रही है, लेकिन अभी पालकी रुकी हुई है क्योंकि यहाँ काफी भीड़ है और धीरे धीरे उस भीड़ को आगे बढ़ाया जा रहा है
0: जी। और एक तरह से कहें कि आप इस अद्भुत दृश्य को देख रहे हैं, और आपकी आंखों से हमारे सारे जो श्रोता हैं वो इस दृश्य को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और
2: बाबा महाकाल की पालकी के दर्शन हो गए, पालकी द्वार से बाहर आ चुकी है, और आप

0: और इस समय अखिलेश जी पालकी जैसा आप बता रहे हैं कि बाहर निकल चुकी हैं और ये एक अद्भुत दृश्य होता है कि पूरा विश्व
1: महाकाल जी कितने मुस्कुरा रहे हैं। पालकी से मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर हूँ। बहुत ही मनोहारी दृश्य है। बाबा मुस्कुरा के अपने सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत पालकी है। पालकी को पूरे पुष्पों से सजाया गया है, विभिन्न रंगों के पुष्प है। ऐसा लग रहा है कि महाकाल जी के सिर पर फूलों का मुकुट सजा दिया गया है और यहाँ सभी लोग एक नजर उनको दर्शन करने के लिए आतुर है। हर कोई चाहता है कि उनके दर्शन कर ले, स्पर्श कर ले, लेकिन प्रशासन की मशक्कत है कि पालकी के पास किसी को ना जाने दिया जाए। पालकी ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ने नहीं दे रहे भक्तगण।
0: जी
1: कभी जगह काफी काफी उनको मशक्कत कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि पालकी यहाँ से आगे बढ़ सके। लेकिन पालकी अपनी जगह पर कभी आगे होती है, कभी पीछे होती है। लेकिन ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि भक्तों के भक्त इंतजार करते हैं। वो सोचते हैं कि जब यहाँ से निकले हम एक शब्द देख लें, साथ में स्पर्श भी कर लें। लेकिन क्योंकि हमारे जैसे पालकी बहुत नजदीक, बिल्कुल हमारे आंखों के सामने, मैं सभी को बताना चाहूंगा, बहुत ही मुस्कुराकर आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान जी। जो महाकाल जी का जो ग्रह रूप है वो सभी की तरफ देख रहे हैं और आशीर्वाद भी देख रहे हैं। प्रशासन ने थोड़ी सी अब सख्ती करना शुरू कर दी, ताकि इस क्रम को आगे बढ़ाया जा सके, पालकी को आगे बढ़ाया जाए। पालकी अब मुझे आगे बढ़ते हुए दर्शन देते हुए निकल रही है। अब धीरे धीरे पालकी साक्षी गोपाल मंदिर से होते हुए अब महाकाल मंदिर की सीढ़ियां हैं।
0: अखिलेश जी अखिलेश जी आपकी एक पंक्ति को मैं रोक रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ कि मुझे दर्शन देते हुए पालकी आगे बढ़ रही है। ये कितना सुंदर रूप है कि वो हमारे ईश्वर हैं, वो महाकाल राजा हैं और वो आपको दर्शन देने के लिए यानी प्रजा को दर्शन देने के लिए बाहर आ रहे हैं। ये एक धार्मिक, राजनैतिक और प्रजातांत्रिक रूप का बहुत अनुपम उदाहरण है और हम बहुत आनंदित हैं कि आपके जरिए हम उस बात को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और आत्मसात कर पा रहे हैं।
1: हम सब बहुत ही भाग्यशाली है कि अंबिका नाथ की सेवा कर रहे हैं। अंबिका नाथ हमारे, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, जाने का मौका मुझे मिला है।

सभी भक्तों को तरफ से इनको प्रणाम करता हूँ कि बाबा बाहर जाएगी सभी को खुश रखे रखे और अपनी प्रजा से जो आज जाने के लिए आज जो उज्जैन नगरी के मार्गों पर आज भ्रमण कर रहे हैं उस भ्रमण पर निकले सबका हाल चाल जो है सबको सुख समृद्धि धीरे धीरे पालिए आप उज्जैन की तरफ बढ़ रही है।

0: पते पर फिर से आगे बढ़ने की तैयारी है और रसा पार्टी के हमारे जो जवान है वो मुस्तैदी से धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे पालसी अब हमसे धीरे धीरे जहाँ पहले 5 कदम की दूरी थी 10-15-20 और अब लगभग 50 कदम की दूरी पर हो गई है और अपार जन समूह पालकी के आगे चल रहा है जो सीढ़ियों पर मैं देख रहा हूँ यहाँ से अगर हम पालकी द्वार की तरफ फिर करके खड़े हो तो देखते हैं सामने पालकी के आगे आगे अपार जन समूह चल रहा दिखाई दे रहा है और लोग धीरे धीरे तो उस अपार जन समूह को भी अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। आसमान की अगर बात करें तो आसमान में समय कम से कम 10 से 12 ड्रोन में देख रहा हूँ जो अलग अलग प्रकृति के हो सकते हैं। हर कोई चाहता है बाबा महाकाल जी कटा पर और देखिए एक ड्रोन ऊपर से महाकाल जी की पार्टी पालकी पर पुष्प वर्षा कर रहा है। बड़ा ही मनोहारी दृश्य है जब पुष्प वहाँ से ड्रोन के उस डिब्बे में से हिटर के नीचे गिरता है तो प्रतीत होता है की आसमान चाहे इंद्रदेव या सभी देवतागढ़ उस माध्यम से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और देखिए जहाँ से पालकी निकली है मैं आपको एक दृश्य भी बताना चाहता हूँ अपने शब्दों के माध्यम से जिस रास्ते से पालकी द्वार से पालकी गुजरी है वहाँ पर जो फूल बाबा महाकाल जी की पालकी पर जो बरसाए गए थे उन पुष्पों को यहाँ के लोग चुन रहे हैं और अपने आंचल में भर रहे हैं। कुछ महिलाएं कुछ लोग अपनी मुट्ठी में ले रहे हैं। बड़ी सौभाग्यशाली वो लोग हैं जो उस पालकी के रास्ते के पुष्पों को उठाकर अपने पलकों पर लगा रहे हैं उनको लेके अपने घरों में जाएंगे अपने घरों में श्रद्धा और समृद्धि की कामना करते हुए
1: जी जी धन्यवाद धन्यवाद अखिलेश जी। ये आस्था आनंद की भागीरथी का हम लाभ अपने श्रोताओं को इस प्रसारण के माध्यम से दे रहे हैं। अब एक अंतराल उसके बाद पुनः हम आपसे जुड़ जाएंगे।
2: ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं जनसंपर्क संचालनालय भोपाल के सौजन्य से।
3: विकास की मजबूत नींव सड़कों पर टिकी होती है क्योंकि बेहतर संपर्क ही आर्थिक प्रगति और जन सुविधाओं का आधार बनता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत में आधुनिक और विश्व स्तरीय सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से सड़क अधोसंरचना में अभूतपूर्व विकास हुआ है।
4: 12 साल में मोदी जी के शासन काल में पानी बिजली सड़क अब आधुनिक समय के हिसाब से पूरे देश में मध्यप्रदेश सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में से एक बना है।
3: वर्ष 2025-26 में 4,078 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण करने के साथ 48,178 करोड़ रुपए की 73 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन है। इसी तरह 6-लेन मार्ग और उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे प्रदेश की विकास रफ्तार को नई दिशा दे रहा है। जबकि मजरा टोला सड़क योजना के अंतर्गत 30,900 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति दी गयी है।
5: नदियाँ केवल जल की धाराएं नहीं होती वे सभ्यता समृद्धि और भविष्य की वाहक होती हैं। देश में जल सुरक्षा नदी जोड़ों परियोजनाओं और सिंचाई के विस्तार के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाकर विकसित भारत के निर्माण का दृढ़ संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। आज मध्य प्रदेश बहती धाराओं को विकास की नई दिशा देकर आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा का मजबूत आधार तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में अंतर्राज्यीय नदी जोड़ों परियोजनाओं से खेतों गांवों और शहरों तक पर्याप्त सिंचाई और पीने का पानी पहुंचाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।
6: पार्वती काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के लिए और राजस्थान के लिए दोनों के लिए वरदान साबित होगी।
5: महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के पूरा होने पर प्रदेश में सिंचाई का दायरा वर्ष 2028-29 तक लगभग 55 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
7: नदी जोड़ो अभियान से किसान को सिंचाई का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी से किसान की तरक्की होगा।
5: नदियों को जोड़कर समृद्धि की नई धारा बहा रहा है मध्य प्रदेश।
3: ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलवाकर जमीन विवादों पर विराम लगा रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश में सुशासन स्थापित करती स्वामित्व योजना को प्रभावी गति दे रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव।
8: जिसका मकान गांव में बना है उसको भी स्वामित्व का वही अधिकार है जो नगर वाले को है। ये बराबरी का अधिकार अगर मिला है तो माननीय मोदी जी के माध्यम से मिला।
3: प्रदेश में 68.11 लाख अधिकार अभिलेख तैयार हो चुके हैं जिनमें 48.32 लाख निजी स्वत्व अभिलेख शामिल है। इन संपत्तियों का लगभग 3800 करोड़ रुपए का पंजीयन शुल्क भी राज्य सरकार वहन करेगी। निःशुल्क पंजीयन की अभिनव पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। ई संपदा पोर्टल से प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी। अब ग्रामीणों की संपत्ति कानूनी पहचान के साथ बैंक ऋण स्वरोजगार और आर्थिक समृद्धि का मजबूत आधार बनेगी। स्वामित्व से समृद्धि, अधिकार से आत्मनिर्भरता।
9: नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है बाबा महाकाल की इस राजसी सवारी के आंखों देखा हाल में। और महाराज की सवारी मंडपम से निकल चुकी है और अपने मार्ग पर लगातार अग्रसर हो रही है। लोग आतुर हैं उनका दर्शन पाने के लिए, लोग आतुर हैं उनको फूल चढ़ाने के लिए, लोग आतुर हैं उनकी एक झलक पाने के लिए। और सवारी मार्ग पर ज्यों-ज्यों पालकी आगे की ओर बढ़ रही है, लोगों का ध्यान लगातार उनकी ओर हो रहा है। श्रद्धालु देश के तमाम कोनों से आए हुए हैं, लोग एक झलक पाना चाहते हैं बाबा महाकाल की, राजाधिराज अपने राजा की, जो उनका हालचाल जानने के लिए आए हैं। और अब हम ले चलते हैं आपको मयंक जी के पास। मयंक जी, सवारी कहां तक बढ़ गई है और लोगों का उत्साह किस तरह का है?
10: उत्साह उल्लास अद्भुत है, अद्भुत अवर्णनीय अविस्मरणीय है। इस समय कालकी चंद्रमौलेश्वर के विग्रह को विराजमान करके महाकाल मंदिर के ठीक बाहर है। रत्ता पार्टी ने पूरा कवर कर रखा है इस समय पालकी को, और अभी अभी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया सशस्त्र पुलिस बल की टुकड़ी के द्वारा। साथ ही पुलिस बैंड ने गार्ड ऑफ ऑनर की बहुत ही सुमधुर धुन बजाई। और इस समय हम जो देख पा रहे हैं और श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आसमान से गुलाब के फूल की पंखुड़ियां बरस रही है, और ये वो क्षण है, ये वो समय है जब राजा अपने प्रजा के बीच पहुंच चुके हैं। जो सामान्य जन काफी समय से पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे थे, अपने बाबा का प्रतीक्षा कर रहे थे राजा की राज के आने का, वो क्षण वो पल वो समय आ गया है। क्योंकि इस समय महाकाल भगवान चंद्रमौलेश्वर के विग्रह के स्वरूप में रजत पालकी में बैठकर अपनी जो पूरी राजसी सवारी है उसके मार्ग।
9: मयंक जी, ये जो राजसी सवारी है इसमें राज्य सरकार का एक प्रोटोकॉल होता है, तो वो क्या प्रोटोकॉल है? किस तरह से एक राजा जब प्रजा का हाल जानने के लिए, एक सेनापति प्रजा का हाल जानने के लिए अपने लाल लश्कर के साथ निकलते हैं, तो वो प्रोटोकॉल किस तरह का आपको नजर आया?
10: देखिए, हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि महाकाल में, उज्जैन में ये मान्यता है कि राजा तो सिर्फ महाकाल ही है, और महाकाल राजा जब प्रजा के बीच पहुंचते हैं तो पुलिस विभाग की प्रोटोकॉल के हिसाब से जो गार्ड ऑफ ऑनर किया जाता है, जैसे भी किसी विशिष्ट अतिथि को प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, राजा जब प्रजा के बीच पहुंचते हैं तो वो सशस्त्र पुलिस बल की टुकड़ी ने सलामी दी। हमने देखा कि अस्पताल हुई जो दल है उसके कप्तान ने सैल्यूट की मुद्रा में बाबा महाकाल को सलामी दी, गार्ड ऑफ ऑनर की धुन बजाई गई। और इस समय पालकी मंदिर के बिल्कुल बाहर है और महाकाल चौराहे की ओर अग्रसर हो रही है, जो हुजूम है श्रद्धालुओं का। मार्ग के दोनों ओर बैरिकेड्स में हर कोई एक झलक पा लेना चाहता है अपने बाबा की, हर कोई एक क्षण निहार लेना चाहता है अपने महाकाल को। और आज श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि जन्म कॉलेज बाबा का जो रूप है, जो स्वरूप नजर आ रहा है वो अनूठा है, एकदम मुस्कुराता हुआ विग्रह नजर आ रहा है, जैसे बाबा खुद अपने प्रजा को ये दिलासा देने आए हो, इस बात का आश्वासन देने आए हो कि मैं तुम्हारे बीच आया हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यहाँ मैं आपको बता दूँ चतुर्वेदी जी, की मैं रत्ता पार्टी के साथ था, बिल्कुल रजत पालकी के नजदीक चल रहा हूँ, और जहाँ पर आस पास दोनों ओर बैरिकेड में खड़े श्रद्धालु है, वो कोई मोबाइल से अपने बाबा की तस्वीर ले लेना चाहता है, कोई वीडियो बना लेना चाह रहा है, क्योंकि हम डिजिटल क्रांति के दौर में जी रहे हैं, तो हर कोई डिजिटल स्मृतियां सहेज लेना चाहता है अपने बाबा की, क्योंकि अगला सावन आएगा जुलाई 2027 में, और पहली सावन की सवारी होगी 24 जुलाई 2027। तो आज का ये आखिरी मौका कोई गवाना नहीं चाहता, जब पूरे राजकीय आठ बार के साथ बाबा अपनी प्रजा के बीच पहुंचे हैं।
9: हर कोई

0: लाया हर कोई लालायित है बाबा के स्पर्श को छूने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, उनको नैवेद्य चढ़ाने के लिए, तो ये क्या आम लोग कर पा रहे हैं या किसी तरह का कुछ प्रतिबंध भी है या कुछ अंग्रेजी में लिमिटेशन भी है इस तरह का?
1: अनुशासन की बात करें तो वो अनुशासन का भाव होता है, वहाँ नागरिकों में साफ दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि पुलिस प्रशासन ने जिलाधीश रोशन कुमार सिंह ने अपील की थी कि कोई भी श्रद्धालु जनता पार्टी का जो अनुशासन है उसका उपभंग ना करे और पूर्ण अनुशासन के साथ बाबा का दर्शन करे। तो हम देख पा रहे हैं कि बाबा की पालकी के दोनों ओर तीन लेयर में रसा पार्टी ने घेरा बना रखा है, सुरक्षा का घेरा, और किसी भी श्रद्धालु को अनुशासन तोड़ते हुए उस सुरक्षा घेरे के अंदर प्रवेश नहीं किया जा रहा। लेकिन तो मार्ग की दोनों ओर जो घर है, जो ताले हैं, उनकी बालकनी से पुष्प वर्षाएं हो रही है। और यकीन मानिए चतुर्वेदी जी का श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि सड़क अब फूलों से ढक गई है। सड़क जो है वो अपने सामान्य स्वरूप में नजर नहीं आ रही है, पूरे सड़क पर फूलों की एक चादर सी बिछ गई है अपने बाबा की अगुवाई करने के लिए।
0: जी जो क्रम होता है मुखौटों का हर सवारी के साथ आगे बढ़ता जाता है, जो आज की राशि सवारी है उसमें अगर हमारे श्रोताओं को, हमारे श्रद्धालुओं को, हमारे उन श्रोताओं के लिए आप बता सके जो घर बैठे बाबा की जितनी सवारियां निकली हैं उनके हर स्वरूप का आनंद लेना चाहें, तो वो क्रम कौन सा है, क्या वो क्रम आप देख पा रहे हैं अपनी आंखों से?
1: देखिए मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि मैं इस समय पालकी के साथ साथ आगे बढ़ रहा हूं और पालकी में चंद्र मौलेश्वर के स्वरूप में बाबा विराजमान है और इनके पीछे जो आज छह अलग अलग मुखारविंद देखने को मिलेंगे, इसमें नंदी पर उमा महेश सवार है, इसी के साथ गरुड़ रथ पर शिव तांडव के स्वरूप में बाबा दर्शन दे रहे हैं और इन्हीं के साथ साथ जो अलग स्वरूप घटाटोप के स्वरूप घटाटोप का मुखारविंद भी आज बाबा का श्रद्धालुओं को, जो नागरिक है जो दोनों ओर खड़े हैं उनको देखने को मिलेगा।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी, इस अद्भुत, इस अलौकिक, इस आनंदित करने वाले वर्णन को हमारे श्रद्धालुओं तक पहुंचाने के लिए और उनको आनंद देने के लिए।
1: स्थान अपडेट कर दूं कि सवारी इस समय महाकाल चौराहे पर पहुंच चुकी है। महाकाल चौराहे से बाई ओर टर्न लिया जाएगा जहां पर महाकाल घोषी खाती गुदरी चौराहे होते हुए सुप्रा नदी के तट पर रामघाट पहुंचने के लिए अब सवारी चले चले अग्रसर हो रही है, फूल बरस रहे हैं, श्रद्धालु जय जोर सुनाई दे रहे हैं। जहां तक मेरी नजर जाती है वहां तक इन श्रद्धालुओं का हुजूम है, कोई जय श्री महाकाल कह रहा है, कोई महाकाल राजा का जय घोष कर रहा है और हरेक की आंखों में जो प्रतीक्षा की जो ताकत थी अपने बाबा को निहारने की, अब वो सुकून भरी नजरें देखने को मिल रही है क्योंकि लोगों ने अपने बाबा को निहार दिया है। डब्लू की ध्वनि भी सुनाई दे रही है, कोई डब्लू बजा रहा है, कोई झाड़ बजा रहा है और बाबा जय चले अपने राजकीय घाट बात के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद मयंक इस अद्भुत अलौकिक प्रसंग को हम तक पहुंचाने के लिए। और हमारे साथी सवारी मार्ग से आयुषी मिश्रा हमसे जुड़ रही हैं। आयुषी क्या देख पा रही हैं आप बताइए, क्या दृश्य है वहां पर?
2: जय श्री महाकाल श्रोताओं, मैं आयुषी मिश्रा इस समय उपस्थित हूँ गुदरी चौक पर और बाबा महाकाल के इंतजार में सभी श्रद्धालु बहुत बेसब्री से यहाँ

0: बाबा का इंतजार कर रही है और इन जय घोषों के बीच जो ढोल नगाड़ों की गूंज है, डमरू की ध्वनि और शंखनाद, भक्ति में डूबे तो ये हजारों ऐसा प्रतीत होता है कि बैली बिल्कुल चिरमई हो गई है और इस समय मार्ग दोनों ओर श्रद्धालु की लंबी कतारें हैं और सभी हाथ धोकर बाबा की झलक पाने को आतुर है। कोई पुष्प लिए खड़ा है, कोई अमृत के मध्य में उठाकर बैठा है, घरों की सज बालकनियां गलियां सभी और जहां तक दूसरी लाती है श्रद्धा का एक विशाल और
1: आयुषी, हमें आपकी आवाज थोड़ा कम मिल रही है। हम चाहते हैं कि आप और उच्च स्वर में हमारे श्रोताओं की ऊर्जा बढ़ाएं, बाबा महाकाल के इस अद्भुत दृश्य को और ऊर्जावान होकर के बताएं। जरा और जोर से बोलिए और ताकि हमारे श्रद्धालु आपकी बातों को सुन सकें। आयुषी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस अलौकिक दृश्य को हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, जन के एसपी प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ इस समय रेडियो सेट पर हैं, आइए उनसे हम कुछ जानकारी प्राप्त करें।
3: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन के पवित्र माह में अभी तक सवारियां हो चुकी हैं और सभी में हमने लगातार व्यवस्था बना के रखी। राजसी सवारी क्योंकि बड़े मार्ग पर होती है और उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उसको लेकर जगह जगह पर डाइवर्जन्स क्रिएट किए जाते हैं। पार्किंग व्यवस्था प्रोग्रेसिवली क्रिएट की जाती है, कारकराज पार्किंग, शंकराचार्य मार्ग पर पार्किंग, उसके अलावा हरिफाटक और आसपास के इलाकों में भी पार्किंग क्रिएट की जाती है। जगह जगह आपको साइन बोर्ड्स और मैसेजेस के माध्यम से बताया जाएगा, सोशल मीडिया और मीडिया पे पहले से शेयर किया। जगह जगह साइन फ्लैक्स बोर्ड्स के माध्यम से डाइवर्जन्स के बारे में सभी को जानकारी दी जाती है। इसमें करीब 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी डिप्लॉयड रहते हैं और महिलाओं की भीड़ को देखते हुए करीब 200 से ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी और करीबन 350 के आसपास का यातायात बल भी पूरे क्षेत्र में डिप्लॉय किया जाता है, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को, खासकर महिलाओं और बच्चों को और वरिष्ठ नागरिकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखिए, नाग पंचमी जो इस वर्ष आई थी वो 17 अगस्त को थी और उस दिन सावन का सोमवार भी था और भगवान महाकाल की सवारी भी थी। उस दिन भी हमने यही व्यवस्था को एक्सपेरिमेंट किया था, जबकि उस दिन ज़्यादा भीड़ थी, करीब 15 लाख से ज़्यादा लोग उस दिन उज्जैन शहर में बाहर से आए हुए थे हमारी खुद की जनसंख्या को छोड़कर। उसके बावजूद सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुचारू रहीं, कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ देर के लिए लोगों को होल्ड कराना पड़ा, यातायात जाम की स्थिति लगी, लेकिन उसको तत्काल ही 10-15 मिनट के अंदर ही हमारी टीम के द्वारा रिजॉल्व कर लिया गया। इसी प्रकार हम लोगों ने नागपंचमी की व्यवस्था को देखते हुए आने वाले समय में जो राजसी सवारी है उस दिन और वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए इसी तरह की पूरी प्लानिंग की हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं पर भी किसी प्रकार की यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। ये बात सही है कि कई जगह पे हम लोगों को बैरिकेड के माध्यम से रोड्स को ब्लॉक करना पड़ता है जिससे सवारी मार्ग में किसी प्रकार का विघ्न पैदा ना हो, परंतु उसको भी सवारी के निकलने के तुरंत बाद रिलीज कर दिया जाता है, तो कहीं पर भी बहुत देर तक जाम की स्थिति क्रिएट नहीं होती। मैं सभी लोकल हमारे उज्जैन के साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि बाबा महाकाल की राजसी सवारी में बहुत लोग बाहर से आते हैं और ये सभी हमारे अतिथि हैं, तो खुले हाथ से खुले मन से इनका स्वागत करें। यथासंभव आप जो व्यवस्था इनके लिए कर सकते हैं वो व्यवस्था करें। अपने वाहनों को जिनका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, चाहे टू व्हीलर हैं चाहे फोर व्हीलर हैं, उनको अनावश्यक सड़क पर खड़ा ना करें या यूज ना करें। हमें उस दिन आप जैसा जानते हैं कि बाहर से बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं तो उनके लिए मार्ग व्यवस्था प्रशस्त करनी होती है। इसी के साथ साथ मैं आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से समय से पूर्व ही सभी प्रकार की जानकारियों को प्रसारित कर देते हैं, कृपया उन सभी को संज्ञान में लें। इसके साथ ही जो निर्देश जो डायरेक्शंस ड्यूटीरत कर्मचारियों द्वारा आपको दिए जाते हैं उसका कृपया अक्षरक्षा पालन करें। ये सभी व्यवस्थाएं आपके सुंदर सुखद और सुलभ दर्शन के लिए बनाई गई हैं और इसमें हमारा प्रयास रहता है कि किसी भी व्यक्ति को 40 मिनट 45 मिनट से ज्यादा का समय ना लगे भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए। और सवारी में भी आप अपने निर्धारित स्थान से आराम से सवारी के दर्शन कर पाए, इस तरह की व्यवस्था हमने पिछली दोनों सवारियों में भी सुनिश्चित की है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद एसपी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।
1: जय श्री महाकाल। ये थे प्रदीप शर्मा जी, उज्जैन के नगर पुलिस अधीक्षक। और अब हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो दूसरे प्रतिनिधि अलग अलग सवारी मार्ग पर हैं, हम उनसे जुड़ सकें। महाकाल की राजसी सवारी लगातार आगे बढ़ती जा रही है, भजन मंडलियां उनके साथ भजन गाते हुए अपना कर्तव्य दिखाते हुए, झांझ भजीरा लगातार बजाते हुए, महिलाओं के दल भी साथ में हाथ से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।
4: हम भी महाकाल की स्तुति में कुछ सहयोग करें
1: जी। तो बाबा महाकाल की स्तुति हम अपने श्रोताओं तक, हम अपने श्रद्धालुओं तक पहुंचाते हैं। नमोस्तु अनंत रूपाय नीलकंठ नमोस्तुते अविज्ञात स्वरूपाय कैवल्याय मृताय च नान्तं देवा विजानन्ति यस्य तस्मै नमो नमः यम ना वाचः प्रशंसति नमस्तस्मै चिदात्मनै योगिनो यम हृदः कोशे प्रणिनाथ प्रणिधानेन निश्चलाः ज्योति रूपं प्रपश्यन्ति तस्मै श्री ब्रह्मणो नमः।
4: कालात् पराय कालाय स्वेच्छाय पुरुषाय चो गुणत्रय स्वरूपाय नमः प्रकृति रूपणे।
1: हे नीलकंठ, आपके अनंत रूप हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आपके स्वरूप का यथावत ज्ञान किसी को नहीं है। आप कैवल्य एवं अमृत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार।
4: जिनका अंत देवता नहीं जानते उन भगवान शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। जिनकी प्रशंसा गुणगान करने में वाणी असमर्थ है उस चिदात्मा शिव को नमस्कार है।
1: योगी समाधि में निश्चल होकर अपने हृदय कमल के क्रोध में जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करते हैं उन श्री ब्रह्म को नमस्कार है।
4: जो काल से परे काल स्वरूप स्वेच्छा से पुरुष रूप धारण करने वाले त्रिगुण स्वरूप तथा प्रकृति रूप हैं उन भगवान शंकर को नमस्कार है।
1: विष्णुवे सत्व रूपाय रजो रूपाय वेद से तमो रूपाय रुद्राय स्थिति सर्गांत कारिणे नमो नमः स्वरूपाय पंच बुद्धीन्द्रियात्मने चित्त्यादि पंच रूपाय नमस्ते विषयात्मने नमो ब्रह्मांड रूपाय तदंत वर्तिने नमः अर्वाचीन पराचीन विश्व रूपाय ते नमः अचिंत्य नित्य रूपाय सद सत्पतये नमः नमस्ते भक्त कृपया स्वेच्छा विस्कृत विग्रह
4: तव निश्वसन्ति दिवेरास्त वेदो अखिलं जगत विश्व भूतानि ते पादः शिरो द्यौ समर्वत। अब हमारे साथ मयंक शुक्ला जी जो कि सवारी मार्ग पर महाकाल मंदिर के आगे मुख्य द्वार से गुदरी चौराहे की तरफ जाती हुई सवारी के साथ है, हम उनसे बात करते हैं। हेलो मयंक शुक्ला जी, जय श्री महाकाल।
5: जय श्री महाकाल।
4: और अब
5: हम बता दें
4: जी
5: अभी महाकाल की रजत पालकी बिल्कुल 24 खंभा माता मंदिर के सामने है और जो नियत मार्ग है उसके पूरे आगे बढ़ रही है। इस समय 24 खंभा माता मंदिर के ठीक सामने पालकी को थोड़ा सा विराम दिया गया जहां के श्रद्धालुओं के द्वारा पूजन अर्चन किया जा रहा है, आरती की जा रही है और सवारी के जो मार्ग है उसके दोनों ओर स्वागत मंच बनाए गए हैं। स्वागत मंचों से सतत पुष्प वर्षा का दौर जारी है। हर ओर से जहाँ तक नजर जाती है वहाँ सिर्फ और सिर्फ फूल बरसते नजर आ रहे हैं।
4: अच्छा, और ड्रोन से भी पुष्प वर्षा हो रही है।
5: जी हाँ, हमने देखा कि जैसे ही सवारी मंदिर से बाहर आई जहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया वहाँ लगभग 10 से 15 ड्रोन जो गुलाब की पंखुड़ियों को ड्रोन के माध्यम से पुष्प वर्षा करते नजर आए और इसके बाद नियत मार्ग महाकाल चौराहे से सवारी आगे बढ़ चुकी है। इस समय 24 खंभा माता मंदिर भी क्रॉस कर लिया है और गुदरी चौराहे से लगभग 15 मीटर दूर है सवारी पालकी और पालकी के ठीक पीछे हाथी पर
6: हाथी पर मन महेश के स्वरूप में बाबा महाकाल विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जो मुखारविंद है, ऐसा प्रतीत होता है कि बाकी जो मुखारविंद है वो शिप्रा नदी पर पूजन अर्चन के बाद सवारी के साथ सम्मिलित होंगे।
1: मयंक जी, जो हम देख पा रहे हैं पूरे सवारी मार्ग में बहुत सारे भक्तगणों ने अलग अलग मुखौटे पहन रखे हैं। किसी ने किसी राक्षस का रूप धारण कर रखा है, किसी ने शिव के गण का रूप धारण कर रखा है, कोई स्वयं शिव स्वरूप अपने आप को दिखाना चाहता है, किसी ने दूसरे तरह के मुखौटे पहन रखे हैं, किसी ने रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर अपने आप को आकर्षित करने का काम किया है। ये सब क्या कहना चाह रहे हैं? ये मुखौटे इस भक्ति परंपरा में क्या संदेश देना चाहते हैं?
6: देखिए, भक्ति के तो रूप अनेक है। अपने बाबा को निकालने का और बाबा की सवारी को राजसी स्वरूप प्रदान करने के कई तरीके हो सकते हैं। और जैसे कि हम तो सभी जानते हैं कि बाबा भोले भंडारी तो भूतों की प्रेतों की टोली लेकर हमेशा साथ चलते आए हैं। तो जब बाबा महाकाल एकमात्र दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग, सालों के काल महाकाल

0: जब प्रजाति दिन पहुँचे हैं तो मानिए स्वरूप कुछ ऐसा नजर आ रहा है सवारी का कि भूतों की टोली भी बाबा की अगवानी कर रही है। कोई प्रेत का स्वरूप धारण किया है, किसी ने अलग अलग किस्म के मुखारविंद मुखौटे जिसमें देवी देवताओं के स्वरूप भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाबा तो सबके बाबा है। इन्हें स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी जिनकी पूजन अर्चन की, हर देवता ने जिनकी पूजन अर्चन की। ऐसे बाबा जब अपनी प्रजा के बीच पहुंचे हैं तो कोई कृष्ण का मुखौटा कृष्ण का स्वरूप धारण करके चल रहा है, तो कोई भूत प्रेत बनकर चल रहा है, जाने की कोशिश की जा रही है। और जो सवारी का स्वरूप है उसको और ज्यादा उल्लासमय और ज्यादा आकर्षक बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
1: नायक जी, हम देख पा रहे हैं, हमें नजर आ रहा है कि बाबा महाकाल की जो पालकी है उसमें विशेष प्रकार के प्रकाश की भी व्यवस्था की गई है। ये प्रकाश के रंग किस तरह के हैं, इनमें किस तरह की सजावट की गई है, क्या सजावट को लेकर भी आपके पास कोई जानकारी है? ऐसा सुनने में आया है कि जब बाबा की सवारी वहाँ सभा मंडपम में सजती है तो इंदौर से एक विशिष्ट अतिथि, एक विशेषज्ञ आते हैं जो इनकी सवारी को सजाते हैं, क्या आप हमें बता पाएंगे इनके बारे में?
0: जी जी बिल्कुल, श्रोताओं को हम बता दें कि पालकी, जैसा कि मैं बिल्कुल पालकी के साथ साथ जो रस्ता पार्टी का सुरक्षा घेरा है उसी में बाबा के पालकी के साथ साथ चल रहा हूँ और देख पा रहा हूँ कि पालकी पर विशेष पुष्प सज्जा की गई है। और ये पुष्प सज्जा में सेवंती के फूल भी नजर आ रहे हैं, गुलदावती के गुलाब भी लगे हैं, इसके साथ गुली के फूलों का प्रयोग भी किया गया है, यहाँ तक कि कमल के फूल की सजावट भी यहाँ पर देखने को मिल रही है।
2: और प्रकृति और जी प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते दे रही है पालकी।
0: जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ आप देख, मैं कर दूँ दिवारी जी आपको कि सवारी ने गुजरी चौराहे से टर्न ले लिया है, जो महाकाल घाटी गुजरी चौराहे के नियत मार्ग से होते हुए यमुना नदी के घाट पर सवारी को पहुँचना है। ये सवारी मार्ग में इस समय पालकी की जो लोकेशन है वो गुजरी चौराहे से पालकी टर्न ले चुकी है शिप्रा नदी की ओर।
1: महेश जी बहुत अद्भुत, बहुत अलौकिक और अविश्वसनीय ये दृश्य है जो आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचा पा रहे हैं, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुदर्शन अयाचित जी अब हमारे साथ हैं। सुदर्शन जी आप बताएं क्या अलौकिक नजारा है आप जो देख पा रहे हैं?
3: जी

0: त्रिभुवन वंदिता मां चित्रा और आप सब अगली आवाज सुनने जा रहे हैं इंडियाज गॉट टैलेंट की फिफ्थ सीजन के विनर और प्रदेश का गौरव आदरणीय डॉक्टर रागिनी मुखर्जी को
1: जी। रागिनी जी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री महाकाल।
2: जय श्री महाकाल। रागिनी मक्खर का स्वागत करते हुए हम आपसे ये कहना चाहेंगे थोड़ा सा स्वर ऊंचा करें।
3: कहना चाहूंगी कि एक आर्टिस्ट के लिए कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात है

0: आपके नाद ब्रह्म ने तो श्रावण महोत्सव में भी प्रस्तुतियां दी हैं।
1: जिससे हमें मौका मिला है सभी को धन्यवाद, महाकाल प्रशासन को धन्यवाद देते हैं और आकाशवाणी से हम सभी भक्तजनों को हर हर महादेव के नाम।
0: श्रावण महोत्सव में तो आपकी प्रस्तुति बहुत मनमोहक रही। रागिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुदर्शन जी और कुछ आप हमें बताना चाहते हैं, रामघाट पे किस तरह का दृश्य है, नदी में किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम है, नौका दल किस तरह से काम कर रहा है और जो बेदी बनाई जाती है नदी के किनारे वहाँ क्या तैयारियां चल रही हैं, कुछ बता पाएंगे आप?
2: वहाँ पर बहुत सुंदर फूलों की रंगोली बनाई गई है और परंपरा अनुसार यहाँ पर पंचोपचार पूजन होगा बाबा महाकाल का और

0: होते हैं आपके वो लगे हुए हैं लगातार, और वो जवान जो है पानी में उतरकर व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दत्त अखाड़ा की बहुत पुरानी परंपरा है। बाबा महाकाल की सवारी की आरती दत्त अखाड़ा और रामघाट दोनों ओर से होती है, और ये एक अद्भुत संयोग होगा जब दोनों ओर से आरतियां होंगी, चढ़ावीन की आवाज होगी और महाकाल का जयकारा गूंजेगा।
1: आपको
0: मिलवाने जा रहा हूँ उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री

0: स्वामी दिल मिला के।
1: देखिए ये अद्भुत संयोग है, स्वामी दिल मिला के मुस्कुरा के।
0: और मेरे साथ मैं देख पा रहा हूँ क्या गोपाल दास जो की विशेष कर्तव्य अधिकारी है सिंहस्थ के, वो यहाँ पर उपस्थित है और वे सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। आज इस संपूर्ण आयोजन को सजीव रूप से जन जन तक पहुंचाते हुए आकाशवाणी एक पुण्य का कार्य कर रही है। अपनी आंखें बंद कीजिए और मन से बाबा महाकाल को याद कीजिए।
1: जी सुदर्शन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अद्भुत दृश्य को हम तक पहुंचाने के लिए।
2: विवेक चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ हैं और क्या नजारा देख रहे हैं। विवेक चौरसिया जी जय श्री महाकाल।
3: जय श्री महाकाल पंडित जी, जय महाकाल।
2: जय महाकाल। तो क्या आप क्षिप्रा की उत्ताल तरंगों को देख पा रहे हैं?
3: मैं अभी यहाँ यहीं पर बिजली क्षेत्र में ही फंसा हुआ हूँ भीड़ के कारण।
2: हाँ हाँ
3: और मैं एक मकान की छत पे हूँ, 3 मंजिला मकान की छत पे
2: जी।
3: यहाँ से लंदन गैस के मिसाल जा रहे हैं सवारी का, चारों तरफ नरमुंड है भक्तों से, उनकी उनके सिर दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ भीड़ भीड़ दिखाई दे रही है
2: जी।
3: अभी अभी पालकी निकल कर गम में और उसके पीछे भगवान निकल कर रहे हैं, उनके भगवान का यहाँ पर स्वरूप विराजमान था। बैंक की जो आवाज सुन रहे होंगे बहुत ज्यादा से,
1: विवेक जी और आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरह का उत्साह लोगों में है, आसपास के जो रहवासी हैं उनमें कैसी उमंग है, किस तरह से वो लोगों का स्वागत कर रहे हैं मार्ग में आए हुए श्रद्धालुओं का? लगता है विवेक जी का संपर्क हमसे ठीक तरह,
2: उसका कारण ये है
1: नहीं हो पा रहा
2: है कि हम भीड़ में बहुत ज्यादा मतलब फंसे हुए हैं और कंजेशन है, इसलिए नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है, इसलिए हमारी बातचीत सीधी साफ नहीं हो पा रही है
1: जी। लेकिन सवारी का बढ़ना निरंतर जारी है
2: जी।
1: सवारी कुछ देर में रामघाट पहुंचेगी जहां पर उनका पंचोपचार किया जाएगा क्षिप्रा नदी के तट पर। नदी के दूसरी ओर जो अखाड़ा है
2: जी, दत्त का अखाड़ा,
1: वहाँ एक परंपरा है कि वो माँ क्षिप्रा को अपने पैरों से चलकर नहीं आ सकते, लिहाजा वो सामने से पूजा करते हैं, पड़ाबीन के धमाकों से उनका स्वागत करते हैं, राजाधिराज महाराज महाकाल का राजा के रूप में स्वागत करते हैं, उनके सम्मान का भाव जताने के लिए कड़ाबीन के धमाके जारी होते हैं और वहीं से उनकी आरती की जाती है। एक आरती क्षिप्रा के इस ओर होती है और दूसरी आरती क्षिप्रा नदी के दूसरी ओर से।
2: उनके तरफ जो दत्त अखाड़ा में आरती होती है वो शिव के उन स्वरूपों को, उस आनंद को प्रदर्शित करती है जिसमें वो कहते हैं कि आदि अनंत अनादि अखंड अभेद अखेद सुवेद बतावे, वो वेदों की ऋचाओं को इस तरह से उच्चारित करते हैं कि वो आधे क्षिप्रा के आधे दूर तक सुनाई देती है। हालांकि ध्वनि विस्तारक यंत्रों से तो सभी जगह सुनाई देती है। और वो कहते हैं कि ये अखाड़ा है अलख अगोचर रूप महेश को, और जोगी जति मुनि ध्यान न पावे, आगम निगम पुराण सवे इतिहास सदा जिनके गुण गावे, ऐसा वो दत्त अखाड़े की का इतिहास भी बताते हैं
1: जी। और हम देख पा रहे हैं उदित जी कि महिलाओं का दल एक जैसी पिंक कलर की, जिसको हम कहते हैं कि ये जो साड़ी का रंग है, और उसमें उन्होंने एक अद्भुत नजारा पेश किया है, नृत्य कर रही हैं, वो उमंग से भरपूर है, लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भगवान शिव के रूप में, माँ काली के रूप में अलग अलग रूप लोगों ने धारण कर रखे हैं और उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं है, उत्साह में कोई कमी नहीं है। ये 7 किलोमीटर का लंबा रास्ता है लेकिन ये पूरे 6 घंटे में पूरा होगा, लेकिन ना चेहरे पर कोई थकान है ना बैठने का भाव है, लगातार चलते रहो, बाबा महाकाल के साथ चलते रहो, उनका आशीर्वाद लेते रहो। और अब हमारे साथी अखिलेश बाथम हमसे जुड़ रहे हैं और हम जानेंगे कि अखिलेश जी आप अभी किस स्थान पर हैं और वहाँ क्या देख पा रहे हैं आप? जय श्री महाकाल।
4: चल रहा है ये जगह पक्षी बाजार यहाँ से अब पालकी अब राम घाट की तरफ बढ़ चुकी है और मैं देख रहा हूँ की छोटा सा मार्ग लगभग 10 फीट का रास्ता है, पूरे मार्ग में तो प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर रखी है लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक नजारा बहुत ही खूबसूरत देखने को मिल रहा है, वो नजारा ये है की दोनों ही तरफ हमारे भक्तों का उद्यम खड़ा हुआ है लेकिन कई बार बैरिकेडिंग इन भक्तों को नहीं रोक पाती, लेकिन यहाँ पर जो भक्त खड़े हैं वो स्वतः अनुशासित होकर खड़े हुए हैं और धीरे धीरे जो अखबारी मार्ग में जो पालकी के साथ साथ में जो अन्य गाड़ियां हैं उनको बड़े ही तरीके से गुजरने दे रहे हैं। यहाँ पर जो हमें दोनों तरफ जो मकान बने हुए हैं उन मकानों से लोग फूल मालाएं फेंक रहे हैं, नोटों की मालाएं फेंक रहे हैं और जो उमा महेश की जो ऊपर पुजारी बैठे हुए हैं वो भी बड़े श्रद्धा भाव से उन फूलों की मालाओं की तरफ फेंक रहे हैं। मैं देख रहा हूँ हमारी एक बहन बहुत देर से उनसे निवेदन कर रही है कि कुछ पुष्प हमारी झोली में डाल दें, उन्होंने उनका शायद नहीं देख पाए लेकिन हमारे जवान जो पुलिस जवान जो तैनात उन्होंने निवेदन किया पुजारी से और उनकी माला लेकर उनके मनोरथ पूर्ण किए। तो ऐसे ऐसे दृश्य जो देखने को मिल रहे हैं, आस्था का जो जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो बहुत ही कहीं ना कहीं हमारी आंखों को बहुत ही खूबसूरत पल लग रहा है और हम लोग धीरे धीरे आपको महाकाल जो हमारी जो यात्रा है हम जो सवारी मार्ग में विभिन्न वाहन चरण के साथ में धीरे धीरे रामघाट की तरफ बढ़ रहे हैं।
1: अखिलेश जी, अभी हमें एक दृश्य नजर आ रहा था जिसमें 5 पंक्तियां थीं, शुरू की 4 पंक्तियों में पुरुष हैं, वो ढोल नगाड़े के साथ एक सुर निकाल रहे हैं और सबसे आगे की पंक्ति में सफेद कपड़ों में जो महिलाएं हैं वो नृत्य कर रही हैं। क्या इस तरह के नजारे आप देख पा रहे हैं और उनके विषय क्या है, उनकी थीम क्या है, किस धुन पर वो नृत्य कर रही हैं?
4: देखिए जिस जगह से मैं सवारी के साथ साथ में इस समय मुझे यहाँ पर जो है वो जन समूह अपार जन समूह निकल दिखाई दे रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2028 तक कौन इंतजार करे, सिंहेश्वर यहीं पर आ गया है। आज उज्जैन की नगरी में सिंहेश्वर जैसा माहौल नजर आ रहा है और यहाँ पर जो जिस समय मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत ही जो श्री नारायण बद्री नारायण ये मार्ग मंत्री यहाँ पर है वहाँ मार्ग पे हम लोग गुजर रहे हैं क्योंकि संतरा रोड है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल हमारे आस पास नहीं है और जो यहाँ पर जो अगर कुछ दूर दूर तक मैं देख पा रहा हूँ तो भक्तों की श्रद्धा का सैलाब दिख रहा है, अपार जल समूह दिख रहा है और दोनों तरफ से फूलों की जो पुष्प वर्षा की जा रही है वो मैं देख रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस समय में हम लोग सवारी मार्ग के मार्ग में चल रहे हैं, नंगे चल रहे हैं, हमारे पैरों में ऐसा लग रहा है कि शायद जमीन नहीं हमारे पैर ढूंढ पा रहे हैं, शायद पूरी जमीन पुष्पों से उन्होंने पाट रखी है भक्तों ने। यहाँ पर पूरा जो जगह है वो फूलों से पटी पड़ी हुई है तो इस तरह की जो बहंगम नजारे हम लोग देख रहे हैं उसको आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं कहना चाहूँ माध्यम से जो श्रोता लोग अपने घरों में बैठे हुए बहुत ही भाग्यशाली है वो ये शब्दों के माध्यम से इस सवारी का वर्णन कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं लेकिन आप तक हम पहुंच रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।
2: जय श्री महाकाल। और विजया जैन जी, विजया जैन जी हमसे अब संपर्क कर रही है, कहाँ है विजया जैन जी? जय श्री महाकाल।
5: जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मैं विजया जैन इस वक्त विजया नहीं देखभाल उज्जैन पर हूँ और यहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ है दोनों तरफ और बैरिकेड के दोनों साइड बहुत खचाखच भरे श्रद्धालुओं की भीड़ मुझे नजर आ रही है और जहाँ तक मेरी नजर जा रही है छत है, छज्जे हैं और छतों तक और घरों के अंदर तक श्रद्धालु मुझे इस सवारी का नजारा देखने के लिए भगवान महाकाल की राजसी सवारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं।

0: मालते के जो लोटे होते हैं जो पुराने समय में प्रचलित हुआ करते थे उन लोटों का प्रयोग किया गया है और उससे उस शुद्ध पेयजल के माध्यम से श्रद्धालुओं की सेवा की जा रही है और ये पर्यावरण की सुरक्षा में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और साथ ही यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ की कुछ 10-12 लड़कियों का ग्रुप मुझे दिखाई दिया और जब मैंने उनसे बात करी तो वो सभी आईटी के स्टूडेंट्स है, आईटी में जॉब करते हैं और उन्होंने इस शाही सवारी को यूट्यूब पर देखा था और यूट्यूब पर देखने के बाद वो इस सवारी को अटेंड करने के लिए उज्जैन के पवित्र धरा पर अवंतिका के पवित्र धरा पर उपस्थित हुई है और सबसे बड़ी बात ये कि इस 10-12 लड़कियों के ग्रुप में कुछ लड़कियां मुस्लिम भी है, कुछ हिंदू है, कुछ ब्राह्मण है, अलग अलग जाति की, अलग अलग संप्रदाय की और अलग अलग धर्म को मानने वाली लड़कियां इस ग्रुप में मुझे नजर आई है। ये महाकाल के भगवान महाकाल की शाही सवारी ये बताती है कि भगवान का दरबार हर धर्म के लिए, हर वर्ग के लिए और हर संप्रदाय के लिए खुला हुआ है और हमारा भारत देश अनेकताओं में एकता का देश है। सर्व स्वभाव की अनूठी मिसाल भगवान महाकाल की शाही सवारी में मुझे देखने को मिली है और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी कि एक बहुत ही
1: विजय आप बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस जानकारी के लिए। और हमारी एक और साथी हमसे जुड़ रही हैं, आयुषी आप क्या देख पा रही हैं, कहां पर हैं इस समय आप?
2: मैं गुजरी चौक से आगे बढ़ चुकी हूं और सवारी से कुछ दूरी पर हूं लेकिन अपनी आंखों के सामने बहुत ही अद्भुत दृश्य देख पा रही हूं। बाबा की पालकी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है मार्ग पर उपस्थित जो श्रद्धालु हैं उनका उत्साह और भी बढ़ता जा रहा है और जो श्रोता हूँ जो राजकीय सवारी का वैभव है राजा और प्रजा का ये जो मिलन है परंपरा और वर्तमान का जो मिलन है और भक्ति और लोक जीवन का ऐसा अद्भुत संगम आज मैं देख पा रही हूँ अपनी नजरों के सामने। उज्जैन को वास्तव में विशिष्ट बनाता है ये और उज्जैनी की पहचान आज उसकी सड़कें भवन और बाजार से नहीं हो रही है आज इस नगरी की पहचान उस सामूहिक आस्था से हो रही है जो हर कुछ क्षणों में एक ही स्वर बनकर उठती है जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल। और इतना अद्भुत ये दृश्य है लाखों श्रद्धालु अपनी आंखों में आंसू लिए हैं जो श्रद्धालु गर्भगृह तक नहीं पहुंच पाते हैं वो स्वयं महाकाल उसके द्वार तक आते हैं और काल जिसका क्या बिगाड़े भक्त है वो महाकाल का ये तो सभी जानते हैं। तो आज ऐसा जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है प्रतीत होता है कि सिंहस्थ की शुरुआत हो चुकी है।
1: जी बिल्कुल सिंहस्थ की शुरुआत हो चुकी है
2: बिल्कुल राजकीय सवारी के सावन अवसर पर ऐसा लग रहा है जैसे पूरा एन अपने राजा का स्वागत कर रहा हो और मौसम इतना अद्भुत हो चला है कि कभी लगता है कि पानी आ जाएगा फिर कुछ ही क्षण में मौसम बदल जाता है और राजा का अभिषेक जैसे मानो हो रहा हो ऐसा यहाँ पे अद्भुत दृश्य है।
1: जी बिल्कुल बाबा महाकाल अपने श्रद्धालुओं को बहुत ध्यान रखते हैं उन्हें इस बात का ख्याल है कि धूप तेज ना हो और मौसम बहुत सुहावना बना रहे। और धन्यवाद हमारे साथ मयंक जी जुड़ रहे हैं। मयंक जी जय श्री महाकाल।
3: जय श्री महाकाल। मयंक शुक्ला जी हमारे साथ।
4: जय श्री महाकाल।
3: कहाँ पर हैं आप बताइए क्या दृश्य देख रहे हैं?
4: दृश्य तो विहंगम है तिवारी जी। इस समय पालकी का जो लोकेशन है वो कहारवाड़ी है।
3: अच्छा।
4: कहारवाड़ी रामघाट मार्ग होते हुए रामघाट की ओर अग्रसर हो रही है
3: जी।
4: और श्रोताओं को ये बता दें कि कहारवाड़ी वाला जो मार्ग है वो थोड़ा सकरा मार्ग है तो यहाँ पर बैरिकेड नहीं लगाए जा सकते तो पुलिस के द्वारा प्रशासन के द्वारा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रास्ते के माध्यम से पालकी का सुरक्षा घेरा बनाया गया है
3: जी।
4: और सकरा मार्ग होने की वजह से दोनों ओर विशाल जन सैलाब नजर आ रहा है और इस मार्ग पर प्रायः कई सारे गेस्ट हाउस और होटल्स बने हुए हैं जिनकी बालकनी में देखने को मिल रहा है कि श्रद्धालु काफी पहले से रूम को बुक करके ऐसा रूम जहां बालकनी

0: और उस बालकनी से बाबा को निगारा जा सके। दूसरी बार ही कहारवाड़ी का जो मार्ग है, क्योंकि परंपरा अनुसार पालकी को उठाने का कार्य कहारों के द्वारा किया जाता है और उनके क्षेत्र से जब बाबा निकलते हैं तो ये भावुक कर देने वाला क्षण भी होता है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। क्योंकि मैं रस्ता जो रस्ता पार्टी का सुरक्षा घेरा है उसके भीतर ही चल रहा हूँ पालकी के साथ साथ, तो जो कहारों ने बाबा को अपने कंधों पर उठा रखा है उनके क्षेत्र से बाबा का गुजरना उनके लिए भावुक कर देने वाला क्षण है। प्रत्येक कहार का जो चेहरा नजर आ रहा है पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरा दल अपने दल प्रमुख के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि रजत पालकी काफी वजनी होती है, काफी वजन होता है उससे, और दोनों ओर श्रद्धालुओं का जो सैलाब होता है, हर कोई बाबा को स्पर्श करने का इच्छुक होता है, लालायित होता है। कई बार भक्तों के द्वारा सुरक्षा घेरा तोड़कर पालकी के पास नजदीक आने की कोशिश भी की जाती है। कहारों का भी अनुशासन, साथ ही पूरा रस्ता पार्टी दल है पुलिस विभाग का, मैं देख पा रहा हूँ मेरे बिल्कुल साथ में जो रस्ता पार्टी के जवान है वो चल रहे हैं पूरी मुस्तैदी के साथ, कमर के सहारे उन्होंने रस्ते को सपोर्ट कर रखा है।
1: अच्छा महेश शुक्ला जी, आपने ये महसूस किया है कि बाबा महाकाल राजाधिराज, बाबा महाकाल की इस राजसी सवारी में जो पालकी में विराजमान है महाकाल बाबा, उनकी दृष्टि तो समदृष्टि है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमें दर्शन नहीं हो पा रहे हैं भीड़ में, तो राजा तो सभी को देख रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसी मान्यता भी है ना, जैसे हम कहते हैं कि अगर मंदिर में जब भीड़ बढ़ जाती है तो कहते हैं कि भगवान शिखर पर जाकर बैठ जाते हैं, शिखर दर्शनम पापनाशनम। वैसे ही जो पालकी में बैठे चंद्रमौलेश्वर है, ये जरूरी नहीं है कि आपने बाबा को देखा या आपने बाबा को निहारा, बाबा की तो दृष्टि दिव्य है, बाबा सभी को निहारते हुए, देखते हुए, आशीर्वाद देते हुए, और जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो, कल्याण हो, समस्त सृष्टि का कल्याण हो, उज्जैन वासियों का कल्याण हो, अभ्युदय मध्य प्रदेश बने, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है, ऐसा आशीर्वाद देते हुए चल रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है।
2: मयंक जी, जो पालकी में बाबा सवार हैं, आज जो उनका श्रृंगार किया गया है, उनका जो मुखौटा सजाया गया है, उसका कुछ वर्णन हमारे श्रद्धालुओं को आप बताइए।
0: मैं पहले भी श्रोताओं के लिए बता चुका हूँ कि आज जो मुखारविंद का श्रृंगार है, जो चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में विराजे है पालकी में, और पालकी के ठीक पीछे मैं देख पा रहा हूँ कि हाथी पर सवार होकर मनमहेश स्वरूप में जो बाबा का श्रृंगार किया गया है, वो अद्भुत है। इतनी सुंदर पुष्पमाला है, मोर पंख की छवि उससे नजर आ रही है, रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ माला है, बिल्व पत्र की माला भी पहनाई गई है, और पालकी को जो सजाया गया है, और पालकी के ठीक पीछे एक बहुत ही सुंदर सा पुष्पों से सजा हुआ छत्र भी चल रहा है, क्योंकि बाबा निकल रहे हैं, राजा आ रहे हैं, तो राजा का राजकीय छत्र होना तो अनिवार्य है
2: जी। मयंक जी, और जो रस्से का जो एक सुरक्षा चक्र है, उसका भी कुछ वर्णन करिए, कितने वो जवान लगे हैं, उनका कद काठी कैसा है, क्या उसको संभाल पा रहे हैं, उस चक्र के अंदर करीब कितने संख्या में श्रद्धालु हैं, पुजारी हैं, भक्तगण हैं, या प्रशासनिक अधिकारी साथ साथ चल रहे हैं उनके?
0: जी जी, श्रोताओं को हम बता दें, चतुर्वेदी जी के जो पालकी का सुरक्षा घेरा है वो लगभग 3 लेयर्स में है। 3 लेयर्स का सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जिसमें एक प्रमुख जो सबसे पहला सुरक्षा घेरा है, उसके भीतर केवल पुजारी और पुरोहितों के साथ कहार चल रहे हैं। इसके अलावा किसी अन्य श्रद्धालुओं को प्रवेश करने की मनाही है, बावजूद इसके क्योंकि बाबा की भक्ति सब श्रद्धालुओं के मन में उमड़ती है, तो कई श्रद्धालु रास्ता पार करके भी पहुंच जा रहे हैं पालकी के नजदीक, लेकिन पहले घेरे के अंदर किसी भी श्रद्धालु का आने की अनुमति नहीं है। पूर्ण से अनुशासन पूर्वक दर्शन करें, यही सलाह दी जा रही है, नसीहत दी जा रही है। दूसरा लेयर जो बनाया गया है, उसमें लगभग 50 से भी ज्यादा पुलिस विभाग के जवान है जो रस्ते को संभाले हुए हैं, और उसके बाद जो तीसरा लेयर है, तीसरा लेयर रस्ते का, जिसमें प्राइवेट सुरक्षा गार्ड है, प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी के गार्ड है, साथ ही उज्जैन पुलिस के भी कुछ जवान है। तो ऐसे 3 लेयर्स में सुरक्षा घेरा रस्ता पार्टी के द्वारा बनाया गया है, और रस्ता इतना मजबूत है। हम श्रोताओं को बता दें कि जो ये रस्ता दल के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला रस्ता होता है, उसकी भी एक परंपरा होती है। एक नियत तिथि के दिन इस रस्ते को बाजार से क्रय किया जाता है, इसका पूजन अर्चन किया जाता है, और रस्ता पार्टी के द्वारा कई बार इसके मदद से मॉकड्रिल भी की जाती है, ताकि सुरक्षा घेरा किसी भी स्थिति में टूटे नहीं और कोई भी अप्रिय घटना को जन्म नहीं दिया जाए।
2: जी मयंक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी साथी पांखुड़ी वक्त

0: पालकी भी महाकाल मंदिर से बाहर आ चुकी है आरती पूजन के पश्चात, और ये तो अखाड़े निकल रहे हैं कि इनको देखने के लिए भी लोग कुतूहल से आसपास सड़कों के किनारे।
1: जी, आपकी आवाज हम तक बहुत कम पहुंच रही है, जरा जोर से आप बोलिए ताकि हमारे श्रद्धालु आपकी आवाज को, आपके इस अलौकिक दृश्य वर्णन को जान सके।
0: मेरे सामने अभी जो दृश्य है, वहाँ कई सारी बच्चियाँ सतरित वस्त्रों में और लाल दुपट्टा डालकर सतम दिखा रही है, रथ चला रही है, और बड़े सुंदर तरीके से लोग उनको निहारने के लिए खड़े हुए हैं। इसके पीछे बाबा भी आएंगे और इनके अखाड़े भी निकले हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब आप जुड़े नहीं थे तो पहले यहाँ कई सारे अखाड़े भी निकलने शुरू हो गए हैं, और लगातार वो अपने चला रही महिला सशक्तिकरण का भाव जागृत करते हुए एक बहुत उत्साह के साथ, और जो उनके सफेद उंगली है वो ऐसा लगता है जैसे कालिदास ने इस रूप में कहा था ना कि सफेद वस्त्रों में स्त्रियां तुम्हें दिखाई देंगी, तो इस तरीके से अब वो दृश्य बढ़ता जा रहा है। पुलिस प्रशासन से उनको आगे बढ़ा रहे हैं कि पीछे हाथी के लोग आने वाले हैं, और एक चार सैलाब बीच में भी चल रहा है आजू बाजू देखने वालों की भीड़।
1: पाकुड़ी, जहां आप गोपाल मंदिर के पास हैं, वहां तीन तरफ से रास्ता आता है, सामने की तरफ से आपके दाहिनी तरफ और बाईं ओर से भी, तो ये जो तीन रास्ते हैं यहां पे किस तरह की सज्जा की गई है? लोगों ने बाबा महाकाल का स्वागत करने के लिए वंदनवार सजाए हैं या कोई और दृश्य उपस्थित किए हैं?
0: यहाँ पर जगह जगह पर मंच तैयार किए गए हैं जिसपे लोग मंचों से खड़े हुए हैं, बाबा के लिए बहुत सारे फूल इकट्ठे किए हैं। पर मंच जगह है वो तो कोई सक्षम लोग या कोई ग्रुप होगा, लेकिन जो यहाँ का व्यापारी वर्ग है, क्योंकि ये पटनी बाजार वाला एक रास्ता यहाँ से जाता है मंदिर से दाहिनी तरफ की ओर, वहाँ पर भी लोगों ने बैरिकेड के उस तरफ भी, जो बैरिकेड के बाहर रहेंगे वहाँ पर भी ढेरों फूलों को सजा रखा है। जब बाबा निकलेंगे तो हम उसको करेंगे, हम उनकी इस तरह से अपनी भक्ति प्रदर्शित करेंगे। और कालिदास ने लिखा है अपने ग्रंथ में कि दिलीप सेवा के समय कि जब वह सेवा करके दिलीप लौटते हैं तो उनकी जो रानी है वो उससे ही रहती है, ऐसे उनको देखती है, इतने भाव विभोर होकर वो देखती है अपने पति को कि वो दो सेवा करके आए हैं राजा होंगे। ऐसे ही जब हमारे राजा निकलने वाले हैं तो जो सारा शहर है वो उमर पड़ा है, और मुझे लगता है कि हम शहरों में अगर घरों में जाएंगे तो शायद वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है अपार जन सैलाब है यहाँ पर और चारों तक तीनों तरफ से, क्योंकि ये हम तिराहे पर खड़े हैं, जो मंदिर है ये तिराहे पर बना हुआ है और इसके दाहिने बाहिने और सामने की तरफ अपार जन समुदाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और लोग अपने सड़कों से घरों से नीचे से बालकनी से लगातार दिख रहे हैं।
1: पंकुड़ी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस अद्भुत वर्णन के लिए, और हमसे जुड़े रहिए। और विजया जैन अब हमें बता रही हैं कि वो क्या देख पा रही हैं। जी विजया जी, विजया जी बताइए आप क्या दृश्य देख पा रही हैं?
2: ऐसा लगता है कि संपर्क हमारा टूट रहा है बार बार विजया जी से। हम ये चाहेंगे कि अपने श्रोताओं को, अपने देखने वालों को जो उज्जैन में उपस्थित हैं, वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन जो अपने घरों में हैं वो हमारे रेडियो के माध्यम से और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से अगर गूगल पर टाइप करेंगे कोई भी स्टेशन जिस इलाके में वो रहते हैं, चाहे आप भले आकाशवाणी उज्जैन टाइप करें, तो आपको ये आंखों देखा हाल सुनाई देगा।
1: बिल्कुल उदित जी, हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि अगर आप मध्य प्रदेश के, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में उपस्थित हैं, किसी भी इलाके में हैं, तो आप हमारे इस पूरे कार्यक्रम को, जो बाबा राजाधिराज महाकाल की राजसी सवारी निकल रही है, सवारी मार्ग पर किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, किस तरह का आनंद का माहौल है, किस तरह का उत्सव है, उसको आप सजीव घर बैठे सुन सकते हैं।
2: और अवंतिकानाथ भगवान की प्रार्थना भी आप सवारी मार्ग पर, जो हमारी हमारे प्रतिनिधि आपको विवरण दे रहे हैं, उनके माध्यम से आप कह सकते हैं कि अवंतिकायाम विहितावतारम।

0: मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्योर पक्ष रक्षकान बंदे महासुरेशम महाकालम। तो महाकाल की वंदना भी कर सकते हैं और आप विश्व कल्याण कत्रे विधत्रे तथा और सर्व संहार कत्रे स्वैवेच्छया दिव्य लीला मया याद्य हर्षे अनिशम हे महाकाल प्रभो प्रभो नमो नमस्ते।
1: बिल्कुल, राजाधिराज महाकाल पूरी पृथ्वी के पालक हैं, प्रजा के रक्षक हैं और अनुकूल वर्षा जन कल्याण और समृद्धि के लिए प्रतिवर्ष मृगशिरा नक्षत्र यानी कि जून माह में वैदिक मंत्रों के साथ इनका पर्जन्य अनुष्ठान किया जाता है। शास्त्रोक्त विश्वास है कि इस अनुष्ठान के अंतर्गत पंडितों द्वारा महाकाल के अभिषेक पूजन से निश्चित ही वर्षा होती है।
0: वाह, इससे जुड़ी हुई एक और बात है जो शिवपुराण में वर्णित है। जब हिरण्यकशिपु के सहायक दैत्य दूषण से इस उज्जैनी की रक्षा के लिए राजा चंद्रसेन ने आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व महाकाल शिव की पूजा प्रतिष्ठा की थी, महाभारत के बाद ईसा से छठी शताब्दी पहले इसी अवंती का प्रशासक था चंद्रसेन प्रद्योत। उनकी राजकुमारी थी वासव दत्ता। कौसाम्बी के युवराज उदयन और उज्जैनी की राजकुमारी वासव दत्ता के प्रणय प्रसंगों से उज्जैनी का इतिहास तो गूंजता रहा था। शेषुनाग, नंदवंश, चंद्रगुप्त, अशोक जैसे सम्राट भी इसी महाकाल की नगरी के प्रशासक रहे और ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में भर्तृहरि और विक्रमादित्य जैसे प्रतापी राजा ने शकों को पराजित कर इसी उज्जैनी को पुनः अपने अधीन कर लिया था। इसलिए विक्रम संवत जो चलता है
1: आज भी पूरे भारत में विक्रम संवत लोकप्रिय है जो कि विक्रमादित्य महाराज द्वारा शुरू किया गया था।
0: शकारी विक्रमादित्य की गौरव गाथा का प्रतीक वो वर्षारंभ है। और अब हमारे अंतराल का समय हो रहा है, श्रोताओं को थोड़ा सा कुछ सेकेंड रुकना है और इसके बाद हम फिर महाकाल सवारी के साथ होंगे।
2: ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं जनसंपर्क संचालनालय भोपाल के सौजन्य से।
3: विकास की मजबूत नींव सड़कों पर टिकी होती है क्योंकि बेहतर संपर्क ही आर्थिक प्रगति और जन सुविधाओं का आधार बनता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत में आधुनिक और विश्व स्तरीय सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से सड़क अधोसंरचना में अभूतपूर्व विकास हुआ है।
4: 12 साल में मोदी जी के शासन काल में पानी, बिजली, सड़क अब आधुनिक समय के हिसाब से पूरे देश में मध्यप्रदेश सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में से एक बना है।
3: वर्ष 2025-26 में 4,078 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण करने के साथ 48,178 करोड़ रुपए की 73 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन है। इसी तरह 6-लेन मार्ग और उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे प्रदेश की विकास रफ्तार को नई दिशा दे रहा है, जबकि मजरा टोला सड़क योजना के अंतर्गत 30,900 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति दी गई है।
5: नदियाँ केवल जल की धाराएं नहीं होती, वे सभ्यता, समृद्धि और भविष्य की वाहक होती हैं। देश में जल सुरक्षा, नदी जोड़ों, परियोजनाओं और सिंचाई के विस्तार के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाकर विकसित भारत के निर्माण का दृढ़ संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। आज मध्य प्रदेश बहती धाराओं को विकास की नई दिशा देकर आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा का मजबूत आधार तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में अंतर्राज्यीय नदी जोड़ों परियोजनाओं से खेतों, गांवों और शहरों तक पर्याप्त सिंचाई और पीने का पानी पहुंचाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।
6: पार्वती, काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के लिए और राजस्थान के लिए दोनों के लिए वरदान साबित होगी।
5: महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के पूरा होने पर प्रदेश में सिंचाई का दायरा वर्ष 2028-29 तक लगभग 55 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
7: नदी जोड़ो अभियान से किसान को सिंचाई का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी से किसान की तरक्की होगा।
5: नदियों को जोड़कर समृद्धि की नई धारा बहा रहा है मध्य प्रदेश।
3: ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलवाकर जमीन विवादों पर विराम लगा रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश में सुशासन स्थापित करती स्वामित्व योजना को प्रभावी गति दे रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव।
8: जिसका मकान गांव में बना है उसको भी स्वामित्व का वही अधिकार है जो नगर वाले को है। ये बराबरी का अधिकार अगर मिला है तो माननीय मोदी जी के माध्यम से मिला।
3: प्रदेश में 68.11 लाख अधिकार अभिलेख तैयार हो चुके हैं जिनमें 48.32 लाख निजी स्वत्व अभिलेख शामिल है। इन संपत्तियों का लगभग 3800 करोड़ रुपए का पंजीयन शुल्क भी राज्य सरकार वहन करेगी।

0: निःशुल्क पंजीयन की अभिनव पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। ई संपदा पोर्टल से प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी। अब ग्रामीणों की संपत्ति कानूनी पहचान के साथ बैंक ऋण, स्वरोजगार और आर्थिक समृद्धि का मजबूत आधार बनेगी। स्वामित्व से समृद्धि, अधिकार से आत्मनिर्भरता।
1: जय श्री महाकाल। भगवान महाकालेश्वर की पालकी अब शने शने अपने चरम पर यानी कि रामघाट तक पहुंचने वाली है और वहां पर प्रतीक्षा है हजारों लाखों श्रद्धालुओं की कि जैसे ही पालकी यहां पर आएगी बाबा की पालकी का अभिषेक होगा, पूजन होगा, आरती होगा और यहां पर उन्हें सम्मान दिया जाएगा और उसके बाद पालकी आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस प्रकार से हमारे विवरणकारों ने बताया कि किस प्रकार से पालकी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और पालकी के दोनों छोर पर असंख्य श्रद्धालुओं की उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि हर व्यक्ति प्रजावत्सल राजाधिराज भगवान श्री महाकालेश्वर के स्वागत के लिए उनके दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं।
2: जी, और ये एक बहुत ही सुंदर और अनुपम परंपरा है जो मराठा राजवंश जब उज्जैनी पर उनका राजवंश स्थापित हुआ तब से अभी तक जारी है और उसी का विवरण सुनाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं और विजया जैन अब हमसे जुड़ रही है। नमस्कार विजया जी।
3: जय श्री महाकाल।
2: जय श्री महाकाल।
3: और कुछ महिला मंडल के दल मुझसे जुड़े थे लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्त व्यवस्था के कारण थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि प्रभु महाकाल के नाम से बना ये भक्त मंडल जो महिलाओं का एक बहुत बड़ा समूह है, करीब 80 से 100 महिलाएं उस ग्रुप में थी और उन्होंने एक जैसी साड़ी पहनकर भगवान महाकाल का भगवान ध्वज धारण करके वो पूरे इस सवारी मार्ग पर परफॉर्म करते हुए नजर आई थी और लगभग 15 से 20 दिनों तक उनका मंडल नियमित रूप से इसकी तैयारी करता है, इसकी प्रैक्टिस करता है और उसके बाद भगवान महाकाल की राजसी सवारी की अगुवाई करता हुआ मुझे नजर आता है। और इस तरह से इस पूरी सवारी मार्ग पर हमने देखा है कि महिलाओं के कई दल अलग अलग भजन मंडलियों के माध्यम से शिव पार्वती के स्वरूपों को धारण करते हुए शिव महिमा का वर्णन करते हुए भजनों के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। कई बार कई भजन मंडलियों में रामकृष्ण की थीम पर आधारित महिलाओं की वेशभूषा कृष्ण और राधा की रामलीला पर आधारित मंडलियां
2: जी जी शिव और शक्ति का मिलन यहाँ पर आप देख पा रही हैं, बहुत अच्छा है और हम तक आवाज हे करुणाकर उस गीत की आवाज भी हम तक पहुँच रही है और अब मयंक शुक्ला जी की आवाज हमारे श्रोताओं तक पहुँचेगी। नमस्कार मयंक जी।
4: नमस्कार। जय श्री महाकाल। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को सही प्रसारण सुन रहे हैं।
1: जी मयंक जी, इस वक्त कहाँ है आप?
4: मैं इस समय रामघाट पर मौजूद हूँ और रामघाट पर पालकी का आगमन हो चुका है। श्रोताओं को बता दें कि रजत पालकी अब रामघाट शिप्रा तट पर जहाँ पर विधिवत पूजन अर्चन किया जाएगा वहाँ पालकी पहुँच चुकी है। सुरक्षा घेरे बनाए गए हैं, 4 या 5 लेयर्स में बैरिकेडिंग की गई है और शने शने एक एक लेयर को खोला जा रहा है और पालकी को अंदर शिप्रा तट की और अग्रसर किया जा रहा है।
2: जी, और रामघाट पर जब पालकी पहुंचती है चूंकि वो एक ढाल वाला हिस्सा है, थोड़ी सी बारिश की बूंदें हो गई हैं तो पालकी का जो गति है वो मंद हो जाती है और जब रामघाट पर आप कह रहे हैं कि पालकी पहुंच चुकी है तो वहां पर जो क्षिप्रा के जल से उनका पूजन किया जाता है, अभिषेक किया जाता है और दूसरी तरफ दत्त अखाड़े से वहां पर साधु संत वहां से इसे निहारते हैं, ये सब आप देख पा रहे हैं तो कृपया हमें बताएं।
4: जी हाँ, श्रोताओं को बता दें हम कि रामघाट पर जो विधि अनुसार पूजन अर्चन किया जाता है, शिप्रा जल से अभिषेक किया जाता है बाबा महाकाल का, ये परंपरा है और न जाने कितने वर्षों से चली आ रही ये परंपरा है जिसके तहत ऐसा माना जाता है कि शिप्रा भी अपने जल से जब अपने बाबा का अभिषेक करती है, चरण पखारती है तो वो भी स्वयं को धन्य मानती है। ऐसे अवंतिका नरेश को जब यहाँ पर चंद्रमौलेश्वर के विग्रह के रूप में लाया जाता है और पालकी को यहाँ पर विराम दिया जाएगा, विराजमान किया जाएगा, उसके बाद जो भी अभिषेक पूजन का क्रम है वो पुजारी पुरोहितों के द्वारा संपन्न करवाया जाएगा। वही जहाँ पर पूजन स्थल है जी सामने बनी है राणो जी की छतरी और इस समय हम देख पा रहे हैं कि राणो जी की छतरी पर इस समय कैलाश वाद्यम का वादन किया जा रहा है। जैसा कि आपने पहले भी सजीव प्रसारण में बताया श्रोताओं को कि विशेष रूप से जो जग्गी वासुदेव सदगुरु है उनके द्वारा एक दल भेजा गया है जो आज कैलाश वाद्यम विशेष रूप से विशेष वाद्य यंत्रों का यहाँ पर वादन किया जा रहा है। ये वो धुने हैं, वो वाद्य यंत्र है जो माना जाता है कैलाश मानसरोवर पर शिव की आराधना स्वरूप जिनका वादन किया जाता है वो कैलाश वाद्यम। बहुत ही सुंदर ये नजारा है और बहुत ही मधुर ध्वनि स्वर लहरियां कानों में झनकृत हो रही है। मैं देख पा रहा हूँ माननीय राज्यसभा सांसद उमेश नाथ जी महाराज भी रामघाट पर मौजूद है, पुलिस कप्तान प्रदीप कुमार शर्मा भी मौजूद है, सारे आला अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री जिसमें प्रहलाद पटेल जी शामिल है, उज्जैन के प्रभारी मंत्री गौतम देखवाल जी हैं, इनके सहित कई जनप्रतिनिधि इस समय रामघाट पर मौजूद हैं और बाबा की पूजन अर्चन के दौर को निहार रहे हैं और अपने आप को कृपा पात्र महसूस कर रहे हैं।
2: जी, और आपने जैसा ईशा फाउंडेशन का जो जिक्र किया, हमारे हमारी संस्कृति में नाद को ब्रह्म माना गया है और हमारा जब जो भी कोई त्योहार होता है, कोई पूजा होती है, वो संगीत के बिना अधूरा होता है और आप वहां देख पा रहे हैं कि बाबा का पूजन न केवल शिप्रा जल से हो रहा है बल्कि सांगीतिक रूप से भी उनकी स्तुति की जा रही है।
4: बिल्कुल, और प्रशासन पुलिस के साथ साथ संतों का सानिध्य भी मिला है। हम कोशिश करेंगे माननीय सांसद राज्यसभा से जो जैन से है, माननीय सांसद राज्यसभा उमेश गांधी महाराज हमारे साथ बात की है और बहुत बड़े संत है, उनसे हम बाबा के महत्व को जानते हैं, शिवत्व को जानते हैं और इस राजसी सवारी में क्या आनंद एक संत के दृष्टिकोण से उन्हें प्राप्त हो रहा है वो जानते हैं। अच्छी आवाज होगी माननीय राज्यसभा उमेश नाथ जी महाराज की।
2: जी नमस्कार, जय श्री महाकाल।
5: मैं सीता जी के तट पर रामघाट में खड़ा हूँ और
2: जी जी लगता है संपर्क उनसे हमारा टूट गया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही हमसे जुड़ेंगे। और ये जो परंपरा है कि महाराज स्वयं अपने मंदिर से बाहर निकल कर प्रजाजन को दर्शन देते हैं और एक बहुत ही प्रजातांत्रिक ये परंपरा है और अनवरत जारी है। जैसे मैंने पहले कहा था कि 17वीं शताब्दी में जब मराठा राजवंश यहाँ पर आया उसके बाद मंदिरों का गौरव लौटा और पहले ये परंपरा थी कि मात्र भाद्रपद मास में दो सवारियां होती थी, लेकिन ये विचार आया कि क्यों ना श्रावण मास में भी इस तरह की परंपरा शुरू की जाए। और जो लोग जानते हैं प्रशासनिक सेवाओं को उसमें MN बुच साहब का नाम बहुत बड़ा नाम है, तो उनके श्री प्रयासों से पंडित सूर्य नारायण व्यास जी के यहाँ पर एक कहते हैं बैठक हुई और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि ये श्रावण मास में भी आरंभ किया जाए। और जब श्रावण मास की पहली सवारी हुई तो उसमें राजमाता सिंधिया स्वयं उपस्थित थीं और उस वक्त के मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह भी वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने इसकी अगवानी की और उसके बाद ये परंपरा जो शुरू हुई है बल्कि आज न केवल उज्जैन, मध्य भारत, पूरे भारत और पूरे विश्व में, और आज ऐप के माध्यम से तो आकाशवाणी उज्जैन के जरिए पूरा विश्व इस प्रसारण को सुन रहा है।
1: बिल्कुल विद्याधर जी, ये परंपरा निरंतर आगे बढ़ रही है और अलग अलग स्वरूपों में आगे बढ़ रही है, क्योंकि श्रावण और भाद्रपद, भाद्रपद के दो सोमवार और श्रावण के सभी सोमवार, इस तरह से 6 या 7 सवारियां निकलती है और लगातार इन सवारियों का गौरव पूरे विश्व में सुगंधित कर रहा है पूरे विश्व को। और रामघाट पर सवारी पहुंच चुकी, अभी मयंक ने बताया कि किस प्रकार से रामघाट पर जो विशिष्ट अतिथि है, जहां अभी उमेश जी जो राज्यसभा सांसद थे और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री और अन्य गणमान्य यहां पर हैं, साधु संत भी हैं, बहुत सारे लोग हैं और वो इस वक्त पूजन के लिए रामघाट पर मौजूद हैं और वहां पर पुरोहितों के द्वारा निरंतर पूजन विधि संपन्न करवाई जा रही है। जैसा कि हमारे बीच में जुड़ेंगे मयंक जी बताएंगे, चूंकि अभी जुड़े थे उन्होंने बताया था और आगे का विवरण और हमें बता रहे हैं। हमारे जो प्रतिनिधि
2: और प्रतिनिधि हमसे जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले बाबा महाकाल के जो विविध स्वरूप होते हैं, बहुत से लोग इस मामले में थोड़ा से भ्रम में होते हैं कि प्रत्येक सोमवार को कुछ अलग नजर आता है, तो उसके अलग अलग

0: हारविंद है और प्रत्येक सोमवार को एक नया स्वरूप आता है।
1: बिल्कुल,
0: तो श्री चंद्रमौलेश्वर का जो स्वरूप होता है वो मुख्य स्वरूप है और हमेशा चांदी की पालकी में विराजमान होते हैं और सबसे आगे चलते हैं
1: जी।
0: उसके बाद मन महेश स्वरूप होता है जो भगवान महाकाल हाथी पर आरूढ़ होकर वो उसके पीछे पीछे चलते हैं। फिर उमा महेश्वर स्वरूप आता है, माता पार्वती के साथ नंदी रथ पर भगवान शिव विराजित होते हैं। और शिव तांडव स्वरूप, होलकर स्वरूप और घटाटोप स्वरूप, ये छठा दिव्य स्वरूप रथ पर सवार होता है। तो इस तरह से ये छह सवारियां होती हैं और 17 तारीख को जो सवारी हुई उसमें नाग पंचमी का, नाग पूजन का एक योग हुआ और अभी वहां पर पूजन शुरू
1: हो चुका है। और पूजन जिस तरह से वैदिक
2: समर्पयामि ओम ततो विराज जायत विराजो अधिपुरो महाजातो अधिशतपतिया भूमिमतो पुरः आश्वनियम जलम समर्पयामि मा स्नानम मा ओम तस्मात् कन्या सर्वभूता जम्रदम गदाज्यम मा वसुष्टा जगे मायव्या नारण्या ग्राम्याशजे ओम ऊर्चमे सूर्मिता जमे मयचमे रसचमे हृदञ्चमे मधुचमे दतिजमे तपेतचमे गतिजमे वृक्षचमे गंधर्वा अखन दामेन्द्र साम्रहसदे दामोखरे सोमो राजा विद्वान् नष्माता पुच्छत ओम त्र्यम्बकं दशामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्

0: कुछ सांस्कृतिक दलों के जो स्वर सुनाई दे रहे हैं, चूंकि अलग अलग सांस्कृतिक दल यहाँ पर है, भजन मंडलियां हैं, और लोक नृत्यों की बात करें तो जनजातीय दल लगातार हर सवारी में सम्मिलित रहे हैं और इस बार भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं
1: जी। और स्वांग की एक भूमिका जब भी कोई चल समारोह होता है तो उसमें होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमेशा बाल गोपाल होते हैं, शिव के कई रूप लेकर होते हैं, फिर शिव की बार

0: जिसमें भूत प्रेत भी होते हैं, ये एक ऐसी सवारी है कि जिसमें सुसज्जित लोग भी हैं और प्रेत वेश में लेकर नाचते गाते लोग भी होते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपने कहा स्वांग धरकर, वो शिवगण है और शिवगण विविध रूपों में है। शिव के बहुत सारे गण हैं, चाहे भालू रूप में हो, नाग रूप में हो, अलग अलग रूप में जो है शिवगण यहाँ पर अपना स्वांग रचकर महाकाल जी की दर्शनों के लिए आते हैं और लोगों को दर्शन देते हैं।
0: और उज्जैन की ये जो परंपरा है महाकाल की सवारी की, उसका अनुसरण करके शुजालपुर, खुरई, खिलचीपुर, मुलताई जैसे अनेक नगरों में अब सवारी निकाली जाती है। और एक बात मैं अपने श्रोताओं को यहाँ बता दूं कि ओंकारेश्वर में भी सवारी कोटिति पर उनका पूजन अर्चन किया जा चुका है।
1: बिल्कुल। और विद्याधर जी, जैसा कि हमने अब से थोड़ी देर पहले जब वहाँ रामघाट पर मंत्रोच्चार विधि और जब जिस तरह से वहाँ पालकी का पूजन किया जा रहा है और उन मंत्रों का स्वर अभी तक हमारे कर्ण में, हमारे कानों में गुंजायमान हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि अभी हम स्वयं भी वहीं पर हैं, रामघाट पर ही है। और रामघाट की बात करें तो वहां पर मां क्षिप्रा का जो कलकल बहता हुआ जल और वहां का जो विहंगम जल राशि है, उसके दर्शन कर भी सभी को आनंदित होने लग जाते सारे लोग, क्योंकि दत्त अखाड़े पर लाखों श्रद्धालु हैं तो रामघाट पर बहुत सारे जनप्रतिनिधि विशिष्ट गण यहाँ पर रामघाट पर उपस्थित हैं और लगातार मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान के साथ भगवान श्री महाकालेश्वर का जलाभिषेक किया जा रहा है। और लगातार जिस प्रकार से श्रद्धालु एक ही रट लगाए हुए कि जय श्री महाकाल के जय घोष की जो गूंज है वो सभी जगह सुनाई दे रही है और उस जय घोष के साथ साथ हम भी यहाँ पर जय घोष के साथ में जिस प्रकार से आनंदित होकर हम हमारे श्रोताओं को विवरण दे रहे हैं।
0: मुकाम जी, जब भी कोई ऐसा वर्णन होता है, ऐसा विवरण होता है, तो कई बार लगता है कि सारे हमारे शब्द चुक जाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: हम नहीं वर्णन कर पाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि ईश्वर ही शक्ति देता है, ईश्वर ही हमारी वाणी में वो ओज पैदा करता है कि हम अपने उन श्रोताओं तक जो हमें देख नहीं पा रहे हैं, जो उज्जैन से लाखों योजन दूरी पर हैं, लेकिन मेरे पास संदेश आ रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि आपके वर्णन के माध्यम से हम स्वयं वहां पर मौजूद हैं।
1: बिल्कुल। हमारा ये आंखों देखा हाल, हमारा ये सजीव प्रसारण हमारे देश भर के श्रोताओं तक पहुंच रहा है, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम सुन रहे हो, रेडियो सेट के माध्यम सुन रहे हो, एफएम के माध्यम सुन रहे हो। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि हम गाड़ी में सुन रहे हैं, ड्राइव करते हुए महाकाल की सवारी का आनंद ले रहे हैं। तो हम सभी यही कहना चाहेंगे कि लगातार आनंद लेते रहिएगा, लगातार यानी निर्बाध 10 बजे तक हमारा प्रसारण चलता रहेगा।
0: बिल्कुल। और जिस तरह से महाकाल की सवारी निकाली जाती है, बहुत से लोगों के लिए शायद ये जानकारी नहीं हो कि काल भैरव राजा महाराज महाकाल के सेनापति हैं, तो उनकी सवारी भी साल में 2 बार पालकी में निकाली जाती है। अब वो सवारी निकाली जाती है अग्रहायण मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को और दूसरी सवारी भादो मास यानी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 12/11 को निकाली जाती है। और इस काल भैरव की सवारी के लिए भी लोग दूर दूर से आते हैं और उसमें शामिल होते हैं।
1: बिल्कुल। और भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारी जैसे ही लोगों के समक्ष आती है, सहसा ही उनके हाथ जुड़ जाते हैं, श्रद्धा नत के साथ में उनके मस्तक झुक जाते हैं
0: जी।
1: और कई श्रद्धालुओं में जो उत्साह है वो बढ़ जाता है और सभी लोग जैसे ही सवारी आती है नमन कर नम हो जाती है उनकी आंखें
0: जी। और काल भैरव की सवारी का मैं जिक्र कर रहा था, चूंकि राजाधिराज महाकाल हैं, उनकी सवारी चांदी की पालकी में निकलती है, तो काल भैरव की जो पालकी होती है वो लकड़ी की बनी पालकी में नगर भ्रमण करते हैं और सिंधिया राजवंश की ओर से पगड़ी उन्हें पहनाई जाती है, पूजन किया जाता है और पालकी के पूजन के बाद बाबा जन कल्याण के लिए पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। तो न केवल बाबा महाकाल की पालकी बल्कि उनके कोटवार, उनके सेनापति की पालकी भी 2 बार साल में निकाली जाती है और बहुत से लोगों के लिए वो भी दर्शनीय और पूज्य होती है।
1: बिल्कुल विद्याधर जी। और जैसे कि हमारे प्रतिनिधियों ने भी बताया और हमें ज्ञात हुआ है कि अभी रामघाट पर भगवान महाकालेश्वर की पालकी का पूजन चल रहा है और यहाँ पर एक आकर्षण का केंद्र है, नर्मदा परिक्रमा के जो गुरु है दादा गुरु जी, उनकी उपस्थिति भी है, लोग उनके दर्शनों के लिए भी यहाँ पर उमड़ रहे हैं
0: जी। जी, ये एक तरह से संतों का समागम भी होता है।
1: बिल्कुल।
0: और चूंकि मैं यहाँ पर एक वक्त है मेरे पास, तो मैं अपने श्रोताओं को और खासकर जो उज्जैन की तरफ आ रहे हैं या उज्जैन में पालकी मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए बता दूं कि प्रशासन ने एक समय नियत किया था कि किस समय पर पालकी

0: कि किस स्थान पर होगी। तो 5:15 बजे का रामघाट पूजन का जो समय था वो लगभग वो वहां पर है। उसके बाद 6 बजे बंबई वाली धर्मशाला के पास वो पालकी पहुंचेगी, 6:30 बजे गणगौर दरवाजा, और जो हमारे प्रतिनिधि हमसे जुड़ रहे हैं उनके लिए भी ये सूचना होगी कि 7 बजे सत्यनारायण मंदिर के पास पालकी होने का अनुमान है। फिर 7:30 बजे 7:45 पर टंकी चौराहे पर हो सकता है कि पालकी पहुंच जाए। तेलीवाड़ा में 8 बजे कंठाल चौराहे पर 8:30, 9 बजे गोपाल मंदिर में हरिहर मिलन का जो अद्भुत संयोग होता है वो होगा, 9:30 बजे गुदरी चौराहा, 9:45 कोट मोहल्ला, और मंदिर परिसर में पालकी का प्रवेश अनुमान है कि 10 बजे तक हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल विद्याधर जी, जैसा कि आपने आगे का विवरण बताया, लेकिन अभी जो चल रहा है वहाँ राम घाट पर जिस तरह से पूजन चल रहा है और दत्त अखाड़े का दृश्य भी देखने लायक है, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग खड़े होकर हाथ जोड़कर भगवान का वंदन कर रहे हैं, मां क्षिप्रा के जल का वंदन कर रहे हैं और पूरे एक समूचे क्षेत्र का वंदन कर रहे हैं। और देखिए ना किस प्रकार से कि उनकी एक संकल्प है कि हमें दत्त अखाड़े पर ही रहना है, वहीं से भगवान महाकालेश्वर की पालकी के दर्शन करना है, हमें इधर नहीं आना है। तो इस तरह की जो श्रद्धा है उज्जैनी में देखने को मिल रही है और ये श्रद्धा अब पूरे विश्व का केंद्र है, चूंकि भगवान महाकाल समय के देवता है, महाकाल है, कालों के काल है, तो निश्चय ही धरती पर इस वक्त जो है काल कहीं ठहर सा गया है
0: जी। और क्षिप्रा नदी का सिंचन कर महाकाल का अभिषेक किया है और उन्हें सदा नीरा कहा जाता है। प्रत्येक नदी एक अपना एक अलग महत्व लेती है। मुकाम जी, क्षिप्रा जी का आज जब उनका दर्शन हुआ तो कुछ पंक्तियां सहज ही मेरे मानस पे आई
1: जी, है। जी जी बिल्कुल।
0: नदी सिर्फ पानी का बहाव नहीं होती, वो सभ्यता संस्कृति की साक्षी होती है, असंख्य अर्ध्यों को स्वीकार करती हुई, अनेकानेक विषादों को धोती हुई, विषाद को परे कर निर्माल्य को सहेजे, मन्नतों से भरी हुई नदी जिसके तल में आभार के सिक्के धसे होते हैं, सूखे नारियल छोड़े उत्तरीय पूजा के फूल जैसा श्रृंगार किए होती है नदी। चुपचाप मंदिर का शंखनाद सुन मढ़िया के साधु का लोटा मांझ देती है कभी नदी, किसी की साधुता को निहार मजबूर वैराग्य को देख धीरे धीरे बहती है नदी। कहीं गाद से भरी कचरे से पटी नदी कभी शिकायत नहीं करती, शायद गिनती हो व्यर्थ उसके किनारे बैठे निठल्लों के फेंके थैले, खिलखिलाती है बच्चों को देख कर नदी। नदी कुछ नहीं मांगती, बस मांगती है बहाव, मांगती है निरंतरता, मांगती है आस्था का स्पर्श।
1: बिल्कुल मोक्षदायिनी मां क्षिप्रा को हम नमन कर रहे हैं और नमन कर रहे हैं हमारे उन सभी लाखों श्रद्धालुओं को, और इस बीच में पद्मजा रघुवंशी जी जुड़ चुकी हैं और वो हमें बता रही हैं कि किस प्रकार से आगे चल रहा है।
0: नमस्कार पद्मजा जी।
2: नमस्कार नमस्कार, जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल। श्री महाकाल
2: जी, बाबा महाकाल की राष्ट्रीय सवारी का जो सीधा सीधा लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले तो बहुत सारी हमारी स्वास्थ्य कामनाएं, ये बहुत अच्छा प्रयास है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि बाबा की सवारी बहुत ही शान से निकल रही है, बहुत ही अपने निराले अंदाज में चल रही है। लोग बाग चारों तरफ से श्रद्धालु भक्तगण उन पर पुष्प वर्षा करते नजर आ रहे हैं और जगह जगह दर्शन के लिए जो निर्धारित जगह है वहाँ पर भीड़ जमघट लगा हुआ है और बहुत ही सुंदर अद्भुत दृश्य नजर आ रहा है। अपने आप में स्वर्ग की अनुभूति करने के लिए ये बहुत ही उज्जैन नगरी इस समय अत्यंत स्वर्ग का कोना बनकर उभर रही है
0: जी।
2: आप देख रहे हैं कि इस समय सारा उज्जैन पूरा नगर और न केवल नगरवासी बल्कि और भी श्रद्धालु भक्तगण जो देश भर से यहाँ आते हैं वो बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए अत्यंत आतुर होते हैं और जब वो दर्शन कर लेते हैं उसके बाद में उनके सारे कष्ट जो उन्होंने दर्शन प्राप्त करने के लिए उठाए थे वो एक मिनट में तिरोहित हो जाते हैं और वो अपने जीवन को धन्य अनुभव करने लगते हैं
0: जी। पद्मजा जी, ऐसी जो परंपराएं हैं कि राजा स्वयं प्रजा का हाल जानने निकले हैं और वो सिर्फ राजा राजा नहीं है, वो जो जो सृष्टि के पालक हैं वो स्वयं एक आम इंसान के पास पहुंच रहे हैं, ऐसी परंपरा के बारे में आपका क्या मनोगत है?
2: ये हमारे उज्जैन की एक विशिष्ट परंपरा है। भगवान भोलेनाथ जब प्रजा का हाल चाल जानने के लिए निकलते हैं तो ये वाली जो परंपरा है ये अपने आप में एक विशिष्ट है। इंडिया काल से चलती आ रही इस परंपरा में हम ये देखते हैं कि इसके पीछे जो सोच रही होगी वो यही रही होगी कि प्रत्येक जन जन शायद बाबा महाकाल के दरवाजे तक उनके दर तक नहीं आ पाता होगा, तो भगवान भोलेनाथ जी सभी के हैं, तो कभी कभी और उज्जैन के राजा हैं, तो राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए जैसे कि प्रजा के बीच में जाते हैं वही परंपरा यहाँ पर निर्वहन होता है उसी का, क्योंकि इस भूमि के राजा तो महाकाल स्वयं है और देवाधिदेव होने के नाते वो प्रजा का हाल चाल जानते हैं, उनके कष्टों को हारते हैं और इस अलौकिक ब्रह्मांड की भूमि को वो अपने चरणों से कहेंगे हम उनके उनका जो मार्ग है जो जिस पर तो गुजरते हैं उसको पवित्र करते हैं।
1: बिल्कुल पद्मनाथ जी, अभी इस वक्त भगवान श्री महाकालेश्वर की राम घाट पर जिस प्रकार से आरती के जो स्वर हमारे कानों में सुनाई दे रहे हैं वो छटा भी बहुत अद्भुत है।
2: बिल्कुल भगवान महाकाल क्षिप्रा से जो अभिषेक होता है, मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी है हमारी और इतनी पावन हमारी ये नदी है और उसके पास के तट पर जाकर जब महाकाल भगवान पर उनके उनका स्पर्श होता है ये नदी अपने आप में और पवित्र हो जाती है और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ के पूजन और अर्चन के समय इस समय एक विशिष्ट दृश्य उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए प्रत्येक धार्मिक कहानी में पर्यावरण का संदेश भी है कि हमारे जल स्रोत जितने हैं उनका अपना एक धार्मिक आध्यात्मिक महत्व तो है ही, लेकिन जन जन के लिए पर्यावरणीय महत्व भी है, तो उनके तट तक जाना, उनको प्रणाम करना, उनका महत्व स्थापित करना, ये सब हमारे वेद ऋषि मुनि से लेकर सभी देवी देवताओं ने भी स्थापित किया हुआ है। ठीक उसी क्रम में भगवान भोलेनाथ भी क्षिप्रा नदी के किनारे आकर और वहाँ के जल का स्पर्श होता है, पूजन अर्चन होता है, वहाँ विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन होता है और उसके बाद ही वो नगर भ्रमण पर निकलते हैं।
0: धन्यवाद धन्यवाद पद्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमसे शैलेंद्र पाराशर जी जुड़ रहे हैं जो हमें बताएंगे कि बाबा महाकाल की सवारी में वो अपनी आंखों से क्या देख पा रहे हैं। नमस्कार शैलेंद्र जी।
3: नमस्कार आकाशवाणी के दर्शकों, आप आकाशवाणी के पहली प्रयोग में महाकाल सवारी का प्रसारण लगातार देख रहे हैं और इस समय मैं गोपाल मंदिर पर, द्वारकाधीश मंदिर पर हूँ और यहाँ पर अभी इस समय अखाड़े और भजन मंडलियाँ कुछ 73 भजन मंडलियाँ हैं जिसका शुभारंभ इस बार प्रशासन ने पालकी से आगे आगे किया है, जो बुद्धि चौहरा बक्शी बाजार कारवाड़ी मंदिर हरकृष्टि पाल रामधास से पहुंचती हुई पाल मंदिर के द्वार मंदिर से गुजर रही है और इन 73 सवारियों के आगे ये जो भजन मंडलियाँ हैं ईश्वर का भजन ये अब आकर्ष के ऊपर देख रही है और डूबी हुई है जिससे कम सा ये आगे की ओर बढ़ती जा रही है। रामघाट से ठीक सवारी में पूजन अर्चन के बाद कम सा भगवान श्री सर्वभवेश्वर जी की पालकी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई द्वारकाधीश मंदिर पर आएंगी, जहाँ आपको आंखों देखा हाल हरी और भवन हरी और हर के मिलन का यहाँ पर दिखाएंगे। गोपाल मंदिर यहाँ पर ये पहला अद्भुत संगम होता है जब हरी और हर का मिलन होता है। भगवान महाकालेश्वर की नदी उज्जैन में स्वयं भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण ने यहाँ पर धरती शांतिपति के श्री चरणों में अपने अग्रज बलराम और अपने अभिन्न मित्र सुदामा के साथ शिक्षा ग्रहण कर 14 64 कलाओं में प्राप्त की और हरण हरी और हर का मिलन यहाँ पर होगा, उसका हम प्रसारण करेंगे और ये जो भजन मंडलियाँ हैं इन्हें पूरे आनंद के साथ दोनों तरफ हजारों लोग निहार रहे हैं कि अपनी कलाओं और विद्याओं के माध्यम से अपने भजनों में डूबी हुई भक्ति गीत गाते हुए निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। जगह जगह पर सवारी की पूजा अर्चना के साथ उसके नारियल केले फल आदि के प्रसाद का वितरण भी हो रहा है। ये कैसा अच्छा दृश्य है श्री महाकालेश्वर भगवान की प्रभु प्राप्त की सवारी का। इस कल समारोह का स्वरूप दिव्य और अलौकिक है। इसकी अनुभूति से भगवान की आसक्ति में डूबा हुआ भगवान श्री महाकालेश्वर का भक्त देखता है, तब उसके अंदर उसकी आत्मा में जब आनंद की अनुभूति होती है और उसकी चेतना का दीर्घगामी उद्धुभूति विकास होता है, तब ये राष्ट्रीय समाजों में जो प्रभु शामिल है उसमें जो सवार भी है सलामी स्काउट है और सेवा समिति के सदस्य हैं, गणमान्य नागरिक हैं जो आगे आगे चल रहे हैं।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। संभवतः बाबा महाकाल की पालकी अब रामघाट से गुजरने को होगी है और आयुषी मिश्रा हमसे जुड़ रही हैं, आगे का हाल हम उनसे जानते हैं।
4: जी बिल्कुल, जय श्री महाकाल।
1: जय श्री महाकाल। आयुषी इस वक्त कहाँ है सवारी मार्ग पर आप?
4: इस वक्त सवारी मार्ग पर मैं खड़ी हूँ, यहाँ बैरिकेड लगे हैं और अब पालकी जाने को तैयार है रामघाट की तरफ जहाँ पूजन अर्चन होने वाला है, और उसी स्थान पर मैं उपस्थित हूँ और इतना अद्भुत दृश्य अपनी नजरों से देख सकती हूँ और अपने श्रोताओं को भी बताना चाहती हूँ। इस पालकी की सबसे विशिष्ट बात
1: बिल्कुल बिल्कुल आयुषी हम आपको बताना चाहेंगे। अभी हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि रामघाट पर पालकी का पूजन हो चुका है और पालकी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है।
4: जी
1: लगातार पालकी जो है आगे बढ़ रही है और जैसे कि हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि रामघाट पर पूजन के बाद पालकी अब जो क्रम में आगे बढ़ेगी।
0: बिल्कुल, और यहाँ पर जाकर अभी तक तो सभी जगह पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है, थोड़ा सा अवरोध होता है, लेकिन अब जाकर आम जन पालकी के दोनों तरफ होंगे और आगे बैंड चल रहा होगा, भजन मंडलियां चल रही होंगी, स्वांग रचते हुए नाचते गाते भक्तजन चल रहे हैं, बाबा महाकाल की पालकी होगी और पीछे स्वयंसेवी संगठनों की बहुत लंबी कतार है और उसे रस्सा वाला दल उसे घेरे होगा और संकरी गलियों से मार्गों से गुजरते हुए बाबा महाकाल की पालकी आगे चल रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, प्रजा पालक के दर्शनों के लिए लोगों की जो जन भीड़ है वो हम देख पा रहे हैं और एक हमारे प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं गौतम मालवीय है, और हम उनसे जानते हैं कि अब पालकी वहां तक पहुंची है या वो किसी और छोर पे है। गौतम कहाँ पे है इस वक्त?
5: बाबा बाजार से हूँ और बाबा बाजार रोड के काफी छोटा रास्ता हो रहा था जहाँ से सफरी मार गए हैं।
0: जी, जी।
5: और अब यहाँ पर जितने भी निगाह जाती है सारा अतिक्रमण मुक्त हो चुका है, पूरा रास्ता सफरी मार्ग ये काफी बड़ा हो गया है और इस रास्ते पर पूरे रास्ते की दुकाने ही है, जैसा की इसका नाम भी है बाबा बाजार, खुशबू तो यहाँ पर फैली ही हुई है, काफी तरह का नजारा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मावा बाजार क्षेत्र में काफी सारी पालकियां जो है वो निकल रही है, अलग अलग मांग रखकर यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति आए हुए हैं जिन्हें मैं देख रहा हूँ। और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर देखने को मिलती है वो ये है कि शिव परिवार जो है अनगिनत शिव परिवार यहाँ दूर के रास्ते मुझे दिखाई दे रहे हैं और निश्चित ही भक्ति भाव भरा हुआ जो कि उज्जैन एक स्वभाव है, जो प्रेम वाला स्वभाव है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सास्ता जो है भजन मंडलियाँ अलग अलग तरह की,
1: बिल्कुल गौतम जी
5: लोकल नहीं, काफी अलग अलग भजन मंडलियाँ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि अपने भजन की स्वर लेरियों से ऐसा नहीं है कि साथ जो व्यक्ति है वही झूम रहे हैं, इसके बाहर ही सभी झूमने को मजबूर हो रहे हैं।
0: जी जी, और मावा बाजार जैसे आपने कहा कि वहाँ उस पदार्थ की खुशबू भी है और मावा को खोआ भी कहते हैं और इस समय निश्चित ही अभी सभी लोग भक्ति भावना में खोए होंगे, आप भी हमारे पास ऐसा ही विवरण भेजते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
5: जी जी
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। और लगातार पालकी आगे बढ़ रही है और श्रद्धालुओं की श्रद्धा का जो विषय है वो इन कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पर हमारे सुनने वालों को बताना चाह रहा हूँ।
0: अभी मयंक शुक्ला और अखिलेश बाथम दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
6: जनसंपर्क अधिकारी साथ में
1: हैं। जी जी अखिलेश जी, आप जुड़ चुके हैं।
6: हाँ बिल्कुल,

0: मैं बताऊं कि इस समय पालकी वहां से निकली है अभी अभी रामघाट से पूजन होने के बाद में
1: जी।
0: और मैं इस समय राणो जी की छतरी के पास वाली गली में हूं। मैं देख रहा हूं कि हमारे सामने जहां तक नजर मैं दौड़ा रहा हूं वहां से जो छतरी के पहले बैंड है वो आना शुरू हो गया है और यहां पर कलेक्टर महोदय भी इंतजार कर रहे हैं कि पालकी धीरे धीरे आए और वहां से आगे बढ़े, है ना। हमारे साथ आशीष जी हैं, जनसंपर्क अधिकारी, जुड़ना चाह रहे हैं
1: जी।
0: तो आइए उनसे इस यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ के आज के विषय के बारे में बात करते हैं
1: जी। आशीष जी, जय महाकाल।
2: जय महाकाल सर।
1: आशीष जी, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और वो व्यवस्थाओं का जो जो व्यवस्थाएं आपने की है वो पूरी तरह से काबू में है या जन सैलाब इसे थोड़ा सा अस्त व्यस्त कर रहा है?
2: जी सर, ये बाबा महाकाल की आखिरी और राजसी सवारी है
1: जी।
2: सावन भादो माह की छठी सवारी है। अभी तक हम 5 सवारियां बड़ी भव्यता के साथ और व्यवस्थाओं के साथ संपन्न कराने में सफल रहे हैं। उसी की तरह आज की ये सवारी भी व्यवस्थाओं के साथ दर्शनार्थियों को सुलभ दर्शन कराते हुए विभिन्न परिस्थितियों को, संस्कृति को, जो आज की थीम है शिव समागम, उसको पालकी में सवारी मार्ग में सम्मिलित करते हुए हम भव्यता के साथ आगे ले जा रहे हैं
1: जी।
2: अगर मुख्यतः बात की जाए आज की सवारी की थीम, तो आज की जो हमारी थीम है वो शिव समागम के ऊपर आधारित है, जिसमें भव्य प्रस्तुतियां हमने सवारी में सम्मिलित की है
1: जी।
2: साथ ही इस सवारी में हमने 1,000-1,00,000 स्क्वायर फीट से अधिक की रंगोली बनाने का एक प्रयास किया है।
1: अच्छा।
2: इसी के साथ सवारी मार्ग पे रामघाट पे और मंदिर परिसर में हमने और शहनाई द्वार जो मुख्य पालकी का निर्गम मार्ग है समंदर से वहाँ पर ड्रोन के माध्यम से हमने पुष्प वर्षा कराई है। इसके अतिरिक्त अन्य कई भव्य आयोजन हमने सवारी में सम्मिलित किए हैं।
1: बिल्कुल आशीष जी, रोबोट भी पिछली बार शामिल किया गया था कि आज भी सवारी का आकर्षण है?
2: सर, वो हमने एक प्रथम प्रयोग किया था एक आस्था को आधुनिकता से जोड़ने के साथ, तो पिछली सवारी में हमने उसे सम्मिलित किया था क्योंकि इस बार की थीम सिंहस्थ पे आधारित है, तो सिंहस्थ के साथ हमने सांस्कृतिक आयोजनों को सवारी मार्ग सम्मिलित किया है
1: जी। आयुष जी, आमतौर पर जब कोई इतने सारे लोग एक जगह एकत्रित होते हैं तो कहते हैं कि भीड़ का कोई दिमाग नहीं होता, कहीं बार नियंत्रित हो जाते हैं, लेकिन बाबा महाकाल की सवारी में जो शामिल लोग हैं वो उनमें किस तरह का अनुशासन आप देख रहे हैं?
2: सर, मैं आपका प्रश्न दोहराने के लिए एक निवेदन करूंगा सर, मैं सुन नहीं पाया
1: जी। मेरा कहना है कि जब भी भीड़ होती है तो अव्यवस्था का भय होता है, लेकिन जब बाबा महाकाल की सवारी निकलती है तो एक अनुशासन, स्व अनुशासन सभी लोगों में देखने को मिलता है। क्या ऐसा अनुभव आज भी हो रहा है?
2: सर, यहाँ शासन जो महाकाल मंदिर है, मंदिर प्रबंध समिति के कर्मचारी है, जिला प्रशासन है, पुलिस के जवान है, वो निरंतर इस सवारी के लिए तैयारी पे लगे हुए थे और उसका हमें आज ग्राउंड पर रिजल्ट दिख रहा है। आज सभी सवारी मार्ग पे पूरी व्यवस्था के साथ दर्शनार्थियों को दर्शन भी होने हैं और पालकी उस भव्यता के साथ जो हम अनुमान लगाए थे उसके साथ सवारी मार्ग पे अग्रसर है।
1: बिल्कुल आशीष जी, जनजातीय लोक नृत्य दलों का समावेश भी पालकी में किया गया है, तो
2: आपकी आवाज इस बैंड की धुन के बीच में सुन नहीं पा रहा हूँ
1: जी।
2: आप 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ
1: जी। जरूर, हम पुनः आपसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी के लिए, शुक्रिया
3: जी। हमारे प्रतिनिधि अखिलेश जी जुड़े थे और जनसंपर्क अधिकारी आशीष जी जुड़े थे और अभी आगे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है भगवान महाकालेश्वर के दर्शनों के लिए, तो कुछ पंक्तियां मैं यहां हमारे सुनने वालों को बताना चाहूंगा। मिलों तक फैली कतारें चिल चिलाती धूप में, गर्म हवाओं के थपेड़ों को सहती हुई ये भीड़, या कड़कड़ाती ठंड में कंबल में लिपटे हुए कांपते लोगों के मिलों तक फैली पंक्तियां उसकी चाहत में उसको बस देखने भर के लिए, प्यासी सूनी सी आंखें उसे बस छूने भर की लालसा लिए, सामीप्य की आकांक्षा लिए उमड़ा यह जन सैलाब, एक दूसरे को धकेलते हुए

जाता है कि गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने भी, उन्होंने भी एक पंक्तियां, एक कविता उज्जैनी के लिए लिखी थी, दूर बहु दूरे स्वप्न लोके उज्जैनी पुरे। अब मैं यहाँ पर उसे हिंदी में अनुवाद करना चाहूंगा। दूर बहुत दूर देश में, स्वप्न लोक में, उज्जैनी में,

शिप्रा के उस पार खोजने गया था कभी पूर्व जन्म की प्रथम प्रिया को अपनी। महाकाल मंदिर में उस क्षण संध्या आरती के वाद्य बज उठे गहन गंभीर स्वर। विजन हुआ बाजार अंधेरे हर्म्य यानी भवन।

0: गंभीर सिंह की मूर्ति दंभ भर सुप्रयोषित था कपूत दल लौट चुका घर निद्रा मग्न मयूर मनोहर स्वर्ण दंड पर।
1: क्या बात है,
0: ये गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उज्जैनी में अपनी प्रेयसी को सोचकर इस पंक्तियों को लिखा।
1: बिल्कुल, इन सभी पंक्तियों का लक्ष्य भावार्थ एक ही है कि हम अपने आराध्य से जुड़े, अपने इष्ट से जुड़े, उन्हें नमन करें, प्रणाम करें। और जब राजाधिराज भगवान श्री महाकालेश्वर स्वयं प्रजा वत्सल यानी प्रजा के दर्शनों के लिए नगरी में भ्रमण कर रहे हैं तो निश्चय ही ऐसा दृश्य, विहंगम दृश्य अद्भुत है, आनंददायी है, मन को अत्यंत आनंद देने वाला दृश्य है। और यहाँ पर असंख्य श्रद्धालु है जिसमें सभी प्रकार के, यहाँ किसी भेद के, बिना भेद के श्रद्धालुओं का आगमन होता है, देश और विदेश श्रोताओं का आगमन है और अलग अलग सांस्कृतिक दलों के माध्यम से वे सभी आनंदित हैं। और ये आनंद के क्षण हमारे श्रोता हमारी इस आंखों देखे हाल के माध्यम से भी ले रहे हैं। और इस बीच हमारे प्रतिनिधि जुड़ने वाले हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे उससे पहले?
0: जी, मैं अपनी प्रतिनिधि की बात ही सुनना चाहूंगा। विजया जैन हमसे जुड़ रही है। नमस्कार विजया जी।
1: नमस्कार विजया जी, जय श्री महाकाल। विजया जी, जी आपके आसपास शोर बहुत ज्यादा है, आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी किसी शांत स्थान पर आकर अपना विवरण देने का प्रयास करें।
0: जी जी जी, बहुत धन्यवाद। आमतौर पर जब भी इतने विशाल जनसमूह होता है तो कलरव होता है, कोलाहल होता है, ये वहां पर झांझ बंजी रहे हैं, ढोल हैं, डीजे का समावेश भी इस समय हो गया है और असंख्य लोग जो वहां पर महाकाल की सवारी देखने के लिए लालायित होते हैं तो एक अलग ही वहां पर उल्लास होता है और उसकी आवाज बहुत, डेसिबल बहुत बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल विद्याधर जी, जैसे कि हमारे विशेषज्ञों ने बताया कि 70 भजन मंडलियां हैं और इन 70 भजन मंडलियों का जो स्वर है वो तो निश्चय ही गुंजायमान हो उठा है और आसमान भेदी भी हो रहा होगा।
0: जी जी, और देखिए एक शहर को, एक नगरी को कितना सौभाग्य मिल सकता है जितना उज्जैनी को सौभाग्य मिला है। बल्कि ये सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक, सामरिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी उज्जैनी का महत्व प्राचीन काल से, मुझे तो लगता है कि ये प्राचीन कहना चाहिए कि प्राचीनता का पर्याय उज्जैनी है। कहते हैं एक प्रतिकल्पा शब्द उज्जैनी के साथ इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है और प्रतिकल्प यानी एक कल्प होता है 4,32,00,000,000 मानव वर्ष के समान, यानी हर कल्प में उज्जैनी अपना रूप बदल देती है। अब आप समझिए कि एक कल्प 4,32,00,000,000 मानव वर्ष के समान होता है तो ये नगरी कितनी प्राचीन होगी। सभ्यता के साथ ही ये नगर हमारे पूरे भारत भूमि या कहें कि विश्व के गौरव का तिलक है।
1: बिल्कुल, ये वही क्षेत्र है जहां मंगलनाथ हैं और भगवान महाकाल जो काल के रूप में, महाकाल के रूप में विराजित है। निश्चय ही न केवल धरती बल्कि पाताल और आसमान के भी जो देवगण हैं उनकी सबकी दृष्टि आज उज्जयिनी पर है।
0: देवगण की बात की तो मुकाम जी, मैं कहता हूं कि कवि कालिदास जी को जब हम पढ़ते हैं मेघदूतम में तो उन्होंने इसे इस लोक का माना ही नहीं, उज्जैनी के लिए उन्होंने लिखा कि यह स्वर्ग का कांतिमय टुकड़ा है जो टूटकर इस भूमि पर आ गया है। ज्योतिष, खगोल शास्त्र, कला, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, हर रूप में ये नगरी पूजनीय है, मोक्षदायिनी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और आज चूंकि अंतिम सवारी है तो जितना उत्साह जोश है उतना ही थोड़ा सा पीड़ा भी हो रही है और अब एक साल तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी। और इस बीच पांखुरी वक्त जी हमसे जुड़ चुकी हैं और हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। पांखुरी जी, जय महाकाल।
2: जय महाकाल।
1: कहाँ है इस वक्त आप?
2: हम कृष्ण जी के मन में है, हरि और हर से मिलन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमारे सामने जो दृश्य है वो एक बार मैं आपके साथ और अपने सुनने वाले श्रोताओं के साथ साझा करना चाहती हूँ। अभी लगातार नृत्य की मंडलियां निकल रही हैं और जो बच्चियां उसमें नृत्य कर रही हैं वो ईश्वर के प्रति समर्पण, आस्था, विश्वास और श्रद्धा से सराबोर है।

0: इस तरीके से झूमते हुए निकलना, ईश्वर के प्रति इतनी कृतज्ञता का भाव है उनमें कि उन्हें अपनी सुधबुद ही नहीं है, अपने आराध्य की सेवा में अभिभूत हो नृत्य करते हुए निकल रहे हैं। और तरह तरह के स्वांग भरे हुए लोग भी यहाँ आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जो प्रत्येक सवारी में निकलते हैं और अपने हाथ में सभी जय श्री महाकाल लिए हुए हैं। वो सिंहस्थ के आगाज को यहाँ से दिखा रहा है कि आगामी सिंहस्थ आने वाला है और किस तरीके से शहर के लोग उसके लिए तैयार हैं। तरह तरह के स्वांग भरे हैं, जैसे शिव को असुरों का देवता भी माना जाता है और वो सात्विक भी है और तामसिक ज्योति भी है। तो कई सारे लोगों ने दोनों तरह का रूप धारण कर रखे हैं, कुछ सात्विक बने हैं, सांस्कृतिक प्रवृत्तियों की चीजें लेकर चल रहे हैं, लेकिन बहुत कौतूहल है लोगों को उनको देखने के लिए।
1: जी,
0: बाबा नहीं आते, लोग उन्हीं को निहार रहे हैं
1: जी,
0: और ये विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
1: हरिहर मिलन, ये जो परंपरा है, ये जो मिलन है, ये कितना अद्भुत है, क्योंकि त्रिदेव में विष्णु जी हैं और शिव जी हैं और उसमें ये दोनों एक स्थान पर मिलन होता है, तो इसे देखने के लिए तो एक अलग ही भाव भूमि वहां तैयार हो जाती है। आप किस तरह से इसे वर्णित करेंगी?
0: बिल्कुल
1: उदित
0: जी, ये ईश्वर का समर्पण का भाव है और एक दूसरे के प्रति जो उदारता है कि शिव एक अलग परंपरा के आते हैं, वैष्णव एक अलग परंपरा है, लेकिन वो किस तरीके से एक दूसरे से साम्य रखते हैं, किस तरीके से एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जब शिव अपने मंदिर से निकल के गोपाल मंदिर पर आते हैं और वहाँ हरि और हर का मिलन होता है, तो ये बताते हैं कि प्रकृति के साथ ही नहीं, आपस में भी किस तरीके से सामंजस्य रखने की आवश्यकता है मनुष्य मात्र को, का आध्यात्मिक और हमारे सामाजिक महत्व को भी परिलक्षित करता है। हम बहुत छोटी छोटी बातों को देकर आपस में लड़ पड़ते हैं, मैं फलाने को मानता हूँ, आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते, इसमें वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, लेकिन हरिहर मिलन हमें ये अनायास ही सिखा देता है कि जब हमारा ईश्वर एक है, वो अपने समर्पण भाव से एक दूसरे के साथ बढ़ रहा है, तो हम क्यों आपस में इन बातों को लेकर उलझे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, पांकुरी जी, कब तक सवारी गोपाल मंदिर तक पहुंचेगी और क्या क्रम रहेगा, वो भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
0: 7:30-8 बजे तक ये सवारी यहाँ पहुँचने की संभावना बता रहे हैं। और एक महाकाल की सड़क से निकली, वहाँ से गुजरी चौराहा होते हुए बख्ती बाजार तरफ आई, पहाड़वाड़ी आई, राम घाट पर बाबा का पूजन अर्चन हुआ, शिप्रा की अपनी मान्यता है, मोक्षदायिनी कहा जाता है, तो वहाँ शिप्रा पर भगवान का पूजन होता है। अच्छा, अभी नहीं आया है, लेकिन हर बार ही पिछली सवारी में भी बारिश होती है, ऐसा लगता है कि जैसे पाद प्रक्षालन करने के लिए माँ आतुर होकर पालकी के पास आ रही है। तो वहाँ से निकल चुकी है, पूजन अर्चन हो चुका है, आरती होती है, वापसी होती है, फिर रामानुज कोर्ट जाते हुए फिर मोड़ की धर्मशाला है यहाँ एक, फिर कार्तिक चौक है, जगदीश मंदिर है, इस बीच सत्यनारायण का मंदिर भी आता है, भाभा रोड है। अच्छा, इन सब जगहों का अपना अपना ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। टंकी चौराहा है, मिर्जा नईम बैग मार्ग है। अच्छा, मिर्जा नईम बैग मार्ग, ये ना सोचिएगा कि ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, यहाँ बाबा की वैसा स्वागत नहीं होता है या यहाँ अलग अवसर है, यहाँ भी लोग वैसे ही अभिभूत होके और घंटों से खड़े हैं, लोगों ने अपने घर खोल दिए होते हैं कि हमारे घर में स्थान है, आप यहाँ से आकर देखिए और जो जरूरी उनके लिए कर सकते हैं वो सब करते हैं।
1: बिल्कुल पांकुरी जी, गोपाल मंदिर जब सवारी पहुंचेगी तो प्रति वर्ष की भांति सिंधिया घराने के प्रतिनिधि के तौर पर कोई ना कोई व्यक्ति उपस्थित रहता है, तो इस बार क्या ज्ञात हुआ कि कौन रहेगा?
0: जी, ऐसे ऐसे सुनने में आया है कि माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वापस आ रहे हैं और वो बाबा के यहाँ सिंधिया घराने की और दर्शन पूजन अर्चन करेंगे। परंपरा रही है और ये जो मंदिर है ये भी सिंधिया परिवार के ट्रस्ट में ही आता है, तो यहाँ से इसकी दर्शन की विशेष परंपरा रही है। अच्छा, वो भी वहाँ उनकी पुश्तैनी पगड़ी और वैसा ही लिबास पहनकर बाबा के पूजन करते हैं जैसा उस परिवार की परंपरा रही है।
1: जी जी, पाखुरी जी, ये एक बहुत ही अद्भुत होता है कि बाबा महाकाल चिरंतन है, वो सदैव राजा

0: और जो भौतिक रूप से यहाँ पर जो सत्ता है, जो सरकार है, वो यहाँ पर आकर उनका भी पूजन करते हैं, लेकिन एक जनश्रुति है, जन मान्यता है कि इस नगरी में कोई और दूसरा राजा नहीं निवास कर सकता। तो ये कालांतर में ये किस तरह से पड़ा है, ये जो अवधारणा है?
1: हम बाबा महाकाल को इस सृष्टि का पिता मानते हैं
0: जी।
1: और हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जब पिता बैठता है तो कुछ उसके सामने खड़ा रहता है
0: जी।
1: ऐसे ही इस नगर के देवता और इस नगर के राजा को महाकाल को माना गया है। तो एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो ऐसी मान्यता है कि जो राजा होता है, जो अभी वर्तमान में राजा कहलाता है, उसको यहाँ नहीं रहना चाहिए। इसीलिए इस जैसे प्रशासनिक तौर पर देखें तो जो कलेक्टर बंगला है वो शहर के दूसरी तरफ स्थापित है,
0: क्योंकि
1: एक तरह से राजकाज संभालता है, तो उसकी मान्यता यहीं से पड़ी कि वो राजा है तो वो वहां रुके। या जो जैसे सिंधिया जी जैसे लोग हैं जो राज परंपराओं से आते हैं, तो उनको भी ऐसी कहा जाता है कि आप।
0: बहुत बहुत धन्यवाद पांकुरी वक्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विजया जैन हमसे जुड़ रही हैं।
2: जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल।
2: मैं इस वक्त कंठार चौराहे से सती मार्ग वाले रास्ते पर हूँ और ये पूरा मार्ग सौंदर्यीकरण किया गया है और जिन्होंने इसका सौंदर्यीकरण किया है श्री राम नेवा जी इस वक्त मेरे साथ है। और मैं चाहती हूँ कि आकाशवाणी के माध्यम से और इस महाकाल भगवान की रास्ते सवारी के माध्यम से उनकी बात सभी भक्तों तक पहुँचे। अगली आवाज सुनेंगे श्री राम नेवा जी की।
0: नेवा जी नमस्कार।
3: जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल
3: जी। भाई साहब
0: जी, जैसे सौंदर्यीकरण एक पुराने शहर में जहाँ पर बसाहट बहुत सघन होती है, वहाँ एक बहुत बहुत मुश्किल काम होता है और न केवल शहर का कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे और सौंदर्यीकरण भी हो सके, तो ये दोनों के भी संतुलन आपने कैसा किया?
3: बहुत संतुलन रहा, मोहन यादव जी और नगर निगम की टीम ने बहुत सपोर्ट करा है और आम लोगों ने यहाँ पे जनता ने बहुत सपोर्ट करा हुआ है और सब कार्य को बरोबर करने को तैयार है। उज्जैन खुद चाहता है कि सीएस का कार्य बहुत बढ़िया निपटे, पूरे देश दुनिया के लोगों के लिए हम तैयार हैं और भविष्य के लिए बिल्कुल तैयार है।
0: बिल्कुल, सवारी मार्ग का जो सौंदर्यीकरण किया गया इस बार तो वो कहाँ कहाँ था?
3: ये सभी दूरे सती गेट का है, हमारा मेन तो सती गेट का है, इसका भव्य रूप कर दिया है, बहुत वर्षों बाद ऐसा रूप हमने देखा है सती गेट का।
0: बिल्कुल, जैसा कि सिंहासन आ रहा है 2028 में और मां क्षिप्रा के घाटों का जिस प्रकार से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है उसके बारे में बताइए।
3: जी उसमें बहुत सहयोग कर रही जनता भी और मोहन यादव जी ने बहुत अच्छे घाट बनाना शुरू कर दिए हैं, मेघदूत से लेके बहुत दूर दूर तक घाटों अच्छा चल रहा है। और हमारे पुजारी जी भट्ट जी अब ये बात करेंगे आप।
0: जी जी भट्ट जी बहुत बहुत नमस्कार।
4: जय महाकाल। मंगल हो यहाँ पर परंपरा है, भगवान महाकालेश्वर यहाँ महाराजा है, सम्राज है
0: जी,
4: आकाश है तारका लिंगम माता महाकाल भगवान महाकालेश्वर यहाँ महाराजा सम्राट होकर का जो है हाल जानने के लिए चरण करते हैं अपने गणों की सही
0: जी। पंडित जी आप कितने कितने वर्षों से इस परंपरा को निहार रहे हैं, देख रहे हैं?
4: 50 वर्ष से जो है परंपरा को निभा कर रहा हूँ
0: जी।
4: हमारे पूर्वज लोग निर्वाह करते थे
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इस पूरी जानकारी के लिए। मुकाम जी, सवारी मार्ग पर इस समय अथाह भीड़ है और लोग लगातार वहां जुटते जा रहे हैं और प्रशासन की तरफ से अपील हो रही है कि बहुत ज्यादा संख्या में एक स्थान पर लोग एकत्रित ना हो, पूरे सवारी मार्ग पर वो बिखर जाएं ताकि समुचित व्यवस्था बनी रह सके।
5: बिल्कुल, जैसा कि कलेक्टर उज्जैन और SP प्रदीप शर्मा साहब दोनों ने ही हमें बताया कि किस प्रकार से उन्होंने व्यवस्था की ताकि सुचारू रूप से सभी भक्तगण पालकी के दर्शन कर सकें, आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और चूंकि पूरी उज्जैनी तो जुटती ही जुटती है,

0: देश भर के श्रद्धालु आज राक्षी सवारी का आनंद लेने के लिए यहाँ उज्जैन पहुंच जाते हैं।
1: और श्रोताओं, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, चूंकि अगर आप उज्जैन निवासी हैं और सवारी मार्ग पर जाना चाह रहे हैं, तो प्रशासन की अपील ये है कि जैसे ही आप सवारी के दर्शन करें, तुरंत पीछे हो जाएं और दूसरे लोगों को आगे आने दें। और श्रोताओं, जो उज्जैन से बाहर हमें सुन रहे हैं, हमारा प्रसारण सुन रहे हैं, उनकी सूचना के लिए एक बार मैं पुनः बता दूं कि रात्रि 10 बजे तक हमारा ये प्रसारण अनवरत रहेगा और हम बाबा महाकाल की सवारी की यात्रा आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस समय वक्त है विशेष समाचार का।

0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्य निकेतन भवन हादसे के लिए भवन मालिक के साथ दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विश्वविद्यालय को जिम्मेदार बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत को वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुबई में AIM कांग्रेस में वैश्विक निवेशकों से मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में हुए भवन हादसे को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए हैं। न्यायालय की पीठ ने कहा कि इस त्रासदी के लिए केवल भवन मालिक ही नहीं जिम्मेदार है, बल्कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विश्वविद्यालय भी जिम्मेदार है। न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को याचिका पर अलग अलग जवाब 10 दिन के भीतर दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया और सुरक्षा उपायों और जारी बचाव अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का 80% हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिला भवन स्थल से हटा दिया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण यह दुखद घटना हुई है।
1: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया। यह समारोह तालेगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। राष्ट्रपति पुलिस पदक को राष्ट्रपति का निशान भी कहा जाता है। यह किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान गोवा पुलिस की समर्पित सेवा, अनुशासन और राज्य के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया गया है।
2: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मेक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक सीमित नहीं है। इसमें बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य और कल्याण, देखभाल, चिकित्सा उपकरण, टेलीमेडिसिन, टेली कंसल्टेशन, नवाचार और नई दवाओं तथा आधुनिक उपकरणों के लिए अनुसंधान और विकास भी शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज दुबई में आयोजित AIM कांग्रेस 2026 में उद्योगपतियों और वैश्विक निवेशकों से मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने निवेशकों को अगले वर्ष भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर यादव ने रास अल खेमा के शासक शेख सऊद बिन सक्र अल कासिमी और इथियोपिया के राष्ट्रपति टाए अतस्के सेलासी से भी मुलाकात कर निवेश और व्यावसायिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्ययोजना की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य रूप से मार्च 2027 तक प्राथमिकता वाले 300 कृषि विज्ञान केंद्रों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने इस बात पर जोर दिया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग बेहद जरूरी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ।

0: जय श्री महाकाल।
1: जय श्री महाकाल।
0: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस सजीव कार्यक्रम में, बाबा राजाधिराज महाकाल की राजसी सवारी के पल पल आंखों देखे हाल के इस कार्यक्रम में। हम अपने सभी श्रोताओं को, सभी श्रद्धालुओं को फिर से बाबा की सवारी मार्ग में लिए चलते हैं। और बिल्कुल शुरुआत में ही हमसे जुड़ गई है विजया जैन, और हम उनसे जानते हैं कि अब पालकी कहां तक पहुंच गई है, मंडलियां कहां तक आगे बढ़ गई हैं, और उनके कर्तव्य और उनकी गतिविधियां किस तरह की लगातार हमारे श्रद्धालुओं को आह्लादित कर रही हैं। विजया जी बताइए। विजया जी बताइए किस तरह का वातावरण है, किस तरह का श्रद्धा भक्ति का कार्यक्रम चल रहा है। जय श्री महाकाल।
2: जय श्री महाकाल। मैं सती गेट से आगे आ चुकी हूँ और बड़ा सराफा के आसपास में पहुँच चुकी हूँ। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पर, और यहाँ पर इस बार हमें किन्नर समुदाय की भी बहुत गरिमापूर्ण और बहुत ही भव्य उपस्थिति देखने को मिली है। मेरे साथ किन्नर समुदाय से काजल जी उपस्थित है, और मैं चाहूंगी कि हम काजल जी से बात करें और हमारे श्रोताओं तक उनकी बात पहुंचाएं।
0: अवश्य, काजल जी का बहुत बहुत स्वागत है
2: जी। काजल जी से बात करिए।
3: जय श्री महाकाल। सभी देशवासियों को बा महाकाल की आज आखिरी शाही सवारी है। सभी नगर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। बा महाकाल आपका बहुत आशीर्वाद करे, खूब तरक्की करे, खूब हरे पैरों। बा महाकाल हर मनोकामना पूरी करे।
0: किन्नर समुदाय की किस तरह की गतिविधियां हैं इस पूरे सवारी मार्ग में?
3: किन्नर समुदाय हर साल इस सवारी मार्ग से निकलता है, और भक्तजनों को आशीर्वाद देते, बा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त करके किन्नर समाज इसी साल, इसी वर्ष, इस हर साल, हर वर्ष इसी सवारी में बा महाकाल के निकलता है। अपनी वेशभूषा धारण करके अत्यंत सुंदर कलाएं करते हुए बा महाकाल की सेवा में हाजिर रहता है। बा महाकाल सभी नगरवासियों, देशवासियों को स्वस्थ रखे, निरोगी काया रहे।
0: आम आदमी भी आपका आशीर्वाद देने के लिए लालायित रहते हैं, तो इतने लाखों लोग सवारी मार्ग पर हैं, आपसे लोगों की आकांक्षा होगी कि वो आपसे आशीर्वाद लें। उन्हें किस तरह का आशीर्वाद आप दे रहे हैं?
3: महाकाल मेरे सभी जजमान जीते रहे, खुश रहे, खूब तरक्की करें। हमारे उज्जैन का पूरा बाल बच्चे खूब तरक्की करें, हमारे जजमान जीते रहे, खूब आगे बढ़ाए रखें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, किन्नर समुदाय हो या आम आदमी हो या भक्तजन हो, श्रद्धालु हो, भजन मंडलियां हो, पुलिस है, प्रशासन है, हर कोई बाबा की एक झलक पाने के लिए तत्पर है
2: जी। और किन्नर समुदाय भी पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ, और बहुत सुंदर और बहुत पारंपरिक वेशभूषा में तैयार होकर एक बहुत बड़ा ग्रुप, करीब 15-20 किन्नर समुदाय के महिलाएं यहाँ पर उपस्थित थी, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से नृत्य प्रस्तुति सवारी मार्ग पर देते हुए अपनी बहुत ही गरिमामय उपस्थिति यहाँ पर दर्ज की है। और ये किन्नर समुदाय इस राजसी सवारी में वर्षों से निरंतर भाग ले रहे हैं, और उनकी उनका ये मानना है कि प्रभु महाकाल के दरबार में उन्हें जो आशीर्वाद प्रभु महाकाल से मिलता है, वो उसी आशीर्वाद को हमारी सभी श्रद्धालु जनता के बीच बिखेरते हैं, और देश में सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और मस्त रहे, ऐसी शुभकामनाएं।
1: विजया जी, विजया जी, आप रानी सती गेट के आसपास हैं, तो इस बार राजसी सवारी में रानी सती गेट का जो नया रूपाकार है, नया स्वरूप है, किस तरह से बनाया गया है, आप बताएं।
2: रानी सती गेट इस वक्त बहुत ही हेरिटेज लुक में मुझे नजर आ रहा है, और नीचे पूरे पेवर ब्लॉक बनाए गए हैं जो इस मार्ग की सुंदरता को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे महासती गेट को इस बार फूलों से सजावट की गई है, गेंदे के पारंपरिक फूल, पीले फूल और जो भगवा कलर के फूल होते हैं, उन फूलों की पूरी मालाएं ऊपर से नीचे तक सजाई गई है। ऊपर जो बड़ी बड़ी लाइटें मुझे नजर आ रही है, जो मुझे लगता है कि रात के वक्त इन लाइटों का विशेष महत्व होगा, और ये श्रद्धालु भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी। और ये सती मार्ग का जो रास्ता था पहले काफी खतरा हुआ करता था, लेकिन इस बार सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण के चलते और आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के चलते मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में उज्जैन को सिंहस्थ के लिए और भव्य तरीके से तैयार किया जा रहा है, और पहली बार इस सुंदर गेट से प्रभु महाकाल की राजसी सवारी निकलेगी, और भक्तों का जमावड़ा निरंतर यहाँ पर लगा हुआ है। और बहुत ही अद्भुत क्रियाएं अद्भुत लीलाएं यहाँ भक्तों की नजर आ रही है और श्रद्धालु यहाँ पर उत्साहित है गौरवान्वित है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। और हमसे अब जुड़ रहे हैं मयंक शुक्ला जी, आइए हम उनसे बात करते हैं।
1: हेलो मयंक शुक्ला जी।
0: जब तक मयंक जी जुड़ते हैं हम अपने श्रोताओं को बता दें, हमारे श्रद्धालुओं को हम बता दें कि 70 भजन मंडलियां इस पूरे समागम में, इस पूरे समारोह में चल रही हैं और ये 70 मंडलियां हम इनमें से कुछ के नाम आपको बताना चाहते हैं। यूं तो 70 बहुत ज़्यादा हैं पर हम कुछ के नाम आपको बताना चाहते हैं। लेकिन इस दौरान विवेक चौरसिया जी हमसे जुड़ रहे हैं। विवेक जी, किस तरह का वातावरण है, अब आगे आप कहां तक पहुंच गए हैं और आप जिस स्थान पर हैं वहां कैसा माहौल है?
4: मंदिर है उसके बीच बीच में हूँ और ये पहली बार इतना।
0: विवेक जी की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, तो हम अपने श्रोताओं को बता रहे थे कि जो भजन मंडलियां हैं उनकी संख्या 70 है, जिसमें से केवल उज्जैन की नहीं होती हैं, ये पूरे मालवा, निमाड़, राजस्थान, यहां तक कि गुजरात और महाराष्ट्र से भी बहुत सारी भजन मंडलियां इस अद्भुत समारोह में अपनी प्रतिभागिता को लेकर के बड़ी उत्साहित होती हैं और शामिल होती हैं। तो कुछ भजन मंडलियां हैं जिनके हम नाम आपके सामने लेना चाहते हैं। ये है जय श्री महाकाल भक्त मंडल रतलाम, शिवसेना युवा सेना उज्जैन, भारतीय नट नागर विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ समाज विकास संगठन उज्जैन, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उज्जैन, शिव भोले मित्र मंडली छापीहेड़ा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़, ओम महाकाल मंडल गणेश नगर इंदौर, वाल्मीकि युवा संगठन उज्जैन, प्राचीन व्यायामशाला बहादुरगंज, श्री महाकाल भक्त मंडल इंदौर, बाल भारतीय व्यायामशाला उज्जैन, श्री अवंतिका रामायण मंडल, माँ शीतला माता महिला भक्त मंडली कुशलपुरा, श्री विक्रांत भैरव भक्त मंडल हनुमान नाका उज्जैन, श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति, हिंदू सेना भक्त मंडल, श्री सत्यवीर तेजाजी भजन मंडल, श्री वनखंडी हनुमान भक्त मंडल, वीर तेजाजी भजन मंडल उज्जैन, श्री फकीर साईं बाबा सार्वजनिक समिति। ये वो कुछ नाम हैं जो 70 भजन मंडलियों में शामिल हैं और आगे के नाम हम इस दौरान और भी आपके समक्ष लेने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए केवल एक किसी व्यक्ति की सहभागिता नहीं है, ये बहुत बड़ा आयोजन है जिसमें 500,000 के आसपास श्रद्धालु, भजन मंडलियां, पुलिस प्रशासन सारे लोग शामिल हैं और इंदौर के और उज्जैन के बहुत सारे भक्तगण शामिल हैं। और अब हमसे मयंक शुक्ला जुड़ रहे हैं, जानते हैं मयंक जी कहां पर हैं। मयंक जी आप इस समय?
5: जय श्री महाकाल। श्रोताओं को बता दें कि इस समय हम लोग ढाबा रोड पर हैं और महाकाल पालकी भी ढाबा रोड तक पहुंच गई है और पुलिस विभाग के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी बाबा की अगुवाई में लगे हुए हैं। इस समय हमारे साथ डिप्टी कलेक्टर एवं महाकाल मंदिर की उप प्रशासिका श्रीमती सिमनी यादव है, उनसे जानते हैं कि आज की राजसी सवारी के लिए क्या विशेष इंतजाम जिला प्रशासन के हैं और किस तरह चल रही है सवारी, क्योंकि राजसी सवारी जो एक बड़ी परियोजना होती है जिला प्रशासन की, इसको कार्यान्वित किया जा रहा है, तो किस प्रकार से देखती है अगली आवाज श्रीमती सिमनी यादव की।
6: देखिए राजसी सवारी आज अंतिम राजसी सवारी है और बाबा महाकाल की ये जो पूरी सवारी है इसमें लगभग अपना 7 से 8 किलोमीटर का जो रूट है वो पूरा पड़ता है। अन्य सवारियों की तुलना में इसका रूट जो है वो काफी बड़ा हो जाता है और श्रद्धालुओं की संख्या भी जो है वो काफी आज भीड़ हम देखने को हमको मिल रही है और प्रशासन और पुलिस की तरफ से जो है वो बहुत अच्छे इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। सड़क के दोनों किनारे बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है और हर 100 मीटर की दूरी पर जो है वो पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों का जो ड्यूटी है वो विधिवत तरफ से लगाई गई है। इसके अलावा हमने पूरे सवारी मार्ग पर लगभग 70 से 80 कैमरे जो है उनके द्वारा स्मार्ट इंटेलिजेंस के द्वारा पूरा सर्विलांस किया जा रहा है। पूरी सवारी के हर चप्पे चप्पे पर पूरा सर्विलांस महाकाल मंदिर कंट्रोल रूम से किया जा रहा है और पूरे चप्पे चप्पे पर जो है वो नजर बनाए रखा है जिला प्रशासन और जो कलेक्टर सर हैं एसपी सर हैं वो खुद जो है वो मोर्चा सामान संभाले हुए हैं सवारी के साथ में, लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं और बाबा महाकाल की सवारी है वो बड़े ठाट बाट के साथ आगे बढ़ रही है।
1: बहुत धन्यवाद। और मयंक शुक्ला जी, आप किस स्थान से ये विवरण दे रहे हैं?
5: देखिए, हम श्रोताओं को बता दें कि इस समय महाकाल सवारी कमरी मार्ग से जो होता हुआ मार्ग सीधे गोपाल मंदिर की ओर जाता है, उस मार्ग से गुजर रही है और चारों ओर कोलाहल है, कौतूहल है, उल्लास है। पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा जी खुद पुलिसिंग कर रहे हैं, खुद रक्षा पार्टी का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं।
1: और अब हम द्वारकाधीश चौधरी के साथ जुड़ रहे हैं, वो कहाँ हैं बताएं। हेलो
7: हेलो,
1: नमस्कार, जय श्री महाकाल।
7: जय श्री महाकाल।
1: आप किस स्थान पर हैं और क्या दृश्य देख रहे हैं?
7: मैं शिवाजी मंदिर के यहाँ हूँ और शिवाजी मंदिर के यहाँ से पालकी निकल रही है
1: जी।
7: और यहाँ के आगे देखें दोनों साइड में ये नया रोड बना है ढावा रोड का। ढावा रोड का चौड़ीकरण होने के बाद ये पहली बार राजकीय सवारी निकल रही है
1: जी।
7: और राजकीय सवारी की स्थिति ये है कि रोड के दोनों आस्था और श्रद्धा को पीछे बढ़ते हुए श्रद्धालु जो है पालकी का एक नजर देखने को आतुर है। और ये स्थिति है यहाँ पे कि छत से लेके नीचे तक पैर रखने की जगह नहीं दिख रही है। यहाँ चारों ओर श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं।
1: अच्छा, दूसरा आगे, हाँ दूसरा आपने, हेलो
7: हेलो,
1: इस उत्सवी वातावरण में आपने देखा होगा कि ऊपर मेघ भी मतवाली चाल के साथ पूरे उज्जैनी के ऊपर इठला रहे हैं, है ना?
7: इंद्र भगवान भी
1: हाँ
7: प्रसन्न तो हुए हैं, पर वो चूंकि मेघ के रूप में
1: हाँ
7: बरस नहीं रहे हैं और वैसे उसके कारण पूरे शहर में उमस का वातावरण बना हुआ है
1: जी।
7: उमस का वातावरण बना हुआ और श्रद्धालु चारों ओर से कहीं भी गली गुच्छों में से निकल रहे हैं
1: जी।
7: और निकलने के लिए उनके ओर से चारों ओर देखे कि श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं।
1: वाह वाह,
7: आप देखे ये जितने भी हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हो, महिला हैं, पुरुष हैं, ये सारी ओर श्रद्धालु ही दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर आप देखते हैं कि हम कोयम्बटूर की भी एक पार्टी आई थी।
1: अच्छा,
7: कोयम्बटूर की पार्टी कोयम्बटूर से जो आए हैं उन्होंने अपने ढोल धमाके और नगाड़ों के साथ पूरा माहौल बदल चुके हैं।
1: वाह,
7: दूसरी ओर जो मेरे बच्चे हैं वो कथक नृत्य भी कर रही है, उसको देखते हुए हर श्रद्धालु जो देख रहा है वो कहता है कि क्या बाबा का उत्साह ही उत्साह दिखाई दे रहा है।
1: मतलब आप अपना ये वक्तव्य दे रहे हैं कि अवंतिका नाथ का स्वागत करने के लिए धार्मिक, सांस्कृतिक और लोक परंपराओं की झलकियों के साथ आप सभी को ये राजकीय सवारी आकर्षित कर रही है।
7: राजकीय सवारी की स्थिति ये है कि शहर के जिस मार्ग से निकल रही है पूरा मार्ग

0: दुल्हन की तरह सजा हुआ है
1: जी,
0: दुल्हनी की तरह सजा हुआ है और श्रद्धालु भी राजा की पालकी को देखने के लिए आतुर है। वो भगवान बाबा महाकाल की एक झलक तो देखने को आतुर है। वो किसी भी प्रकार से दिख जाए, वो छत से दिख जाए, नीचे से दिख जाए, क्या हालत है कि पैर रखने की जगह नहीं, अगर किसी प्रकार की बाल फेंकी जाए तो बाल भी नीचे नहीं गिरेगी, ये स्थिति हो रही है रोड पे। तो
1: हाँ, आपने अभी जिक्र किया था कि दक्षिण भारतीय परंपरा का कैलाश वाद्यम जो है साक्षी बन रहा है इस राजसी सवारी का, और वो जो आराधना कर रहे हैं वो उसमें यही समाहित है कि तम गुरुम सर्वदेवानाम महाकालेश्वरम परम महामंत्रेश्वरम शंभु व्रजामि शरणम शिवम।
0: आप देखिए कि यहाँ श्रद्धा चारों ओर से है। मैं आपको बताऊं कि महाकाल से सवारी निकलने के बाद रामघाट पे भी देखे, रामघाट के भी दोनों ओर पब्लिक की पब्लिक थी। उसके बाद हवा रोड पे देख लीजिए, सती गेट पे देख लीजिए, और अभी जो सवारी जो है मिर्जा नईम बेग की ओर बढ़ी हुई है
1: जी।
0: मिर्जा नईम बेग से तेली वाला की ओर चलेगी, उसके बाद आप सवारी जो है उसके पश्चात गोपाल मंदिर पर की ओर पहुंचेगी,
1: जहाँ
0: गोपाल मंदिर पर सिंधिया परिवार के जो सदस्य हैं वो अब आरती करते हैं
1: जी।
0: अभी
1: जी।
0: आप देखें चारों ओर हजारों की तादाद में, मैं सोचता हूँ कि 8 से 10 लाख श्रद्धालु इस सवारी में आए हुए हैं, और यहाँ तक कि उज्जैन नहीं, उज्जैन इंदौर रतलाम मंदसौर नीमच
1: जी
0: कई दूर दूर के श्रद्धालु मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उनसे बात भी की मैंने कहाँ कहाँ से आए, काफी दूर दूर से कुछ राजस्थान श्रद्धालु मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हम झालावाड़ से भी आए हैं, पाटन से आए हैं, कोई स्थिति है।
1: श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि आपने जिक्र किया है कि ये राजघराने से वहाँ गोपाल मंदिर पर पूजा अर्चन करते हैं महाकाल की, उनके आने की संभावनाओं को आपने तलाशा कि पहुँच रहे हैं?
0: अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि सवारी में वैसे उनके परिवार का कोई भी सदस्य
1: जी
0: सिंधिया परिवार का जो है गोपाल मंदिर पर पूजा करता है, वहाँ हरि और हर का मिलन होता है। ये हरि और हर का मिलन वैसे भी दिवाली के बाद जो 14 साथी है उस रोज भी हरि और हर का मिलन होता है।
2: इधर तो अपन सवारी
0: ये तो सावन और भादवा मास की सवारी है, तो भादवा की सवारी सिंधिया स्टेट के द्वारा ही चालू की गई।
1: वाह, बहुत बहुत धन्यवाद द्वारकाधीश चौधरी जी।
0: धन्यवाद धन्यवाद। मैं ठीक, मैं मिर्जा नईम बेग ढाबा रोड आगे पहुँच रहा हूँ। मैं
3: जय श्री महाकाल। उदित जी, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि सवारी लगातार आगे बढ़ रही है, बाबा महाकाल की पालकी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और उसके आगे भक्त मंडलियां चल रही हैं, श्रद्धालु चल रहे हैं। बैरिकेड्स के दोनों ओर जो रहवासी हैं वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, लोगों को पानी पिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं, कई लोगों ने अपने स्टॉल लगाए हैं जो उनको सेवा कर रहे हैं, कुछ खिला पिला रहे हैं। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि चूंकि उज्जैन ये धार्मिक नगरी है, मंदिरों का शहर है, यहाँ पर 84 महादेव हैं, और उज्जैनी प्राचीन शहर है, 5000 साल पुराना,
1: इसीलिए इसको सिटी ऑफ गॉड्स कहते हैं
3: जी। और उज्जैनी का अर्थ हम अगर संस्कृत में देखें या प्राचीन नगर में, इसके 11 नाम यूं तो दिए गए हैं पर इसका मुख्य मूल अर्थ होता है उत्कर्ष के साथ जय घोष करने वाली नगरी
1: जी जी जी।
3: अवंती, अवंतिका, उज्जैनी से उज्जैन बनने की इसकी एक गौरवशाली गाथा है। और कालगणना का प्राचीन केंद्र है
1: जी,
3: तंत्र की भूमि है, शक्तिपीठ है ये भूमि
1: जी,
3: श्री कृष्ण की विद्या स्थली है, भर्तृहरि की तपोभूमि है, विक्रमादित्य की न्याय नगरी है। यहाँ तक कि ये कहने में आता है कि महाराजा विक्रमादित्य का न्याय इतना प्रिय था कि माँ लक्ष्मी और शनिदेव भी उनसे न्याय मांगने आए थे।
1: यस, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये नगरी जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था कि ये अनादिकाल से स्वर्ग का एक टुकड़ा भी है और हर कल्प में हजारों हजारों वर्षों में अपना स्वरूप बदलती रही है
3: जी। तो ऐसा माना जाता है कि ईसा पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी में 16 जनपदों या राष्ट्रों में से एक अवंती जनपद का उल्लेख आता है और उज्जैन इसी की राजधानी रही है।
1: आप हमसे जुड़ रही हैं पांखुरी वक्त जोशी। हेलो,
4: जय महाकाल।
1: जय श्री महाकाल। आपकी यात्रा जो राजसी सवारी की यात्रा है, आप देखते देखते कहाँ पहुंची हैं और वहाँ का जो दृश्य है वो क्या है, बताइए।
4: गोपाल मंदिर पर ही है और हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लगातार लोग यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं
2: जी।
4: और अभी जो दृश्य मेरे सामने है कि बिल्कुल अभी जो दिख रहा है वहाँ एक शिव बना है और एक शक्ति बनी है और वो दोनों आपस में नृत्य कर रहे हैं, वो दोनों आपस में राज कर रहे हैं। कैसा अद्भुत दृश्य है कि शिव और शक्ति मिलकर राज कर रहे हैं।
3: पाखुड़ी जी, जब हरि और हर का मिलन होगा, जब गोपाल मंदिर पर राजघराने की पूजा होगी, आरती होगी, तो वो कौन सा समय होगा? क्या आपको बताया गया है कितने बजे तक ये संभावना है कि पालकी वहां तक आ जाएगी?
4: लगभग 7:30-8 के करीब पालकी गोपाल मंदिर पर।
3: तो पुजारियों ने सारी व्यवस्था कर ली है पूजा की, वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही है?
4: पूजा की व्यवस्थाएं कर रखी है और आज एक और विशेष अवसर बन रहा है। एक तो भादव मास का सोमवार है और कृष्ण पक्ष की एकादशी है। एकादशी कृष्ण को प्रिय है और शिव का मास चल रहा है और सोमवार का दिन है और ऐसे में हरि और हर का मिलन होने वाला है। ये अपने आप में एक अनूठा संयोग भी है कि आज एकादशी ही पड़ रही है और ऐसे में हरि हर का मिलन है। जो यहाँ कृष्ण जी की प्रतिभा है उस पर तुलसी के बल से सजाया गया है, अंदर मोगरे की कलियां लगाई गई, सुंदर फूलों से सज्जा की हुई है कि हर हरि से मिलने आ रहे हैं।
3: गोपाल मंदिर का जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है दर्शन करने के लिए बाबा महाकाल की राजसी सवारी का, और वहाँ कई मीडिया कर्मी भी इकट्ठे होते हैं, तो क्या
4: मीडिया कर्मियों ने अपना स्थान बना रखा है
3: जी।
4: और इसके साथ ही वहाँ सड़कों पर लोग चले हुए हैं, आसपास के इलाकों से आए हुए हैं और सड़कों से लोग देख रहे हैं और बिल्कुल अपना भी बाबा को देख के।
3: गोपाल मंदिर बहुत अद्भुत नजारे के साथ स्थित है जिस जगह पर है और वहाँ से दृश्य बहुत विहंगम होता है, बहुत दूर तक का दिखाई देता है, पालकी काफी दूर से आती हुई नजर दिखाई देती है। और हाल फिलहाल हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे एक और साथी अखिलेश हमसे जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, आप कहाँ आ गए हैं इस समय?
5: मैं मेजर नईम एक मार्ग पर हम लोग निकल रहे हैं, सवारी के आगे आगे चल रहे हैं और हमारे साथ एलन गर्ग जी हैं, सीएम साहब, जो कि हमारे साथ सवारी मार्ग चल रहे हैं। आइए हम उससे सीधे जुड़ते हैं और श्रोताओं से उनकी बात करवाते हैं
3: जी।
6: जैसा कि आपको विदित है कि आज भादो में बाबा महाकाल की अंतिम शाही सवारी के रूप में निकाली जा रही है, इसमें लाखों श्रद्धालु हमारे साथ पालकी के साथ भी चल रहे हैं और लाखों श्रद्धालु बैरिकेडिंग के दोनों ओर बाबा की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं और बहुत ही सुंदर नजारा है। अभी पुरानी सवारी है जो नॉर्मल सवारी रहती है उससे 2-2.5 किलोमीटर ये रूट बढ़ा हुआ है शाही सवारी का। लगभग 9 से 10 बजे के बीच में बाबा महाकाल वापस से सभा मंडपम में पहुंचेंगे महाकाल परिसर में, वहां उनकी भव्य आरती पूजन होगा, उसके बाद ये समारोह की वापस से उमंग उत्साह श्रद्धालुओं के साथ बहुत जोर शोर से मनाया जा रहा है। हेलो
3: जी अखिलेश जी, और बताएं और क्या देख पा रहे हैं हमारे श्रोताओं के लिए, आप क्या बताना चाहते हैं?
5: इस समय मैं बताऊं कि मिलता नहीं देख मार्ग कर रहे हैं, यहाँ पर भी सवारी जो निकले धीरे धीरे, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ में हम लोगों को प्रभावित पड़ रही है क्योंकि रोड को थोड़ा चौड़ा भी हुआ है, हालांकि उतना चौड़ा नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पर आवाजाही बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा भीड़ मिल रही है। आप देखिए बैंड का भी आपको सुनाई पड़ो महाकाल बैंड, क्योंकि जिनका गठन ही महाकाल सवारी के लिए किया गया, महाकाल मंदिर के लिए किया गया है, तो वहां से आप ध्वनि सुन रहे होंगे लगातार, उस बैंड से भजनों की ध्वनि सुनाई दे रही है जी।
3: जी अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, ये बैंड को हम सुन पा रहे हैं, देखिए ये अद्भुत नजारा होता है, बैंड है, करतल ध्वनि है, डमरू है, झांझ है, मजीरा है, नृत्य है, सब कुछ है, रोमांच से भरपूर है ये सवारी। तो उदित जी, हम अपने श्रोताओं को ये बता देना चाहते हैं कि सवारी लगातार आगे बढ़ती हुई और जैसा कि आज का समय है कि 10 बजे तक ये वापस महाकाल मंदिर तक पहुंच जाएगी, इसी के साथ हमारे प्रतिनिधि लगातार आपको सवारी मार्ग की गतिविधियों से श्रद्धालुओं के श्रद्धा भक्ति भाव से लगातार परिचय
1: जोड़ रही हैं आयुषी मिश्रा। आयुषी मिश्रा जी, जय श्री महाकाल।
7: जय
1: श्री महाकाल। आपका हमसे संपर्क तो हुआ है लेकिन कॉल ड्रॉप होने का सिग्नल भी साथ में मिला है, इस बीच में हम अपने और प्रतिनिधियों

0: से भी मिलेंगे और जहां जहां जिस सवारी पर मार्ग पर वो हैं वहां का विवरण आपको लगातार देते रहेंगे।
1: देखिए ये ऐसा उत्सव है जहां सब उमंग में डूबे हुए हैं, किसी को पता नहीं है कहां जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं बाबा की भक्ति मार्ग पर। सब रत हैं, भक्ति में रत हैं, डमरू बजा रहे हैं, झांझ बजा रहे हैं, लेकिन चले जा रहे हैं आगे। और हम जैसा कि बात कर रहे थे कि उज्जैन नगरी बहुत प्राचीन नगरी है, इसका धार्मिक महत्व बहुत अद्भुत है और कालगणना का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। स्टैंडर्ड टाइम के संदर्भ में आज जो प्रतिष्ठा ग्रीनविच मीन टाइम की है, आज से कई हजार साल पहले ये उज्जैन की रही है। और अब हमारे विशेषज्ञ हमसे जुड़ रहे हैं इस पूरी सवारी के महत्ता की, उज्जैनी की महत्ता की, बाबा महाकाल की महत्ता के बारे में। आइए अब हम उनसे जानते हैं।
2: साहित्यविद डॉक्टर शिव चौरसिया अब रेडियो सेट पर हम सभी के साथ जुड़ रहे हैं। जय श्री महाकाल।
3: नमस्कार। जय श्री महाकाल। आप देख रहे हैं देवादिदेव भगवान महाकालेश्वर की सवारी और ये भगवान महाकालेश्वर इस सृष्टि के नियंता हैं। परब्रह्म की तीन परम शक्तियों में से एक, ब्रह्मा विष्णु महेश में से महेश भगवान महाकाल हैं, सदाशिव हैं, आशुतोष हैं, नीलकंठ हैं, सदा प्रसन्न होने वाले हैं। और उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान महाकालेश्वर का मंदिर यहाँ विराजमान है। महाकाल शब्द का अर्थ होता है काल के नियंता, समय के अधिपति, और उन्हीं समय के अधिपति और मृत्यु के भी देवता महादेवता। तो उसी महाकाल की आज राजसी सवारी निकल रही है। राजसी सवारी का मतलब है कि श्रावण मास में निकलने वाली जितनी भी सवारियां हैं उसमें से अंतिम सवारी, श्रावण मास के प्रथम सोमवार से आरंभ होने वाली और पूरा सावन और आधे भाद्रपद में निकलने वाली प्रत्येक सोमवार की यह सवारी का अपना बड़ा महत्व है। भगवान महाकालेश्वर की यह सवारी पूरी राजसी ठाट बाट से निकलती है। इसमें हाथी घोड़े होते हैं, पुलिस की बैंड होती है, घुड़सवार होते हैं, पुलिस की परेड होती है, अनगिनत भजन मंडलियां होती है, नगर के बड़े बड़े अधिकारी, राजनेता और बड़े बड़े उद्योगपति बिना जूता चप्पल पहने उबाने पांव से भगवान महाकालेश्वर की सेवा में महाकाल मंदिर से आरंभ होने वाली इस सवारी में पूरे मार्ग पर जो वापसी तक लगभग 7-8 किलोमीटर हो जाता है उसमें पैदल चलते हैं भगवान महाकालेश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करने के लिए। ये महाकाल की सवारी का उज्जैन में एक नया उत्सव है, एक बड़ा उत्सव है, महाउत्सव है। इस दिन उज्जैन नगर में जो 10 लाख की जनसंख्या है उसके अतिरिक्त 15-20 लाख और इसके दर्शन करने आते हैं। वे भगवान महाकालेश्वर का दर्शन करते हैं, शिप्रा स्नान करते हैं, अन्य मंदिरों में भी दर्शन करते हैं और दोपहर को अपराह्न 4 बजे से निकलने वाली इस सवारी का दर्शन कर अद्भुत आनंद का अनुभव करते हैं। महाकाल की सवारी में सबसे आगे बंदूक से गोली निकलती है, खूब आवाज होती है, ध्यान मजीरों की मंडलियां चलती है, घुड़सवार, पुलिस बैंड, पुलिस की परेड, स्काउट गाइड और एनसीसी के कैडेट्स चलते हैं और पुरुषों की और महिलाओं की, मगन होकर महिलाओं का मंडल चलता है। कई लोग अलग अलग रूपों में सज धज कर चलते हैं और इसके बाद आती है भगवान महाकालेश्वर की पालकी। पालकी राजसी ठाट का कहना चाहिए प्रतिबिंब है। पहले राजा महाराजा लोग पालकी में बैठकर ही नगर भ्रमण करते थे। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन नगरी के राजा भगवान महाकाल हैं और भगवान महाकाल राजा के रूप में वही राजसी अंगरखा ठाट बाट धोती और सिंधिया शाही पगड़ी पहनकर पालकी से निकलते हैं। इस प्रकार राजा जैसे प्रजा के हालचाल जानने निकलता है, ठीक उसी प्रकार भगवान महाकालेश्वर पालकी में बैठकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इस सवारी का आनंद ये है कि इसमें आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति होने के साथ ही मनुष्य के मन में आध्यात्मिकता भाव जगाने की अद्भुत चेतना होती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिव चौरसिया जी। और हम अब जुड़ रहे हैं विजया जैन से, जो कि रानी सती गेट और सराफा के बीच में कहीं अभी कुछ देर पहले थी। हेलो।
4: हेलो, जय श्री महाकाल, मैं गोपाल मंदिर पर आ चुकी हूँ और उज्जैन शहर के महापौर आदरणीय गोपाल आदरणीय टकवाल जी हमारे बीच में उपस्थित है। अगली आवाज आदरणीय टकवाल साहब की।
5: चलिए मुकेश टकवाल जी से बात कराएं।
6: जय श्री माता,
5: जय श्री महाकाल।
6: आकाशवाणी के श्रोताओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। आज हमारे उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर की रास की सवारी निकल रही है और सवारी में लाखों श्रद्धालु बाबा की महाकाल की सवारी को बाबा की झलक पा रहे हैं और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता भी है कि माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे उज्जैन के जो विकास कार्य चल रहे हैं उसमें हमने अभी पंडाल से लेकर के सती गेट का जो हमने मार्ग का चौड़ीकरण किया है, चौराहों का हमने सुंदरीकरण किया है, आज बाबा की सवारी उसी नव निर्मित चौराहों से मार्ग से निकल रही है और सारे शहर को हमने रुकिया लाइट से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। उज्जैन के प्रत्येक नागरिक बाबा की एक झलक पाने के लिए लाए थे। मैं आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। मैं मुकेश टटवाल, उज्जैन महापौर, जय श्री महाकाल।
5: जो टटवाल जी, जो खड़े हनुमान है ना सराफा के उधर रानी सती गेट के बाद जब हम छतरी चौक पर पहुंचते हैं तो उस डाइवर्शन को, उस यू टर्न को आपने नगर निगम ने किस तरह से संवारा है?
4: चकमाल जी हमसे विदा ले चुके हैं और सवारी मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं
5: जी।
4: गोपाल मंदिर के आसपास भक्तों की भीड़ देख रही हो
5: हाँ।
4: और ऐसा अनुमान है कि लगभग 8:30 बजे बाबा महाकाल की राजकीय सवारी यहाँ पहुँचने की संभावनाएं हैं और हमारे इन जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं उनमें बहुत ही उत्साह का संचार दिख रहा है और सब टकटे ही लगाए हुए उनका इंतजार कर रहे हैं। गोपाल मंदिर की बहुत ही सुंदर सजावट की गई है और पूरा गोपाल मंदिर लाइटों से सुसज्जित किया गया है और गोपाल मंदिर के बाहर विभिन्न भजन मंडलियों के कलाकार बहुत ही सुंदर और मनोहारी नृत्य कर रहे हैं। राधा कृष्ण की वेशभूषाएं उन्होंने धारण कर रखी है और पुलिस का भी।
5: विजया जी, आपने ये जो छतरी चौक का जो एक चक्र है उसके पास क्या देखा है?
4: गोपाल मंदिर के पास मैं खड़ी हूँ। गोपाल मंदिर से अभी महापौर जी का आगमन हुआ है, वो हमसे विदा ले चुके हैं।
1: ठीक है विजया जी, आप और आगे भी हमसे जुड़े रहिए और हमें इस पूरे संचालन के जो अवसर हैं, जो गतिविधियां हैं, उनके बारे में हमें लगातार बताती रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, हम बता रहे थे उज्जैनी के बारे में कि ये ऐसा प्राचीन नगर है जिसमें मंदिर है, जिसमें आध्यात्म है, जिसमें शिक्षा है। सांदीपनी आश्रम जहां भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की शिक्षा हुई और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांदीपनी विद्यालय की एक मुहिम शुरू की है, वो उत्कृष्ट विद्यालय बनाए जा रहे हैं। वहां शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, वहां स्किल्ड, जिसको हम बुद्धि कौशल कहते हैं, वो विकास किए जा रहे हैं। स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, जो नई आधुनिक शिक्षा है जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं और जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की बातें हैं वो पढ़ाई जा रही हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी कि जिस तरह से 64 कलाएं भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ही समय में सीख ली, तो ये मिशन माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है कि अच्छे स्कूल विकसित किए जाएं, अच्छी शिक्षा दी जाए। और इस दौरान आयुषी मिश्रा हमसे जुड़ रही हैं। आयुषी, बताइए क्या आपके पास माहौल है, कैसा वातावरण है?
7: और अभी अभी वो आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि वो बहुत भीड़ संभाल रहे हैं, वो हमसे बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। मैं उनसे बात करवाती हूँ, तब तक मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे समस्त नेताओं को कि इस पालकी की सबसे विशिष्ट बात है कि यहाँ पे इतनी सारी लोक संस्कृतियाँ जो है हमारी, उनका जो समागम होता है वो इतना अद्भुत, इतना सुंदर है कि वो उसका दृश्य देखते ही बनता है। और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हमारे आलोक, आलोक जी।
1: जय श्री महाकाल आलोक जी।
5: जय श्री महाकाल। हेलो
1: आयुषी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं और क्या आलोक जी से हमारी बात करवा पाएंगी आप? जी आलोक जी से आप बात करवा पाएंगे हमारी आकाशवाणी से?
7: सर आलोक डॉक्टर आगे बढ़ गए हैं, वो काफी भीड़ संभाल रहे हैं।
1: कोई बात नहीं, भीड़ का प्रबंधन कर

0: अपना उनका काम है, चूंकि वो एडिशनल पुलिस सुपरिंटेंडेंट है और उनका दायित्व है, बहुत बड़ा दायित्व है, लाखों लोग सड़क पर इस समय हैं। आप कुछ बता पाएंगी, क्या विवरण देना चाहती हैं आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, पानी बिल्कुल मेरे सामने है, मैं के अंदर हूँ, अब ये भी उनका सड़क पर है, इतने सारे दल और समूह है यहाँ पे पालकी में, वो अपना अपना प्रस्तुति दे रहे हैं यहाँ पे, और तरह की बात वहाँ पे है, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, गुजरात, सभी नृत्य मंडलियाँ है, और हमारा शास्त्रीय नृत्य और हमारा लोक नृत्य, इसका जो समागम है वो बहुत ही अद्भुत है यहाँ पे, और यहाँ बहुत जोर से भजन शुरू हो गए हैं।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी, बहुत बहुत धन्यवाद ये विवरण हम तक पहुंचाने के लिए। और अब हमसे शैलेंद्र पारसर जी जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, जय श्री महाकाल।
2: जय श्री महाकाल।
0: इस समय आप कहां पर हैं?
2: इस समय मैं गोपाल मंदिर पर
0: हूं। तो किस तरह का वातावरण निर्मित हो गया है गोपाल मंदिर, क्योंकि अब सवारी मार्ग धीरे धीरे गोपाल मंदिर तक जो सवारियां हैं उनमें, और जो पालकी है, और जो पूरा श्रद्धालुओं का तांता है, वो गोपाल मंदिर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जी बताइए।
2: जी, और ये अखाड़े और भजन भजनियां बड़े प्रभावेश में अपनी आत्मा और विश्वास के साथ अपनी प्रस्तुतियों को देते हुए अपनी भक्ति में डूबी हुई निरंतर आगे बढ़ती जा रही है, और सवारी हरी हर का मिलन जहाँ होता है, गोपाल मंदिर, द्वारकाधीश गोपाल मंदिर कहा जाता है इसे, यहाँ आ रही है, और ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। 19वीं शताब्दी में महाराजा गोलकनाथ शुक्ल की पत्नी महारानी बेजाबाई सीते द्वारा बनवाया गया मंदिर है 19वीं शताब्दी का, और यहाँ पर पहला जो सबसे बड़ा काम होता है अभी और हर का मिलन, और परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है, गोपाल द्वारकाधीश स्वरूप प्रतिष्ठित है, और चांदी दरवाजे और मंदिर की बड़ी खूबसूरत विशेषताओं से युक्त ये मंदिर, और इसके सामने ये पूजा का काम सिंधिया परिवार द्वारा किया जाता है द्वारकाधीश गोपाल मंदिर पर, और सिंधिया देव स्थान ट्रस्ट ग्वालियर द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता सबसे बड़ी सवारी की है कि यहाँ पर गोपाल मंदिर के सामने काफी भीड़ लगती है, और ये स्थापित करा एक ऐसा सुंदर मंदिर है जहाँ अधिक हर का मिलन होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भारतीय सनातन परंपरा में बड़ी और हर का मिलन केवल दो देवताओं की संपन्न नहीं है, उसकी पूजा अर्चना के साथ भारतीय दर्शन के उस महान समन्वय का चेतना का प्रतीक है, जिसमें भगवान विष्णु हरि और भगवान शिव हर को परम सत्य के दो दिव्य स्वरूप के रूप में पूजा जाता है, और ऐसा अद्भुत संगम यहाँ पर दिखाई देता है। दोनों तरफ में देख रहा हूँ बड़ी दूर से समाजों में भक्ति के रस में डूबे हुए लोग अपनी आत्मा और विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, और ये हरि और हर हरिहर की यह कल्पना परमात्मा एक है, भक्तों की श्रद्धा और उपासना के अनुसार उनके स्वरूप विष्णु और भगवान शिव को अलग अलग देवता मानकर कृष्ण करते हैं, लेकिन शिव और विष्णु की अभिन्नता यहाँ पर दिखाई देती है, एक ही परम तत्व विष्णु और शिव का यहाँ पर पूजन अर्चन होता है। उसके बाद यहाँ से पूजा करने के बाद विद्या परिषदों के द्वारा पूरा मंच बनाया गया है, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ दूर दूर तक हमारी यहाँ पर पहुँचने वाली है, और भगवान शिव विष्णु स्वरूप है और शिव भगवान विष्णु शिव स्वरूप है, ये दोनों स्वरूपों का जो मिलन है एक अद्भुत मिलन है जो कहीं और कम देखा जाता है। ऐसे महाभारत में भी हरिहर की एकता का जो संगाता है जब भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच अत्यंत गहनता दिखाई देती है, और कृष्ण स्वयं शिव की उपासना करते हैं और भगवान शिव को परम पुत्र मानते हैं, भगवान शिव जिनकी आरती निकलती है महाकाल का भव्य मंदिर और महालोक बना हुआ है, जहाँ सैकड़ों नहीं लाखों

0: तो क्यों ना ऐसे में एक शिवाष्टकम का पाठ किया जाए हमारे श्रद्धालुओं के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए। तस्मै नमः परम कारण कारणाय दीप्तोज्ज्वल ज्वलित पिंगल लोचनाय नागेंद्र हार कृत कुंडल भूषणाय ब्रह्मेंद्र विष्णु वरदाय नमः शिवाय श्रीमत प्रसन्न शशिपन्न गभूषणाय शैलेन्द्र जा वदन चुंबित लोचनाय कैलास मंदर महेंद्र निकितानाय लोकत्यार्थी हरणाय नमः शिवाय पद्मावदात मणिकुंडल गो वृषाय कृष्णागरु प्रचुर चंदन चर्चिताय भस्मानुशक्त विवेक चोत पल मल्लिकाय नीलाब्ज कंठ सदृशाय नमः शिवाय।
1: इसका आशय ये है कि जो कारण के भी परम कारण है, यानी अग्नि शिखा के समान है, अति दैदीप्यमान उज्ज्वल और पिंगल नेत्र वाले हैं, सर्पराजों के हार कुंडलादि से भूषित हैं, तथा ब्रह्मा विष्णु और इंद्रादि को भी वर देने वाले हैं, उन शंकर को बहुत बहुत नमस्कार है। शोभायमान और निर्मल चंद्रकला तथा सर्प ही जिनके भूषण हैं, गिरिराज कुमारी अपने मुख से जिनके लोचनों का चुंबन करती हैं, कैलाश और महेंद्र गिरी जिनके निवास स्थान हैं, तथा जो त्रिलोकी के दुख को दूर करने वाले हैं, उन शंकर को मेरा नमस्कार है। और अंतिम जो श्लोक आपने पढ़ा था ना, भस्मानुसुप्त विकोच चत्पल मल्लिकाय नीलांबुज कंठ सदृशाय नमः, उसका अभिप्राय यह है कि जो स्वच्छ पद्मराग मणि के कुंडलों से दीप किरणों की वर्षा करने वाले अगरु और बहुत से चंदन से चर्चित और भस्म एवं प्रफुल्लित कमल और जूही से सुशोभित हैं, ऐसे नील कमल सदृश कंठ वाले श्री शंकर महाकाल महासुरेशम को नमस्कार
0: है। और सुदर्शन जी हमसे जुड़ रहे थे, लेकिन अभी हम फिर उनको बाद में जोड़ेंगे। और इस स्तोत्र को हम आगे ले जाना चाहते हैं। लंबत सपिंगल जटा मुकुटोत कटाए दृष्टा कराल विकट तोट कर भैरवाय व्याघ्रा जिनाम्बर धराय मनोहराय त्रैलोक्य नाथन मिताय नमः शिवाय दक्ष प्रजापति महामख नाशनाय क्षिप्रम महात्रिपुर दान घातनाय ब्रह्मोर्जितोर्ध्वगरोटि निकृतंदनाय योगाय योगन्मिताय नमः शिवाय संसार सृष्टि घटना परिवर्तनाय रक्षः पिशाच गण सिद्ध समाकुलाय सिद्धोर ग्रह गणेन्द्र निशेविताय शार्दूल चर्म वसनाय नमः शिवाय।
1: जय महेश जटाजूट कंठ सोहे कालकूट जन्म मरण जाए छूट नाम लेत जाके। और इसी बीच सुदर्शन आयाचित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो, जय श्री महाकाल।
2: जय श्री महाकाल।
1: और सुनाइए, कहाँ पर हैं और क्या देख रहे हैं? राजसी सवारी का एक विहंगम दृश्य।
2: सवारी का बहुत विहंगम दृश्य चल रहा है। मैं सुदर्शन आयाचित सवारी के मध्य में आपको लिए चलता हूँ, जहाँ पर सवारी के माध्यम से हजारों हजार नहीं लाखों लाख हाथ जोड़ करके बाबा महाकाल का स्वागत कर रहे हैं और बाबा महाकाल की जयकारा लगा रहे हैं। हर तरफ केवल एक ही गूंज है, आ रही है पालकी, जय महाकाल की।
0: सुदर्शन जी, पालकी कहाँ तक आ गई है और ये कब तक गोपाल मंदिर तक आ जाएगी?
2: जो है तेली वाला प्रवास कर रही है
0: जी,
2: और नए मार्ग की ओर अग्रसर हो रही है। कहाँ भगवान महाकाल की पालकी का स्वागत अद्भुत और अविस्मरणीय रूप से किया जाना है।
1: अभी
2: मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा के अनुरूप इस रोड को बहुत सुंदर बना दिया गया है।
1: ये नीलकंठ चौराहे तक
2: भीड़ को देखते हुए यह प्रकल्प किया गया है। नवाचार के लिए जाने जाने वाले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुखिया, जो कि उज्जैन के बेटे हैं, और उज्जैन की सुंदरता के लिए, आगामी सिंहस्थ की सुंदरता के लिए वे पूर्ण रूप से समर्पित होकर के प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे प्रदेश के मुखिया यूएई में एक बहुत बड़ी समिट में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन उनका मन बाबा महाकाल के चरणों में है। चारों ओर से जयकारों की गूंज और हर व्यक्ति चाहता है कि बाबा की एक झलक देख सके। आदरणीय तिवारी जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन।

0: नायाचिप जी, आपने बहुत शानदार विवरण दिया है। अब शिव का जो एक रूप है वो सवारी में कैसा है, ये द्वारकाधीश चौधरी हमसे बता रहे हैं। कहाँ हैं? हेलो, जय श्री महाकाल।
1: जय श्री महाकाल।
0: आप कहाँ तक पहुँचे हैं? तेलीवाड़ा तक?
1: तेलीवाड़ा के कोने तक पहुँच गए
0: जी। तो आपने अभी तक सवारी का जो दृश्य देखा है, यहाँ क्या स्थिति है?
1: यहाँ स्थिति यह है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों ओर, जो अगर कोई राजा अपनी प्रजा को देखने निकले और प्रजा अगर कोई इस प्रकार का दर्द हो तो वो दर्द दूर करने के लिए राजा निकलते हैं और उसके लिए प्रजा जो है पलक पावड़े बिछा देती है। इसी तारतम्य में आप देखें कि मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा भी कई जगह अपने स्टेज बना के और उनका किया जा रहा है।
2: ये तो बहुत अद्भुत नजारा है। ये सामाजिक समरसता का, देखिए, ये जो महाकाल की राजसी सवारी है ये केवल किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है। ये जो सामाजिक ताना बाना है भारत का, जो उज्जैन का सामाजिक ताना बाना है, उसको एक रूपता देने का प्रयास है। बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लोकोत्सव है ये।
1: और इस लोकोत्सव को देखें कि चारों ओर ये मुस्लिम संप्रदाय का एरिया है, टंकी चौक मिर्जा नेम बेग का है। यहाँ इस कदर मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा स्वागत किया जा रहा है कि हर आदमी ये सोच रहा है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दिखाई दे रहा है।
2: ये भारत की ताकत है द्वारकाधीश जी, यही भारत की ताकत है।
1: बिल्कुल है। और दूसरी ओर देखें आप, जो सवारी जो पहले निकलती थी, वो पूर्व में सवारी जो निकलती थी वो चिमनी में और लाइटिंग में निकलती थी। आज की तारीख में जो लाइट डेकोरेशन और जो हुआ है, और लाखों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं। पहले जो राजसी सवारी निकलती थी उसमें हजारों की ही तादाद में रहते थे, पर अब किसी ये स्थिति है कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु है। और श्रद्धालु की स्थिति ये देखे, ये जो नगरी है राजा विक्रमादित्य नगरी है, ये भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भी है, ये न्यायप्रिय नगरी के साथ यहाँ राजा भर्तरी गुफा भी है और राजा भर्तरी ने यहाँ तपस्या की है। इस प्रकार की सारी चीजें इस शहर में ही मिलेगी। और शहर में ये देखे कि जो चिपड़ा नदी है वो अमृतमयी नदी है, और जो उत्तरमुखी चिपड़ा नदी है कोई नदी ऐसी नहीं जो उत्तर की ओर बहती है। दूसरा और आप देखें, सिंहस्थ महापर्व 2028 का आने वाला है, उसको देखते हुए यहाँ सारी और सिंहस्थ की व्यवस्था की जा रही, चार और रोड चोरी किए गए हैं और रोडों का जो सुंदरीकरण किया गया है वो देखने योग्य है।
2: जी द्वारकाधीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए उज्जैन बहुत अद्भुत नगरी है, नवरत्न है, भर्तृहरि है, गढ़कालिका है, हर सिद्धि है, बाबा महाकाल है, सांदीपनी आश्रम है, मंगलनाथ है, कालगणना होती है, जंतर मंतर है, सब कुछ है इस नगर में। तो क्यों ना फिर सेवाष्टकम का एक और बचा हुआ पद हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाएं। भस्मांग राग कृत रूप मनोहराय, सौम्या वदात वन माश्रित माश्रित आय, गौरी कटाक्ष नयनार्धि निरीक्षणाय, गोक्षीर धर धवलाय नमः शिवाय, आदित्य सोम वरुणा नील सेविताय, यज्ञानी होत्र वर्धूम निकिते नाय, ऋक साम वेद मुनिभिः स्तुति संयुताय, गोपाय गोपन मिताय नमः शिवाय। शिवाष्टकमिदं पुण्यम यः पठेचि स्व संविनदौ, शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते।
0: ओम। भस्म रोगी अंगराग से जिन्होंने अपने रूप का अत्यंत मनोहर बनाया है, तथा जो अति शांत और सुंदर वन का आश्रय लेने वालों के आश्रय हैं, श्री पार्वती जी के कटाक्ष की ओर जो बाकी चितवन से निहार रहे हैं, और गोदुग्ध की धारा के समान जिनका श्वेत वर्ण है, उन शंकर को मेरा नमस्कार है। सूर्य चंद्र वरुण और पवन से सेवित हैं, यज्ञ और अग्निहोत्र के धूम में जिनका निवास है, ऋक् सामादि वेद और मुनिजन जिनकी स्तुति करते हैं, उन नंदीश्वर पूजित गौओं का पालन करने वाले श्री शंकर जी को मेरा नमस्कार है। और शिवाष्टकमिदं पुण्यम यः पठेच्छिव सन्निधौ का आशय यह है कि जो इस पवित्र शिवाष्टक को महादेव जी के समीप पढ़ता है, शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदते, वह शिवलोक को प्राप्त होता है और शंकर जी के साथ आनंद प्राप्त करता है।
2: जी, तो इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और सवारी लगातार आगे बढ़ती हुई, धीरे धीरे भजन मंडलियां आगे आगे चलती हुई, बैंड कड़ादीन के
0: जैसे ही ये राजसी सवारी तेलीवाड़ा से आगे कंठाल चौक की ओर जाएगी, वहां का नजारा लेकर हम फिर आएंगे। अभी द्वारकाधीश चौधरी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं और अभी तेलीवाड़ा के पास थे। हेलो, जय श्री महाकाल।
1: जय श्री महाकाल।
0: बताइए, क्या अभी तेलीवाड़ा के आसपास आप चल रहे थे? क्या कुछ ये नारे सुनाई दे रहे हैं, जय श्री महाकाल और पूजन अर्चन के लिए
1: आनंद हो, जय महाकाल की, के नारों के साथ शहर पूजायमान हो रहा है। पूरा शहर जो है जयमय हो रहा है और सारा शहर में शिवमय शिवमय दिखाई दे रहा है। स्थिति यह हो रही है कि तेलीवाड़ा चौड़ा है, एक कंठाल चौड़ा है, जो कंठाल चौड़ा है अभी जो नया बना है सौंदर्यकरण की दृष्टि से, यह महापर्व को दृष्टि रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री के प्रयासों से पूरा रोड चौड़ीकरण किया गया है, उसको लेकर आप देखें श्रद्धालुओं में भी उत्साह ज्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर।
0: और ये जो दक्षिण भारत का वाद्यम है बैंड, उसकी प्रस्तुति आपने अभी जो देखी है, उसकी आवाज हमें सुनाई दे रही है, तो उस पर क्या नृत्य हो रहा है या शिव की आराधना का स्वर बजाए?
1: नहीं कर रहे हैं, ढोल वो बजा के वो शिव की आराधना कर रहे हैं और साथ में भगवान शिव की मूर्ति भी लाए हैं जो सिर पे रख के चल रहे हैं।
0: अच्छा, ये जो दक्षिण भारत की परंपरा है,
1: दक्षिण भारत के कोयम्बटूर से आए हुए सारे श्रद्धा।
0: अभी हमारे सामने जो हमारे कंसोल पर बैठे हुए हमारे प्रतिनिधि हैं, वो भी इसका आनंद आवाजी तस्वीर के साथ ले रहे हैं।
1: बिल्कुल ले रहे हैं और यहाँ के जितने श्रद्धालु वो भी ले रहे हैं, क्योंकि आस्था वाला मामला है, आस्था और विश्वास के साथ ही ये सवारी वाला मामला है।
0: और आकाशवाणी के माध्यम से, आकाशवाणी उज्जैन के माध्यम से और आकाशवाणी मध्य प्रदेश के माध्यम से हमारे पूरे देश में, क्या जो विदेश में भी चाहें तो वो ट्यून कर लें 102.5 मेगाहर्ट्ज पर, और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर अगर गूगल पर टाइप करेंगे आकाशवाणी उज्जैन, तो ये
1: उज्जैन से लेकर पूरे प्रदेश और देश और विदेश तक के यहाँ दिखाई दे रहा है।
2: देखिए, ये जो प्रसारण है बाबा महाकाल की राजसी सवारी का, ये मध्य प्रदेश के जितने 19 आकाशवाणी केंद्र हैं, तीनों विविध भारती केंद्र मिला के, हर केंद्र इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को प्रसारित कर रहा है, इस महत्वपूर्ण अवसर को श्रद्धालुओं तक, श्रोताओं तक घर घर पहुंचा रहा है। और अब हमसे विवेक चौरसिया जी जुड़ रहे हैं। विवेक जी बताएं कहां पर हैं आप इस समय? विवेक जी आप हमें सुन पा रहे हैं?
3: आपको सुन पा रहा
2: जी, बताइए।
3: जय
2: श्री महाकाल।
3: मैं अभी छत्तीसगढ़ पर हूँ
2: जी,
3: और यहाँ पर पालकी बस अब कुछ देर में आने वाली है, इसका उल्लास चरम पर है। ऐसा लग रहा है कि चारे गगन भेदी नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया है।
0: अच्छा, ये जो रानी सती गेट का नया रूपाकार है, नव श्रृंगारित है, उसके बारे में बताइए।
3: ये एक अद्भुत दृश्य है, आज मैं भी अपने बचपन से देखता आया हूँ कि राजसी सवारी का मार्ग यही है, लेकिन आज जो देख पा रहा हूँ उसमें सती गेट की जो आभा है, जो उसकी शोभा है, वो अद्वितीय है। और पूरे सती गेट को आज राजसी सवारी के निमित्त फूलों से सजाया गया, ऊपर लाइटिंग की गई है और अद्भुत दृश्य है। दोनों ओर मार्ग बन चुका है और बीच में सती गेट का मार्ग अपनी जगह है ही।
0: अच्छा, और सवारी के साथ साथ जो भजन मंडलियां, बैंड, अखाड़े, आपने अखाड़े देखे हैं? कितने अखाड़े होंगे लगभग जो राजसी सवारी के साथ चल रहे हैं?
3: वो अब सारे निकल चुके हैं आगे की ओर, और अब मेरे सामने यहाँ पर वो बैंड है जो हमेशा महाकाल की सवारी के साथ में चलता है, जो महाकाल भगवान को ही समर्पित बैंड है। वो अच्छा। मेरा ठीक सामने दिखाई दे रहा है अभी हाल, और वो सारे सजे भजे जो वादक हैं वो मेरी आंखों के ठीक सामने, और मैं अभी सतीगंज और जो एक प्रतिष्ठित खड़े हनुमान मंदिर है उनके ठीक मध्य में खड़ा हूँ, और ये बैंड जो मेरे सामने है अभी कुछ क्षणों के लिए रुका है, लेकिन जैसे ही ये अपनी धुन पुनः छेड़ेगा, महाकाल की सवारी के आगमन का ये प्रतीक होगा और पालकी जिसके झलक पाने के लिए यहाँ दो पार से लोग खड़े हैं दोनों ओर, ये सब लोग अपने उत्साह इनका उत्साह अपने चरम पर हो।
0: अच्छा ये जी ये बैंड जो आपने जिसका जिक्र किया है उसके साथ बहुत सारे बैंड जो हमारे उज्जैन के हैं या हमारे मालवा प्रदेश के हैं या हमारे और दूसरे शहरों से आए हैं, इनकी सेवाएं भी बहुत अच्छी होती हैं और वो पूरी सवारी में चलते हैं। ये कितने आपको दिखाई दिए होंगे बैंड जो पंक्तिबद्ध हैं?
3: देखिए आज कुल 5 बैंड हैं उसमें पीछे की ओर, और ये जो जो एक शासकीय जो पुलिस का बैंड है ये हमेशा महाकाल राजा की मुख्य पालकी जो उनका मूल विग्रह है उसके सम्मान में आगे बचता है, उनके आगमन का ये उद्घोष होता है। लेकिन जो भगवान महाकाल की पालकी के जो अन्य मुख्य है पालकी के पीछे उनके साथ वो स्थानीय बैंड चलता है जो निःशुल्क रूप से अपनी वर्षों से चल गया है।
2: विवेक जी इसमें सरकारी बैंड भी होता है तो क्या वो बड़े प्रशिक्षित कर्मी होते हैं, बड़ी अच्छी धुन निकालते हैं वो बाबा महाकाल के आगे?
0: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की धुन निकालते हैं।
3: हाँ अभी आप सुना वो जो पुलिस का बैंड है वो आगे की ओर उन्मुख हो चुका है, अब पालकी कुछ ही मिनटों में कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुँचने वाली है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद विवेक चौरसिया जी, आपने बड़ा अच्छा रानी सती गेट से लेकर और उसके नया रूपाकार के बारे में जो जानकारी दी वो हमारे सुनने वालों को बड़ी पसंद आई होगी, धन्यवाद।
2: हम अपने श्रोताओं को सुनने वालों को बता दें कि जो 70 भजन मंडलियां हैं उनमें से बहुत सारी हम पहले बता चुके हैं, उनके नाम बता चुके हैं, अब कुछ और नाम हैं जो इस पूरे अवसर में इस पूरे लोकोत्सव में इस पूरे आयोजन में शामिल हैं, तो जो बची हुई कुछ भजन मंडलियां हैं उनके नाम मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूं। श्री ध्वज ग्रुप बेगमपुरा उज्जैन, माँ शारदा संगीत कीर्तन मंडल जीरापुर राजगढ़, श्री भगवंताम संकीर्तन मंडल शेर सागर, भस्म आरती भक्त मंडल उज्जैन, मन कामनेश्वर भक्त मंडल कुशलपुरा उज्जैन, मालवीय भजन मित्र मंडली श्री महाकाल टोली देवास, श्री दुर्गा भक्त मंडल, श्री अमरनाथ भक्त मंडल, विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल, श्री विक्रांत भैरव युवा संगठन, महाकाल अखाड़ा वीरभद्र व्यायामशाला, श्री रवि नवयुवक एवं भजन मंडली समिति, अखंड धुनी वाले बाबा भजन मंडली, श्री संकट मोचन हनुमान भक्त मंडल दमदमा उज्जैन, सेन भक्त मंडल निजातपुरा, आमेश्वर नवयुवक रामायण मंडल लक्ष्मीनगर, महाकाल शयन आरती युवा भक्त मंडल, राजपूत प्रताप वाहिनी, श्री चैतन्य भैरव सांस्कृतिक भजन मंडली, जय महाकाल भक्त मंडली यादव धर्मशाला। तो ये वो कुछ नाम है 70 भजन मंडलियों में से जो शामिल हैं और अपना कर्तव्य अपने भजन अपनी गतिविधियां लगातार दिखाते हुए पूरे सवारी मार्ग पर चल रही हैं।
0: ये जो राजसी सवारी आज की है इसका दर्शन करने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु कई स्थानों से यहाँ आते हैं और एक दिन पहले भी आ जाते हैं और वो महाकालेश्वर का दर्शन करते हैं। हालांकि मंदिर और परिसर का जो सुव्यवस्थित और विशाल स्वरूप है उसको भी देखते हैं और अलग अलग युगों की कला संपदा को सहेजे हुए हैं।
2: और अब समय है एक अंतराल का, उसके बाद हम फिर आपसे बाबा महाकाल के सवारी के वृत्तांत के लिए आपके समक्ष उपस्थित होंगे।
4: ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं जनसंपर्क संचालनालय भोपाल के सौजन्य से।
5: विकास की मजबूत नींव सड़कों पर टिकी होती है क्योंकि बेहतर संपर्क ही आर्थिक प्रगति और जन सुविधाओं का आधार बनता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत में आधुनिक और विश्व स्तरीय सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से सड़क अधोसंरचना में अभूतपूर्व विकास हुआ है।
6: 12 साल में मोदी जी के शासन काल में पानी बिजली सड़क अब आधुनिक समय के हिसाब से पूरे देश में मध्यप्रदेश सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में से एक बना है।
5: वर्ष 2025-26 में 4,078 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण करने के साथ 48,178 करोड़ रुपए की 73 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन है। इसी तरह 6-लेन मार्ग और उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे प्रदेश की विकास रफ्तार को नई दिशा दे रहा है, जबकि मजरा टोला सड़क योजना के अंतर्गत 30,900 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति दी गई है।
7: नदियाँ केवल जल की धाराएं नहीं होती, वे सभ्यता, समृद्धि और भविष्य की

0: होती है। देश में जल सुरक्षा, नदी जोड़ों, परियोजनाओं और सिंचाई के विस्तार के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाकर विकसित भारत के निर्माण का दृढ़ संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। आज मध्य प्रदेश बहती धाराओं को विकास की नई दिशा देकर आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा का मजबूत आधार तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में अंतर्राज्यीय नदी जोड़ों परियोजनाओं से खेतों, गांवों और शहरों तक पर्याप्त सिंचाई और पीने का पानी पहुंचाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।
1: पार्वती, काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के लिए और राजस्थान के लिए दोनों के लिए वरदान साबित होगी।
0: महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के पूरा होने पर प्रदेश में सिंचाई का दायरा वर्ष 2028-29 तक लगभग 55 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
2: नदी जोड़ो अभियान से किसान को सिंचाई का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी से किसान की तरक्की होगा।
0: नदियों को जोड़कर समृद्धि की नई धारा बहा रहा है मध्य प्रदेश।
3: ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलवाकर जमीन विवादों पर विराम लगा रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश में सुशासन स्थापित करती स्वामित्व योजना को प्रभावी गति दे रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव।
4: जिसका मकान गांव में बना है उसको भी स्वामित्व का वही अधिकार है जो नगर वाले को है। ये बराबरी का अधिकार अगर मिला है तो माननीय मोदी जी के माध्यम से मिला।
3: प्रदेश में 68.11 लाख अधिकार अभिलेख तैयार हो चुके हैं जिनमें 48.32 लाख निजी स्वत्व अभिलेख शामिल है। इन संपत्तियों का लगभग 3800 करोड़ रुपए का पंजीयन शुल्क भी राज्य सरकार वहन करेगी। निःशुल्क पंजीयन की अभिनव पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। ई संपदा पोर्टल से प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी। अब ग्रामीणों की संपत्ति कानूनी पहचान के साथ बैंक ऋण, स्वरोजगार और आर्थिक समृद्धि का मजबूत आधार बनेगी। स्वामित्व से समृद्धि, अधिकार से आत्मनिर्भरता।
5: जय श्री महाकाल। और यही जय घोष आज पूरे उज्जैनी में सुनाई दे रहा है क्योंकि आज एक ऐसा अवसर है राजसी सवारी का। तो हर व्यक्ति, हर उज्जैनी और हर वो भक्त जो यहाँ इस वक्त हैं, वो सभी लगातार भगवान महाकालेश्वर की पालकी को देखने के लिए, उनके दर्शनों के लिए लालायित हैं। और जिन्होंने दर्शन कर लिए हैं वो तो अभिभूत है और बस अब उन्हें अगले वर्ष तक की प्रतीक्षा रही क्योंकि आज अंतिम सवारी। और विद्याधर जी, आनंद ही आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जैसे ही पालकी गोपाल मंदिर की तरफ बढ़ रही है तो अब वो स्वर जो है अब तेज होते चले जा रहे हैं।
6: बिल्कुल बिल्कुल मुकाम जी, अब हम उस विषय पर बात करें उससे पहले बात सुन लेते हैं हमारे प्रतिनिधि विवेक चौरसिया जी की जो अब हमसे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नमस्कार विवेक जी।
5: विवेक जी जय महाकाल। विवेक जी जी, शायद विवेक जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे लेकिन चूंकि हम चर्चा कर रहे थे गोपाल मंदिर की तरफ, अब पालकी धीरे धीरे बढ़ रही है और जैसे ही वहां बढ़ेगी हर और हरी का जो मिलन होगा उसके बारे में आप बता रहे हैं।
6: बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरह से ये महाकाल की शाही सवारी, राजसी सवारी के दो प्रमुख पड़ाव होते हैं। एक तो रामघाट पर जहां पूजन होता है और दूसरा गोपाल मंदिर के सामने हरिहर मिलन। जैसे हम पहले ही इसका जिक्र कर चुके हैं कि विष्णु और शिव दोनों का वहां मिलन होता है और शिंदे परिवार यानी सिंधिया परिवार की तरफ से उनका पूजन अर्चन होता है। और गोपाल मंदिर अपने आप में उज्जैन का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। लगभग 2 फीट की द्वारकाधीश महाराज की मूर्ति वहां स्थापित है और संगमरमर से बना वो मंदिर और चांदी से मढ़े दरवाजे, बहुत खूबसूरत वो मंदिर है। और जहां महाराजा दौलतराव शिंदे जी ने उसका निर्माण किया, महारानी वाजाबाई का भी उसमें बहुत योगदान रहा है और तब से लेकर अब तक वो मंदिर सभी के आस्था का केंद्र, भक्ति का केंद्र बना हुआ है।
5: बिल्कुल, और यहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस बात का प्रतीक है कि ये जो क्षेत्र है पूरी तरह से व्यापारिक प्रतिष्ठानों से घिरा हुआ है और आसपास पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र पूरा है और यहाँ पर जो है उज्जैन का मध्य क्षेत्र भी है
6: जी।
5: तो ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ तक पहुंच जाते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हर और हरी दोनों के ही दर्शनों का आनंद प्राप्त होता है। और यही कारण है कि जब आरती के स्वर लोगों के बीच में गूंजते हैं तो वाकई में वो दृश्य एक तरह से मन में हिलोरे लाता है और हम सभी भक्ति से इस तरह से डूबते चले जाते हैं कि वो जो 4-5 मिनट का जो क्षण होते हैं वो हमें

0: हमेशा के लिए एक तरह से यादगार क्षण बन जाते हमारे लिए।
1: जी, और देखिए उज्जैनी का ये सौभाग्य है और उन सब का सौभाग्य है जो उज्जैन में आकर यहाँ इस सवारी का दर्शन कर पाते हैं। यूं तो मंदिर में जाकर भस्म आरती भी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और यूं भी महाकाल का दर्शन करने के लिए वहाँ पर बहुत लंबी कतार रहती है, लेकिन यहाँ पर आम जन सड़क पर कतार लगाकर खड़े हैं और बाबा महाकाल खुद उनको दर्शन दे रहे हैं, ये सौभाग्य का माता है। विवेक जी फिर हमसे जुड़ रहे हैं। नमस्कार विवेक जी।
0: जी विवेक जी, जय महाकाल। शायद पुनः वो हमें नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन हम चर्चा कर रहे थे गोपाल मंदिर की और उसके आसपास के क्षेत्रों की, तो आज यहाँ विक्रमादित्य का भी चर्चा की जाने जरूरी है क्योंकि ये क्षेत्र उनका है।
1: जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। और जहां तक विक्रमादित्य की जब भी बात आती है तो बहुत ये जनश्रुति है, जनमान्यता है कि विक्रमादित्य क्या एक चरित्र थे या एक उपाधि थी, लेकिन विक्रमादित्य के उनका उल्लेख किए बिना
0: बिल्कुल
1: उज्जैनी की बात पूर्ण होती ही नहीं।
0: बिल्कुल, न्यायप्रियता, पराक्रम और दानशीलता के प्रतीक सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी के रूप में इस नगर ने अद्वितीय राजसी उत्कर्ष देखा है और वही वैभव आज भी हमें दिखाई दे रहा है। और परंपरा और जिस प्रकार का जो वैभव यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं सनातन रूप से जो परंपरा चली आ रही है वही आज भी आगे बढ़ रही है।
1: और अकबर के नौ रत्नों की बात आती है लेकिन विक्रमादित्य के नौ रत्न भी एक अद्भुत व्यक्तित्व थे, मैं उनका जिक्र जरूर करना चाहूंगा। स्वास्थ्य रक्षा के पर्याय माने जाने वाले महाराज धन्वंतरी सुश्रुत इनके धन्वंतरी जी के शिष्य थे। फिर क्षपणक की बात आती है जो ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे। अमर सिंह जो ग्रंथों के रचयिता माने जाते हैं और बुद्ध गया में एक शिलालेख में विक्रमादित्य और उनके नवरत्नों का जिक्र भी हुआ है जिसमें अमर सिंह जी की जगह अमर देव शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन सभी इतिहासकार मानते हैं कि अमर सिंह ही है। और बेताल भट्ट, बेताल पंचशिलिका के तौर पर जो मशहूर है, और इसके अलावा शंकु घटकर पर कालिदास, वराह मिहिर और वर रुचि, ऐसे नौ रत्नों का उल्लेख विक्रमादित्य जी के साथ मिलता है। और न केवल पराक्रमी राजा थे बल्कि सिनोली के उत्खनन में जो रथ मिले हैं उससे जाहिर होता है कि हमारी जो सभ्यता थी, हमारा जो पुरातत्व विभाग खनन करके निकाल रहा है वो हम लगातार विश्व को बताते जा रहे हैं कि हमारी सभ्यता 5000 साल नहीं, 6000 साल नहीं, अनादि काल से ये सभ्यता निरंतर है।
0: बिल्कुल, आपने कहा लगातार नवरत्नों का जिक्र किया है तो काल गणना की भी बात कर ली जाए क्योंकि
1: और मैं इसमें विक्रम संवत जरूर जोड़ना चाहूंगा जो महाराज विक्रमादित्य से ही जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल, उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना गया है और प्राचीन खगोल विज्ञान तथा ज्योतिषी की मुख्य नगरी भी यही है, तो निश्चय ही इस नगरी में कौन नहीं आना चाहेगा। और जब राजसी विलास का वक्त हो तो निश्चय ही पूरे विश्व भर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और अब हमारे बीच में विवेक चौरसिया जी जुड़ चुके हैं। और विवेक जी, जय महाकाल।
2: पालकी भगवान की मेरे आंखों के सामने है
0: जी।
2: और मैं भगवान की दी हुई आंखों को आज सौभाग्य मानता हूँ कि देखिए ठीक तरीके से इसी भी सामने से गुजर रही है।
1: विवेक जी की
0: चूंकि पालकी उनके समक्ष भी है और पालकी
1: आवाज बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, विवेक जी हम आपसे पुनः संपर्क करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे उज्जैनी की और उज्जैनी में धन्वंतरी जैसा वैदिकीय पुरोधा रहा है, बाण भट्ट और कालिदास जैसे महाकवि है, प्रद्योत और विक्रमादित्य जैसे महान प्रजावत्सल राजा रहे हैं, वराहमिहिर जैसे ज्योतिषी, कात्यायन जैसी मेधा, और देवों को भी शिक्षित करने का सौभाग्य गुरु सांदीपनी का है। उनकी चर्चा किए बिना उज्जैनी की बात कंप्लीट होती ही नहीं, पूर्ण होती ही नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और महाकवि कालिदास का आपने जिक्र किया है तो उन्होंने अपने ग्रंथ मेघदूत में उज्जैन की सुंदरता का वर्णन इस प्रकार से किया कि यह स्वर्ग का एक गिरा हुआ टुकड़ा है, यानी कि देखिए किस प्रकार से अद्भुत व्याख्या की है महाकवि कालिदास ने कि स्वर्ग भी यही है यही है यही है।
1: अब आपने मेघदूतम की बात की, कवि कालिदास जी की बात की है, तो उनकी तीन पंक्तियां तीन पद मुझे बेहद प्रिय हैं, वो अवश्य मैं सब तक पहुंचाना चाहूंगा। वो कहते हैं कि उत्तर दिशा के यात्री, उज्जैनी का मार्ग तुम्हारे लिए टेढ़ा तो पड़ेगा, तो भी तुम उसकी अटारिका की गोद में स्नेह से विमुख मत हो जाना। बिजली की चमक से आंखों में चकाचांद होने के कारण वहां की रमणियों की चंचल चितवन का आनंद यदि तुम न ले सके तो समझना तुम्हारे नेत्र व्यर्थ ही रहे। और आगे वो कहते हैं कि अवंती जनपद में पहुंचकर जहां गांव के बूढ़े उदयन कथा कहने में कुशल है, पूर्वोक्त वैभवशालिनी विशाला, विशाला उज्जैनी का एक नाम भी है, विशाला की ओर जाना, जिसे देखने से ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग में गए पुण्यात्मा अपने पुण्य के क्षीण होने पर लौटे, तब अपने बचे हुए पुण्य के बल से स्वर्ग का एक सुंदर खंड इस पृथ्वी पर अपने साथ लेकर आए हैं।
0: बिल्कुल।
1: और आगे कहते हैं कि जिस नगरी के बाजार में, देखिए उज्जैनी हमेशा से ही एक बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा है और मेघदूतम में इसका उल्लेख आता है, जिस नगरी के बाजार में विक्रय के लिए करोड़ों की संख्या में शुद्ध मोती हार और उसके मध्य लटकन की तरह लगे मूल्यवान रत्नों, शंखों और मोती वाली सीपों, हरी हरी घास के रंग वाले ऊपर उठते प्रकाश किरणों वाले पन्नों और मूंगों को देखकर ऐसा बोध होता है कि मानो समुद्र में अब रत्न शेष नहीं रहे हैं, उनमें केवल पानी ही शेष रह गया है, लेकिन बहुत सारी बातें शेष रह गए हैं जो हमारे प्रतिनिधि हम तक पहुंचाना चाहते हैं।
0: अखिलेश बाथम जी जुड़ चुके हैं, और अखिलेश जी एक बार पुनः स्वागत है आपका, कहाँ है इस वक्त?
3: समय छतरी चौक पर हूँ और यहाँ पर सवाई का बहुत ही भव्य रूप किया जा रहा है। दोनों ही तरफ असंख्य संख्या में श्रद्धालु जो खड़े हैं, और आप ये सोचिए दिन में 12 बजे से खड़े हुए हैं दर्शन करने के लिए। और इस समय हमारे एक प्रतिनिधि ने पहले किया था रंगोली का, पर साथ साथ रंगोली का वही बहन चल रहा है और मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बड़े बड़े टिप्पे रखे हुए हैं इस रंगोली वाहन के ठीक जिनके धमाके को करते हुए कार्यकर्ता चले जा रहे हैं आप तक रंगी के रूप में बड़ा जिन धमाके सुनाई दे रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, अखिलेश जी हम कड़ाबीन के धमाके सुन पा रहे हैं और उसके कारण आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। यदि हो सके तो थोड़ा सा दूर होके आप वर्णन करें तो बहुत आनंद आएगा। जी
3: जी समिति का जो अनाउंसमेंट करते हैं वो हमारे चल रहे सामने दृश्य जो गोपाल मंदिर का अद्भुत साज सज्जा है, मन को मोह लेने वाली साज सज्जा है। गोपाल मंदिर के दाएं और बाएं बहुत ही बड़ी प्रतिमाएं लगती है, रोशनी से शंकर भगवान की मूर्ति है, नंदी की है, बीच में गणेश जी बैठे हुए हैं दोनों तरफ, और बाल गोपाल का छोटा सा रूप है एक गोपाल जी जो घुटने चल रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, दोनों तरफ मोर नाच क्यों दिखाई दे रही है, गमले दिखाई दे रहे हैं, अद्भुत बहुत ही अद्भुत सज्जा का यहाँ पर दृष्टांकन किया गया है। और मैं समझता हूँ कि शायद दृष्टांकन जिस तरह की झलक झांकियां दिखाई दे रही है लाइट की, ये लोगों को बड़ा ही रोमांचित कर रही है। मैं ये दृश्य देखकर अभिभूत हूँ और अभिभूत होंगे हमारे काशी उज्जैन के सभी श्रोतागढ़।
1: जी अखिलेश जी, अखिलेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन विवेक चौरसिया जी से बहुप्रतीक्षित संपर्क शायद इस बार कायम हो जाए। नमस्कार विवेक जी, विवेक जी आप हमें सुन पा रहे हैं? नमस्कार विवेक जी।
4: नमस्कार, जय महाकाल।
1: जय महाकाल विवेक जी। जी आप इस समय यात्रा मार्ग में किस स्थान पर हैं?
4: ठीक टीगेट के सामने हूँ, टीगेट के पास में, और मेरे भगवान महाकाल की पालकी यहाँ से गुजरी है
1: जी।
4: और अब जो गजराज पर जो भगवान का एक स्वरूप और अन्य रथ और नंदी और गरुड़ पर उनके जो स्वरूप का
2: की एक छटा यहाँ पर अभी और शेष है
1: जी.
2: तो उसकी ओर मैं उन्मुख हो रहा हूँ. पालकी के जाने के बाद एक बीच में थोड़ा सा अंतराल होता है
1: जी.
2: वो अंतराल अभी हाल मेरी आंखों के सामने चल रहा है
1: जी.
2: और गजराज के आगमन की अब प्रतीक्षा है
1: जी.
2: कि गजराज आने वाले हैं और पूरे भक्तों को दर्शन देने वाले हैं
1: जी.
2: गजराज पर भगवान महाकाल का जो स्वरूप
1: जी. विवेक जी, आपकी आयु इस पूरे परंपरा को देखते निहारते बीती है और आपने हर वर्ष कुछ न कुछ नवीन कुछ इसमें जुड़ते हुए देखा है, कुछ नवाचार होते हुए देखा है. आपकी स्मृतियों की जो पुरानी यात्राएं हैं उसके बारे में जरा बताइए, कुछ स्मरण आता हो तो.
2: सबसे बड़ा नवाचार तो आज मैं देख रहा हूँ
1: जी.
2: यहाँ पर जब मेरे सामने ये पूरा का पूरा देखिए, जो महाकाल की शेष सवारियां हैं वो सब एक छोटे मार्ग से निकलती है,
1: लेकिन
2: जो रात्रि सवारी है वो ये एक सतीगेट वाले मार्ग से निकलती है
1: जी.
2: और आज सतीगेट का जो स्वरूप है वो इससे पहले कभी भी हम लोगों ने नहीं देखा
1: जी.
2: मतलब मैं लगभग 43 साल से जब से इसमें सवारी देख रहा हूँ, ये सतीघाट आज एक अद्भुत रूप में है. पूरे सतीघाट का जो रखता है एक ऐतिहासिक महत्व रखता है, उसको फूलों से सजाया गया
1: है, अच्छा.
2: साथ ही उस पर लाइटिंग की गई
1: जी.
2: और सतीघाट का पूरा स्वरूप है ऐसा लगता है कि जो 500 वर्ष पहले सतीघाट था उसी तरीके का एक पुरातात्विक स्वरूप प्रशासन शासन ने अपने प्रयासों से लौटा दिया है. तो आज ये पूरा मार्ग एक जो सतरा मार्ग होता था वो बहुत ही प्रशस्त, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुव्यवस्थित दिखाई दे रहा
1: जी. जी आप बहुत लंबे समय से, जैसे मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि आप सवारी को देख रहे हैं और कालांतर में जो परिवर्तन हुए हैं, आरंभ में जो आपकी सवारी देखी हुई है उसकी कुछ स्मृतियां हैं आपके जहन में?
2: बहुत सारी है
1: जी.
2: आरंभ में स्वरूप बहुत छोटा होता था
1: जी.
2: जो प्रमुख सवारी जिस पर आजकल सवारी निकल रही है जो भजन मंडी आई गिनती की होती
1: जी,
2: शनि शनि उनकी संख्या बढ़ती गई, अब नए बढ़ते गए. यहाँ तक कि जो डमरू और झांझ और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जितने भी पारंपरिक वाद्य है उनको लेकर बहुत सीमित संख्या में लोग आते थे, लेकिन अब उसकी तादाद इतनी अधिक हो गई है कि ऐसा
0: बिल्कुल. विवेक जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और जय महाकाल. और अब विजया जैन जी हमसे जुड़ चुकी हैं जी. विजया जी जय महाकाल जी, बताइए.
5: गोपाल मंदिर से दूसरी चौराहे के रास्ते पर हूँ और गोपाल मंदिर पर स्पष्ट पालकी के आने की संभावना है, पालकी लगभग पहुँचने वाली है और ऐसा लगता है कि वहाँ पर सिंधिया जी के आने की संभावना है. और गोपाल मंदिर को देखते हैं जहाँ पर शिव का हरि हर का हरि से मिलन होगा और बहुत ही पवित्र और पावन से मिलन की माना जाता है
1: जी.
5: मिलन के बाद वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, मार्ग की आगे बढ़ेगी और इस वक्त जिस मार्ग पर वहाँ निरंतर भजन मंडिया और उसके मंडलों की बाहर देखने को मिलती है और एक से बढ़कर एक मंदिर और मनोहारी मंदिर की प्रस्तुति यहाँ पे होती है और हर मंदिर में अपनी मार्ग की तो बहुत अच्छी तरीके से सजाया है.
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद विजया जी. अखिलेश बाथम हमसे जुड़ रहे हैं. जय महाकाल अखिलेश जी.
6: महाकाल इस समय गोपाल मंदिर के सामने यहाँ पर पूरे स्वरण देखिए, बहुत ही सुंदर जो मधुर भजन यहाँ से सुनाई दे रहा है
1: जी.
3: सर अद्भुत प्रस्तुति यहाँ पे हाल ही में खत्म हुई है। अब बैंड यहाँ पर गोपाल मंदिर के सामने सलामी देते हुए अब महाकाल मंदिर की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि पीछे तुरंत महाकाल जी की सवारी आ रही है। और देखिए हमारे सामने जो का गार्ड चला जा रहा है जो सलामी देने वाला है, अब वो सामने से गुजर रही है। मैंने पहले ही बताया था बीच में शायद हमारा फोन कट गया था, अद्भुत है लड्डू गोपाल छोटे से रूप में मंदिर पर खेल रहे हैं, कमल की पंखुड़ियों पर आस पास गणेश भी विराजे हुए हैं और महाकाल जी की जो ऊपर मूर्ति बनी हुई है, बहुत ही प्यारा विहंगम दृश्य इस समय हमारी आंखों के सामने है। हमारे सामने बहन गुजर रही है जब के रूप में सलामी देते हुए गोपाल जी को, ये एक श्रद्धा भी है और परंपरा भी है यहाँ की। यहाँ से गोपाल मंदिर से धीरे धीरे देखिए अब हमारे गेट में कुछ जनप्रतिनिधि है जिससे की वो निकल रहे हैं और दोनों ही तरफ जो जिस तरह का बैरिकेडिंग लगाया गया हुआ है, आप लोग शोर भी बहुत सुन रहे होंगे यहाँ पर
7: जी।
3: यहाँ पर शोर जो आप सुन रहे हैं ये गोपाल मंदिर की तरफ से अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक सवारी पहुंचते पहुंचते यहाँ के श्रद्धालु और बहुत थक चुके होते हैं तो दर्शन को आतुर है और जिस प्रकार से इनमें ये जोश भरा हुआ है, ये जोश इस बात को दर्शाता है कि 12 घंटे तो क्या, 10 घंटे तो क्या, 8 घंटे तो क्या, कितने ही घंटे खड़े रहेंगे राजा अधिराज के दर्शन करने के लिए।
1: जी अखिलेश जी, अगर हम गोपाल मंदिर के द्वार पर खड़े होते हैं तो सामने एक बाजार तक एक बहुत बड़ा रास्ता है जहां पर लोग इकट्ठे हो सकते हैं, क्या उस स्थान को रोक दिया गया है या फिर वहां पर लोग मौजूद हैं?
3: देखिए सवारी मार्ग सुरक्षित निकालने के लिए बैरिकेड लगाए गए हैं, उसके दोनों ही तरफ सर मैं बात करूँ तो लाखों की संख्या,
0: बिल्कुल बिल्कुल हजारों की
1: जी। आप वहां पर मौजूद रहे हैं, हम आपसे पुनः संपर्क करेंगे। मयंक शुक्ला जी अब हमसे जुड़ रहे हैं। मयंक जी नमस्कार,
8: जय
1: श्री महाकाल।
8: हम बता दें महाकाल की जो रजत पालकी है अब से थोड़ी ही देर में गोपाल मंदिर पहुंचने वाली है। इस समय हम गोपाल मंदिर पर खड़े हैं और द्वारका जी गोपाल मंदिर की जो तार सज्जा है वो देखते ही बनती है। यहाँ पर रजत सज्जा के माध्यम से गोपाल की आकृति कही गई है, गणपति है नजर आ रहे हैं
1: जी।
8: कन्हैया की भी विद्युत सज्जा के माध्यम से आज आकृति घेरी गई है और यहाँ जो जय घोष सुनाई दे रहा है है हजारों नहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज उज्जैन पहुंचे हैं और दस भक्तों का इंतजार है हरि और हर के मिलन का। अपनी सवारी पालकी उसी देर में गोपाल मंदिर पहुंचेगी जहां पर हरि और हर का दिव्य मिलन होगा। सबकी हर कोई निहारना चाहता है उस दृश्य को और हर व्यक्ति जो यहाँ पर मौजूद है उसकी मन के प्रतीक्षा प्रतीक्षा रख है उसे बाबा को निहार के लिए
1: जी।
3: और अभी उसी देर में हरि और हर का मिलन होगा, बिना भगवान श्री कृष्ण के अधूरा होगा। तो मिल
0: बिल्कुल जैसा कि मयंक ने बताया कि अभी गोपाल मंदिर पर पालकी पहुंच चुकी है और या पहुंचने वाली है और वहां जिस प्रकार से प्रतीक्षा की जा रही है और प्रतीक्षा के बारे में हमें शैलेंद्र पाराशर जी बताएंगे क्योंकि वो भी गोपाल मंदिर पर बने हुए हैं
1: और इस समय लगता है जैसे समस्त उज्जैनी का केंद्र बिंदु गोपाल मंदिर बन गया है कि हरिहर मिलन का अद्भुत दृश्य वो देख सके। और ये सचमुच बहुत बहुत अद्भुत मौका होगा कि जहां पर हरिहर मिलन होगा और हमारे सारे प्रतिनिधि लगभग यात्रा मार्ग में सवारी के साथ चलते चलते अब गोपाल मंदिर के आसपास ही केंद्रित हो चुके हैं।
0: बिल्कुल शैव और वैष्णव परंपराओं के इस अद्भुत संगम में भगवान शिव और महाकाल भगवान श्री कृष्ण का यह मिलन उज्जैन की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उसी दृश्य को निहारने के लिए एक तरह से अपने आंखों में कैद करने के लिए यहां आ रही है। और एक बार पुनः शैलेंद्र पाराशर जी जुड़ चुके हैं। जी शैलेंद्र जी जय महाकाल।
9: जय श्री महाकाल
0: जी।
9: और इस समय सवारी में
2: एक अद्भुत अलौकिक धार्मिक दार्शनिक और बहुत तरह से चैनल में इस सवारी का हरिहर मिलन का अवसर है और गोपाल मंदिर के सामने भगवान शिव की सवारी है
7: जी।
2: और गोपाल मंदिर के सामने खड़े होकर प्रतीकात्मक मिलन होना ये हरि अर्थात विष्णु के अवतार है और भगवान शिव है इनका मिलना एक उनका संगम दे रहा है। यहाँ पूजा चल रही है शिव विराग के जान तपस्या ज्ञान और परिवर्तन सृजन और प्रहार के माध्यम है जो नव सृजन करते हैं और विष्णु है प्रेम स्वर्ण प्रवर्तन धर्म लोक मंगल और जीवन का। इस प्रकार के जो हरिहर का मिलन है पूरे विश्व के श्रद्धालु जन और जो आवाज सुन रहे हैं श्रवण कर रहे हैं जो देश जाने की या देश दर्शन हरिहर का मिलन का शिवों का मूल सिद्धांत नहीं है बहुधा के बदलती सत्य एक यानी जन्म से अनेक नामों से पुकारते हैं हरिहर मिलन इसी महान वैदिक सिद्धांत का मूल के क्या पर गठन हो रहा है और दुनिया के परिवारों द्वारा भगवान की पूजा की जा रही है और यहाँ पर दोनों का साथना का यह स्वरूप हरिहर का मिलन शिवस्पति उन भावनाओं को प्रकट करता है कि देश में देश की यात्रा करते हुए मैं और तुम का देश को अपना और पराए का देश को प्रेम करना सेवा का दर्शन जरूर मंगल का मंदिर में आयु हर मिलन का दिव्य दृश्य उपस्थित होता है अलौकिक दृश्य उपस्थित होता है। समय हो रहा है इस राज की सवारी में काल शिव और विष्णु का ज्ञान और भक्ति का प्रेम और वैराग्य का सहाय और संरक्षण का शिव और विष्णु की विविधता की एकता का ये दृश्य हजारों लोग यहाँ पर उपस्थित है और गोपाल मंदिर में अलौकिक झांकी यहाँ पर आई है और ये गोपाल मंदिर द्वारका जी का यह मंदिर हरिहर से मिलन का एक ऐसा धार्मिक आयोजन है जो अद्वितीय है एकता समन्वय स्वतंत्रता को हरिहर और हर के मिलन को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है
7: जी। शैलेंद्र जी ये पूरी जो महाकाल सवारी है ये काफी लंबा एक जुलूस है और आपको कितनी देर में ऐसा लगता है कि सवारी मंदिर के समक्ष होगी?
2: अब ये गोपाल मंदिर से सीधी पंक्ति के जांच से होती है जो चढ़ाई से होती है मंदिर पहुंच ही रही है बहुत निश्चित समय आज और काले आठ के सवा काले आठ के बीच पहुंच जाएगी
7: जी बिल्कुल। जी बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। मुकाम जी जैसे जैसे आरंभ जब हुआ था तब तो दिन था लेकिन अब जब अंधेरा होने के बाद जो झांकियां हैं उसका उसकी जो रोशनी है उसका जो आनंद है उस पथ पर और ज्यादा बढ़ गया होगा।
0: झिल मिलाती हुई झांकियों का ये जो दृश्य है वो सबको चकाचौंध कर रहा है और भक्ति के जो सुर हैं भजन मंडलियों के जो सुर हैं जो स्वर हैं वो कानों में पड़ते ही अब झिल मिलाती हुई झांकियों के साथ में और स्वर के साथ में पूरी तरह से आध्यात्मिक पूरा क्षेत्र ही और जायमान हो रहा है।
7: जहां पर श्रृंगार की बात आती है तो भोले बाबा का श्रृंगार तो बहुत ही सामान्य होता है लेकिन जहां गोपाल जी का श्रृंगार हो तो उसमें जितने भी अभिव्यक्ति के रंग हो वो भरे जा सकते हैं, और उसी तरह गोपाल मंदिर हमेशा से ही सज्जित रहता है, चाहे फूल हो चाहे दिए हो, अभी इन दिनों तो इलेक्ट्रॉनिक रंगीन झालरें होती हैं जो लगातार जलती रहती हैं और चहुं और उसका प्रकाश फैला होता
0: बिल्कुल है। बिल्कुल, हमारे प्रतिनिधि अखिलेश जी ने बताया था कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का मनोहारी स्वरूप जो कि गोपाल मंदिर में है
7: जी,
0: वो देखकर हर व्यक्ति नतमस्तक है, उन्हें प्रणाम
7: बिल्कुल, करता बिल्कुल, है। सही कहा, और इस वक्त तो
0: पांकुरी जी जुड़ चुकी है गोपाल मंदिर से। पांकुरी जी
9: जी,
0: जय महाकाल।
9: जय महाकाल। जिस क्षण का इंतजार आप और हम कर रहे थे और जिस क्षण के लिए ये सजा हुआ था पूरा
0: जी
9: दरबार कृष्ण भगवान का
0: जी।
9: और अभी माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अंदर दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, और बिल्कुल सवारी आने ही वाली है। हरि और हर के मिलन के लिए जिस तरीके से हम सोच रहे थे कि क्या होने वाला है, जो उत्साह था, जो कुतूहल था, बस वो क्षण यहाँ बिल्कुल सामने प्रकट होता दिख रहा है। मैं खुद अपने आप को अभिभूत महसूस कर रही हूँ
7: जी। पांकुरी जी, यह हरिहर मिलन की हमने बहुत बात की है और वहां पर एक पूजन होता है, लेकिन वो पूजन की विधि क्या है, शिंदे परिवार यानी सिंधिया परिवार की तरफ से किस तरह से वहां पर पूजा की जाती है जी?
9: सिंधिया जी आते हैं और वो मंदिर में गर्भगृह में जाते हैं और अपनी तरफ से उन्हें कुछ भेंट स्वरूप देते हैं, उनका पूजन अर्चन होता है, उनके जो यजमान हैं, जो पंडित हैं, जो पुरोहित हैं, जो कुछ नई समय से पीढ़ियों से उस पूजन अर्चन को संपन्न कराते हैं वो वहाँ करा रहे हैं, और वहाँ बहुत कम ही लोगों को जाने की अनुमति अभी प्रशासन पुलिस दे पा रहा है। तो अंदर क्या चल रहा है, पर अभी जो हम इधर बाहर से देख रहे हैं क्योंकि हम मंदिर के प्रमाइसिस नहीं है, तो वो नजर आ रहा है कि वो पूजन अर्चन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं,
7: भेंट
9: स्वरूप भी उन्होंने कृष्ण भगवान को अर्पित किया है
7: जी।
9: और वो सभी लोग जो उनके साथ आए हैं, स्वयं सिंधिया जी भी, वो सब अपनी ट्रेडिशनल जो पगड़ी बांधते हैं, जो पहनते हैं
7: जी,
9: वो धारण किए हुए हैं
7: जी, राजसी वस्त्र उनके जो होते हैं
9: जी, राजसी वस्त्र
7: जी।
9: एक बार वो सफेद कुर्ते पजामे में ही है, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने सिर पर वो जो उनका ट्रेडिशनल चला आ रहा है, सर को ढकने की जो परंपरा है
7: जी,
9: वो दिखाते हुए उन्होंने कुछ भी पहन सकती है
7: जी। पांकुरी जी, सिंधिया परिवार की तरफ से यहाँ पर हमेशा पूजन होता है और वो यहाँ पर बहुत लोकप्रिय भी है, चूंकि अब तो राजपाट नहीं रहा है स्वतंत्रता के पश्चात, लेकिन जनमानस में उनकी एक बहुत अच्छा स्थान है, तो उनके आने के बाद वहाँ पर किस तरह का परिवर्तन आप महसूस करें?
9: एक जो गहमा गहमी हो जाती है ना, क्योंकि विशेष के आने से जो एक लोगों में उत्साह आ जाता है एकदम से, और सबको लगता है कि हमारे राजा आए हैं, तो एक वो कनेक्टिविटी है, उनके मंदिर में हम खड़े हैं तो लोग एकदम से दौड़ पड़ते हैं, उनका इस्तकबाल करने के लिए भी आ जाते हैं कि महाराज हम भी यही हैं, आपके लिए आए हैं, दर्शन भी हो जाएंगे और आपसे भी भेंट मुलाकात हो जाएगी। तो ऐसे कई जो स्थानीय नेता भी हैं वो भी आए हुए हैं सिर्फ इसलिए कि सिंधिया जी आए हैं, तो ये एक गहमा गहमी वाला माहौल हो जाता है, एक अजीब सी ऊर्जा आ जाती है कि हरिहर मिलन का उत्साह तो है ही, और साथ में हमारे जिनकी प्रमाइसिस में हम खड़े हैं, जिनका ये राजपाट रहा है किसी समय पे, उनके आने से भी लोगों में उत्साह आ जाता है, यहाँ के लोग
7: जी। धन्यवाद पांकुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल मंदिर के सामने संभवतः द्वारकाधीश जी से हम आगे का विवरण सुनते हैं। जय महाकाल।
10: जय श्री महाकाल
7: जी। इस वक्त आप कहाँ पर हैं द्वारकाधीश जी?
10: मैं पटनी बाजार।
7: पटनी बाजार, तो वहां पर तो अभी सवारी आने में थोड़ा सा समय लगेगा,
10: 5-7 मिनट लगेगा
7: जी जी। पटनी बाजार में इस समय जो सवारी की जो तैयारी है अगवानी की, वो किस तरह की है? क्योंकि वहां का जो व्यापारी वर्ग है वो हमेशा से ही आतुर रहता है सवारी की अगवानी करने के लिए,
10: स्वागत के लिए बिल्कुल आतुर रहता है, क्योंकि हरिहर मिलन होता है
7: जी।
10: हरिहर मिलन के बाद सवारी जो है वो पट्टी बाजार, मगरमुहा, गुदरी होते हुए महाकाल पहुंचती है
7: जी। बिल्कुल,
10: पट्टी बाजार सोने चांदी के व्यापारियों का व्यापार है, बर्तन व्यापारियों का पूरा व्यवसाय होता है, वो सारे व्यापारी जो है वो अपने पलक पावड़े बिछाते हैं भगवान महाकाल के लिए, क्योंकि सवारी जो है छह ही सवारी जो है उनके पट्टी बाजार होके ही निकलती है। ये राजकीय सवारी जो है बेजा नईम बेग कंठाल तेलीवाड़ा होके निकलती है, और किसी बाकी जो सवारियां जो निकलती है वो पट्टी बाजार होके ही निकलती है। इसलिए उन लोगों को रहता है कि हर सवारी पे राजा के दर्शन होते हैं
11: जी।
10: इसलिए वो सारी सौंदर्यीकरण से लेके पुष्प माला और पूरी लाइट डेकोरेशन की सारी व्यवस्था करते हैं। और दूसरी ओर आप देखिए दुकानों पर पैर रखने की जगह नहीं दो साइड में
11: जी। और आमतौर पर यहाँ पर अनुभव किया गया है कि जो नाश्ते वगैरह की व्यवस्था व्यापारी लोग वहाँ पर करते हैं, और
10: व्यापारी

0: यहाँ फरियाल की व्यवस्था कराते हैं, खिचड़ी भी बट रही है और ये साबूदाने की खीर और ये जो भी है इस टाइप की फरियाली की व्यवस्था भी हो रही है।
1: जी जी धन्यवाद द्वारकाधीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए।
2: बिल्कुल। और अब मयंक शुक्ला जुड़ चुके हैं, गोपाल मंदिर पर हैं और वहाँ अब क्या हो रहा है आइए जानते हैं मयंक शुक्ला से। जी मयंक।
3: जय श्री महाकाल।
2: जय श्री महाकाल।
3: बता दें कि महाकाल की पालकी गोपाल मंदिर पहुंच गई है और अगर आप सुन पा रहे हैं मेरे पीछे आरती का स्वर, ओम जय जगदीश हरे और जय शिव ओमकारा गुंजायमान हो रहा है। माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस समय गोपाल मंदिर में है और उनके द्वारा पूजन अर्चन किया जा रहा है रजत पालकी में सवार चंद्र मौलेश्वर भगवान के विग्रह का। और हर कोई जो यहाँ पर खड़ा है, श्रद्धालु सब जो है करतल ध्वनि के साथ अपना अपना योगदान दे रहे हैं, अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, अपने बाबा के प्रति भक्ति प्रकट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत भावुक कर देने वाला क्षण है। क्योंकि गोपाल मंदिर पर जो शहर का हृदय स्थल माना जाता है वहां पालकी पहुंच चुकी है। माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय पूजन अर्चन कर रहे हैं और जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा की स्वर लहरियां हर ओर गुंजायमान हो रही है, हर ओर महाकालेश्वर के जय घोष सुनाई दे रहे हैं।
2: बिल्कुल मयंक। और कुछ ही क्षणों में जब आरती के स्वर सभी के कानों तक पहुंचेंगे तो पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठेगा।
3: जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ श्रोताओं को हम बता दें कि जो सवारी के आगे आगे महाकालेश्वर मंदिर का चांदी का ध्वज चलता है जो माना जाता है अंतिम सवारी में होता है, वो ध्वज इस समय 24 खंबा माता मंदिर तक पहुंच चुका है और ध्वज के आगे चल रही है पुलिस बैंड की टुकड़ी और सशस्त्र पुलिस बल की टुकड़ी। और इस समय पालकी का जो स्थान है, लोकेशन है, वो गोपाल मंदिर है।
1: बिल्कुल। और उस समय जो जो विशिष्ट आरती होती है, हम चाहेंगे कि आप अगर उसका ध्वनि चित्र हम तक पहुंचा सके तो बहुत उत्तम होगा।
3: बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा अगर ये आवाज पहुंच सकती है हमारे श्रोताओं तक जय शिव ओमकारा की आरती की।
1: जी यूं वहां पर व्यक्तियों को नापना गिनना बहुत संभव नहीं है जितने भक्तगण हैं, पर एक अंदाज आप लगा सकते हैं कि कितने लाख लोग इस समय गोपाल मंदिर के आसपास होंगे।
3: तकरीबन SDM उज्जैन LN गर्ग से अभी अभी हमारी बातचीत हुई
1: जी,
3: उनका अनुमान है कि गोपाल मंदिर क्षेत्र में, सिर्फ गोपाल मंदिर क्षेत्र में अमूमन 30,000 लोग गोपाल मंदिर से लेकर पटनी बाजार वाले क्षेत्र में इस समय मौजूद हैं, जो अपने बाबा को एक झलक पाने के लिए, निहारने के लिए यहाँ पर प्रतीक्षारत है।
1: जी। और 30,000 लोगों को संभालने जितनी वो चौड़ी सड़क नहीं है, लेकिन फिर भी बिना किसी दुर्घटना, बिना किसी घटना के ये सब व्यवस्थित रूप से संपन्न हो रहा है।
3: बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं ना, काल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या करे, कोई अप्रिय घटना भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल जब स्वयं है मार्ग पर तो कोई अप्रिय घटना हो ही नहीं सकती, सब स्व अनुशासन में खड़े हैं भक्तगण।
1: जी जी। और यहाँ पर ये जो हरिहर मिलन की पूजा है ये कितनी देर में संपन्न होती?
3: देखिए हरि और हर का जो मिलन, जो ये पूजन का कार्यक्रम होता है
1: जी, जी।
3: ये लगभग 5-7 मिनट तक चलता है क्योंकि सवारी की भी अपनी गरिमा है, समय की अपनी गरिमा है और समय रहते पालकी को हमें महाकाल मंदिर के भीतर भी प्रवेश करवाना है प्रशासन को, तो पूरी आरती तो पालकी की वहाँ नहीं ली जा सकती, लेकिन हाँ प्रतीकात्मक रूप से आरती होती है और 5-7 मिनट पालकी वहीं पर विद्यमान रहती है, खड़ी रहती है।
1: जी। और इस समय पालकी वहीं पर विद्यमान है या गोपाल मंदिर से आगे की तरफ बढ़ चली गई?
3: गोपाल मंदिर के आगे की बात करें तो इस समय 24 खंबा माता मार्ग जो पट्टी बाजार होते हुए पहुंचता है
1: जी,
3: यहाँ मार्ग के दोनों ओर बैरिगेट में कई सारे श्रद्धालुगण खड़े हैं और हर कोई करतल ध्वनि यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, हर कोई तालियां बजा रहा है क्योंकि आरती चल रही है इस समय गोपाल मंदिर पर, हरि और हर का मिलन हो रहा है इस समय गोपाल मंदिर पर।
1: जी। और वहां पर घंटनाद हम यहां सुन पा रहे हैं और इस आरती में वहां पर उपस्थित श्रद्धालु भी अपना

0: अखिलेश जी बताएं क्या देख पा रहे हैं आप
1: इस समय? मैं गुजरी चौराहा मार्ग से होते हुए धीरे धीरे आपको महाकाल मंदिर की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे दोनों तरफ जो भक्त है बहुत ही शांति से बैरिकेड की तरफ खड़े हुए हैं, क्योंकि अब इनका जो अभी एक पालकी के पहले चांदी का जो पताका चलती है वो निकल चुकी है, ध्वजा निकल चुकी है। अब इनको भी इस बात का एहसास हो गया है कि बस कुछ ही पलों के बाद में पालकी यहाँ से गुजरने वाली है, क्योंकि हमारा मैं देख रहा हूँ अगर पीछे मुड़कर तो लगभग यहाँ गोपाल मंदिर में तो 500 मीटर से है और चौड़ी सड़क होने के कारण वहाँ का दृश्य देख सकता हूँ। आरती की जो पहले हो रही थी वो आरती अब खत्म हो गई है, तो बस पालकी वहाँ से कुछ ही पलों में निकलने वाली है और बड़े ही एक निश्चित समय के साथ में पालकी आगे बढ़ी है। और दूसरी एक बात मैं और बताना चाहूंगा, एक बहुत ही भयंकर दृश्य में देख रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि शायद देश में कहीं पर भी फूलों की सड़क बनती होगी। अगर फूलों की सड़क कहीं बनती है तो वो है सिर्फ उज्जैन उज्जैन और उज्जैन। यहाँ मुझे सड़क पे मिट्टी कम डामर कम दिखाई दे रहा है, फूली फूल दिखाई दे रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि हम लोगों ने सवारी मार्ग को लगभग पूरे सवारी मार्ग को कवर किया है, सवारी के साथ साथ चले हैं। कहीं तो ऐसा सहयोग था कि सवारी 50 कदम की दूरी पर थे तो कहीं आधा किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन हमें एक चीज हमेशा देखी मिली है कि हमें फूलों की सड़क पहली बार देखने को मिली है, तो ये बहुत ही अद्भुत है। और ये क्यों ना हो, क्योंकि राजा अधिराज राजाओं के राजा अवंतिकानाथ इन सड़कों से गुजरने वाले हैं, कहीं उनके भक्तों के पैरों में छाले न पड़ जाए, कहीं उनके भक्तों के पैरों में कोई कंकड़ न चुभ जाए। शंकर है अपने भक्तों के पैरों में कंकड़ क्यों चुभने देंगे, अपने भक्तों का ध्यान रखेंगे। यही तो अवंतिकानाथ की महिमा है, यही तो महाराज राजाधिराज की महिमा है कि हर किसी का ख्याल रखते हैं, अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, प्रजा का ख्याल रखते हैं, प्रजा को दर्शन देने के लिए निकले हैं। और मैं देख रहा हूँ कि यह माताएं बहने सबसे ज्यादा दोनों ही तरफ खड़ी हुई है, अग्रिम पंक्ति में पीछे उनके बड़े लोग खड़े हैं, और मैं देख पा रहा हूँ जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। ये बहुत ही एक सुखद मुझे दृश्य नजर आ रहा है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो रही है। मैं देख रहा हूँ सवारी में जहाँ लोग घंटों खड़े रहते हैं वहाँ पे यंग बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, वो भी खड़ी हुई हैं। तो ये इससे ये बात तय होती है कि हमारी आस्था सुरक्षित हाथों में जा रही है, हमारा धर्म जो है निरंतर प्रगति कर रहा है। क्योंकि जिस यूथ को बोला जाता है कि यूथ मोबाइल पे गेम खेलता है, मोबाइल में रील देखता है, पर मैं समझता हूँ कि आज अवंतिकानाथ की नगरी में कोई रील नहीं चल रही है, कोई मोबाइल नहीं चल रहा है, अगर चल रहा है जय श्री महाकाल का उद्घोष चल रहा है।
0: जी जी अखिलेश जी, और निश्चित ही जो एक पुनर्जागरण का युग हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक समय ऐसा भी था कि जो भक्ति अर्चना मंदिर जाना एक बुजुर्गों का काम माना जाता है, लेकिन आपने सही कहा कि जिन नई पीढ़ी को हम रीलबाज कहकर नकार देते हैं, लेकिन आपके वर्णन के हिसाब से वो पूरी तरह इस समय भक्तिमय नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी आपकी जानकारी के लिए।
2: बिल्कुल, और अब द्वारकाधीश चौधरी जी जुड़ चुके हैं और हम जानते हैं आगे का विवरण उनके माध्यम से। जी जय श्री महाकाल।
3: जय श्री महाकाल। पालकी धीरे धीरे सतह आती जा रही है और तोपसी की तोप के साथ घुड़सवार पुलिस के जवानों के आगे आगे निकलते जा रहे हैं, और दोनों ओर श्रद्धालुओं की भीड़, माताएं बहने और बच्चे चारों ओर तो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक की ऊपर भी कहीं भी गच्छियों तक भी कहीं जगह नहीं दिखाई दे रही, चारों ओर पुष्पमाला और पुष्प वर्षा की जा रही है। ये चूंकि ये एरिया पटनी बाजार और मगर वहाँ की गली और पाकड़ियाबल बोलते हैं ऐसे, यहाँ सोने चांदी के व्यापारी और बर्तन व्यापारी रहते हैं, उनके द्वारा स्वागत द्वार भी कई बनाए गए हैं। स्वागत द्वार के साथ यहाँ कई जगह ये स्थिति हो रही है कि आरती और पूजा की जा रही है। यहाँ आप देखिए लक्ष्मी नारायण मंदिर पे पूजा की पूरी व्यवस्था की गई है, उसके पास में अन्नपूर्णा मंदिर है, उस अन्नपूर्णा मंदिर के पुजारी के द्वारा भी पूजा की पूरी व्यवस्था की गई है। आप देखें पालकी धीरे धीरे आती जा रही है और चारों ओर सौंदर्यीकरण की व्यवस्था दिख रही है, ये लाइटें दिखाई दे रही है।
2: बिल्कुल,
3: आप देखें ये मसालची चलते थे, आज की तारीख में मसालची नहीं चलते, चौकदार की आवाज के साथ पालकी आगे बढ़ रही है।
2: बिल्कुल, झांकियों की अगर बात करें तो क्या बताना चाहेंगे
3: आप? झांकियों की देखें, आप सिंहस्थ महापर्व 2028 को दृष्टि कर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रेरणा से ये सिंहस्थ की जो झांकियां है ये निकल रही है, और झांकी की स्थिति ये देखें।

0: ये बकायदा 2028 के लिए ये रिहर्सल है और इस रिहर्सल को देखते हुए ये जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, इनको भी 2028 में जो यहाँ पेशवाई निकलती है वो पेशवाई भी इसी मार्ग से निकलती है, इसलिए इन व्यवस्था को भी इनको ध्यान में रखते हुए पूरे प्रशासन को ध्यान रखना है कि इस पेशवाई को कैसे निकाली जाएगी।
1: बिल्कुल, जो झांकियों की बात आपने की है, झांकियों में किन किन प्रसंगों का वर्णन वहां पर दिख रहा है?
0: ये सिंहस्थ महापर्व को लेके साधु संतों की व्यवस्था की गई है कि साधना कैसे करते हैं, इनके मठ कैसे रहेंगे, इनके तेरह अखाड़ों का क्या वर्णन है, ये वो व्यवस्था की गई है वहाँ
1: जी। और जब भी इसका जिक्र आता है उज्जैन का, तो मलखंभ उज्जैन का एक बहुत महत्वपूर्ण खेल है, तो उससे जुड़ी हुई झांकी भी अक्सर होती है, क्या इस बार मलखंभ का समावेश उसमें हुआ है?
0: मलखंभ का समावेश है, और चूंकि आपने बहुत अच्छी बात बताई, ये मलखंभ का जो एरिया है ये पटनी बाजार में व्यायामशाला की गली है
1: जी,
0: और
1: जी,
0: वहीं
1: जी।
0: से ही सारे लड़के निकलते हैं।
1: बिल्कुल, मैंने इसीलिए जिक्र किया।
0: नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल के आते हैं
1: जी जी जी।
0: और ये मलखंभ के जो बच्चे हैं यहाँ, इन लोगों ने उज्जैन का नाम जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी किया है
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद द्वारकाधीश जी। और कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे?
0: मैं आपको थोड़ा सा और ये बता दूं कि चूंकि महाकाल की जो सवारी जो निकल रही है, ये सवारी राजा महाराजा वाली जो है, ये सिंधिया स्टेट के जमाने में निकलती थी। पहले चार सवारी निकलती थी सावन की, भादों की सवारी भी इनके द्वारा ही निकालना शुरू की गई है, क्योंकि भादों में अब की से दो सवारी निकल रही है। अगर सोमवार जो है पहले से आता है तो सात सवारी निकलती है, तो सात सवारी निकलती है। अधिक मास जब गए वर्ष गया था उस अधिक वर्ष में सावन की सवारी में 11 सवारी निकली थी।
2: बिल्कुल द्वारकाधीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे बीच गौतम मालविया जी जुड़ चुके हैं, और हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो सवारी मार्ग पर कहाँ हैं और क्या विवरण देना चाहते हैं। जी गौतम जी,
3: जय श्री महाकाल।
1: जय श्री महाकाल।
3: इस वक्त मैं हूँ पटनी बाजार में, और पटनी बाजार में जो है महाकाल राजा का इंतजार हो रहा है, और सभी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। काफी सारी जनता यहाँ पर है, और बाबा महाकाल जब स्वयं दर्शन देने के लिए उनके बीच में पहुँच रहे हैं, तो क्यों ना सभी मिलकर इंतजार करें।
1: देखिए,
3: मेरे साथ में कुछ साथी भी हैं यहाँ पर जो कि सेवा कार्यों से जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपकी उनसे बात करवाऊं।
1: बिल्कुल अवश्य।
4: जय श्री महाकाल सभी को।
1: जय श्री महाकाल।
4: जनता के दर्शन के दर्शन देने के लिए आ रहा है, और हम यहाँ 15 सालों से लगभग पानी पिलाते हैं, लड्डू बांटते हैं, राजगिरे के पेड़े बांटते हैं 1 किलो, और बाबा की सवारी में जितने भी यात्री आते हैं उनकी दवाइयों की व्यवस्था, उनकी पानी की व्यवस्था करते हैं। जय श्री महाकाल।
1: जय श्री महाकाल। एक बात हमें बताइएगा, ये बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि कोई व्यक्ति इतना श्रम करेगा, अपने जेब से पैसा लगाता है, क्या प्राप्त होता है उसे?
4: ये बाबा की शरण में सेवा का मौका प्राप्त होता है, तो अपनी औकात नहीं है,
1: लोगों
4: की औकात है जो अपन सेवा करना है, जो उनको पा रहा है दर्शनार्थियों को।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और आपको बहुत साधुवाद कि आप सबकी सेवा कर रहे हैं, और ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा।
2: जी, कुछ भक्तगण जो की सेवा कार्य कर रहे हैं वो भी जुड़ रहे हैं, तो क्या हम उनसे भी बात कर सकते हैं?
4: बाबा की पालकी आने वाली कुछ दिनों बाद, इसलिए माहौल बहुत थोड़ा गर्मा गर्मी का है,
1: कुछ
4: देर बाद आपसे बात हो जाएगी फिर।
2: बिल्कुल सभी, लेकिन सभी अनुशासित तरीके से
3: सवारी का इंतजार जो है सभी लोग सबरी के साथ में कर रहे हैं, और हमारे साथी एक और जुड़ रहे हैं जो कि सेवा कार्यों से इंदौर से यहाँ पर आते हैं।
1: जी,
3: नाम बताइए। जायसवाल, मनोज साहू
2: जी। जायसवाल साहब, क्या किस प्रकार की सेवाएं देते हैं?
3: किस तरह की सेवाएं देते हैं आप?
5: यहाँ पर जल सेवा देते हैं, प्रसाद दे देंगे, महाकाल को बिना प्रसाद का
3: चल। अच्छा, पिछले कितने वर्षों से जयसवाल जी आप ये कार्य सेवा कार्य कर रहे हैं?
5: ये तो भगवान की आसीन के साथ भोलेनाथ की, ये नहीं पता कितने साल से सेवा चल रही है, सेवा चल रही है।
1: बिल्कुल
5: सेवा करती है हर वर्ष।
2: तो सारी सवारियों में आते हैं या फिर राजी सी सवारी में ही?
5: सभी सवारियों में आते हैं, सभी सवारियों में सेवा करते हैं।
1: जी क्या बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विजया जैन जी अब हमसे जुड़ने जा रही हैं। जय श्री महाकाल।
6: जय श्री महाकाल।
1: विजय जी कहाँ पर हैं आप और क्या देख पा रही हैं?
6: मैं इस वक्त गुडरी चौराहे पर हूँ, और इस वक्त बाबा महाकाल की पालकी बिल्कुल आने को तैयार है, अपना

0: आपको बहुत साफ नहीं सुन पा रहे हैं, हम पुनः आपसे संपर्क करने का प्रयत्न करेंगे। हम अपने दूसरे साथी से जुड़े, उससे पहले मुकाम जी एक बात, जैसे सभी हमारे साथियों ने हम तक पहुंचाई है कि वहां पर सभी लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं और निश्चित ही वो अपना धन उसमें खर्च कर रहे हैं और एक असीम आनंद लेकर वो साथ में जाते हैं, और लेकिन कुछ समय बाद ऐसा महसूस होता है कि फिर हम दैनंदिन अपने जीवन में उसी स्वार्थ भरे माहौल में लौट आते हैं। लेकिन जब जब इस तरह का कोई पर्व होता है, कोई मौका होता है, हमारे अंदर का जो मनुष्यत्व है, जो साधुता है, वो प्रकट रूप ले लेती है।
1: बिल्कुल विद्याधर जी, जब भगवान हमें हमेशा देते हैं तो क्या एक क्षण हम उन्हें कुछ अर्पण नहीं कर सकते? शायद यही भाव है और यही कारण है कि चाहे उज्जैनी हो या इंदौर हो या दूसरे क्षेत्रों के जो सेवादार हैं, वो लगातार इस तरह के कार्यों में अपनी सहभागिता दिखाते हैं और हमेशा वो श्रद्धा के साथ देते हैं।
0: श्रद्धा की आपने बात की, तो 2 वर्ष पूर्व एक वृद्ध महिला जो इस बाबा महाकाल की सवारी का दर्शन किया, और उनसे मैंने कहा, माता जी आपने दर्शन किए, आपको कैसा लगा, कैसा दिखा? तो उनका कहना था कि बेटा मैं तो उन्हें देख ही नहीं पाई, क्योंकि जैसे ही सवारी उनके समक्ष आई और उनकी आंखों में आंसू आ गए, तो आंसुओं के कारण मैं तो महाकाल जी का दर्शन ही नहीं कर पाई। तो ऐसे देखे अनदेखे बाबा महाकाल लोगों की स्मृतियों में सजीव रहते हैं, लोगों की सुधियों में बसे रहते हैं, और उनका दर्शन करने के लिए प्रत्येक श्रावण और भाद्रपद मास में सारे रास्ते जैसे उज्जैनी की तरफ खुल पड़ते हैं।
1: बिल्कुल, बाबा की जो पालकी है उसका भव्य स्वरूप है और उसकी एक दृष्टि भी जो है हमारी अवचेतन स्तर तक पहुंच जाती है और सदैव स्मरण रहता है, सदैव बाबा की जो पालकी वो हमें जी। और इस बीच आयुषी मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं, हम जानते हैं आयुषी जी से। जी आयुषी जी कहाँ है इस वक्त?
0: आयुषी जी का संपर्क अभी।
1: जी जी आयुषी जी, जी हम आपको सुन रहे हैं, बताइए।
0: आयुषी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत जल्दी हम प्रयत्न करेंगे।
1: जी आप बोलिए।
2: पालकी बिल्कुल मेरे सामने आ ही चुकी है और बहुत ही अद्भुत नजारा है यहाँ पे। सभी श्रद्धालु बहुत भावुक हो रहे हैं और अपने अपने हाथों में निशान हार फूल लेकर खड़े हैं, और मैं खड़ी हूँ यहाँ अभी सतलु रेस्टोरेंट पे, और इनके जो मालिक है वो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं।
0: जी
2: तो अगली आवाज सुनती
0: हूँ। जी जी नमस्कार। हेलो, हाँ जी बोले।
1: जय श्री महाकाल।
0: एक बात हमने वहां पर महसूस की है कि जो भी वहां पर जो प्रतिष्ठान होते हैं और खासकर जो भोजन से जुड़े हुए व्यंजन से जुड़े हुए होते हैं, वो अक्सर अपने दरवाजे सबके लिए खोल देते हैं कि आज आइए और हम आपसे कोई शुल्क नहीं लेंगे। क्या ऐसी स्थिति आज भी है? जी जी जी जी पूरे विश्व का कामकाज व्यापार संभालने वाले महाकाल बाबा स्वयं आपके प्रतिष्ठान के सामने से गुजर रहे हैं, तो निश्चित ही और कोई कामकाज कैसे हो सकेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जय जी हमसे जुड़ रही हैं। नमस्कार, जय महाकाल।
1: नमस्कार, जय महाकाल।
0: अब हम आपको बहुत स्पष्ट सुन पा रहे हैं जी। अब आप कहें।
1: मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं इस वक्त गुजरी चौराहे पर लगभग पहुंच चुकी हूँ
0: जी।
1: और पालकी भी गुजरी चौराहे पर पहुंचने वाली है। अश्वारोहियों का दल आगे जा चुका है और उसके बाद पुलिस का सशस्त्र बल एक साथ अपनी वेशभूषा के साथ एक साथ परेड करता हुआ महाकाल राजा के सम्मान में आगे चलता हुआ, अपनी अगवानी करता हुआ अपने स्थल पर पहुंच चुका है। और इस वक्त सारे पुलिस वालों का एक घेरा बना हुआ है
0: जी।
1: और उस घेरे के बीच में से होकर भगवान महाकाल की ये राज की पालकी यहाँ से निकलेगी। और इस पूरे सवारी मार्ग पर बच्चों के लिए कई सारे आकर्षण के केंद्र नजर आए हैं। 2 साल से लेकर लगभग 15-17 साल तक के बच्चे यहाँ पर विद्यमान थे। बहुत सारे बच्चे अनेक सुंदर सुंदर भगवान का वेशभूषा धारण करके यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ बच्चों ने प्रभु गणेश की वेशभूषा धारण की है, कुछ बच्चे नंदी बनकर आए थे, कुछ ने शिव भगवान का स्वरूप धारण किया है, कुछ राधा कृष्ण बनकर आए हैं और कुछ बच्चे भजन मंडलियों के साथ ढोल बजाते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से एक लय के साथ परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे। बहुत ही सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहा है। और एक बात, यहाँ पर बहुत छोटे बच्चों के लिए कुछ कार्टून कैरेक्टर्स भी बने हुए हैं। मतलब कुछ लोगों ने कार्टून का कैरेक्टर बना हुआ है जो बच्चों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहा है। मोटू पतलू मुझे नजर आए हैं यहाँ पर। और कुछ एक आध एनिमल का जो थीम होता है, भालू भी एक आध कोई बंदे बनकर आए थे, तो इस तरह से बच्चे बड़े उनको देखकर उत्साहित नजर आ रहे थे।
0: विजय जी, जब भी बच्चों की बात होती है तो वो जरूर कुछ सीमाएं तोड़कर प्रयास करते हैं, तो बाबा महाकाल की पालकी को छूने का प्रयास इन बच्चों की तरफ से हुआ है क्या?
1: नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो उनके साथ उनके पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को अपने कंधों पर बिठा के रखा है। जो बहुत छोटे बच्चे हैं जो नीचे भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे बच्चे अपने मम्मी पापा के अपने स्पेशली अपने पापा के कंधों पर बैठकर ये पालकी का नजारा, पालकी का आनंद उठा रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं
0: जी। और व्यवस्था की ये व्यवस्था के हम कामयाबी इसे कहेंगे कि नन्हे बच्चों को लेकर अगर माता पिता पालक पालकी मार्ग पे मौजूद हैं तो ये एक व्यवस्था की कामयाबी है
1: जी। ये व्यवस्था की कामयाबी और बच्चों माता पिता के अपने बच्चों को संस्कार है कि वो आज के डिजिटल वाले युग में भी प्रभु भक्ति के लिए अपने बच्चों को समर्पित करने के लिए तत्पर है। और वो चाहते हैं कि बच्चे धर्म से जुड़े, संस्कारों से जुड़े और इस मोबाइल की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकले और वास्तविक दुनिया को समझे। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण है कि माता पिता अपने बच्चों को लेकर इस तरह के बहुत बड़े आयोजनों में, जहां पर पैर रखने की जगह भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहां पर आते हैं
0: जी। और
1: श्रद्धालु यहां पर उपस्थित हुए हैं।
0: और विजय जी, आपका वर्णन देश भर के श्रद्धालु सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे 10 बजे तक। और इस बीच हमारा अगला द्वय मौजूद होगा, लेकिन उससे पहले एक अंतराल, एक ब्रेक। नमस्ते।
2: ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं जनसंपर्क संचालनालय भोपाल के सौजन्य से।
3: विकास की मजबूत नींव सड़कों पर टिकी होती है, क्योंकि बेहतर संपर्क ही आर्थिक प्रगति और जन सुविधाओं का आधार बनता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत में आधुनिक और विश्व स्तरीय सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से सड़क अधोसंरचना में अभूतपूर्व विकास हुआ है।
4: 12 साल में मोदी जी के शासन काल में पानी, बिजली, सड़क अब आधुनिक समय के हिसाब से पूरे देश में मध्यप्रदेश सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में से एक बना है।
3: वर्ष 2025-26 में 4,078 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण करने के साथ 48,178 करोड़ रुपए की 73 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन है। इसी तरह 6-लेन मार्ग और उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे प्रदेश की विकास रफ्तार को नई दिशा दे रहा है, जबकि मजरा टोला सड़क योजना के अंतर्गत 30,900 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति दी गई है।
5: नदियाँ केवल जल की धाराएं नहीं होती, वे सभ्यता, समृद्धि और भविष्य की वाहक होती हैं। देश में जल सुरक्षा, नदी जोड़ों, परियोजनाओं और सिंचाई के विस्तार के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाकर विकसित भारत के निर्माण का दृढ़ संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। आज मध्य प्रदेश बहती धाराओं को विकास की नई दिशा देकर आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा का मजबूत आधार तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में अंतर्राज्यीय नदी जोड़ों परियोजनाओं से खेतों गांवों और शहरों तक पर्याप्त सिंचाई और पीने का पानी पहुंचाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।
6: पार्वती काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के लिए और राजस्थान के लिए दोनों के लिए वरदान साबित होगी।
5: महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के पूरा होने पर प्रदेश में सिंचाई का दायरा वर्ष 2028-29 तक लगभग 55 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
7: नदी जोड़ो अभियान से किसान को सिंचाई का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी से किसान की तरक्की होगा।
5: नदियों को जोड़कर समृद्धि की नई धारा बहा रहा है मध्य प्रदेश।
3: ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलवाकर जमीन विवादों पर विराम लगा रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश में सुशासन स्थापित करती स्वामित्व योजना को प्रभावी गति दे रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव।
8: जिसका मकान गांव में बना है उसको भी स्वामित्व का वही अधिकार है जो नगर वाले को है। ये बराबरी का अधिकार अगर मिला है तो माननीय मोदी जी के माध्यम से मिला।
3: प्रदेश में 68.11 लाख अधिकार अभिलेख तैयार हो चुके हैं जिनमें 48.32 लाख निजी स्वत्व अभिलेख शामिल हैं। इन संपत्तियों का लगभग 3800 करोड़ रुपए का पंजीयन शुल्क भी राज्य सरकार वहन करेगी। निःशुल्क पंजीयन की अभिनव पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। ई संपदा पोर्टल से प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी। अब ग्रामीणों की संपत्ति कानूनी पहचान के साथ बैंक ऋण, स्वरोजगार और आर्थिक समृद्धि का मजबूत आधार बनेगी। स्वामित्व से समृद्धि, अधिकार से आत्मनिर्भरता।
9: नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बाबा महाकाल के इस चल समारोह में, इस राजसी सवारी में।
10: जय श्री महाकाल।
9: जय श्री महाकाल। और अब धीरे धीरे सवारी अपने गंतव्य की ओर बढ़ चली है और गोपाल मंदिर का आयोजन भी संपन्न हो गया है और उससे आगे ये सवारी चलती चली जा रही है।
10: पटनी बाजार पर आप सवारी है और आगे गुदरी और फिर इसके बाद महाकाल घाटी होती हुए मंदिर में वापस जाएगी, लेकिन अभी भी जो समय है शेष राजसी सवारी का वापस मंदिर में महाकाल जाने का, उसमें श्रद्धालुओं का जो मतलब जनता अटी पड़ी है दोनों तरफ, देख रहे हैं कि बैरिकेड भी लगे हैं और इसके बाद भी लोग उतावले हैं कि अब जाते जाते भी दर्शन करें महाकाल के।
9: जी बिल्कुल। और जो बैंड है वो सबसे आगे हैं तो वो सबसे पहले आगे जो महाकाल मंदिर के सामने वाला इलाका है उससे आगे बढ़ते हुए, और जो ट्रैफिक और पुलिस की व्यवस्था है वो उनको आगे बढ़ाते हुए ताकि जो सवारी है पालकी है वो निर्धारित स्थान पर पहुंच चुके, और उसके बाद मंदिर में वापस जाने पे मुखौटे को यथास्थान रखा जाता है और वहां फिर से बाबा महाकाल की जो है आरती होती है और आगे के जो उनके उपचार हैं, उनके जो श्रृंगार के और जो पूजा के विधि विधान है वो संपन्न होते हैं और इस प्रकार से पूरी सवारी संपन्न होती है।
10: लाखों श्रद्धालु इस बात से भयमुक्त हैं कि यहाँ पर काल का देवता विराजमान है तो समय का देवता भी यहाँ सहम कर चलता है।
9: देखिए जो महाकाल हैं वो समय के देवता हैं और काल के भी देवता हैं, उनको इसीलिए अधिपति कहा गया है, वो राजाओं के राजा हैं, ये उनका जो श्रेष्ठता है बाकी ज्योतिर्लिंगों से उन्हें अलग करती है।
10: वैसे तो महाकाल सब कुछ है, सभी कुछ है, आप में ही सबकी स्थिति है, आपके द्वारा ये संपूर्ण विश्व प्रपंच व्याप्त है, आपके दर्शनों के हम पुण्यभागी बने इसका बहुत बड़ा श्रेय, और हम बड़भागी हैं जितनी सारी जनता ने दर्शन किए और उनको भी बहुत बड़ा श्रेय मिला जिन्होंने घर बैठे या कहीं सफर में हैं, अपने घरों में हैं, उन रेडियो के माध्यम से।
9: जी बिल्कुल। और हम बता दें कि इस उत्सव में जो मुखौटे होते हैं उनमें अलग अलग वाहन होते हैं, हाथी भी होता है, वृषभ भी होता है, और वृषभ को लेके यानी बैल को लेके जो मान्यता है वो यह है कि वृषभ भगवान शिव का वाहन है, इसी पर वे देवी पार्वती के साथ विराजमान होकर संध्या काल में कैलाश से निकलकर तीनों लोकों का अवलोकन करते हैं। सवारी में राजा महाकाल की वृषभ वाहन पर जो प्रतिमा रखी जाती है वो शास्त्रोक्त मान्यता की प्रतीक है और प्रतिनिधि है। इसी तरह गरुण भगवान विष्णु का वाहन है किंतु इस पर राजा महाकाल की प्रतिमा शिव और विष्णु की एकता का द्योतक है, मानो इस प्रतीक से हरिहर का मिलन हो।
10: आपने जो शिव की असवारी की बात की है तो उसके लिए हमारे वेदों में पुराणों में एक बात जरूर वर्णित है कि प्रातः भजामि भवभीति हरौ सुरेशम गंगाधरम वृषभ वाहन अंबिकेशम, वृषभ के वाहन की ये महिमा है।
9: जी बिल्कुल, और हम अपने श्रोताओं को दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि महाकाल मंदिर परिसर में उनकी ना केवल महाकाल की महत्ता है बल्कि अन्य मंदिरों की भी बहुत महत्ता है, उनके बारे में हमारे श्रोताओं को बता देना चाहते हैं, क्योंकि महाकाल का आंगन केवल महाकाल की प्रतिमा या उनके महात्म्य के कारण नहीं है बल्कि इस पूरे आंगन में महाकाल बाबा के 33 करोड़ देवताओं का घर है। धरती का प्रत्यक्ष कैलाश, साक्षात शिवलोक, हनुमान, शिव, देवी सरस्वती, अवंतिका, भद्रकाली, नवग्रह, शनि, राधा कृष्ण, गणेश के मंदिरों से विभूषित ये परिसर आध्यात्मिक अनुभूति का पावन कराता है। विश्व में संभवतः श्री महाकाल मंदिर ऐसा है जिसमें इतने सारे देवी देवताओं का सम्मिलन है, संयोजन है।
10: वास्तव में अगर वर्तमान महाकालेश्वर मंदिर का हम दर्शन करते हैं तो हम पाते हैं कि ये परिसर सुविस्तृत, विशाल और अलग अलग युगों की कला संपदा को सहेजे हुए है। जैसा कि आपने भी जिक्र किया, महाकाल के दक्षिण मूर्ति शिवलिंग की विस्तीर्ण रजत निर्मित जलाधारा अत्यंत कलामय है, आपने देखी होगी, और नागवेष्टित निर्मित हुई है ये शिवजी के सम्मुख नंदी की पाषाण मूर्ति और धातु पत्र वेष्टित विशाल प्रतिमा है।
9: जी बिल्कुल, और अब हमसे हमारे प्रतिनिधि द्वारकाधीश चौधरी जी जुड़ रहे हैं। द्वारकाधीश जी, आप कहाँ पर हैं और क्या देख पा रहे हैं? द्वारकाधीश जी बताइए, आप कहाँ पर हैं इस समय?
11: बस मैं महाकाल मंदिर के थोड़े से पास में ही हूँ
9: जी।
11: अभी पालकी आई नहीं है, पालकी आने वाली है।
9: जी जी,
11: टाइम लगेगा उसको 5-10 मिनट जो भी।
9: द्वारकाधीश जी, जब पालकी पहुँचती है वापस महाकाल मंदिर तब किस तरह का आयोजन होता है? क्योंकि जब निकलती है तब कड़ाबीन के धमाके होते हैं, बहुत सारे बैंड होते हैं, बहुत सारा उत्सव होता है, पर जब पालकी वापस पहुंचती है सभा मंडपम के मुख्य द्वार के पास तब किस तरह के वहां पे गतिविधियां होती है?
11: गतिविधि है, सारे जितने भी भजन पटले वाले रहते हैं, जहां मजीरा और ये सारे साइड से खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल उनकी पालकी वहां गेट से अंदर जब जाती है तो पुलिस प्रशासन और प्रशासन के द्वारा हर व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया जाता है। चूंकि पालकी आने के बाद वहां नीचे सभा मंडप में जितने भी मुकट्टे हैं ये सारे मुकट्टे इकट्ठे होंगे, वो चूंकि अभी मुकट्टे इकट्ठे होने में आधा पौन घंटे का समय लगेगा, क्योंकि पालकी के पीछे जो है वहाँ नंदी भी चल रही है, गरुड़ जी भी चल रहे हैं घटाटों पे और हाथी पे मन महेश है, क्योंकि ये अभी जो है गोपाल नंदी तक ही पहुंचे है और इनको आने में करीब आधा पौन घंटे का समय लगेगा। उनको समय लगने के पश्चात ये स्थिति होती है, उसके बाद आरती होती है और आरती होने के बाद फिर शयन आरती होती है
9: जी,
11: ऐसी स्थिति रहती है।
9: तो गोपाल मंदिर से वापस महाकाल मंदिर आने में कितना समय और लग सकता है?
11: हल्की को तो टाइम नहीं लगेगा, पर क्योंकि हाथी को लगने में आधा घंटा लगेगा
9: कम से। बिल्कुल ठीक, जब पालकी अंदर पहुंच जाती है सभा मंडपम में फिर किस तरह के अनुष्ठान संपन्न होते हैं? क्या किसी तरह की आरती होती है या किसी तरह का पूजन पाठ होता है? क्या उसका विधि है, क्या विधान है?
11: आरती जैसे पालकी वहाँ पहुँचती है सभा मंडप से तो पालकी का बकायदा मुकट्टा खोला जाता है, मुकट्टा बंधा हुआ रहता है, क्योंकि चंद्रमौलेश्वर जो बांध की जो पूजा हुई थी उस चंद्रमौलेश्वर बांध की वापस पूजा होती है और पूजा होने के बाद जो उनको शक्ति दी जाती है
9: जी,
11: वो शक्ति के संबंध में फिर पूजा होती है वही सभा मंडप में। और सभा मंडप में जितने भी मुकट्टे हैं, चाहे उमा महेश का मुकट्टा हो, नंदी पे शिव की तांडव करती हुई मुकट्टा हो, घटाटोप हो या मन महेश हो, ये सारे मुकट्टे को एक साथ इकट्ठा करके वो शासकीय पुजारी गंजाम गुरुजो के द्वारा उसकी पूजा अर्चना की जाती हो, वो पूजा अर्चना करने के बाद फिर महाकाल की शयन आरती होती है।
9: तो ये सारी प्रक्रिया संपन्न होने में हमें लगता है कि रात्रि के 10 भी बज सकते हैं जब वापस उनकी शयन आरती होगी। इस जानकारी के लिए द्वारकाधीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमसे हमारी प्रतिनिधि विजया जैन जुड़ रही हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं।
10: हेलो विजया जैन जी, जय श्री महाकाल।
12: पालकी की सवारी में हूँ और पालकी बिल्कुल मेरी आंखों के सामने नजर आ रही है और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की पुत्र हमारे साथ इस वक्त है, मैं उनसे बात करवाना चाहती हूँ। 2 मिनट बात करवा दीजिए।
10: जरूर जरूर बात करवाइए,
12: मैं बिल्कुल उनसे बात करती हूँ।
9: जय श्री महाकाल।
12: जय श्री महाकाल। एक मिनट सर, आकाशवाणी।
13: जय महाकाल।
9: जय महाकाल। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं आकाशवाणी उज्जैन में।
10: उनके मुख्यमंत्री जी तो विदेश में हैं, ये उनके परिवार के।
9: जी जी, हमें बताइए आपको कैसा लग रहा है, कैसा आनंद आ रहा है?
13: मैं मेरा परिचय दे दूं, मैं डॉक्टर रवि सोलंकी उज्जैन विकास प्राधिकरण का,
10: उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष है
13: ना। और मैं राजा धीराज
9: मैं आपको रोक रहा हूं, हम क्षमा प्रार्थी हैं कि पहले हमने ये उद्घोषित किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे जुड़ रहे हैं, लेकिन अब आप हमसे जुड़िए सोलंकी जी और हमें बताइए। जी जी बोलिए।
13: राजा धीराज दाता अवंती का नाथ की सवारी बड़े धूमधाम से उज्जैन शहर के अंदर तीनों लोगों के राजा कालों के काल महाकाल महाराज आज दिव्य दर्शन देने शाही सवारी के रूप में, एक राजा के रूप में, तीनों लोगों के राजा के रूप में उज्जैन के अंदर पूरे आम जन को दर्शन देने के लिए निकले हैं।
10: रवि सोलंकी जी, आपके उज्जैन विकास प्राधिकरण ने इस सवारी मार्गों को सजाने धजाने में, जो कि उज्जैनी तो दुल्हन की तरह सजा हुआ है, आपका क्या मतलब हाथ रहा है, आपके उज्जैन विकास प्राधिकरण का, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं।
13: मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, उज्जैन में काम चल रहा है, चाहे उज्जैन विकास प्राधिकरण कर रहा हो, चाहे नगर निगम कर रहा हो, चाहे PWD कर रहा हो, जो भी विभाग कर रहे हैं और जो भी आयोजन होता है वो सब विभाग मिलकर आपस में करते हैं और उस सब के लिए श्रेय जाता है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। उन्होंने इतनी चोड़ी चोड़ी रोड़े कर दी कि आज हम समय से एक घंटा पूर्व सवारी को महाकाल तक पहुंचाने में सफल हो रहा है। ये हमारे स्थानीय प्रशासन में हमारे संभाग आयुक्त श्री अमान आशीष सिंह जी, कलेक्टर रोशन सिंह जी, SP हमारे प्रदीप शर्मा जी से लेके नगर निगम कमिश्नर हमारे
9: सोलंकी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी
13: की मेहनत है और सभी ने इसको सफल बनाया, आम जन ने भी सहयोग किया है, इस सब के लिए मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। और अब बताइए आप जी,
9: हम सोलंकी जी ये जानना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो परिकल्पना है, जो उनका विकास का मॉडल है, उन्होंने बहुत सारे निर्माण कार्य अभी शुरू किए हैं और आगे की किस तरह की योजना है, क्योंकि सिंहस्थ आ रहा है 2028 में, उसको लेके एक विकास के बड़ी संरचना अधोसंरचना की आवश्यकता है।
13: आज 25,000 करोड़ से ज्यादा के काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालू करे तो उज्जैन के लिए नहीं करे, देश और विदेश के कोने कोने से जो विश्व का सबसे बड़ा मेला 2028 देश को उज्जैन में भराने वाला है, इसलिए इतने सारे आगंतुक आएंगे, इतने सारे सनातन धर्म को मानने वाले आएंगे, उन सब के स्वागत के लिए उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, उन सब का ध्यान रख के हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये निश्चय किया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी विकास का कार्य अधूरा नहीं रहेगा और उसके लिए सभी लोग लगे हुए हैं, उनके साथ चंदे से कंधा मिल सके, हमारे विधायक हो, सांसद हो, महापौर हो, सभापति दीदी हो, सभी लोग हम एक साथ एकजुट मिलकर देश को सफल बनाना चाहते हैं और आप सबको भी हम प्रार्थना करते हैं कि आइए और देश को सफल बनाइए।
9: जी बहुत बहुत धन्यवाद सोलंकी जी इस विकास संबंधी जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना जरूर साकार होगी।
10: विजया जी कुछ बीच में फिर से कुछ कहना चाहती हैं, बताइए।
12: जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र ने अपनी भावनाएं महाकाल महाराज के प्रति व्यक्त की है और मैं एक बात बताना चाहूँगी, वे स्वयं भी महाकाल के अनन्य भक्त है, उन्होंने और उनके पूरे भक्तों ने पैरों में कुछ भी नहीं पहना हुआ था और नंगे पैर वो इस पूरी सवारी को अटेंड करते हुए अब महाकाल मंदिर की ओर अग्रसर हो चुके हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ अब एकदम बढ़ते हुए नजर आ रही है और हर श्रद्धालु मंदिर तक पहुँचने की कामना रखते हुए अपने गंतव्य की ओर चले जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी अपनी पूरी मुस्तैदी से तैनात है और इस तरह से बहुत ही आस्थामय माहौल इस अवंती का नगरी उज्जैन में इस वक्त बना हुआ है।
9: विजया देखिए, श्रद्धा ऐसी चीज होती है कि हम नंगे पैर भी चल सकते हैं, हम 7 किलोमीटर भी चल सकते हैं। तो जो श्रद्धा और समर्पण का भाव है वो भक्ति में डुबो दे

0: देखता है और कैसे दृश्य पैदा करता है, और क्या जानकारी आपके पास है हमारे श्रोताओं को, हमारे श्रद्धालुओं को, सुनने वालों को बता सकते हैं?
1: यहाँ पर बताना चाहूंगी, महिला पुलिस कर्मी मुझे यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में नजर आई, और ये महिला पुलिस कर्मी करीब सुबह 9 बजे से इस सवारी मार्ग को व्यवस्थित करने के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात है, और न केवल उज्जैन से बल्कि धार, बड़वानी, राजपुर और उज्जैन, और उज्जैन के बाहर इंदौर और जबलपुर तक से ये पुलिस फोर्स बुलाई गई है, जिसमें महिला पुलिस कांस्टेबल की संख्या और पुलिस की संख्या भी बहुत बड़ी संख्या में ये सभी यहाँ पर उपस्थित है, और इन सभी का सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य था कि इस महाकाल की नगरी में जो भी श्रद्धालु भगवान महाकाल की सवारी को दर्शन करने के लिए आने वाले हैं, उन सभी को व्यवस्थित रूप से दर्शन मिले, किसी भी प्रकार की अनहोनी की घटना ना हो, धक्का मुक्की ना हो, कोई भी भक्त को परेशानी का सामना ना करना पड़े, ये उद्देश्य और ये भाव उनके दिल में मुझे उनसे बात करने पर नजर आया है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर आकस्मिक अगर कोई दुर्घटना हो जाए या कोई किसी भी तरह की चोट किधर किसी को लग जाए तो एम्बुलेंस की सेवा भी यहाँ पर मैंने देखी है, जो सवारी के पीछे पीछे मुझे नजर आती हुई दिखी है।
0: जी विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, और हमारे साथी अखिलेश जी जुड़ने वाले थे लेकिन किन्हीं कारणों से हम उनसे बाद में बात करेंगे। तो
1: जी सर, बताएं सर।
0: तो ये बाबा महाकाल की सवारी का चित्रण है जो हमारे साथी आप तक पहुंचा रहे हैं, और अखिलेश जी अब हमसे जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। अखिलेश जी आप बताएं, आप कहां पर हैं? जय श्री महाकाल।
2: मैं महाकाल जी के मंदिर के सामने खड़ा हूं, और अभी अभी महाकाल बैंड यहां से गुजर के मेरी आंखों के सामने मंदिर के प्रांगण में गया है। उससे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं कि तैयारियां चालू हो गई थी पालकी के स्वागत करने के लिए, अश्वर रोहित दल बहुत पहले यहां आ चुका, और अभी अभी उनके स्वागत की मुद्रा में खड़ा हो गया दोनों तरफ, और जो पुलिस का बैंड है वो भी उनका स्वागत करने के लिए, उन्होंने हमारे सभी जवान देखे उनके हाथों में जो वाद्यंत्र है उसको ले चुके हैं, और एक रास्ता भी आते हुए मुझे दिख रहा है। अब ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी सवाल, आ गई सवारी मंदिर के साथ कई हमारी अंदर घुसने वाली है। ये देखिए, एक काफी समय से पहले प्रशासन ने जो तैयारी की थी उससे पहले सवारी यहाँ पर आ गई है, अब सवारी धीरे से मंदिर प्रांगण में बढ़ रही है। ये एक प्रशासन के लिए बड़ी कुशलता, प्रशासन ने बड़ी कुशलता से काम किया कि सवारी को बिना किसी बाधा के, बिना किसी परेशानी के सही समय पर मंदिर में आ गए। मंदिर के ठीक सामने अभी सामने दिखाई दे रही है, एरोजन चमक रहा है, और ऊपर से हमें बिल्कुल साफ समझ में दिखाई दे रहे हैं महाकाल जी महाराज की जो प्रतिकृति दिखाई दे रही है, मुस्कुराते हुए सभी भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या बात है राजा अधिराज जी, इस मंदिर से चले थे वापस उसी मंदिर में, उनके सवारी के साथ साथ हम लोग आ गए, अब तब अरे चलिए देखिए मंदिर की तरफ बढ़ रही है, मुश्किल से 10 फीट की दूरी है मंदिर की और सवारी है, और उससे पहले जो सवारी जिस जगह से गुजर रही है वहाँ 30x30 की बहुत ही खूबसूरत रंगोली बनाई गई थी, तो इस समय वापस से फिर कई ड्रोनों के द्वारा पुष्प वर्षा भी की जा रही, बहुत सारे ड्रोन सवारी के ऊपर से, आप सुनिए देखिए बैंड की आवाज सुनाई देगी जो कि महाकाल जी के स्वागत में बनाया जा रहा है। जब राजा अधिराज यहाँ से गुजरे थे तब यही परंपरा निभाई गई थी, और आप फिर से वही परंपरा का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। अब तक वो ध्वनि शायद धीरे धीरे पहुंच रही, क्योंकि मैं वहाँ से दूरी बनाए रखा हूँ ताकि कुछ शब्द आप तक अच्छे से सुनाई पड़े। और महाकाल जी की मूर्ति जो पालकी है कच मचक हो रही है यहाँ पे धीरे धीरे, क्योंकि जो जनता है कौन चाहेगा कि महाकाल जी अपनी का नदी उनसे दूर रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने देख लिए अपने कंधों से, और जो हमारे कहार समाज के प्रतिनिधि हैं वो धीरे धीरे मंदिर में अब कुछ ही क्षणों में शायद अगली जो मेरी घोषणा ये होगी कि मंदिर में सवारी चली गई। ये देखिए ये मंदिर में सवारी ने प्रवेश कर दी, यहाँ पे शायद प्रशासन ने भी आपको चैन की सांस ली होगी।
3: बिल्कुल अखिलेश, जैसे जैसे सवारी अंदर यानी कि मंदिर के अंदर प्रविष्ट कर रही है, भक्तों का उल्लास वैसे ही उनका और बढ़ता चले जा रहा है। दिन भर की जो थकान है वो कहीं भी उन्हें नजर नहीं आ रही है, बस श्रद्धा में डूबे हुए हैं सारे भक्तगण।
1: हाँ,
2: सुखराम जी सवारी मंदिर के अंदर चली गई, प्रशासन ने सुरक्षित रूप से सवारी को बैरिकेड के अंदर ले लिया है। पुलिस प्रशासन के जो हमारे जवान खड़े थे उन जो यहाँ पर आप बोलो भी थोड़ी सी विश्राम की मुद्रा में इधर उधर अपने जो मुख्य अधिकारी है उनकी तरफ पड़ रहे हैं। प्रशासन ने देखिए बैरिकेडिंग को वापस से बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये सवारी जो आज अभी निकली थी पूरा संपूर्ण मार्ग को कवर करते हुए और आबंदी का नाम अपने प्रजा को आशीर्वाद देते हुए वापस मंदिर में प्रवेश कर गई थी।
3: बिल्कुल, और अवंतिका नाथ की आराधना के लिए जो भक्तगण जुटे हुए हैं, अगर हम भजन मंडलियों की बात करें तो पीछे कितनी भजन मंडलियां होंगी जो अपने अलग अलग स्थानों पर अब आगे बढ़ेंगी?
2: देखिए अभी भजन मंडलियां यहाँ से अभी तो नहीं गुजर रही है क्योंकि मैं मंदिर प्रांगण में खड़ा हुआ हूँ
3: जी।
2: यहाँ पर अभी चीजें अभी बाबा महाकाल जी की सवारी आई है और प्रशासन ने जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे डबल बैरिकेड से और जो भी मंडलियां आएंगी वो वहाँ से बैरिकेड से निकलते हुए हमारे शिवजी की तरफ चली जाएंगी। अगर मैं मंदिर की बीच तरफ भीग करके खड़ा हूँ तो ये बाई साइड में हर शिवजी का मंदिर है और दाईं साइड में प्रशासन का कार्यालय है, तो सारी जो मंडलियां हैं वो धीरे धीरे बाईं तरफ होते हुए पीछे की तरफ चली जाएंगी जहां इनको सुरक्षित मार्ग जो दिया गया है मंडलियों को। लेकिन अभी ऐसे कोई शोर यहाँ से नहीं सुनाई दे रहा है क्योंकि मेरे सामने गुरु कैरीगेट हम लोग अंदर है और जो जन समूह है वो हमें दिखाई दे रहा है तो पता पड़ा थोड़ा मुश्किल है कि अभी कौन सी मंडली आ रही है।
3: बिल्कुल, कितना क्षण लगेगा जब भगवान महाकालेश्वर की पालकी मंदिर के अंदर पहुंच जाएगी और वहां पर उनकी संध्या आरती होगी?
2: मुकाम जी मैं बताना चाहूंगी कि मंदिर में तो पालकी चली गई है, अब उसके पीछे उमा महेश जी आएंगे
3: जी। जी अखिलेश जी हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और उदित जी कितना क्षण लगता है?
4: अब देखिए हमारे जो दर्शन करने वाले इतने श्रद्धालु हैं, लाखों लाख यहाँ आए हुए हैं, जैसा कि अभी आपने राजसी सवारी के दौरान सुना है, अभी भी जब मंदिर में प्रवेश कर रही थी पालकी तो गुदरी से लेके और महाकाल मंदिर तक लगभग 1.25 किलोमीटर का रास्ता है। वहाँ इतनी जनता थी कि पूरी पुलिस इंदौर की और सुरक्षा कर्मी वहीं लग गए थे।
3: बिल्कुल, लगभग 3-3.5 किलोमीटर लंबा ये जो मार्ग है, तेरह से कहें
4: अभी भी जनता मंदिर के आसपास जो है
3: बिल्कुल
4: वो हाथ जोड़े खड़ी है और उनके मन में बस एक ही प्रार्थना है कि भगवान शिव महाकाल देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोरे।
3: क्या बात,
4: और किए दूर दुख सबन के जिन जिन कर जोड़े, सभी कर जोड़े हुए हैं, अपने हाथ जोड़े हुए हैं
3: जी।
4: राजा धीराज महाकाल प्रबल संसार को भयमुक्त होने के लिए ये जनता उन्हें प्रार्थना के रूप में नमस्कार कर रही है और जो सावधान चित्र वाले हैं शिव
3: जी
4: वो ध्यान परायण हैं, जन जन के हृदय में सुखपूर्वक विराजते हैं और चंद्रमा की कला जो है सर्पों की कंकड़ और व्यक्त चिन्ह बाल कपाल को धारण करते हैं, ये उनकी वेशभूषा है। संपूर्ण लोगों के आदि देव महाकाल शिव आज पूरे जनों की कुशल खेम जानने के लिए पालकी में बैठकर पूरे शहर में निकले, सभी ने दर्शन किया और अब वापस अपने महाकाल मंदिर में आएंगे और राजाधिराज अब बन जाएंगे महाकाल शिव।
3: बिल्कुल, और उदित जी एक बात का जिक्र यहाँ हम करना चाहेंगे क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि पूरी सवारी के विवरण में पालकी को उठाने वाले कहारों का किसी ने जिक्र नहीं किया और जबकि बहुत बड़ी भूमिका होती उनकी पूरे मार्ग तक लाना और ले जाना।
4: उनके जो परिवार के लोग हैं
3: जी
4: वो कई पीढ़ियों से
3: जी
4: ये कार्य कर रहे हैं, उनमें बहुत सारे लोग जो आज की पीढ़ी के हैं अब उनका दायित्व है कि वो महाकाल की चांदी की इतनी वजनदार पालकी उठाते हैं। उनका जिक्र हुआ था उस समय जब पालकी में विराजमान हो रहे थे महाकाल
3: में,
4: तो उस समय किया था और वो लोग प्रार्थना जो कर रहे थे वो यही कहे महाकाल 7-8 किलोमीटर का रास्ता आप मुझे मेरे कंधों पर ऐसा वजन रखें कि मुझे तकलीफ न हो।
3: बिल्कुल, और लगभग 150 किलो वजनी ये जो है पालकी
4: जी
3: जिसको उठाकर पूरे मार्ग तक ले जाना भी बहुत बड़ी बात है।
4: राजसी सवारी में चांदी की पालकी का वजन पिछले वजन से कुछ कम इसलिए किया गया है कि उस पालकी में जो पिछले बार निकलती रही है पिछले वर्ष उसमें वजन बताया गया कि इतनी अधिक है कि उनके कंधे पूरे छल्ले हो गए
3: जी।
4: तो फिर प्रशासन ने ऐसा किया कि कुछ कम वजन की कर दी, लेकिन उसमें पर्यावरण संरक्षण की बात पूरी पालकी में, भले आधुनिक विद्युत सज्जा से सजाई गई
3: जी,
4: लेकिन पर्यावरण का संरक्षण का संदेश देती वो पालकी, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी कहा कि प्रकृति शोभित शिव बाथ उनके मस्तक पर तो प्रकृति है, और आप लोगों ने भी जिक्र किया था कि वो प्रकृति के बीच ही रहते हैं शिव, उनका परिवार प्रकृति के बीच रहता है, और मृत्युंजयात्म भव रूपेण उनको कहा गया है श्री त्र्यंबकाय सित कंठ सर्प और गौरीपते सकल मंगल हेतवे नमः। तो इस बात को अपने शब्दों में कहारों ने कहा है और इसके बाद पालकी को उठा के पूरे शहर में होकर लौटे।
3: बिल्कुल, आयुषी मिश्रा अभी जुड़ चुकी हैं और उनसे आगे का विवरण हम जानते हैं। आयुषी, कहाँ हो इस वक्त आप?
5: उसे उतारा जा रहा है और सभी लोग जय जयकार कर रहे हैं यहाँ बाबा के लिए। जय महाकाल हो रहा है यहाँ और बहुत ही शोर है, बहुत भीड़ है, श्रद्धालु बहुत भाव विभोर है, उमड़ रही है। बाबा आ चुके हैं, फिर भी उनको देखने की तो ललक है, जो सुखता है वो बनी हुई है अपनी चीज।
3: बिल्कुल, तो आयुषी जी जी बताइए।
5: भारी मात्रा में यहाँ श्रद्धालु मंदिर में भी उपस्थित है और अभी भी बाबा जी झलक पाने के लिए आते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी उनकी झलक मिल जाए। सभी तरह के श्रद्धालु यहाँ पर है, बच्चे बूढ़े।
3: बिल्कुल, आप पूरी पालकी मार्ग में चलती रही और कई श्रद्धालुओं से आपकी चर्चा हुई, तो इस पूरी पालकी मार्ग में जिन श्रद्धालुओं से आपकी चर्चा हुई क्या बात निकल के आई?
5: यही बात निकल के आई कि राजा जी राजा महाराज महाकाल जो है हमारे, उनकी सेवा में हर एक इंसान महाकाल उज्जैन नगरी का जो एक एक व्यक्ति है वो उनकी सेवा में हाजिर है और लोग अपने दुकानें बंद करके आज सिर्फ सवारी की सेवा में ही लगे हुए हैं और लगातार हर, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो दुकानदार हो या वो कोई भी और हो, हर एक व्यक्ति बाबा की सेवा में तत्पर है और उन्हीं के बाबा ही नजर आए।
3: जी जी,
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जय श्री महाकाल।
4: जय श्री महाकाल।
3: आयुष जी और अब जुड़ चुके हैं द्वारकाधीश चौधरी जी।
6: जय श्री महाकाल।
4: जय श्री महाकाल। आप कहाँ पहुँचे हैं और अभी क्या नजारा देख रहे हैं, दृश्य क्या है अब, क्योंकि पालकी वापस आ गई है?
6: पालकी महाकाल मंदिर में अंदर जा चुकी है
4: जी।
6: पीछे पीछे जो रथ है वो रथ आ रहे हैं, नंदी नंदी पे नंदी और गरुड़ और घटाटो और हाथी पर मन महेश की वाली पालकी और ये सारी सवारी आप आने वाली है पीछे से, और इसमें टाइम लग रहा है। इसके बीच में ये हर सवारी के बाद ये हालत है, गरुड़ के पीछे भी बैंड है, नंदी के पीछे भी बैंड है, हाथी के सामने भी बैंड की व्यवस्था, उसकी बैंड की जो मधुर संगीत निकालते हुए जो आ रहे हैं, जितने श्रोता जितने आज खड़े हुए हैं वो उनका आनंद ले रहे हैं और वो पालकी पहुंचने में अभी 15 से 20 मिनट आधा घंटे का टाइम हाथी को पहुंचने में लगेगा अभी
4: जी। अच्छा, मन महेश है गज पर सवार
6: है। दूसरी ओर आप देखें कि इस शहर में नगर निगम के द्वारा 250 से अधिक सफाई कर्मी लगाए गए थे पूरे शहर में, जहाँ सवारी मार था वहाँ प्रचार वितरण भी हुआ है, पुष्प वर्षा भी हुई है, पुष्प मालाएं भी है और सब प्रकार का सब है, पर अभी सवारी मार का जितने भी पिछला हिस्सा है, चाहे दानी गेट का हो, रामघाट का हो, ढाबा रोड हो, कट्ठाल हो, पूरा सवारी मार की सफाई व्यवस्था पूरी कर दी गई है।
4: बिल्कुल, ये भी
6: नगर निगम के द्वारा स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए तत्काल व्यवस्था की गई है और दूसरी ओर पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए भी
4: जी
6: ये सवारी मार्ग पे जितने भी व्यवस्था की गई है वो पूरा ध्यान दिया गया। तीसरा आप देखें सवारी मार्ग पे जितनी भी लाइट की व्यवस्था की गई वहाँ विद्युत व्यवस्था के द्वारा भी बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई थी। अब देखो मिल रहा है क्योंकि सवारी मार्ग पे थोड़ी भीड़ कम हुई है, जितने पोल लगे हैं उन पोल पे भी प्लास्टिक के कवर लगाए गए जिससे ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित ना हो
4: और अगर जल वर्षा होती है तो उससे भी सुरक्षा हो, क्योंकि उसके ऊपर एलईडी लगाई गई थी जिससे लोगों को दूर दूर तक दर्शन हो सके महाकाल की जहाँ भी खड़े।
6: किसी प्रकार का कोई भी जनहानि ना हो उसकी भी व्यवस्था की गई थी। तो अब ये सारी सवारी की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अब दिखाई दे रही है, पुलिस की व्यवस्था भी दिखाई दे रही है, प्रशासन की भी देखा दे रही है, जिला प्रशासन की दिखाई दे रही है, नगर निगम की भी दिखाई दे रही है।
4: अच्छा पूरे सवारी मार्ग पर राजसी सवारी जब महाकाल की निकली, आप पूरे लगभग शहर के मार्गों पर रहे हैं, तो आपने खुद क्या प्रार्थना की महाकाल से?
6: भाई महाकाल से हमारी तो यही प्रार्थना है कि आने वाला जो सीएस महापर्व 2028 है
4: जी
6: वो सुचारू रूप से हो, क्योंकि उसमें करोड़ों लोग वो चूंकि ये उज्जैन का मामला है और उज्जैन जो है देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और वहाँ मात्र एकमात्र ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहाँ प्रातः भस्मा आरती होती है
4: जी।
6: उस भस्मा आरती को देखने भी लोगों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। पहले पूर्व में महाकाल मंदिर की जो व्यवस्था थी वो प्रशासन ने जो की थी, अब आप देखें जब से महालोक बना है तब से लाखों की तादाद में श्रद्धालु आए और मात्र सावन माह में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए हैं।
4: बिल्कुल
6: एक अपने आप में ये पर्यटन की दृष्टि से भी पूरे देश और विदेश में उज्जैन शहर का नाम धार्मिक सांस्कृतिक और पौराणिक नगरी के नाम से तो था ही, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली होने के कारण यह 5000 वर्ष से अधिक का इतिहास भी है। राजा हरिश्चंद्र ने भी यहाँ तपस्या की है। ये सारे इस प्रकार की ये व्यवस्था है। ये सांस्कृतिक नगर है, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 84 महादेव की भी व्यवस्था है। आप देखें 84 महादेव यहाँ अधिक मास में जो रहते हैं उसके 9 नारायण और सप्त सागर
4: जी जी
6: भी के लिए भी उस चारों ओर से हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और भगवान महाकालेश्वर के परिसर में भी 3 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं तो 84 महादेव में आते हैं।
3: बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद द्वारकाधीश जी। और अब जुड़ चुके हैं मयंक शुक्ला जी। जी मयंक जी
7: नमस्कार।
3: जय श्री महाकाल।
7: राजसी सवारी अपनी संपन्नता की ओर अग्रसर हो रही है और इस समय मैं महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडपम में खड़ा हूँ और जैसा कि देख पा रहा हूँ कि रजत पालकी में जो मुखारविंद विराजमान थे चंद्रमौलेश्वर उन्हें रजत पालकी से निकालकर पुनः विधिवत सभा मंडपम में जो तख्त लगाया है उस पर विराजमान कर दिया गया है और बस अब प्रतीक्षा है अन्य मुखारविंदों के सभा मंडपम में आने की। जैसे ही मनमहेश उमा महेश और अन्य मुखारविंद सवारी में जो अभी नियत मार्ग से होते हुए मंदिर पहुंच रहे हैं तो जैसे ही मंदिर पहुंच जाते हैं उन्हें भी यहां सभा मंडपम में पुनः स्थापित करके उनका पूजन अर्चन किया जाएगा, आरती की जाएगी, तत्पश्चात जो कोठार है वहां पर पुनः इन मुखारविंदों को स्थापित कर दिया जाएगा।
4: अच्छा मयंक शुक्ला जी आपने तो प्रारंभ भी यही से किया था सभा मंडप से, तो सभा मंडपम से लेकर पूरे शहर की जो राजसी सवारी का भ्रमण इतनी यात्रा में आप साथ साथ रहे और वापस यही सभा मंडपम में आए, आपने ये देखा होगा कि राजसी सवारी में जिन जिन लोगों ने जितने श्रद्धालु थे गिनती तो कोई थी नहीं, क्या आपने पाया और आपकी जो खुद की प्रार्थना थी कि भगवान महाकाल से क्या मांगे, आपने क्या मांगा?
7: देखिए व्यक्तिगत मेरी तो प्रार्थना हमेशा से सिर्फ राजसी सवारी नहीं, हमेशा मैं जब भी ईश्वर से कुछ मांगता हूँ और मैं अन्य लोगों को भी कहता हूँ कि अगर ईश्वर से कुछ मांगना है तो ये मांगो कि मुझ में तुम्हारे प्रति जो श्रद्धा है जो समर्पण या आस्था है वो बनी रहे, बजाय कि किसी भौतिक मनोकामना के हम ईश्वर से अगर मांगे तो सिर्फ ये मांगे कि हमारी श्रद्धा और हमारा जो भाव है ईश्वर में वो हमेशा ज्यों का त्यों बना रहे। और मैंने आज भी जब बाबा महाकाल की सवारी में रक्षा दल का जो सुरक्षा घेरा था उसके भीतर रहकर सतत महाकालेश्वर मंदिर से रामघाट तक का सफर तय किया। उसके बाद भी सवारी के साथ साथ मैं चला और अभी सभा मंडपम में पुनः सवारी संपन्नता की ओर है। तब यहाँ पर भावुक कर देने वाला क्षण है, क्योंकि अब कार्तिक माह में अगली बार प्रजा से मिलने पहुंचेंगे महाकालेश्वर भगवान, और उसके बाद सावन तो 2027 में

0: जुलाई में आएगा। 24 जुलाई 2027 को पहली श्रावण की सवारी निकलेगी अगले वर्ष। तो कहीं ना कहीं भावुकता भी है, मन में उल्लास तो है ही, बाबा के प्रति जो भक्ति भाव है वो तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं एक मायूसी भी है कि अब बाबा के दर्शन होंगे कार्तिक माह के सोमवारों को या अगले श्रावण के सोमवारों को। तो मिला जुला भाव है, सुख भी है, थोड़ी सी मायूसी भी है, भावुकता भी है। और यहाँ जो श्रद्धालु मैं देख पा रहा हूँ, पुलिस विभाग के जो आला अधिकारी कर्मचारी हैं, वो श्रद्धालुओं से निवेदन कर रहे हैं कि कृपया अनुशासन में रहें, क्योंकि अन्य मुखारविंदों का अभी आना बाकी है सभा मंडपम में।
1: तो क्या संध्या आरती अभी संपन्न हो चुकी है?
0: संध्या आरती संपन्न हो चुकी है, अब शयन आरती जो 10:30 बजे होती है वो होगी, लेकिन उससे पहले मुखारविंदों का पूजन अर्चन और आरती का जो क्रम है वो संपन्न हो चुका होगा। और जैसा जिला प्रशासन का टारगेट था आपके वर्ष कि 8 बजे तक पालकी मंदिर में पुनः प्रवेश कर जाए, तो तकरीबन 8:24 हुए थे जब पालकी मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर चुकी थी।
1: बिल्कुल मयंक जी, जैसा कि आपने कहा कि सिंहस्थ का आगाज इस सवारी के माध्यम से हो चुका है, तो अगले वर्ष क्या देखने को मिलेगा?
0: अगले वर्ष मुझे लगता है कि शहर का और ज्यादा सौंदर्यीकरण हो चुका होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने श्रोताओं को भी बताया कि उज्जैन में विकास कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार सिंहस्थ को देखते हुए, आगामी कुंभ मेले को देखते हुए जारी है। सती गेट की बात करें या ढाबा रोड की बात करें, जो पिछले कई वर्षों से प्रतीक्षारत था चौड़ीकरण, वो चौड़ीकरण को क्रियान्वित करने का अगर बीड़ा उठाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उस कार्य को संपन्नता प्रदान की तो उज्जैन जिला प्रशासन ने। और जैसा कि अनुमान था कि आज सवारी नवीन मार्ग से निकलेगी, राजसी सवारी का जो बड़ा मार्ग होता है वहाँ चौड़ीकरण हुआ और जो नियत समय सीमा थी उस समय सीमा में कार्य संपूर्ण किए गए, पूर्ण किए गए, सड़क भी बनी, बिजली के पोल भी लगे और चौड़े मार्ग से राजसी खाटबाट के साथ आज बाबा नगर भ्रमण कर पुनः मंदिर पहुंच चुके हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद मयंक शुक्ला जी, आपने शुरू से लेकर और समापन तक जिस तरह से महाकाल राजसी सवारी का वर्णन किया, हमारे सुनने वालों ने अकेले उज्जैन नहीं पूरा मध्य प्रदेश, देश और बल्कि विदेशों में बैठे हुए जिन लोगों ने 102.5 MHz ट्यून किया या किसी भी स्टेशन को ट्यून किया है हमारे मध्य प्रदेश के, जो आकाशवाणी मध्य प्रदेश है उसके द्वारा जो आनंद लिया है आज 2 बजे से लेके और अभी आनंद 10 बजे तक बरसेगा।
2: बिल्कुल तिवारी जी, अभी वक्त है 10 बजे तक और 10 बजे तक हम लगातार विवरण आपको देते रहेंगे और अभी भी कोई भी उत्साह में कभी भी किसी में भी कोई कमी नहीं है, लगातार उत्साहित है पूरे भक्तगण और लगातार पालकी के सवारी मार्ग पर अभी भी बहुत सारे श्रद्धालु उपस्थित हैं।
1: और अब 1 मिनट का वक्त है, इसके बाद हम विशेष समाचार सुनेंगे और फिर इसके बाद हम वापस आएंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल, अभी लगातार हम बने हुए हैं और चूंकि छोटी मोटी जो बातें हैं वो हम लगातार हमारे सुनने वालों को बता रहेंगे। और तिवारी जी, बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी शेष है।
1: बिल्कुल, वो तो 10 बजे तक हम आनंद बांटने के लिए यहाँ बैठे हैं स्टूडियो में और लोगों को अपने अपने घरों में रेडियो के माध्यम से और ट्रांजिस्टर के माध्यम से हम सुनवाएंगे आंखों देखा हाल, क्योंकि अभी समापन में सांध्य आरती में उनके मुखौटा पूजन में अभी वक्त है।
2: बिल्कुल, शयन आरती का अभी वक्त है।

0: ठेकेदार समेत 30 लोगों पर FIR, 10 गिरफ्तार। और उज्जैन में आज भगवान महाकाल की राजसी सवारी निकली, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि रतलाम से बड़ौदा 4 लाइनिंग परियोजना भी इसी योजना का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल गलियारा यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अब पूरा हो गया है। इसके 3 पूर्ण खंड प्रधानमंत्री कल राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 जो बड़े रेलवे के कॉरिडोर्स हैं, उन 7 कॉरिडोर्स का 4 लाइनिंग का काम हाथ में लिया है। उसी का हिस्सा है रतलाम से बड़ौदा 4 लाइनिंग का काम। फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश सत्र में वैश्विक निवेशकों से मध्य प्रदेश में निवेश का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश तेजी से निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में उभर रहा है और सरकार निवेशकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में प्रदेश के 3 शहरों ने देश के शीर्ष 5 में स्थान बनाया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर दूसरे, जबलपुर तीसरे और भोपाल चौथे स्थान पर रहा। वहीं भोपाल नगर निगम के वार्ड क्रमांक 60 को वार्ड स्तरीय श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान मिला है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। सागर जिले में जहरीली शराब पीने से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 22 हो गया है। वहीं 112 लोग बीमार हैं, जिनका सागर और भोपाल के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मामले में शराब ठेकेदार समेत 30 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सागर के बंडा और विनायका थाना क्षेत्रों में दर्ज मामलों की जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में शराब में मेथनॉल की मिलावट की बात सामने आई है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचकर मरीजों के इलाज और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की समीक्षा की। भादो के दूसरे सोमवार पर आज उज्जैन में भगवान महाकाल की राजसी सवारी निकाली गई। बाबा महाकाल 6 अलग अलग स्वरूपों में श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। सवारी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हैं। सवारी के दौरान शिप्रा नदी के रामघाट पर पूजा अर्चना की गई। महाकाल की इस राजसी सवारी का आकाशवाणी उज्जैन द्वारा सजीव प्रसारण किया जा रहा है। सवारी के प्रमुख पड़ावों, धार्मिक अनुष्ठानों और श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े दृश्यों का आंखों देखा हाल श्रोताओं तक पहुंचाया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए अब राशन कार्ड धारी अनियमितता की शिकायत व्हाट्सएप नंबर 7987956573 पर दर्ज करा सकेंगे। गुना में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में BKT टायर्स के सहयोग से आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव में 36 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। मंडला जिला चिकित्सालय ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के असेसमेंट में 86.17% अंक हासिल कर NQAS के लिए क्वालिफाई किया है। अलीराजपुर पुलिस ने ऑपरेशन हेलो के तहत आधुनिक तकनीक और CEIR पोर्टल की मदद से करीब 17 लाख रुपए के 101 गुम मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए। नर्मदापुरम में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने पिपरिया में औद्योगिक क्षेत्र का भ्रमण किया। कटनी में जल जीवन मिशन के तहत जिले में संचालित पेयजल योजनाओं की समीक्षा के लिए जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। देवास में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त दल ने खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य सामग्री के नमूने लिए और खंडवा में आगामी गणेश उत्सव को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के उद्देश्य से नगर निगम ने CM राइज स्कूल आनंद नगर में मिट्टी से गणपति प्रतिमा निर्माण कार्यशाला आयोजित की। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं भगवान श्री महाकालेश्वर की राजसी सवारी का यात्रा वृत्तांत। और जैसा कि हमारे प्रतिनिधि मयंक शुक्ला जी ने बताया कि भगवान श्री महाकालेश्वर के चंद्रमोलेश्वर के रूप में उनका विग्रह महाकाल मंदिर में आ चुका है और अब सुदर्शन आयाचित हमसे जुड़ रहे हैं, वो आगे का

0: विवरण हमें दे रहे हैं।
1: जय श्री महाकाल।
2: जय श्री महाकाल।
1: आदरणीय श्रोताओं, आकाशवाणी ने तो ऐसा एक जादू कर दिया है, सजग और सजीव प्रसारण करके एक इतिहास रच दिया है। आइए मैं अब आपको अंतिम पायदान की ओर अग्रसर कर रहा हूँ और बाबा महाकाल की जो सवारी है वो मंदिर प्रांगण में आ चुकी है। मेरे साथ में मंदिर के पुजारी आदरणीय यश गुरु जी है और मैं यश पुजारी जी से पूछना चाहूंगा कि पालकी के साथ जब बाबा मनमहेश के रूप में पालकी में बैठ के जब यहाँ आए और कितना आनंद आपको आया, राष्ट्रीय वैभव कैसा कहना आवाज यश पुजारी जी।
3: ये आपका दिन आज का जो कब होता है उसका दिन होता हो कि सारे बाबा महाकाल के श्रद्धा भी काल संस्था को संस्कार करते हैं कि भगवान महाकाल की झलक पाने के लिए निर्धारित रहते हैं। तो राज की सवारी जो कि बाबा महाकाल की निकलती है केवल दोस्तों के साथ निकलती है, उनकी सवारी एक ऐसी सवारी देती है कि बाबा महाकाल पूरे शहर का नगर भ्रमण करते हैं। तो सारे अपने बच्चों को
1: मैं पुजारी से पूछना चाहता हूँ कि जब पालकी लौट कर अब आ चुकी है तो अब क्या क्रम होगा?
3: अब चूँकि सवारी बाकी हो मंदिर आ गई है तो वापस को भगवान हम नमक में संगम होने को जरूर बताऊँ महाकाल का उसका संगम होगा। तो भगवान मैन आरती से बाबा महाकाल की आपकी बात आरती सुना जाता है जिससे तो आप सारे बच्चों का समय देता है तो वो आप कभी बहुत आरती
1: आपकी आपको कितना वर्ष हो गया बचपन से लेकर अभी तक जो आप शुरू देख रहे हैं सवारी का, तो आपको ऐसा लग रहा है कि प्रथम प्रथम रूप से बदलता जा रहा है?
3: तो आप बता सकता हो उसको कारण बदल हो वो
1: अब क्या बाबा कार्तिक में एक बार पुनः भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ यश पुजारी जी मंदिर से। अब अगली आवाज है हमारे शहर के युवा पार्षद और कह सकते हैं कि जो बचपन से बाबा महाकाल की सवारी में आ रहे हैं और सवारी में पैदल चलते हैं। मैं ये चाहूंगा कि क्योंकि आप नगर निगम से जुड़े हुए हैं और एक नए मार्ग से बाबा महाकाल की आप सवारी को निकालते हुए देखा, जहाँ सती गेट का तो वो जो दृश्य था लोगों की आंखों में एक नया पंथ था और लोग जो है देखाने लगा कर जयकार कर रहे थे। तो इसमें जो पूरी जो सवारी निकलती है उसका स्वरूप जो है बदलता हुआ जा रहा है, नगर निगम की इसकी जो प्रमुख भूमिका है वो क्या रहेगी?
4: आप सभी को जय श्री महाकाल। मैं आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उन्होंने उस महत्वपूर्ण आयोजन जो कि शहर में उज्जैन शहर में बाबा महाकाल अपने प्रजा का हाल जानते हैं प्रत्येक वर्ष साल में राष्ट्रीय सवारी के रूप में निकलते हैं और शहर के एक बड़े हिस्से में जाकर वो अपनी प्रजा का हाल जानते हैं और प्रजा भी अलग पावड़े उठाकर बाबा महाकाल का स्वागत करने के लिए अपने राजा का स्वागत करने के लिए तैयार बैठी रहती है। इसी क्रम में नगर निगम द्वारा शहर में सिंह आगामी सिंह पर्व हमारे बहुत नजदीक है उसको दृष्टिगत रखते हुए लगातार शहर में विकास कार्य किए जा रहे हैं और आज इस शाही सवारी को लेकर राष्ट्रीय सवारी को लेकर जो विशेष तैयारियां नगर निगम द्वारा की गई थी कि जो मार्ग हमारे चौड़ीकरण की ओर बढ़ रहे थे उनको लगातार दिन रात मेहनत करके हमारे नगर निगम के सारे कर्मचारियों ने, कमिश्नर ने, हमारे सभी नगर निगम के सारे पार्षदों ने, जितने भी सारे हमारे नगर निगम का पूरा अमला है उसका रात दिन खुलकर उसके मार्ग को तैयार किया और बाबा के स्वागत हेतु शहर का जो सबसे प्रमुख मार्ग हमारा जो पुराना बाजार हुआ करता था उसको चौड़ीकरण कर युद्ध स्तर पर काम लगातार किया और इसी तरह से हम लगातार बाबा महाकाल के सवारी मार्ग को भविष्य में चौड़ीकरण करने की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो पुराने शहर के हमारे कई मार्ग जो कि संकीर्ण मार्ग उनको भी चौड़ीकरण करने के लिए हमारे नगर निगम कटिबद्ध है और लगातार बाबा महाकाल की सवारी का हमारे शाही सवारी और हमारी साधारण सवारी उनको सौंदर्यकरण करने के लिए चौड़ीकरण करने के लिए हम सतत प्रयासरत हैं और भगवान महाकाल ने कहा उनके आशीर्वाद से अगले ही वर्ष तक हमारा जो पूरा शहर जो जिसमें सवारी मार्ग भी सम्मिलित होता है उसका मार्ग चौड़ीकरण हो जाएगा और भगवान की कृपा से हम जल्द ही बाबा का स्वागत करते हैं।
0: की जो हमारी सवारियां निकलती है उसमें भी हम प्रयास करेंगे कि थोड़े थोड़े ही सवारी मार्गों से बाबा सवारी करे, ऐसा हमारा सबका सामूहिक प्रयास है। मेरी अपनी ओर से, मेरे परिवार की ओर से राष्ट्रीय सवारी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा महाकाल ऐसे ही हम सब पर आप अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसा मेरा बाबा से कामना है, ऐसी बाबा से प्रार्थना है।
2: युवा पार्षद जी, आप अपना शुभ नाम तो बताएं।
0: मेरा शुभ नाम सुशील श्रीवास, मैं पार्षद वार्ड क्रमांक 24 से हूँ और जोन अध्यक्ष हूँ नगर निगम।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महाकाल की राजसी सवारी के लिए जो विकासात्मक गतिविधियों का जिक्र किया उससे ऐसा लगा कि वास्तव में ये आयोजन कितना सफल हुआ और आने वाला जो 2028 में सिंहस्थ है उसकी भी हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह से वो संपन्न होगा, महीने दो महीने का जो भी आयोजन होता है। धन्यवाद आपको,
1: बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी।
2: जी
1: मैं अपनी पूरी टीम के साथ, जो हमारी पूरी टीम है, आदरणीय मयंक जी हमारे साथ है, आदरणीय हमारे वस्ती जी हमारे साथ हैं, हमारे अखिलेश भाई हमारे साथ हैं, आदरणीय चतुर्वेदी जी जो कि वहाँ से मेन जो हमारा स्टूडियो है वहाँ से पूरा काम संचालित कर रहे हैं, हमारी अधिकारी आदरणीय सुधा जी, आदरणीय चक्रवर्ती मैडम। तो ये बाबा महाकाल ही हमें शक्ति प्रदान कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है ना?
5: जी बिल्कुल सुदर्शन जी, अभी बाबा महाकाल हम सबको शक्ति प्रदान करता रहेंगे क्योंकि अभी पूरे 10 बजे तक हम लगातार बने रहेंगे और बहुत सारा विवरण अभी देना शेष है और बहुत सारी बातें अभी हमारे श्रोताओं के बीच आनी है।
2: आपको बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।
5: बिल्कुल,
2: आप देखिए यहाँ सभा मंडप में जैसा कि इन लोगों ने बताया वहाँ से वो अपने सामने देख रहे थे
5: जी।
2: ये जो महाकाल भगवान के मंदिर में जो सांध्य आरती होती है वो तो हो चुकी है
5: जी।
2: अब वहीं पर होगी शयन आरती, लेकिन जो राजाधिराज महाकाल यहाँ पर आए हुए हैं सभा मंडप में, इनका अब राजा का वेश बदला जाएगा
5: जी,
2: और
5: जी।
2: और सभी मुखौटों का वेश यहाँ बदला जाएगा, उनका पूजन और इसके बाद कोठार में इन सब मुखौटों को रखा जाएगा। लेकिन महाकाल तो चूंकि भवान्तर हैं, वो तो सब जगह हैं, तो अभी तो राजा के रूप में गए थे वो
5: जी।
2: अब देखिए एक रूप आपने आज देखा कि पूरे उज्जैन में महाकाल राजा अवंती का नाथ, अवंती का अधीश के दर्शन करने के लिए लाखों लोग आए हैं, लेकिन अब महाकाल में भी तो दर्शन करने आते हैं लोग।
5: बिल्कुल,
2: और अब तो चूंकि जब से महाकाल लोक बना है तब से जो संख्या है श्रद्धालुओं की, दर्शनार्थियों की, बहुत अधिक हो गई है और इनके जो वन क्षेत्र के जो भी विकासात्मक कार्य हुए हैं उनको देखने के लिए और शिव की प्रतिमाओं को देखने के लिए वो यहाँ पर आते हैं और गदगद होकर जाते हैं। अब मुकाम जी ऐसा है कि हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अभी तो 10 बजे तक क्योंकि हमारे श्रोता सुन सकते हैं और महाकाल की जो समापन की बेला है उसका भी विवरण बहुत लंबा होगा, उसको विवरण को हम सुनाएंगे।
5: बिल्कुल उदित जी, विशेषज्ञों की दृष्टि में हम बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब एक छोटा सा अंतराल हम ले रहे हैं और उसके बाद पुनः हम हाजिर होते हैं।
6: ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं जनसंपर्क संचालनालय भोपाल के सौजन्य से।
7: विकास की मजबूत नींव सड़कों पर टिकी होती है क्योंकि बेहतर संपर्क ही आर्थिक प्रगति और जन सुविधाओं का आधार बनता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत में आधुनिक और विश्व स्तरीय सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से सड़क अधोसंरचना में अभूतपूर्व विकास हुआ है।
8: 12 साल में मोदी जी के शासनकाल में पानी, बिजली, सड़क अब आधुनिक समय के हिसाब से पूरे देश में मध्यप्रदेश सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में से एक बना है।
7: वर्ष 2025-26 में 4,078 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण करने के साथ 48,178 करोड़ रुपए की 73 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन है। इसी तरह 6-लेन मार्ग और उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे प्रदेश की विकास रफ्तार को नई दिशा दे रहा है, जबकि मजरा टोला सड़क योजना के अंतर्गत 30,900 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति दी गई है।
9: नदियाँ केवल जल की धाराएं नहीं होती, वे सभ्यता, समृद्धि और भविष्य की वाहक होती हैं। देश में जल सुरक्षा, नदी जोड़ों, परियोजनाओं और सिंचाई के विस्तार के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाकर विकसित भारत के निर्माण का दृढ़ संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। आज मध्य प्रदेश

0: शक्ति धाराओं को विकास की नई दिशा देकर आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा का मजबूत आधार तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में अंतरराज्य नदी जोड़ो परियोजनाओं से खेतों, गांवों और शहरों तक पर्याप्त सिंचाई और पीने का पानी पहुंचाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।
1: पार्वती काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के लिए और राजस्थान के लिए दोनों के लिए वरदान साबित होगी।
0: महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के पूरा होने पर प्रदेश में सिंचाई का दायरा वर्ष 2028-29 तक लगभग 55 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
2: नदी जोड़ो अभियान से किसान को सिंचाई का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी से किसान की तरक्की होगा।
0: नदियों को जोड़कर समृद्धि की नई धारा बहा रहा है मध्य प्रदेश।
3: ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलवाकर जमीन विवादों पर विराम लगा रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश में सुशासन स्थापित करती स्वामित्व योजना को प्रभावी गति दे रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव।
4: जिसका मकान गांव में बना है उसको भी स्वामित्व का वही अधिकार है जो नगर वाले को है। ये बराबरी का अधिकार अगर मिला है तो माननीय मोदी जी के माध्यम से मिला।
3: प्रदेश में 68.11 लाख अधिकार अभिलेख तैयार हो चुके हैं जिनमें 48.32 लाख निजी स्वत्व अभिलेख शामिल है। इन संपत्तियों का लगभग 3800 करोड़ रुपए का पंजीयन शुल्क भी राज्य सरकार वहन करेगी। निःशुल्क पंजीयन की अभिनव पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। ई संपदा पोर्टल से प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी। अब ग्रामीणों की संपत्ति कानूनी पहचान के साथ बैंक ऋण, स्वरोजगार और आर्थिक समृद्धि का मजबूत आधार बनेगी। स्वामित्व से समृद्धि, अधिकार से आत्मनिर्भरता।
5: नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है बाबा महाकाल की राजसी सवारी के इस भव्य आयोजन में। और इस सवारी के पल पल की जानकारी, श्रद्धालुओं का सैलाब, भक्ति, सब कुछ हमने आपको परोसा। और अब ये सवारी धीरे धीरे शनै शनै अपने अंतिम पड़ाव पर है और जो अंतिम संस्कार होते हैं आज की राजसी सवारी के वो सब होने वाले हैं। और ये क्या होने वाले हैं, किस तरह का विधि विधान होगा, किस तरह की पूजा होगी, जो समापन की पूजा है उसके क्या तरीके हैं, ये हमें बताने वाली हैं आयुषी और हम उनसे जानते हैं। आयुषी जी, आप हमें सुन पा रही हैं?
6: बिल्कुल, जय श्री महाकाल, मैं आप सभी को सुन पा रही हूँ और मैं इस वक्त सभा मंडप में ही हूँ। हमारे राजाधिराज पधार चुके हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। हमारी जो नगरी है जिसे प्रतिकल्पा भी कहा जाता है क्योंकि ये हर कल्प में अड़िग और अचल रहती है, हमारी पावन उज्जैनी, उसके राजाधिराज महाराज शंकर आ चुके हैं, पधार चुके हैं और जो भी अंतिम संस्कार की शयन आरती की तरफ अब हम नहीं वाले हैं वो प्रक्रिया शुरू हो ही चुकी है। और हमारे जो बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं और अभी भी बाबा के दर्शन पाने के लिए आते हैं, उनमें से एक श्रद्धालु अभी मेरे साथ है और वो हमारे साथ जुड़ना चाहती है।
7: जी जरूर, बात कराइए।
6: जय श्री महाकाल। बात कर रही हूँ, आज बाबा की छठी और राजसी सवारी थी, इसके लिए शहर में काफी उत्साह था, भीड़ भी बहुत थी, पर हमारा पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेटिव सब लोग बहुत अच्छे से भीड़ बनी संभाली, सबको अच्छे दर्शन हुए। सबका यही एम रहता है कि कैसे ना कैसे करके बस एक बार बाबा के दर्शन पा लें।
7: इसलिए
6: पान सवारी के बाद तो भादो की जो सवारी होती है, छठी सवारी, इसको राजसी सवारी के तौर पर मनाया जाता है।
7: जी, आप यही उज्जैन की निवासी हैं?
6: जी।
7: अच्छा, तो इस समय आप वहाँ पर मंडप में मौजूद हैं, उत्तर पूजा की क्या विधि चल रही है कुछ आप बता सकें?
6: जी, पालकी जैसे कि प्रवेश कर चुकी है मंदिर में
7: जी।
6: उसके बाद जैसे राखी सवारी, छठी सवारी, तो छह स्वरूप में भगवान जी रहते हैं अलग अलग, मॉलेश्वर, इमाम सिर्फ तांडव स्वरूप, तो एक एक करके सब स्वरूप विराजमान होंगे, उसके बाद पूजन अर्चना शुरू
7: जी। आयुषी जी,
6: जी जी सर,
7: आयुषी जी आप सभा मंडप पे मौजूद हैं और वो मंडप यूं भी हमेशा ही भक्ति भावना से भरे लोगों से परिपूर्ण रहता है, आज वहाँ का जो वेश है, वहाँ का परिवेश है, वहाँ का वातावरण है, किस तरह पाती हैं आप?
6: यहाँ का जो परिवेश है और जो वातावरण है वो अभी भी श्रद्धालुओं के आनंद घोष जारी है और बाबा महाकाल के लिए अभी भी वो उतने ही उत्सुकता और आतुरता के साथ बढ़ते जा रहे हैं उनकी तरफ, उनकी एक झलक पाने के

0: हमारे सभी श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं और मैं अभी भी लंबी कतार में श्रद्धालुओं को जाते हुए देख सकती हूँ। और किसी ने अपना कैमरा पकड़ा हुआ है, किसी ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई बच्चे हमारे साथ हैं जो बाबा दर्शन पाना चाहते हैं। और यहाँ हमारी सारी पूजन की प्रक्रिया है वो भी धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। एक एक करके सारे पद बिठाए जाएंगे और फिर हम धीरे धीरे शयन आरती की ओर।
1: तो आयुषी जो मुख्य पुजारी हैं इस समय बाबा महाकाल के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप के सामने, तो किस तरह से विधि विधान वहाँ चल रहे हैं, क्या आप देख पा रही हैं? जैसे शुरुआत में जब सभा मंडपम से बाबा की सवारी शुरू हुई थी उस समय मुख्य पुजारी ने उनकी पूजा की थी, तो अब ये जो समापन वाली पूजा है ये किस तरह से हो रही है? अगर आपको किसी ने बताया हो, आपने किसी से पूछा हो, या आप देख पा रहे हैं वहाँ आमने सामने?
0: श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा हुआ है अभी भी कि मैं थोड़ा सा वहाँ से दूर हूँ, इसीलिए आपसे बातचीत अभी कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे अभी भी जय जयकार का उद्घोष जारी है और सवारी को पूरी तरह से सबने श्रद्धालुओं ने किया हुआ है। और मैं दूर हूँ इसलिए आपको पूरी तरह पुजारी जी जो कर रहे हैं वो तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं उसी की तरफ और अग्रसर हूँ, आगे बढ़ती ही जा रही हूँ। जैसे ही मुझे दृश्य दिखेंगे मैं बिल्कुल आपको फिर से आपको पूछने की कोशिश करूँगी।
2: जी आयुषी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और अब मयंक शुक्ल जी हमसे जुड़ रहे हैं।
1: मयंक जी, अभी आप कहाँ पर हैं? अब तो बाबा महाकाल की सवारी जो है सभा मंडपम में प्रवेश कर चुकी है और जो समापन की श्रृंगार या कहें आरती या विधि विधान या मंत्रोच्चार वो क्या अभी संपन्न हो रहे हैं?
3: देखिए श्रोताओं को हम बताना चाहते हैं कि जो आस्था का उत्सव आज पूरी उज्जैनी ने मनाया, जो परंपरा का प्रवाह हुआ वो।
1: मयंक जी आपकी आवाज हम तक कम आ रही है, थोड़ा आवाज को और बढ़ाइए।
3: मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि इस समय जो आज आस्था और उत्सव उज्जैनी ने मनाया वो अपने पूर्णाहुति की ओर है। और जैसा कि आपने कहा, सभा मंडपम में सवारी पहुंच गई है, एक एक करके मुखारविंद भी लाए जा रहे हैं। इस समय मैं सभा मंडपम के दूसरे छोर पे, कोटी तीर्थ के दूसरे छोर पर खड़ा हूँ और इतना सुंदर दृश्य है, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि एक और मुझे महाकाल का शिखर नजर आ रहा है जहाँ बहुत सुंदर भगवा ध्वज पताका लहरा रही है, मानो एक संदेश दे रही हो कि भगवान स्वयं अपने भक्तों का हाल जानने के निकले थे और मंदिर से निकलकर नगर भ्रमण पर गए थे आज, और ये सवारी पूरी नियत मार्ग से होते हुए पुनः सभा मंडपम में पहुंच चुकी है। जो कुछ श्रद्धालु मुझे नजर आ रहे हैं, कोटी तीर्थ का ये किनारा है और दूसरे छोर पर मैं खड़ा हूँ और मुझे सीधे मेरे सामने सभा मंडपम दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हर कोई पुनः लालायित है कि एक बार एक साथ जो मुखारविंद लाकर यहाँ स्थापित किए जाएंगे उनका सब एक साथ दर्शन कर सके। मेरी नजरें कोटेश्वर महादेव की ओर भी जा रही है। कोटेश्वर महादेव वो है जब महाशिवरात्रि का उत्सव बनता है, शिवरात्रि का उत्सव बनता है, सबसे पहले जो दूल्हा बनते हैं वो कोटेश्वर महादेव।
2: जी जी,
3: हनुमान जी की प्रतिमा है, बहुत सुंदर फव्वारे यहाँ पर कोटी पर चल रहे हैं।
2: जी मयंक जी, अभी आज मयंक जी आज हमारे इस पूरे प्रसारण को जो सुन रहे हैं उन्होंने कई बार इस बात को सुना है कि छह मुखौटे इस यात्रा में शामिल रहे हैं और इन मुखौटों के बीच उन्हें एक ये प्रश्न लगातार होता है कि चतुर्वेदी जी कि क्या वो मुखौटे सभा मंडपम में एक साथ रखे जाएंगे और उन सभी स्वरूपों का दर्शन वहाँ पर जो उपस्थित श्रद्धालु हैं, हालांकि ज्यादा श्रद्धालु नहीं होंगे लेकिन उन श्रद्धालुओं को क्या एक साथ उन मुखौटों का दर्शन हो सकेगा, ये प्रश्न हम जरूर हमारे जो वहाँ पर जो हमारे प्रतिनिधि होंगे उनसे हम पूछना चाहेंगे। आयुषी जी हमसे जुड़ गई है। आयुषी जी मैं हेलो
0: लाइव कनेक्ट करवा रही
1: हूँ। आयुषी जी जो है किसी से बात करवाना चाहती है और वो उनसे मोबाइल के माध्यम से हमसे।
2: आयुषी जी बोले, हम आपको सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जय श्री महाकाल।
2: जय श्री महाकाल।
0: यहाँ के जो पुजारी जी हैं ये आपसे।
2: जी जय श्री महाकाल।
1: आयुषी हमें पुजारी जी से बात करवा रही हैं जो पुलिस सवारी मार्ग में चंद्रमौलेश्वर जी रहे हैं उनका कैसे।
2: जय श्री महाकाल। पुजारी जी एक प्रश्न यहाँ पर उपस्थित हुआ है कि सवारी मार्ग पर जो छह मुखारविंद विग्रह चलते हैं क्या सभ मंडप में सभी के एक साथ दर्शन यहाँ पर वहाँ जो उपस्थित है उन्हें होंगे?
4: ये भगवान महाकाल की जो सवारी साहू सवारी है
2: जी,
4: साहू सवारी जो है ये अभी अब आ रही है, अब एक एक करके आ रही है यहाँ पर मंदिर प्रांगण सभा मंडप में। अभी भगवान पहुँचे नहीं है पूर्ण रूप से
2: जी,
4: भगवान अभी दो ही भगवान आए हैं
1: जी। तो मुझे लगता है कि जो छह जो अलग अलग सवारियों में निकले थे मुखौटे, वो सब जब एक साथ आ जाएंगे तो ये संपूर्ण माना जाएगा कि महाकाल मंदिर में उनकी पूरी वापसी हो गई है।
4: अभी सारी पहुंची नहीं है सवारियां, अभी सवारियां पहुंच जाएंगी तो आपको
2: लाइव फोटो मिल जाएगी जी। बस एक प्रश्न का उत्तर हम और आपसे चाहेंगे कि क्या विधि होती है, किस तरह से ये पूजा सम्पन्न होती है, किस क्या विधि से पूजा होती? हेलो,
1: लगता है पुजारी जी हमें ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। जी जी बिल्कुल,
2: बहुत बहुत धन्यवाद,
1: हम आपसे फिर जुड़ेंगे। विद्याधर जी ये जो पूरी पूरा ये प्रोसेशन है, ये जो पूरा संचालन है
2: जी,
1: ये उत्सव तो है ही, ये उमंग तो है ही, उत्साह तो है, ये कहीं ना कहीं हमारी आर्थिकी को भी बढ़ाने में मददगार होता है।
5: अवश्य, क्यों नहीं। और जब भी कोई एक स्थान पर अगर हमारे घर में भी एक प्रसंग होता है तो हम हमारे घर से कितने सारे लोगों तक अर्थ जाता है और वो उतने परिवारों तक जाता है, और जब जहाँ पर लाखों लोगों का समागम होता है तो निश्चित ही वहाँ पर अर्थतंत्र भी सक्रिय होता है और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है। इस बारे में लोग बहुत आमतौर पर ये मान के चलते हैं कि ये एक धार्मिक उपक्रम है, लेकिन इसके साथ अर्थतंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है।
1: बिल्कुल, हमें याद आ रहा है जो प्रयागराज में कुंभ हुआ था तो उसके बारे में जो आंकड़े जारी किए गए थे वो कहते हैं कि लगभग 3,000 करोड़ का वहां पर व्यापार व्यवसाय या कहें कि अर्थतंत्र का पहिया घूमा। तो मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन आप में उत्साह का भाव तो भरते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके व्यापार व्यवसाय को, आपके अर्थतंत्र को भी कहीं ना कहीं मजबूत करते हैं।
5: बिल्कुल, और देखिए ऐसे समय में जो अर्थबुद्धि वाले होते हैं, व्यापारिक बुद्धि वाले होते हैं, वो नवाचार करके एक अर्थ कमाने का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं, और उसमें चूंकि अर्थशास्त्र हमारे शास्त्रों में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है तो इसलिए अगर इसे कोई नकारात्मक दृष्टि से देखता है तो हमें लगता है कि ये सही नहीं है। जिस देश का अर्थतंत्र मजबूत है, जिस व्यवस्था के अर्थतंत्र मजबूत होता है, वो व्यवस्था हमेशा ही सुखी समृद्ध रहती
1: है। देखिए ये खूबसूरती है इस तरह के उत्सवों की कि आप उत्सव में भाग ले रहे हैं, आप श्रद्धा भक्ति भी कर रहे हैं, आप समर्पण भी है, रोमांच भी है
5: जी,
1: और फायदा भी है, कारोबार भी है
5: जी। भारत को सोने की चिड़िया कहा है, वो ऐसा तो नहीं है कि वो सोना जमीन से उत्खनन करके आया हो, ये व्यापार के माध्यम से ही होता है। और ऐसे समागम में जहाँ लाखों लोग, मैं पुनः दोहराता हूँ उस बात को, जहाँ लाखों लोग आते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरह भी अपना जीवन यापन करते हैं।
1: बिल्कुल विद्याधर जी, और जब इस तरह के आयोजन होते हैं भगवान शिव की कृपा होती है तो हमें उनकी महत्ता में, उनके समर्पण के भाव में हमें कुछ श्लोक भी याद आते हैं, लेकिन उसके पहले
6: अखिलेश
1: जी से जुड़ गए हैं, अखिलेश जी से बात करना चाहते हैं। अखिलेश जी आप कहाँ हैं इस समय और आप क्या वर्णन हमें सुनाना चाहते हैं?
6: देखिए हम अभी सभा मंडपम में हैं और यहाँ पर मुखारविंदों को अंदर लाने का क्रम चल रहा है, और ये क्रम जो मुखारविंदों को लेकर आते हैं कोठार गृह में रखते हैं वो पालकी प्रमुख है, हमारे साथ पालकी प्रमुख है, उनसे हम जानेंगे अब तक कितने जो मुखौटे अंदर आ चुके हैं और इस संपूर्ण सवारी में उनकी क्या भूमिका रहती है। अगली आवाज आप सुनेंगे हमारे पालकी प्रमुख की
2: जी। जय श्री महाकाल।
7: जय श्री महाकाल। परम गाऊंगा अकाल मृत्यु हो मरे जो कर्म करे संडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त महाकाल का। मैं सभी नगरवासियों को जो भगवान महाकालेश्वर की

0: काट से सवारी देखना है, सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि बाबा की पालकी आप लोग तो निहान है और भगवान महाकाल के आशीर्वाद से आप लोगों को भगवान महाकाल ने ही बुलाया। जो जनता थी वो लोग जो भगवान के दर्शन करने उनकी मर्जी वगैरह कोई नहीं आता
1: जी जी। और यहाँ पर आपकी बात में एक बात और जोड़ दूं, न केवल नगरवासी बल्कि प्रदेश देश और विदेशों तक हमारा प्रसारण जा रहा है और लोग आपको सुन रहे हैं।
0: जी जी जी सर, देश और विदेश तक भगवान महाकालेश्वर की आज्ञा से लोग आते हैं
1: जी।
0: उनकी मर्जी वगैरह पत्थर भी नहीं मिलता है
1: जी।
0: तो उनके दर्शन के लालसा के लिए लोग उज्जैन तक भगवान महाकाल के दर्शन करने आते हैं
1: जी।
2: अखिलेश जी आप हमें सुन पा रहे हैं? अखिलेश जी
3: अभी तक चंदेल जी बताइए कितने मुखौटे अंदर आ चुके हैं?
0: अभी तक अपने घटाटोप जी हो गए हैं, शिव तांडव जी हो गए, उमा महेश जी हो गए, चार मुखौटे आ चुके हैं। मन महेश जी आ रहे हैं ऊपर से, भगवान गजराज के ऊपर से मन महेश जी का आगमन चल रहा है। हमारी एक टीम गई है, 500 की टीम होती है, प्रमुख लोगों की भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर की ओर से 500 ही सहारों की टीम बनाई जाती है। तो बड़े सौभाग्य की बात है, कहारों में तो भगवान ने अपना भार दे रखा है, जबकि हमारे लिए बहुत गर्व की और सौभाग्य की बात है कि अब कहार देश विदेश तक पहचाने जाते हैं। ये सिर्फ भगवान महाकालेश्वर की कृपा से हम लोग कहार देश और विदेश तक भगवान के भार के रूप में पहचाने जाते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अखिलेश जी,
0: हेलो,
2: अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ और बताना चाहते हैं? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विद्याधर जी, ये हम जो बात कर रहे थे कि इस तरह के उत्सव, इस तरह के आयोजन
1: जी
2: बहुत खुशियां देते हैं हमें, हमें भक्तिभाव, हमें भक्तिभाव तो देते ही है, साथ में हमें आर्थिक रूप से भी हमें मजबूत करते हैं। और जब ये सारे भाव एक साथ पैदा होते हैं तो ऐसे में हमें एक भक्ति हमारे अंदर भी पैदा होती है और उनके श्री चरणों में भगवान शिव के हम ये समर्पण करना चाहते हैं
1: जी।
2: नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिराकाशमाकाश वासम भजे हम। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन मौलि कल्लोलिनि चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा।
1: अर्थात हे ईशान, मैं मुक्ति स्वरूप समर्थ सर्वव्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप निज स्वरूप में स्थित निर्गुण निर्विकल्प निरीह अनंत ज्ञानमय और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को प्रणाम करता हूँ, जो निराकार हैं, ओंकार स्वरूप आदि कारण हैं, तुरीय है, वाणी बुद्धि और इंद्रियों के पथ से परे हैं, कैलाशनाथ हैं, विकराल और महाकाल से भी काल, कृपाल गुणों के आगार और संसार के तारने वाले हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, जो हिमालय के समान श्वेत वर्ण गंभीर और करोड़ों कामदेवों के समान कांतिमय शरीर वाले हैं, जिनके मस्तक पर मनोहर गंगा जी लहरा रही हैं, भाल देश में बाल चंद्रमा सुशोभित होते हैं और गले में सर्पों की माला शोभा देती है।
2: चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नानम नील कंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलम शूलपाणिम भजे हम भवानी पतिम भाव गम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा संजनान दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी।
1: जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, जिनके नेत्र और भ्रुकुटी सुंदर और विशाल हैं, जिनका मुख प्रसन्न और कंठ नील है, जो बड़े ही दयालु हुए, जो बाघ के चर्म का वस्त्र और मुंडों की माला पहनते हैं, उन सर्वाधीश्वर प्रियतम शिव का मैं भजन करता हूं, जो प्रचंड सर्वश्रेष्ठ प्रगल्भ परमेश्वर पूर्ण अजन्मा कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान, त्रिभुवन के शूल नाशक और हाथों में त्रिशूल धारण करने वाले हैं। उन भावगम्य भवानी पति का मैं भजन करता हूं। हे प्रभु, आप कला रहित कल्याणकारी और कल्प का अंत करने वाले हैं। आप सर्वदा सत्पुरुषों को आनंद देते हैं। आपने त्रिपुरासुर का नाश किया था। आप नो मोहनाशक ज्ञानानंद परमेश्वर हैं, कामदेव के शत्रु हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो, प्रसन्न हो।
2: ना यावद उमानाथ पादारविंदम भजमतीह लोके परे वा नराणाम, ना तावत सुखम शांति संताप नाशम, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। ना जानामि योगम जपम नैव पूजाम, नतो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। जरा जन्म दुखौ तातप्यमानम, प्रभो पाहि आपन्न मामीश शंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति।
1: मनुष्य जब तक उमाकांत महादेव जी के चरणारविंदों का भजन नहीं करते, उन्हें इहलोक या परलोक में कभी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती, न उनका संताप ही दूर होता है। हे समस्त भूतों के निवास स्थान भगवान शिव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, हे शंभो, हे ईश, मैं योग जप और पूजा कुछ नहीं जानता। हे शंभो, मैं सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ। जरा जन्म दुख समूह से संतप्त होते हुए भी मुझ दुखी की दुख से आप रक्षा कीजिए। जो मनुष्य भगवान शंकर की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहे इस रुद्राष्टक का भक्तिपूर्वक पाठ करते हैं, उन पर शंकर जी प्रसन्न होते हैं।
2: जय श्री महाकाल।
1: जय श्री महाकाल।
2: विद्याधर जी, अब जो अंतिम पूजा अर्चना है
1: जी,
2: भगवान शिव की चंद्रमौलेश्वर के रूप में, उसका विधि विधान शुरू किया जा रहा है
1: जी।
2: और इसमें किस तरह के विधान होते हैं, कौन सी आरती होती है, कैसा पूजा अर्चन होता है, ये सारी चीजें अब संपन्न होने वाली
1: है जी। और ये जो हमारा मैराथन प्रसारण है, ये भी अपने अंतिम चरण की तरफ आया है। और 2 बजे से हमारा प्रसारण आरंभ हुआ और ऐसा लगा जैसे क्षण मात्र में ही हम इस स्थान पर पहुंच गए हैं कि अब हमारा प्रसारण आखिरी छोर पर है। और महाकाल की राजसी सवारी, ये तो जैसे प्रभु और प्रजा का मिलन का प्रसंग बन गया है। मैं पुनः दोहराता हूं कि भगवान महाकाल भगवान है, सृष्टि नियंता है, राजा धीराज है, अवंती नरेश है, काशी नरेश है, कैलाशवासी है, हर जीव उनके चरणों में नत रहता है, लेकिन वो राजा धीराज प्रजा के द्वार पर जाते हैं। ये कितना अद्भुत चित्र है
2: जी।
1: प्रशासन के लिए सिंहस्थ के पूर्व एक तरह से ड्रेस रिहर्सल जैसा ये प्रसंग है।
2: और विद्याधर जी, हमने बहुत शुरुआत में कहा था, देखिए कोई भी राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए जाता है तो ये लोकतंत्र की नींव की तरह है। जैसा कि आज का हमारा आधुनिक लोकतंत्र है कि हमारी सरकारें, हमारे जनप्रतिनिधि जनता जन कल्याण के लिए योजनाएं लाते हैं, उनके दुख दर्द के बारे में सोचते हैं, तो ठीक उसी तरह राजाधिराज बाबा महाकाल राजा के रूप में जनता का यानी कि अपनी प्रजा का, उज्जैन नगर के निवासियों का हालचाल जानने के लिए बाहर आते हैं।
1: और इस प्रसारण के आरंभ में मैंने यही बात कही थी कि यहाँ धर्मतंत्र भी है, राजतंत्र भी है और प्रजातंत्र भी है।
2: बहुत सुंदर।
1: ये तीनों का मिलन हमें यहाँ राजसी सवारी में देखने को मिलता है
2: जी। श्री महाकालेश्वर पृथ्वी लोक के अधिपति अर्थात राजा हैं
1: जी।
2: देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जिनकी प्रतिष्ठा पूरी पृथ्वी के राजा और मृत्यु के देवता यानी महामृत्युंजय के रूप में भी की गई है।
1: बिल्कुल सर।
2: महाकाल का अर्थ समय और मृत्यु के देवता दोनों रूपों में किया जाता है। काल गणना में शंकु यंत्र बहुत महत्वपूर्ण है और यह मान्यता है कि पृथ्वी के केंद्र उज्जैन में इसी शंकु यंत्र पर महाकालेश्वर का महालिंग स्थित है, यहीं से पूरी पृथ्वी की काल गणना होती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जितने भी ज्योतिर्लिंग है वहां पर इस समय सभी श्रावण मास में भक्त जन वहां पर एकत्र होते हैं और हमारे प्रतिनिधि मयंक शुक्ल सभा मंडपम से हमसे कुछ कहना चाहते हैं। मयंक जी अभी हमसे जुड़े नहीं हैं।
2: हम
1: नमस्कार मयंक जी।
4: नमस्कार, जय श्री महाकाल।
1: जय श्री महाकाल। मयंक जी अपनी बात कहें।
4: जी, जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि हमारा मैराथन जो ये सजीव प्रसारण है वो अपने अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हो रहा है और एक एक करके मुखारविंद पहुंचते जा रहे हैं और इस समय अभी अभी हमने जो देखा, हम हमारे श्रोताओं को बता दें कि जो ये सवारी की संपन्नता की जो पूजन अर्चना होने वाली है उसके लिए एक विशेष दीपक और नैवेद्य ले जाया गया है। पुजारी और पुरोहितों की जो मंडली है उनके द्वारा एक एक करके मुखारविंद पहुंच रहे हैं। हाथी पर सवार जो मुखारविंद थे उन्हें भी अब सभा मंडपम की ओर ले जाया गया, अभी अभी हमने आंखों से देखा। और अब धीरे धीरे ये पूर्णाहुति जो उत्सव की गंगा आज बही थी और जितने भी अखिल विश्व से श्रद्धालुओं ने, श्रोताओं ने इस सजीव प्रसारण का आनंद लिया, उन्हें हम कहना चाहते हैं कि भले आप प्रत्यक्ष रूप से उज्जैन न आ सके हो लेकिन शिव शंभू भोलेनाथ नीलकंठ कहे या रुद्र है जो विश्वनाथ भी है और पशुपतिनाथ भी है, एक बेहद सुंदर प्रसंग हम हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि अभी जैसे संपन्नता की पूजन अर्चना का दौर शुरू हो चुका है, सभा मंडपम में प्रशासनिक अधिकारी भी है और इसी के साथ पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारी और श्रद्धालुओं के साथ हम देख पा रहे हैं कुछ पशु भी है, यानी कुछ श्वान भी है जो परिसर में ही रहते हैं और देखिए उनमें भी जीव है और उस जीव की भी अपने परमात्मा के प्रति जो भावना है वो दिखाई पड़ रही है कि किस प्रकार से शांत चित्त से यहाँ पर दो श्वान सभा मंडपम के सामने बैठे हैं और ईश्वर या परमात्मा की कोई कृपा ही समझ के वो पशुपतिनाथ भी तो है, वो शैवकेश्वर भी है, महाकाल है, कालों के ही काल है, समय जिनके अधीन है वो महाकाल, जन्म और मृत्यु के बीच जो यात्रा है उसके साक्षी है महाकाल। और इसी भाव को हमारे शास्त्रों ने कहा है, महाकालम नमस्यामि महाकालस्य दर्शनम। आज हम उसी महाकाल के दर्शन कर रहे हैं जो गर्भगृह से निकलकर प्रायः ये परंपरा रही है, प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि हर भक्त मंदिर के भीतर नहीं पहुंच सकता था, गर्भगृह में पहुंचकर परमात्मा को, परमेश्वर को, भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता था। तो ऐसे में भगवान तो चुकी सबके हैं, इसलिए भगवान मंदिर छोड़कर, अपना गर्भगृह छोड़कर और प्रजा के बीच उनके हाल चाल जानने के लिए पहुंचते हैं, प्रजा के बीच अपनी नगरी के बीच पर जाते थे और हाल चाल जानकर पुनः अपने मंदिर लौट कर आते थे। शिव को समझना है मानो पूरे ब्रह्मांड को समझने का प्रयास करना, क्योंकि वो हिमालय की तरह स्थिर है और गंगा की तरह प्रवाहमान भी है, वो ध्यान भी है और तांडव भी, प्रशांत के वैराग्य है और कैलाश का आनंद भी है, उनकी जटाओं में गंगा है, मस्तक पर चंद्रमा है, गले में कर्म है, हाथ में सिंदूर है और ऐसे ही हमने अलग अलग मुखारविंद के आज दर्शन करे, फिर वो उमा महेश हो। और यहाँ दर्शकों को बता दें, श्रोताओं को बता दें कि सभा मंडपम में आरती का दौर शुरू हो चुका है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं सूचना प्राप्त हो रही है, एक विशेष किस्म का दीपक पुजारी परिवार के सदस्यों के हाथ में है और आज बिजली की आवाज सुनाई पड़ रही है और जो अंतिम पूजन अर्चना का दौर है वो शुरू हो गया है, क्योंकि ये शिव जिनकी पूजन अर्चन चल रही है, श्रोताओं हम आपको बता दें वो देवता नहीं है, केवल देवता नहीं है, शिव एक दर्शन है, एक चेतना है, एक जीवन पद्धति है और शायद इसीलिए शिव के लिए कहा गया है कर चरण कृतम वाक्कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वापराधम, ये महादेव हाथों से, वाणी से, मन से, जान से, अनजाने में हुए सभी अपराधों को क्षमा कर दीजिए, हमारा कल्याण कर दीजिए। और हमारी संस्कृति तो वैसे भी जब जब आरती होती है, जब जब पूजा होती है तो हम तो जय घोष करते हैं, धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण, शिव का अर्थ तो वैसे भी कल्याण है, यजुर्वेद में उल्लेखित है, सर्वे मना
5: देव संकल्प मस्तु तो वो देव जो कल्याणकारी है आशुतोष है बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले और इसलिए अब तुम्हें प्रेम से कह रहे हैं कि बाबा महाकाल हमारी मनोकामनाएं
6: पूरी करें। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस जानकारी के लिए और हम अपने श्रोताओं को कुछ क्षण के लिए उस आरती की ध्वनि के बीच छोड़ना चाहेंगे। धन्यवाद।
2: विद्याधर जी, ये अद्भुत वर्णन हम बाबा महाकाल के इस आरती को सुन रहे थे, उनका जो सवारी थी उसके जो अंतिम परिणति है उसको सुन रहे थे और विचारों के माध्यम से जो दृश्य चित्र उपस्थित हो रहा था उसका अनुभव हम कर रहे थे।
1: बिल्कुल, और जैसे हमारे जो 10 प्रतिनिधि इस पूरे यात्रा मार्ग थे मौजूद थे और उन्होंने जैसा वर्णन किया उसमें युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। अभी भारत का जनमानस अपनी जड़ों को लौटने को तैयार है। अब देखिए, दूर से कलश में कांवड़ में जल भरकर दौड़ता हुआ युवा, या फिर किसी भी संकट के समय में मदद करने के लिए तत्पर युवा, या सवारी मार्ग पर कोई किशोर आंखों में थोड़े से आंसू भरे अपलक निहारता हुआ किशोर है, ये सब हमारी जड़ों की तरफ, हमारे जो मूल्यों की तरफ लौटने का संकेत है और ये बहुत सुखद संकेत है।
2: बिल्कुल विद्याधर जी, देखिए परंपराओं का निर्वाह करना, हमारे धर्म भक्ति में लीन होना, ये हमें कभी नहीं सिखाता कि हम क्या आधुनिक प्रौद्योगिकी नहीं सीखेंगे, क्या हम आधुनिक नहीं बनेंगे। बनेंगे हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीखेंगे, लेकिन हम अपनी जड़ों से कटेंगे नहीं, हम उनका पालन करेंगे
1: जी।
2: हम उसको विश्व कल्याण की भावना के रूप में आगे ले जाएंगे।
1: और आपने जहां तक आधुनिक बात की, विज्ञान की बात की, बाबा महाकालेश्वर का मंदिर वो स्थान है जहां से कर्क रेखा गुजरती थी।
2: बिल्कुल, जहां से काल गणना होती थी
1: और ये ज्योतिर्लिंग, ये बाबा महाकालेश्वर का मंदिर एकमात्र दक्षिण मुखी मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंगों के बीच में, तो इसकी भी एक अपनी एक अलग मान्यता है। अखिलेश बाथम हम से जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी नमस्कार, जय महाकाल।
7: जी जय महाकाल। जैसा कि हमारे साथी मयूर जो शुक्ला ने भी बताया कि यहाँ पर आरती हो रही थी, अब जो आरती समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभा मंडपम में जिस प्रकार से धीरे हुए सारे मुखर बिंदु निकाले गए थे और वो सभी रथों पर महेश मसाजन का हाथी पर गया था और जो पालकी पे विराजित थे महाकाल का प्रतीकात्मक मुखर बिंद, वो सभी उनके पूजा अंतर्गत सुबह जो देख रहा हूँ सामने एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है, विधि अपनाई जा रही है। एक भगवान सर पर बहुत बड़ा पर्दा है और जो भक्तों की भगवान और भक्त भी सब पर्दा लगा दिया गया है और उसके पीछे जो पुजारी गण है, जो जो पूजन करने वाले मुख्य पुजारी है, अब उन्होंने उनको गुप्त रूप से कर लिया है और अब वो सारे मुकाबले धीरे धीरे उस कोठार गृह में पहुंचाए जा रहे हैं जिन कोठार गृहों से ये निकल कर आए थे और इस कोठार गृह को प्रशासनिक अधिकारी और जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनकी सामने खड़े होकर लॉक किया जाएगा, सील बंद किया जाएगा और अब ये सिर्फ कार्तिक मास में जब सवारी निकलेगी तो उसी प्रक्रिया को पुनः निकाला जाएगा। प्रशासन की तरफ से अब धीरे धीरे जो भक्त अभी के अंदर थे, कुछ पुजारी परिवार के लोग थे, उन सभी को धीरे धीरे अब बाहर निकाला जा रहा है। ये संकेत दिया जा रहा है कि अब सारी जो विधि है वो सम्पन्नता की ओर है, उसी क्षणों में सारे मुखर्जी अब कोठार गृह में पहुंच जाएंगे।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी।
2: जी, तो विद्याधर जी, विद्याधर जी, ये जो पूरा सवारी मार्ग था ये अब पहले से काफी चौड़ा हो गया है। पहले संकरा रास्ता हुआ करता था किसी समय, लेकिन मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना के अनुसार और विकास का एक मिशन उन्होंने शुरू किया है, ये मार्ग अब काफी चौड़ा हो गया है
1: जी।
2: तो अपेक्षाकृत अब सवारी मार्ग में ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं।
1: और आपने संख्या की बात की और हम भी सदैव आकाशवाणी इसका प्रसारण करता रहा है और चूंकि ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं तो हमने अपने भी समय बढ़ा दिया और 8 घंटे का मैं फिर कहूंगा कि मैराथन हमने यहां पर प्रसारण किया है। और एक तरह से कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति पूजा करता है तो पूजा संपन्न होने के बाद एक क्षमा प्रार्थना ईश्वर से करता है जिसमें कहा जाता है कि आवानम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर, अर्थात वो परमेश्वर से क्षमा मांगता है कि अगर इस पूजा में हमसे कोई क्षति हुई है, हमसे कोई भूल हुई है तो वो हमें क्षमा करें। इसी तरह इस प्रसारण में भी हमने अपने प्रयत्नों से आप तक आंखों देखा हाल पहुंचाने का पूरा प्रयत्न किया है और हम तक जितना फीडबैक आ रहा है उससे ये जाहिर होता है कि हमारे श्रोताओं ने इस प्रसारण का वैसे ही आनंद लिया जैसे वो स्थल पर रहकर आनंद ले सकते हैं। तो आज हम अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि हम इस प्रसारण को आप तक पहुंचाने का माध्यम बन सके।
2: बिल्कुल, और विजयधर जी देखिए इस तरह के प्रसारण बहुत मायने रखते हैं क्योंकि लाखों लोगों ने एक साथ इस सवारी मार्ग के पल पल का आनंद लिया है, लेकिन सारे लोग एक साथ उज्जैन नहीं आ सकते हैं, ये संभव भी नहीं है
1: जी।
2: तो आकाशवाणी वो माध्यम है जिन्होंने इस अद्भुत इस अलौकिक इस दृश्य को लोगों तक पहुंचाया और लोगों को आनंदित किया
1: जी। आकाशवाणी का जो ध्येय वाक्य है सूचना शिक्षा और मनोरंजन और सर्वजन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो हम इन्हीं जो हमारे बीज मंत्रों का प्रयोग करते हुए हमेशा ये प्रयत्न करते हैं कि ऐसे ही प्रसारण सामने लाएं और अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता और अपने देश की ख्याति को चहुं और सकल विश्व में पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे।
2: बेशक, और देखिए महाकाल एक ऐसे देवता है, ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो शिवत्व का भाव पैदा करते हैं और शिवत्व का भाव ना केवल हमारी दिनचर्या को ठीक करता है, हमारे सोचने के तौर तरीकों को ठीक करता है
1: जी।
2: हमें प्रगतिशील बनाता है, हमें मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है, ये शिवत्व है, ये शिव।
1: बिल्कुल, और जो इस पूरी पृथ्वी में जो अशिव है वो शिवमय हो जाए, इस कामना के साथ मैं इस प्रसारण से विदा लेता हूँ। और हमारे साथ अब जुड़ रही हैं, आप उनका परिचय कराएं और मैं अपने श्रोताओं को धन्यवाद कहता हूँ। नमस्कार,
2: जय श्री महाकाल। श्रोताओं हम बता दें कि इस संपूर्ण आयोजन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है आकाशवाणी उज्जैन की हमारी कार्यक्रम प्रमुख अनामिका चक्रवर्ती ने। उन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, इस कार्यक्रम में किस तरह से लोगों की सहभागिता हो इसको सुनिश्चित किया, और वो सारी बातें जो शायद आप यहाँ आके देख पाते वो शब्दों के माध्यम से शब्द चित्रों के माध्यम से आप तक पहुँचाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। तो अनामिका जी का हम आकाशवाणी में स्वागत करते हैं और आपसे वो क्या कहना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं।
8: जय श्री महाकाल। आकाशवाणी उज्जैन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, और अपने श्रोताओं को हम ये बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2 बजे से रात्रि के 10 बजे तक जो हमारी ये राजकीय सवारी का विशेष 8 घंटे का सजीव प्रसारण किया जा रहा है, ये विशेष प्रस्तुति के माध्यम से देश दुनिया के लाखों श्रोताओं तक राजाधिराज भगवान महाकाल की दिव्य सवारी, धार्मिक परंपराओं श्रद्धालुओं की आस्था और उज्जैन की सांस्कृतिक गरिमा का सजीव अनुभव दिलवाने का प्रयास किया गया हमारे सभी प्रतिनिधियों द्वारा और हमारे साथी ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी जी द्वारा। तो हमें पूरा विश्वास है कि भगवान महाकाल की कृपा से हम इस प्रसारण को एक मील का पत्थर साबित करने का प्रयास किया है हमने, और इस विशेष प्रसारण से देश से लेकर विदेश तक के श्रोताओं को बाबा महाकाल की राजकीय सवारी से सीधे जुड़ने का जो अवसर मिला, तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा हमारा जो उद्देश्य पूरा हुआ है कि हम जो हमारा उद्देश्य था कि उज्जैन की समृद्ध धार्मिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास विरासत को हम जो व्यापक स्तर पर पहुंचाएंगे उसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत रहे, और उसमें हमें अपने सभी अधिकारियों का, सभी प्रशासन का, हमारे सभी लोगों का हमें पूरा सहयोग मिला, और सबसे बड़ा सहयोग आप सभी हमारे सुधी श्रोताओं का मिला। तो चतुर्वेदी जी बहुत अच्छा लगा हमने ये पूरा प्रसारण किस तरह से सजीव प्रसारण को हमने आगे बढ़ाया।
2: बिल्कुल, और देखिए जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो छोटे से छोटा योगदान और बड़े से बड़ा योगदान, योजनाएं, संकल्पना, परिकल्पना, उनका निस्तारण सब मायने रखता है। तो हमारे इंजीनियरिंग साथी इसमें

जुड़े उनका बहुत बड़ा योगदान है, प्रशासन के हमारे साथी जुड़े उनका बहुत योगदान है, और राज्य सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, उनकी वजह से ये आकाशवाणी यहाँ शुरू हुआ। तो उनकी परिकल्पनाओं में बहुत सारे बिंदु हैं जिन्हें हमें आगे ले जाना है, आगे बढ़ाना है।

0: हम बाबा महाकाल को पुनः नमन करते हैं।
1: बिल्कुल, और
0: बोलिए जय श्री महाकाल।
1: जय श्री महाकाल। उनके नमन में, उनकी आराधना में, उनकी स्तुति हम करना चाहेंगे। नमो रुद्राय, नीलाय, भीमाय, परमात्मने, कपर्दिने, सुरेशाय, व्योमकेशाय, वै नमः। वृषभ ध्वजाय, सोमाय, सोमनाथाय, शंभवे, दिगंबराय, भर्गाय, उमाकांताय, वै नमः। तमोमयाय, भव्याय, शिवश्रेष्ठाय, विष्णवे, व्यालप्रियाय, व्यालाय, व्यालांपतये नमः। महीधराय, व्याघ्राय, पशुनाम पतये नमः। प्रांतकाय, सिंहाय, शार्दूलाय, मखाय च।
0: वाह, बहुत अच्छा। रुद्र, नील, भीम और परमात्मा को नमस्कार है। जटाजूटधारी देवताओं के स्वामी और आकाश रूप केश वाले व्योमकेश को नमस्कार है, जो अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने के कारण वृषभ ध्वज है। उमा के साथ विराजमान होने से सोम है, चंद्रमा के भी रक्षक होने से सोमनाथ है। उन भगवान शंभु को नमस्कार है, बारम्बार नमस्कार है। संपूर्ण दिशाओं को वस्त्र रूप में धारण करने के कारण जो दिगंबर कहलाते हैं, भजनीय तेज स्वरूप होने से जिनका नाम भर्ग है, उन उमाकांत को नमस्कार है, जो तपोमय है, भव्य है, शिव श्रेष्ठ है, विष्णु रूप व्याल प्रिय, व्याल तथा सर्पों के स्वामी है, उन भगवान को बारंबार नमस्कार।
1: मीनाय, मीन नाथाय, सिद्धाय, परमेष्ठिने, कामांतकाय, बुद्धाय, बुद्धि नाम पतिये नमः। कपोताय, विशिष्टाय, शिष्टाय, सकलात्मने, वेदाय, वेद जीवाय, वेद गुह्याय, वै नमः। दीर्घाय, दीर्घ रूपाय, दीर्घार्थाय, अविनाशिने, नमो जगत प्रतिष्ठाय, व्योम रूपाय, वै नमः। गजासुर महाकाला, यांधकासुर भेदिने, नीलो हित शुक्लाय, चंड मुंड प्रियाय च।
0: जो नमस्कार, जो मत्स्य स्वरूप है, मत्स्यों के स्वामी है, सिद्ध तथा परमेष्ठी है, जिन्होंने कामदेव का नाश किया, जो ज्ञान स्वरूप और बुद्धि वृत्तियों के स्वामी है, उनको नमस्कार है। जो कपोत, ब्रह्मा जी जिनके पुत्र हैं, विशिष्ट, शिष्ट तथा सर्वात्मा है, उन्हें नमस्कार है। जो वेद स्वरूप, वेद को जीवन देने वाले तथा वेदों में छिपे हुए गूढ़ तत्व है, उनको नमस्कार है। जो दीर्घ, दीर्घ रूप, दीर्घार्थ स्वरूप और अविनाशी है, जिनमें ही संपूर्ण जगत की स्थिति है, उन्हें नमस्कार है। तथा जो सर्वव्यापी व्योम रूप है, उन्हें नमस्कार है। जो गजासुर के महान काल है, जिन्होंने अंधकासुर का विनाश किया है, जो नील, लोहित और शुक्ल स्वरूप है, तथा चंड मुंड नामक पार्षद जिन्हें विशेष प्रिय है, उन भगवान शिव को नमस्कार है, बारम्बार नमस्कार है।
1: भक्ति प्रियाय, देवाय, ज्ञात्रे, ज्ञाना, व्ययाय च, महेशाय, नमस्तुभ्यं, महादेव हराय च, त्रिनेत्राय, त्रिवेदाय, वेदांगाय, नमो नमः, अर्थाय, चार्थ रूपाय, परमार्थाय, वै नमः, विश्वभूपाय, विश्वाय, विश्वनाथाय, वै नमः, शंकराय च, कालाय, काला वयव रूपिणे, अरूपाय, विरूपाय, सूक्ष्म सूक्ष्माय, वै नमः, श्मशान वासिने, भूयो नमस्ते, कृत्तिवास।
0: जिनको भक्ति प्रिय है, जो द्युतिमान देवता है, ज्ञाता और ज्ञान है, जिनके स्वरूप में कभी कोई विकार नहीं होता, जो महेश, महादेव और हर नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको नमस्कार है। जिनके तीन नेत्र हैं, तीनों वेद और वेदांग जिनके स्वरूप है, उन भगवान शंकर को नमस्कार है, नमस्कार है। जो अर्थ, धन, अर्थ रूप काम तथा परमार्थ मोक्ष स्वरूप है, उन भगवान को नमस्कार है। जो

0: रत्नमय वस्त्र धारण करने वाले हैं, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है।
1: ऐसे शिव को नमस्कार है जो गंगा को नीचे लेके आए, ऐसे शिव को नमस्कार है जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर हिमालय में भक्ति की, ऐसे शिव को नमस्कार है जो कल्याणकारी है, ऐसे शिव को नमस्कार है जो जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर संहार कर सकते हैं। तो ये पूरा एक आयोजन बाबा महाकाल की राजाधिराज की राजसी सवारी का समापन यहाँ होता है। हमारे दसों प्रतिनिधि लगातार आप तक उनका आंखों देखा हाल पहुँचाते रहे, और हम बताना चाहेंगे कि हमारे वो नाम जो पूरी महाकाल सवारी के परिक्रमा पथ पर थे, जो महाकाल की राजसी सवारी जहाँ से शुरू होती है महाकाल मंदिर से, सभा मंडपम से, वहाँ से लेकर के,
0: उन सभी को हम धन्यवाद भी कहते हैं और उनका बहुत बहुत अभिनंदन भी करते हैं कि इतने सजीव प्रसारण से उन्होंने एक तरह से जीवंत प्रतिमा स्थापित कर दी कि किस तरह से राजाधिराज महाकाल महाराज की सवारी जो निकली, जो पालकी निकली, जो स्वरूप निकले, उनमें क्या ऐसी विशेषताएं थी कि अद्भुत, और उनका जो एक दिव्य स्वरूप है वो श्रोताओं के दिमाग में, दिलों में उतर गया।
1: नाभिका जी, वो महाकाल की राजसी सवारी है, उसमें पूरे भारत के ही लोग शामिल नहीं होते बल्कि विदेश के भी श्रद्धालु आते हैं, और शायद लोगों को ये यकीन नहीं होगा कि राजसी सवारी में एक बार में उज्जैन की सड़कों पर, परिक्रमा मार्ग पर जो बैरिकेड लगे हुए हैं उनके दोनों तरफ कम से कम 5 से 6 लाख श्रद्धालु रहते हैं, निवासियों के अलावा जो दोनों ओर लगातार बाबा महाकाल के स्वागत के लिए आते हैं। तो ये वो घटना है जो धार्मिक तो है ही, लेकिन धार्मिक के साथ साथ एक आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने वाली घटना है, एक अर्थतंत्र को सुदृढ़ करने वाली घटना है, एक संस्कृति को आगे ले जाने वाली घटना है, एक ऐसी घटना है जो विदेशों में लोगों को कौतूहल पैदा करती है। लोग देखने आते हैं कि इतना बड़ा एक साथ लोगों का जमावड़ा, ये सैलाब यहाँ क्या कर रहा है, किसकी पूजा कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसका क्या प्रतिफल है, वो जानने की चेष्टा, वो उत्सुकता लगातार लोगों में रहती है। और जब से हमारे भारत सरकार की ऐसी नीतियां रही हैं कि धार्मिक पर्यटन बढ़ावा दिया है, तो लोगों में उत्सुकता, ये जागरूकता, ये लगातार बढ़ती जा रही है। लोग क्यों आते हैं, महाकाल लोक बना है, महाकाल लोक को देखने के लिए, महाकाल लोक के बनने के पहले जो संख्या थी उसकी दोगुनी संख्या दर्शनार्थियों की महाकाल मंदिर में हो गई है। तो ये वो परिवर्तन है जो धार्मिक चेतना के साथ हमारी सांस्कृतिक चेतना पे, हमारे अर्थतंत्र को मजबूत करने का काम करती है।
0: बहुत ही अच्छा आपने कहा, और जब आपने ये कहा कि लोग क्या देखने आते हैं और क्या अद्भुत अनुभव करते हैं, तो हमारा एक ही कहना है, जय श्री महाकाल, बोलो जय श्री महाकाल,
2: जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल,
3: महादेव,
2: नमस्कार श्री पते, हर हर महादेव।
4: विकास की मजबूत नींव सड़कों पर टिकी होती है, क्योंकि बेहतर संपर्क ही आर्थिक प्रगति और जन सुविधाओं का आधार बनता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत में आधुनिक और विश्व स्तरीय सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से सड़क अधोसंरचना में अभूतपूर्व विकास हुआ है।
5: 12 साल में मोदी जी के शासनकाल में पानी, बिजली, सड़क अब आधुनिक समय के हिसाब से पूरे देश में सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में से एक बना है।
4: वर्ष 2025-26 में 4,078 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण करने के साथ 48,178 करोड़ रुपए की 73 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन है। इसी तरह 6 लेन मार्ग और उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे प्रदेश की विकास रफ्तार को नई दिशा दे रहा है, जबकि मजरा टोला सड़क योजना के अंतर्गत 30,900 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति दी गयी है।
6: नदियाँ केवल जल की धाराएं नहीं होती, वे सभ्यता, समृद्धि और भविष्य की वाहक होती हैं। देश में जल सुरक्षा, नदी जोड़ों, परियोजनाओं और सिंचाई के विस्तार के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाकर विकसित भारत के निर्माण का दृढ़ संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने।

0: सक्रिय मध्य प्रदेश बहती धाराओं को विकास की नई दिशा देकर आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा का मजबूत आधार तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजनाओं से खेतों, गांवों और शहरों तक पर्याप्त सिंचाई और पीने का पानी पहुंचाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।
1: पार्वती काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के लिए और राजस्थान के लिए दोनों के लिए वरदान साबित होगी।
0: महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के पूरा होने पर प्रदेश में सिंचाई का दायरा वर्ष 2028-29 तक लगभग 55 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
2: नदी जोड़ो अभियान से किसान को सिंचाई का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी से किसान की तरक्की होगा।
0: नदियों को जोड़कर समृद्धि की नई धारा बहा रहा है मध्य प्रदेश।
3: ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलवाकर जमीन विवादों पर विराम लगा रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश में सुशासन स्थापित करती स्वामित्व योजना को प्रभावी गति दे रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव।
4: जिसका मकान गांव में बना है उसको भी स्वामित्व का वही अधिकार है जो नगर वाले को है। ये बराबरी का अधिकार अगर मिला है तो माननीय मोदी जी के माध्यम से मिला।
3: प्रदेश में 68.11 लाख अधिकार अभिलेख तैयार हो चुके हैं जिनमें 48.32 लाख निजी स्वत्व अभिलेख शामिल है। इन संपत्तियों का लगभग 3800 करोड़ रुपए का पंजीयन शुल्क भी राज्य सरकार वहन करेगी। निःशुल्क पंजीयन की अभिनव पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। ई संपदा पोर्टल से प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी। अब ग्रामीणों की संपत्ति कानूनी पहचान के साथ बैंक ऋण, स्वरोजगार और आर्थिक समृद्धि का मजबूत आधार बनेगी। स्वामित्व से समृद्धि, अधिकार से आत्मनिर्भरता।
5: इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग दिया था लोकेश कुमार जाटव, शुभम तिवारी, आनंद उद्दे, दीपक पवार और शरद बोपचे ने। तकनीकी टीम में थे पंकज पंडित, मनीष कुमार मीणा, आनंद पुरंदरे, आशुतोष भगत, मोहनलाल मालवीय, मनोज कुमार नाहर, सुरेशपुरी गोस्वामी, वैभव मंडलोई और नीरज कुलकर्णी। कार्यक्रम टीम में थे सौरभ अवस्थी, अखिलेश बाथम, मुकाम सिंह चौहान, विद्याधर मुले, उदित तिवारी, शैलेंद्र पाराशर, द्वारकाधीश चौधरी, विवेक चौरसिया, पंखुरी वक्त, सुदर्शन आयचित, विजया जैन, गौतम मालवीय, मयंक शुक्ला, कुबेर मेहरा, आयुषी मिश्रा, महिमा चावड़ा, मोहित वर्मा, रश्मि बजाज, नीतू जरिया और यशवंत बागवान। इस संपूर्ण आयोजन का संयोजन किया सुधा शर्मा ने, प्रस्तुतकर्ता थी अनामिका चक्रवर्ती और कार्यक्रम का संपूर्ण निर्देशन किया ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी ने।

सभी श्रोताओं को, सभी सुनने वाले श्रद्धालुओं को आकाशवाणी उज्जैन की ओर से बहुत सारा साधुवाद, बहुत सारा नमस्कार। आप सभी ने इस आयोजन को सुना, बाबा महाकाल की राजसी सवारी का आनंद लिया। इस सबका हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं आकाशवाणी उज्जैन की ओर से। आकाशवाणी उज्जैन इस तरह के आयोजन भविष्य में भी करता रहेगा, जिससे बाबा महाकाल की पूजा का, उनकी परंपराओं का, उनके व्रत त्योहारों का आप तक सजीव प्रसारण हम कर सकें। इतना ही नहीं, वो परंपराएं, वो इतिहास और वो त्योहार, वो सवारियां जो बाबा महाकाल की आयोजित होती हैं, समय समय पर हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपने हमारे कार्यक्रम को धैर्य के साथ सुना, इसका हम बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार आकाशवाणी उज्जैन की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।

0: 102.5 मेगाहर्ट्ज और साथ ही न्यूज ऑन एआईआर के मोबाइल एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बाबा महाकाल की राजसी सवारी का सीधा प्रसारण, आकाशवाणी उज्जैन की प्रस्तुति। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश।
1: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले सुनते हैं सुविचार। सफलता की राह में मुश्किलें तो आएंगी, पर जो इंसान हिम्मत नहीं हारता वही एक दिन अपनी मेहनत से परिस्थितियां बदल देता है। श्रोताओं, इसे हमें भेजा था सुंदरनगर हिसार हरियाणा से मोनिका खरलवा, पंकज, शिवम, नैन्सी, सुरेश खरलवा जी ने। आप सभी को उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने लिखा है, देश हमारा, शान हमारी, तिरंगा है हमारी पहचान। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने। उन्होंने लिखा है, नमस्कार, जब भी अगस्त का महीना आता है हमारा मन आजाद हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले अनेकानेक स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में अनायास ही नतमस्तक हो जाने को लालायित हो जाता है। आपने 10 अगस्त से 14 अगस्त वाले सप्ताह में सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सरीखे महान स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन वृत्तांत उमंग कार्यक्रम में शामिल करके मन को उत्साहित और जोश से भर दिया। समय अनुकूल कार्यक्रम पेश करना उमंग की पुरानी परंपरा है, हम इसके कायल हैं। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद और आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया, करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है, अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की, तो आइए जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? इसका उत्तर है साथियों, सम्राट अशोक मौर्य वंश के सम्राट थे। हमारा अगला प्रश्न था, शहीद बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहां हुआ था? इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। शहीद बालक बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ओडिशा राज्य के ढेंकानाल जिले के नीलकंठपुर गांव में हुआ था। फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है? इसका उत्तर आप सबने अलग अलग ढंग से दिया था, लेकिन मूल उत्तर है, जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें संदेश मिलता है कि हमें अपनी उपयोग की हुई पुरानी वस्तुओं के प्रति भी सम्मान और धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न था, जापान के क्यू शेराता की रेलवे स्टेशन को कब बंद कर दिया, जहां से काना हराड़ा नाम की स्कूली बच्ची ट्रेन लेती थी? इसका उत्तर है साथियों, जापान की स्कूली छात्रा काना हराड़ा रोज क्यू शेराता के स्टेशन से स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी। ये स्टेशन मार्च सन 1918 को तब बंद कर दिया गया जब उस बालिका के स्कूल का अध्ययन पूरा हो गया। और हमारा अंतिम प्रश्न था, सेब की खेती करने वाले श्री सत्यानंद स्टोक्स किस देश के, किस राज्य के निवासी थे? सत्यानंद स्टोक्स संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के फिलाडेल्फिया शहर के निवासी थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, और प्रस्तुत है उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण श्रोता संवाद।
0: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के विशेष संस्करण श्रोता संवाद में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अजीत। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रति माह हम आपके लिए लेकर आते हैं श्रोता संवाद, जिसमें हम करते हैं चर्चा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और एनसीईआरटी के संयुक्त पहलों के बारे में। हमें पता है कि आपकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो चलिए अब आपकी उत्सुकता शांत कर देते हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा शिक्षा में जेंडर समावेशन। तो श्रोताओं, इस क्रम में आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर श्वेता तंवर। तो आपके बारे बता दूं कि आप एनसीईआरटी के जेंडर अध्ययन विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर श्वेता बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो सबसे पहले करते हैं चर्चा की शुरुआत इस प्रश्न के साथ कि जेंडर समावेशन से आपका क्या अर्थ है। दूसरे शब्दों में पूछूंगा, जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या होता है?
3: जी, इससे पहले कि हम जेंडर का अर्थ समझें, हमें लिंग और जेंडर के बीच का मूलभूत अंतर को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। जहां लिंग जैविक विभिन्नताओं से संबंधित है, वहीं जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। जेंडर जैसे कि पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व से जुड़ी विशेषताएं और व्यवहारों को संदर्भित करता है। जैसे किसी विशेष समाज में लड़कों लड़कियों पुरुषों और महिलाओं के दृष्टिकोण भूमिकाओं उत्तरदायित्वों तथा व्यवहार को आकार देता है। जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि समाज में सभी जो लिंग हैं, जैसे कि स्त्री पुरुष या फिर और भी जेंडर आइडेंटिटीज हैं,
0: बालक बालिका हो सकते हैं।
3: हाँ जी। बिल्कुल। और उसके अलावा हमारे ट्रांसजेंडर्स भी हैं। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करती है।
0: तो आज का जो हमारा विषय था वो था जेंडर समावेशन, वो भी शिक्षा में। इसकी व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगी?
3: जी, पहले तो हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की
0: जी।
3: और उसके बाद फिर हम आएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। तो जेंडर इक्वालिटी या फिर जेंडर समावेशन का अर्थ है जितने भी हमारे समाज में स्त्री पुरुष या फिर अलग तरह की जेंडर आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर
0: जी,
3: उन सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए तथा सम्मान मिलना चाहिए
0: जी।
3: और उनको जितने भी हमारे क्षेत्र हैं उन सभी में उनका पार्टिसिपेशन हर तरह से बराबर।

0: यानी उनकी भागीदारी या उनकी प्रतिभागिता बनी रहे।
1: हाँ।
0: आप ये कहना चाहते
1: जी,
0: हैं
1: जरूर।
0: जी, तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने जा रहा है और मुझे आशा है कि हमारे श्रोता भी इस प्रश्न के उत्तर के द्वारा बहुत संतुष्ट होंगे। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में जेंडर समानता को बढ़ावा देने के लिए एनसीईआरटी की क्या भूमिका है?
1: जी अजीत जी, ये प्रश्न अपने आप में ही बहुत महत्व रखता है आज के स्थिति में। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि 6 साल पहले आई थी, आज अपना 6ठा वर्ष पूरा कर चुकी है
0: जी।
1: और इसी के चलते एनसीईआरटी भी इसके सालगिरह को मना रहा है
0: जी।
1: जैसा कि हम देख सकते हैं। और जेंडर इक्वालिटी और समावेशन के जो शिक्षा के मूल आधार हैं
0: जी।
1: उनको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के स्तंभों में रखा गया है
0: जी।
1: ताकि हर वर्ग के छात्रों को समान अवसर मिल सके। और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी हमारे जो बालिकाएं हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं, उन सब में बिना भेदभाव के सुरक्षित तरीके से तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है उसको सुनिश्चित किया जा सके।
0: तो डॉक्टर श्वेता, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, इसके विषय में कुछ और आप कहना चाहेंगी? यानी मेरा कहना है कि क्या इस पर कुछ और विस्तार आप देना चाहेंगी?
1: जी अजीत जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जेंडर इक्वालिटी की बात करती है, बट उससे पहले जरूरी ये है कि जेंडर इक्वालिटी की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी
0: जी।
1: तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी ये जो नीति है 2020 में आई, इन्होंने एक टर्म दिया सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, जिसको भी हम ये भी कह सकते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग,
0: या तो वंचित वर्ग भी कह सकते हैं,
1: वंचित लोग जो हैं। तो इसमें उन्होंने जेंडर आइडेंटिटीज को रखा, जैसे कि महिलाएं और ट्रांसजेंडर। दूसरा उन्होंने रखा सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज, जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिसमें कि एससी एसटी ओबीसी और हमारे माइनॉरिटीज भी आते हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन भी हो सकते हैं, कुछ जो हमारे वर्ग ऐसे भी हैं जो भारत के दूर दराज इलाकों से आते हैं, तो उन तक भी संसाधनों की हमेशा जो है पहुंच नहीं हो सकी है पूरी तरह से। तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन सभी को इंक्लूड करती है अपने उसमें,
0: उन सबको शामिल
1: करती
0: जी,
1: है
0: जी।
1: तो इसमें कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो जितनी भी हमारी बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं, उन सभी को इन वर्गों में देखा जा सकता है। हमारी जो लड़कियां हैं वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के सेक्शन से भी आती हैं, कहीं ना कहीं वो जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज हैं उनमें भी दूर से आती हैं, या दिव्यांगजनों में भी हमारी बहुत सारी लड़कियां होती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी डीजीज की बात जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। अब प्रॉब्लम क्या थी या कंसर्न्स क्या थे, वो ये कि इन सभी के जो स्कूल छोड़ने की दर है हमारी जो लड़कियां हैं,
0: या ड्रॉप
1: आउट रेट्स जिसको हम बोलते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई।
0: किनमें? लड़कों की संख्या में या लड़कियों की?
1: लड़कों के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो लड़कियों की जो ड्रॉप आउट रेट्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है
0: जी।
1: उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उन कारणों पर चर्चा की गई है, उनको इसमें शामिल किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और किस तरह से इन कंसर्न्स को, इन गैप्स को हम भर सके, इन पर काम कर सके, उसके बारे में कुछ प्रावधान और रणनीतियां दी गई हैं।
0: तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, अब हम ये जानना चाहेंगे विशेष करके श्रोताओं की ओर से, मेरा प्रश्न ये होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके लिए प्रावधान क्या क्या है?
1: जी, सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रावधान जो है वो है सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट, जिसे कि हम ये कह सकते हैं
0: सुरक्षित वातावरण,
1: सुरक्षित बुनियादी जो ढांचा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
0: जी,
1: वो सबको मिले।
0: तो आपने बात की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी बुनियादी ढांचे की, तो बुनियादी ढांचे से क्या तात्पर्य है आपका?
1: जी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे स्कूल परिसर या फिर कॉलेजों के परिसर में कई बार क्या होता है, महिलाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं होते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनका जो ड्रॉप आउट रेट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ पाया गया है,
0: महिलाओं का या बच्चियों का भी कह सकते हैं,
1: बच्चियों का
0: जी,
1: लड़कियों का
0: हाँ।
1: और इसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सुरक्षित छात्रावास, हॉस्टल फैसिलिटीज जिसको हम देखते हैं, कई बार ऐसी लड़कियां जो सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से आती हैं
0: जी,
1: उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने घर के आसपास इसको पढ़ें या फिर अपने घर में या स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में जा सके,
0: आवास की सुविधाएं नहीं होती,
1: आवास की सुविधाएं जो है वो नहीं होती हैं। तो इसी तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन्होंने छात्रावास की फैसिलिटीज को अवेलेबल

0: कराया है,
1: यानी उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि ये बच्चे जब पढ़ने आए तो उनके लिए आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध हों,
0: उपलब्ध हो।
1: आप ये कहना चाहती
0: जी
1: हैं?
0: जी
1: जी
0: तो छात्रावास के अलावा अगर हम देखें तो स्वच्छता की सुविधाएं, जैसे कि बेसिक हाइजीन और सैनिटेशन की हम बात करते हैं, एक साफ सुथरा माहौल की हम बात करते हैं,
1: हाँ
0: तो उसका निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम ये भी उठाया जा रहा है कि जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसको हम KGBVs भी कहते हैं, तो उसमें उन लड़कियों को स्कूली शिक्षा पूरी करने में सहायता दी जाती है जो कि सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं, ताकि वो 12वीं तक अपनी शिक्षा को पूरा कर सके और उनको वो सारी सुविधाएं मिल सके। और नीति में ये भी कहा गया है कि जितने भी हमारे KGBVs हैं उनको पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा।
1: जी
0: और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी छात्रवृत्तियां भी हैं जिसे में स्कॉलरशिप हो गई, सो दैट हर लड़की को, हर ट्रांसजेंडर जो हमारा बच्चा है, विद्यार्थी है, उसको समान रूप से शिक्षा दी जाए। छात्रवृत्ति के साथ साथ मुफ्त साइकिल, स्कूटी या फिर वित्तीय प्रोत्साहन भी देने का प्रावधान है।
1: जी
0: और इसके साथ साथ एक बहुत ही जरूरी चीज है जो कि भेदभाव रहित पाठ्यक्रम, ये एक ऐसी बातें जो है इसमें की गई है कि पाठ्य पुस्तक या फिर शिक्षा पद्धति उसमें सभी में जेंडर स्टीरियोटाइप्स और बायस को हटाना चाहिए। तो जो नीति है वो पाठ्य पुस्तक और शिक्षा पद्धतियों में भेदभाव रहित पाठ्यक्रम की बात करती है।
1: डॉक्टर श्वेता, हमने पाठ्यक्रम की बात तो सुनी, भेदभाव रहित पाठ्यक्रम ये क्या होता है, इसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे।
0: जी, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही गहराई वाला प्रश्न है, क्योंकि देखा जाए तो पाठ्यक्रम हम सभी ने सुना है,
1: जी
0: लेकिन आज की जो हमारी स्थिति है, हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की।
1: जी
0: और खाली जेंडर समानता ही नहीं, हम बात करते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आने वाले सभी उन लोगों की,
1: जी
0: जैसे कि हमारे ट्राइबल, जैसे कि हमारे SC/ST,
1: आदिवासी
0: OBC,
1: लोग, जनजातीय
0: माइनॉरिटी,
1: लोग,
0: जनजातीय लोग, है ना? तो इन सभी का जो है समान रूप से रिप्रेजेंटेशन हो, हमारी टेक्स्ट बुक में इनके जीवन को शामिल किया जा सके, इनकी जो स्थिति है उसको दर्शाया जा सके।
1: तो जो मुझे समझ में आया वो कुछ ऐसा है कि जेंडर इक्वेलिटी या जेंडर इश्यूज की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ सिर्फ स्त्री और पुरुष या बच्चे और बच्चियां नहीं होता है,
0: जी
1: इसका अर्थ शायद ये है।
0: नहीं, मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जेंडर का असली मतलब क्या है। जो हम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज में आपने देखा होगा हम स्त्री की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं। बट अभी ये एक पहला कदम जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने लिया है वो ये है कि उन्होंने इस जेंडर आइडेंटिटी के कैटेगरी में ट्रांसजेंडर्स को भी रखा है।
1: जी
0: स्त्री और पुरुष ट्रांसजेंडर्स भी उनके साथ साथ समाज का हिस्सा बन सके।
1: जी
0: जिस तरह से पहले हमारे पाठ्यक्रम में या फिर हमारे सामाजिक ढांचे में स्त्री का काम अलग होता था, पुरुषों का काम अलग होता था, और किताबों में या पाठ्यक्रम में उनको उसी तरह से दर्शाया जाता था, तो इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति
1: जी
0: है
1: जी
0: उन स्टीरियोटाइप्स को, उन बायसेस को तोड़ने की कोशिश करती है।
1: हाँ, कुछ उदाहरण जैसे कि
0: और
1: समाज में मिलते हैं कि जैसे अगर लड़का है तो क्योंकि वो शारीरिक श्रम अधिक कर रहा है
0: जी
1: तो ये माना जाता था कि लड़की का काम है नहीं ज्यादा,
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: उसको आहार की जो सुविधा है ज्यादा मिले, इसको
0: जी
1: कम मिले,
0: जी
1: इस तरह की बातें होती थी पहले।
0: या हाँ
1: जी
0: तो एक स्कूली जो उदाहरण है वो मैं आपको देना चाहूंगी। आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो लड़कियां हैं उनको रंगोली बनाने के लिए बहुत बार प्रोत्साहित किया जाता है या फिर वो उसी में भागीदारी उनकी होती है,
1: जी
0: लेकिन लड़कों की भागीदारी देखी जाए तो कोई भी भारी सामान या भारी वस्तु उठानी होती है तो ज्यादातर जो शिक्षक होते हैं वो लड़कों को ही उस चीज में बुलाते हैं।
1: जी
0: तो कहीं ना कहीं ये जितने भी हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं, ये तो सिर्फ एक उदाहरण जो मैंने आपको दिया है, बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर आपको लड़कों और लड़कियों में एक भेदभाव नजर आता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अपने पाठ्यक्रम के द्वारा, अपनी पाठ्य पुस्तकों के द्वारा इन स्टीरियोटाइप्स को हटाकर समानता की भावना को विकसित करने की दिशा देती है।
1: ये आपने बड़ी उपयोगी बात बताई और इसके द्वारा मुझे लगता है हमारे श्रोता भी बहुत लाभान्वित होंगे।
0: जी
1: तो अब आते हैं एनसीईआरटी पर। हम ये विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि एनसीईआरटी के जेंडर विभाग का, जिस विभाग से आप हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये विद्यालयी शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाने में किस प्रकार से योगदान दे रहा है आपका विभाग?
0: जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज, जेंडर अध्ययन विभाग जो है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका जो नाम था वो था विमेन स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ विमेन स्टडीज,
1: जी
0: बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट

0: ये एक लैंडमार्क जजमेंट के बाद इसका नाम जो है डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज रखा गया
1: जी।
0: इसके पीछे ये कारण रहा कि विमेन स्टडीज जो है उनको हम खाली विमेन तक सीमित ना रखें जो जेंडर का अर्थ था वो सिर्फ विमेन तक सीमित रहता था महिलाओं तक सीमित था लेकिन उसके बाद इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ लड़कियों को हमें आगे बढ़ाना
1: जबकि जेंडर से अर्थ आपका दोनों का होता है
0: जेंडर से अर्थ बिल्कुल सही कहा आपने जेंडर से अर्थ हमारा सभी जो हमारी लड़कियां हैं जो हमारे लड़के हैं और हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं उन सभी को समान रूप से आगे बढ़ाना
1: जी।
0: किसी के साथ भी भेदभाव ना हो और सभी को समानता से आगे बढ़ाया जा सके तो इसके लिए हमारा जो जेंडर अध्ययन विभाग है वो स्कूली शिक्षा में जेंडर इक्वालिटी जेंडर समानता और संवेदनशीलता लाने के लिए एक समर्पित विभाग है और पहले इसे जैसे मैंने आपको बताया था एक महिला अध्ययन विभाग कहा जाता था लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसके दायरे को और बढ़ाया गया है इसमें बालिकाओं के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों और जितने भी हमारे जो सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर समूह है उनको भी शामिल किया गया है
1: तो इसमें आप लोग क्या क्या करते हैं आप लोगों की गतिविधियां क्या हैं
0: जी सबसे पहला हमारा है कि हम नीतिगत क्रियान्वयन की हम बात करते हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसके तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसमें कि दो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं पहला है फाउंडेशनल स्टेज के लिए और दूसरा है स्कूल एजुकेशन के लिए तो इसको हम ये भी कह सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है उसमें जेंडर समानता के जो लक्ष्य हैं उनको जमीनी स्तर पर लागू करना
1: जी।
0: ये सबसे पहला हमारा जो मुख्य भूमिका है वो ये है दूसरा है जितनी भी रूढ़िवादिता है उनका हम जो है उन्मूलन कर सके
1: रूढ़िवादिता जैसे कुछ उदाहरण आप देना चाहेंगे
0: जी हाँ जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की थी हमारे समाज में बहुत सारे इस तरह के जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि महिलाओं और पुरुषों को अलग तरह से देखते हैं महिलाओं का रोल अलग दिखाते हैं और पुरुषों का रोल अलग दिखाते हैं
1: जी।
0: तो उसी तरह की जो रूढ़िवादिताएं हैं उनको स्कूली शिक्षा के माहौल में पाठ्यक्रम में तथा जो शिक्षण पद्धति है उनमें इन तरह की जो भेदभाव है उसको पूरी तरह से समाप्त करना
1: जी।
0: उसके अलावा जो हमारा हमारा जो विभाग है वो ये भी काम करता है कि जो समाज के सबसे पिछड़े ग्रामीण इलाकों से आने वाले या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियां या जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उनकी शिक्षा के अधिकारों की हम बात करते हैं
1: तो ये जानकारी आपने बड़े विस्तार से हमें दी अब हम ये जानना चाहते हैं ये कार्य आप किस प्रकार से करते हैं
0: जी ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह के काम करते हैं जिससे कि हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें सबसे पहला जो है हमारा पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक उनका विश्लेषण करते हैं कि किस तरह से जो है सभी नई या पुरानी किताबें उनकी समीक्षा हम करते हैं ताकि उनमें से किसी भी प्रकार की जेंडर स्टीरियोटाइप्स या जेंडर बायसेस को या फिर भेदभाव को हटाया जा सके और एक सकारात्मक प्रतिनिधित्व को हम उसमें शामिल कर सके जैसे कि किताबों के चित्र हो या फिर कहानियां हो जिसमें महिलाएं व ट्रांसजेंडर जो हैं हमारे उनको वैज्ञानिकों के रूप में नेताओं के रूप में खिलाड़ियों के रूप में और विभिन्न पेशेवर भूमिकाओं में दिखाना सुनिश्चित हो सके
1: हाँ, पायलट्स के रूप में
0: हाँ, जी,
1: है ना?
0: जी
1: जी जी
0: तो आज हमारे श्रोता भी जानते होंगे इस चीज को जिस तरह से चंद्रयान में हमारी बहुत सारी जो महिला वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस चीज में लीड ली
1: उनकी प्रतिभागिता बहुत बड़ी रही
0: बहुत ज्यादा
1: सारे राष्ट्र में इसकी चर्चा है जी।
0: तो उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया और पूरे राष्ट्र में महिलाओं की एक अलग भूमिका को
1: एक अलग छवि बनी
0: अलग छवि जो है उनकी बनी तो इसी तरह से एक जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की भी हम बात करते हैं जिसको कि भाषा के रूप में अगर हम शिक्षण सामग्री में जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की बात करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल चेयरमैन एक ऐसा शब्द है जहां पर एक ऐसी इमेज बनती है कि एक चेयरमैन एक पुरुष है
1: हाँ, ऐसा लगता है कि वो एक पुरुष है
0: एक पुरुष है तो उसकी बजाय हम बात कर सकते हैं चेयरपर्सन
1: चेयरपर्सन
0: विच इज अ न्यूट्रल वर्ड तो उसके लिए हम इस तरह की और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम जेंडर न्यूट्रल उसमें देखते हैं
1: ऐसे और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं हम जानना चाहेंगे ये बड़ा दिलचस्प हो रहा है
0: जी बहुत जरूरी है ये देखना जैसे कि फॉर एग्जांपल पुलिसमैन या पोस्टमैन ज्यादातर हमने अपनी डेली लाइफ में अपने जो रोज की जिंदगी में इसी तरह के शब्द सुने हैं तो पुलिसमैन की जगह पुलिस पर्सन हो सकता है ऐसे ही पोस्टमैन की जगह पोस्ट पर्सन भी हो सकता है
1: बिल्कुल हो सकता है जी।
0: तो अब जैसे कि एक्टर है एक्टर वर्ड अपने आप में न्यूट्रल वर्ड है
1: न्यूट्रल वर्ड
0: बट एक्ट्रेस जो है दैट शोज दैट इट्स अ फीमेल तो इसी तरह से पुरुषों के लिए एक अलग शब्द भी होता है या फिर महिलाओं के

0: एक अलग शब्द भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जो कि सिर्फ पुरुष को दिखाया जाता है इन शब्दों में।
1: तो अब हम आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में, और आपसे हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर श्वेता कि शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए ऐसी कौन सी व्यवहारिक सलाह आप देना चाहते हैं, या प्रैक्टिकल एडवाइस आप कौन सी देना चाहते हैं, जिससे विद्यालय और घर दोनों स्थानों पर जेंडर संवेदनशील वातावरण बनाया जा सके।
0: जी, ये भी मैं कहना चाहूंगी कि हम सारा जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक शिक्षक को ना देते हुए, इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो अभिभावक हैं और हमारे छात्र जो हैं खुद, वो तीनों ही चीजें मिलकर जो है प्रयास करने चाहिए, जिसमें कि हमारे शिक्षक, अभिभावक और छात्र, इसके लिए हमें पुरानी जो रूढ़िवादी सोच है उसको छोड़कर आपसी सम्मान की संस्कृति को सबसे पहले अपनाना होगा। तो उनके लिए कुछ व्यवहारिक और सुझाव जो है वो मैं देना चाहूंगी।
1: जी
0: इसके भीतर सबसे पहले, अगर हमने देखा होगा कि हमारी जो क्लासरूम की सेटिंग्स हैं, जो हमारा बैठने का जो व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है। आज भी जब हम कहीं दूर दराज इलाकों में जाते हैं तो लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है, जबकि इस चीज को तोड़ते हुए हमें कक्षा में लड़कों और लड़कियों को एक साथ बिठाना चाहिए,
1: जी
0: और एक मिश्रित रूप में, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सके और टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में एक साथ भाग ले
1: और
0: सके।
1: दोनों के बीच में एक समानता का भाव हो कि वो एक साथ
0: समानता,
1: बैठ सकते हैं।
0: जी।
1: जी
0: और इसी तरह जैसे हमने अभी बहुत सारे उदाहरण की बात की थी, तो जो हमारा कामों का बंटवारा है, जिस तरह के काम हम रूढ़िवादी तरीके से बंटवारा करते हैं, ऐसा ना करें कि भारी सामान उठाने के लिए या फिर खेल के लिए हम लड़कों को प्रोत्साहन करें
1: और खाना
0: और
1: बनाने के लिए
0: खाना
1: महिला।
0: बनाने के लिए लड़कियों को करें,
1: जी
0: या सजावट का काम करने के लिए हम लड़कियों को आगे बढ़ाएं। तो सभी जिम्मेदारियों को बारी बारी से बदला जाए।
1: जी
0: और इसके अलावा जो हमारी जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है उसको हम बहुत ज्यादा प्रमोट करें
1: जी
0: और उन सभी को प्रोत्साहित करें कि लड़के या लड़कियों जो है उनको हम एक न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल कर सकें, जैसे कि जेंडर न्यूट्रल भाषा।
1: जेंडर न्यूट्रल भाषा यानी कि जो तटस्थ भाषा है।
0: जी हाँ,
1: जी हाँ
0: तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर कई बार हमने जो अपनी कक्षा में देखा है, कुछ शिक्षक ऐसे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर वो कहते हैं बच्चों या बच्चे, तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये प्रोजेक्ट होता है कि लड़कियों को उस चीज में शामिल नहीं किया गया है। तो इसके बजाय हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि विद्यार्थी या क्लास या फिर आप सभी लोग, इस तरह के सामूहिक शब्दों का प्रयोग करें, ना कि सिर्फ लड़के या लड़कियां।
1: हाँ, क्योंकि यदि बच्चों कहा जाए तो लगता है कि लड़कों को बोला जा रहा है।
0: जी हाँ, तो इसी तरह से हम विद्यार्थियों कह सकते
1: हाँ,
0: हैं,
1: विद्यार्थियों
0: क्योंकि
1: कह
0: एक
1: सकते हैं,
0: न्यूट्रल शब्द भी है,
1: शिक्षार्थियों कह सकते हैं।
0: शिक्षार्थियों भी कह
1: जी
0: सकते
1: हाँ
0: हैं।
1: जी हाँ
0: जी, कई बार क्या होता है, ऐसे अनकॉन्शियस बायस होते हैं जिसको भी अनजाने में हम अपने बिहेवियर में ले आते हैं,
1: जी
0: तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। जहां लड़कियों की तारीफ सिर्फ शांत और साफ सुथरी होने के लिए करी जाती है, वहीं पर लड़कों की तारीफ बहादुर और बुद्धिमान होने के लिए की जाती है,
1: जी
0: तो बुद्धिमत्ता और मेहनत की तारीफ बिना जेंडर देखे की जानी चाहिए।
1: जी
0: और इसी के अलावा सकारात्मक जो भी रोल मॉडल्स हैं हमारे, उनके उदाहरण हमें देने चाहिए, जैसे कि महिला वैज्ञानिक या फिर पुरुष नर्स। कई बार आपने देखा
1: यस
0: होगा कि
1: जी
0: नर्स का जो, जैसे ही हम सुनते हैं इस
1: नर्स
0: प्रोफेशन
1: की
0: के
1: जो
0: बारे
1: छवि
0: में,
1: है।
0: हाँ, वो जो छवि है उसमें हमें, हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं, या एयर हॉस्टेस की जो छवि है
1: जी
0: उसमें भी हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं स्टीरियोटाइप्स को हम जो है चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
1: हाँ, एयर होस्ट शब्द बहुत कम सुनाई पड़ता है।
0: जी, एयर होस्ट आपको नहीं सुनाई देता।
1: जी
0: उसके अलावा एक दूसरा शब्द होता है स्टीवर्ड, शायद, मुझे नहीं पता कि वो ठीक है,
1: दोनों यूज
0: बट
1: होते हैं। जी
0: हाँ, तो हम उसकी जगह एक ऐसे रोल मॉडल्स को, सकारात्मक जो उदाहरण दे सकें लड़कियों को, महिलाओं को, उस तरह के उदाहरण को हमें शामिल करना चाहिए, ताकि हमारे सभी बच्चे हर क्षेत्र में अपने उस अस्तित्व को स्वीकार कर सके।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा, वो ये है कि यदि कोई शिक्षक या विद्यालय जेंडर संवेदनशील शिक्षण सामग्री या प्रशिक्षण या मार्गदर्शन आपके विभाग से प्राप्त करना चाहे, तो आप उन्हें किस प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे?
0: जी, तो एनसीईआरटी के बहुत सारे डिजिटल पोर्टल्स हैं, जिसमें कि प्रकाशन और समर्पित विभागों के माध्यम से भी इसे पूरी तरह से मुफ्त व ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि सबसे पहला, आपने अगर सुना होगा तो दीक्षा पोर्टल भी है
1: जी
0: और उसका एक मोबाइल ऐप भी है, वो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। दूसरा हमारा ई पाठशाला पोर्टल है, उस पर भी जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं, सभी तरह की जो सामग्री है उसको आप जाकर देख सकते हैं। तीसरा हमारा जो जेंडर अध्ययन विभाग, उसकी वेबसाइट पर भी हर तरह की जो सामग्री है और हर तरह की जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा जो है हमारा एनसीईआरटी का एक पब्लिकेशन डिवीजन, जहां पर किताबों की बिक्री भी होती है, तो यहां पर भी आप उस पोर्टल पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जो सीधे आपके स्कूल या घर पर डिलीवर हो जाएगी
1: जी।
0: मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी अजीत जी, एक बहुत जरूरी जो कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने लिया वो ये कि लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा, इसको प्रदान करने के लिए एक विशेष कोष बनाया गया है जिसको हम जेंडर इंक्लूजन फंड भी बोलते हैं। इस नीति में विशेष रूप से लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को शामिल करने का प्रावधान है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्वेता जी।
0: धन्यवाद अजीत जी।
1: हमें आशा है कि हमारे सभी श्रोताओं को आज की बातचीत से, हमारी चर्चा से सच में बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो श्रोताओं, हमारी आशा है कि आज की बातचीत आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद रही, और यदि आपको अच्छी लगी तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया हमें लिख भेजिए। एक बार फिर से आप सबको हमारा नमस्कार।
0: नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें आज के कार्यक्रमों के लिए आपसे प्रतिक्रिया की आशा रहेगी। हमारा टोल फ्री नंबर है 8800-440-5559, और साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमें संदेश भेज सकते हैं। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 102 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

0: चाहिए वो भी ऐप से वाह
1: अनजान ऐप से बचें
2: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें
5: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं
6: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई
5: क्या कैसे
6: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो
5: वाह अच्छा रजिस्टर कैसे करूं
6: mmsky.mp.gov.in पर mmsky सीखो भी कमाओ भी

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
3: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
2: क्या, कैसे?
3: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
2: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
3: mmsky.mp.gov.in पर। mmsky, सीखो भी कमाओ भी।
4: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
5: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने
1: रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोली वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रायल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह ट्रांसपोर्टेशन में, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कम्प्लीट हुआ।
1: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। वो गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला, वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी ढील देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीटों और पुदुचेरी की 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़े विधानसभा सीट पर मतदान होगा। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्यनिकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। दक्षिण लंदन में इसराइल के हवाई हमले में 12 लोगों की मौत हो गई है। कफर रोमानी गांव में एक रिहायशी इमारत पर हुए हमले में 11 लोग मारे गए, जिनमें 2 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। शीतल देवी ने विश्व तिरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड की व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग मीटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही नए समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Defence Acquisition Council, DAC, has cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the defence forces. Our correspondent reports that the approval was taken during a meeting of the council held today under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh.
3: The council granted approval for the procurement of chemical, biological, radiological and nuclear CBRN recce vehicles, high mobility vehicles HMV, self-propelled mechanical mine layers MML, advanced light helicopters ALH, trawl tanks and Sarvatra bridge system for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudhra radars, design and development and subsequent procurement of marine gas turbines MGT. Arudhra radars will replace the existing air route surveillance radars at various naval air stations, and MGT, a warship propulsion system, will reduce dependency on foreign vendors. Meanwhile, for the Indian Air Force, approval was granted to various proposals to enhance the war fighting capability. Approval was also accorded for procuring ground-based multi-purpose jammer and installing Defence Forces Secure Access Card system. The defense ministry said 98% of total procurement will be made from the Indian industry. The CBRN Recce vehicles will be capable of detecting, identifying, monitoring and marking of areas contaminated with CBRN agents. The HMVs will enhance operational capabilities, logistic support and mobility in challenging terrains. With Rishu, Saplan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra tomorrow. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. He will also dedicate to the nation three important sections of the Western Dedicated Freight Corridor WDFC, covering 326 route kilometers. Briefing media personnel at Ahmedabad Airport today, Railway Minister Ashwini Vaishnaw emphasized that the eastern and western dedicated freight corridors will serve as a crucial backbone for the country's transport and logistics sector. The Prime Minister will also flag off freight train services from New Sanand, New Makarpura, New Umbargaon and New JNPT Mumbai. The Prime Minister will also lay the foundation stone for three railway projects costing more than 9,700 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah today chaired the 28th meeting of the Western Zonal Council at Panaji in Goa. Addressing the gathering, Mr. Shah said there are no longer any disputes amongst the states of the Western region, which is a major achievement. He emphasized that the zonal councils have evolved from forums for dispute resolution into platforms for monitoring the implementation of public welfare schemes. Mr. Shah said that all the issues discussed in today's meeting were related to the monitoring. He noted that several disputes between states over rivers have also been resolved in the zonal council. The meeting was attended by Goa Chief Minister Pramod Sawant, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, and Administrator of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Praful K. Patel. Union Minister of State for Petroleum and Natural Gas Suresh Gopi today said that the centre has asked the oil marketing companies, OMCs, to uniformly implement the revised LPG refill booking interval of 25 days in both urban and rural areas immediately. In a social media post, Mr. Gopi said that in view of the current LPG supply situation improving and the significant reduction in refill backlog, the central government has relaxed this restriction. He said, now all domestic LPG consumers, regardless of urban or rural, can book refills at an interval of 25 days. The Election Commission today announced bipoll to Nagaur Lok Sabha seat in Assam. It has also announced assembly bipolls for two seats each in Tamil Nadu and West Bengal and one seat in Puducherry. Reigning world champion Sheetal Devi has confirmed the medal for India by storming into the women's compound individual final on the third day of the stage 3 of World Archery Para Series in Ahmedabad today. In an all-Indian semi-final, the armless archer from Jammu defeated Sarita. And that is the end of this news bulletin.
4: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:55 पर अपने बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। शुभ रात्रि। जय हिंद।